FM बैंड 103.2 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी बिलासपुर है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 9 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:57 होने वाले हैं। हमारा आज का प्रसारण अब प्रारंभ होता है।

FM बैंड 103.2 MHz पर, ये आकाशवाणी बिलासपुर है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीक की मदद से सीमा व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। यह पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आज से प्रधानमंत्री सुरक्षित अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर देश भर में विशेष कार्यक्रम शुरू करेगा। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को की थी। इसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और अच्छी गुणवत्ता वाली प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। समारोह के दौरान स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 का डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ती पहुंच से अगले 5 वर्षों में भारत का फार्मा उद्योग दोगुना होने की संभावना है। नई दिल्ली में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर आयोजित ग्लोबल एम्बेसडर मीट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और अब भारत के 50 से अधिक देशों के साथ व्यापारिक समझौते हैं। इससे भारतीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल जेनरिक दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और उच्च मूल्य वाली औषधियों के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि यह पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष खरगे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक के लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है।

0: विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में हुई आग की दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रूपये और घायलों को 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं केंद्रीय इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमारस्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की है। यह फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल युद्ध विराम की अपील के बाद लिया गया है। हालांकि दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस बीच राष्ट्रपति ने कहा है कि दोनों पक्ष संघर्ष विराम चाहते हैं और शांति वार्ता जारी है। वहीं ईरान राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा है कि उनका देश कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के प्रति प्रतिबद्ध है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भागों तक पहुंच गया है। इसके साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचार अभी हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। आइए सबसे पहले करें देश वंदना समूह स्वर में।

0: अनूप जलोटा के गाए इस भक्ति रचना के साथ ही आज की आराधना अब हम यहीं संपन्न करते हैं। FM बैंड 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। अब लीजिए खेती की बात में सुनिए, धान की खेती में पोटेशियम उर्वरक का महत्व, इस विषय पर जानकारी वाचन स्वर अभिनव गौरहा का।
1: किसान भाई हो, राम राम, जय जोहार। भाई देखा, खेती किसानी के दिन अब लटिया गए है। आओ किसान भाई मन, अपन खातू माटी के व्यवस्था में जुड़ गए हैं। मुख्य रूप से हम अपन खेत में जेकर तीर जतका बन पाते उतका हम घुरवा खाद के पूर्ति खेत में करथन प्रति एकड़ प्रति हेक्टेयर, लेकिन हर साल उतका भी हमन ला कंपोस्ट नहीं मिल पाए। भाई आजकल जानवर ही लोगन के पास कम हो गए है, तो कहाँ ले देसी खातू के, देसी कंपोस्ट के, गोबर खातू के व्यवस्था कर पाही। ओकर बाद मुख्य रूप से धान के खेती में NPK, वैसे तो 17 पोषक तत्व होते, जिनमें NPK नत्रजन स्फुर पोटास तीन मुख्य तत्व हमन ला खेत में रासायनिक उर्वरक के माध्यम से डाले ला पड़ते। NPK के बड़ महत्ता है हमार खेती में। जब हम अभी के खेती करत हन, नत्रजन माने यूरिया के माध्यम से हमन ला मिल जाते। स्फुर के बात करी, पी मतलब फॉस्फोरस, स्फुर के बात करी तो वह DAP या SSP के माध्यम से मिल जाती। DAP के बस्ता में हमन ला नत्रजन घलाव मिल जाते। अगर हमन NPK उर्वरक इपको के या कोनो भी कंपनी के लेथन 12, 32, 16 या कुछ भी, जिनमें तीनों पोषक तत्व है, तो पोटास के मात्रा हमन ला मिल जाते और हम ओला खेत में डाल देथन। लेकिन अधिकतर हम देखा थन, हम घूमथन देखथन एति के किसान भाई मन यूरिया और DAP भरला अपन खेत में डालते। खेत के मोताई के समय DAP के बेगले डालते, ओखर बाद 2 या 3 पैतमा यूरिया के पूर्ति ओमन नत्रजन पर करते। तो कुल मिला के NPK मा N मिल गए नत्रजन और P मिल गए फास्फोरस मतलब स्फुर, के मतलब होते पोटास, जिन मुख्य पोषक तत्व होते जौन हा खेती मा किसान भाई मन पूर्ति नहीं करें। कतको किसान मन करते लेकिन कतको जीवन नहीं करन, जबकि ये है बड़ जरूरी उर्वरक होते हमार कोनो भी फसल पर। तो आज बात करबो पोटास, पोटेशियम खाद कैसे हमार फसल ला कौन प्रकार से लाभ देते, जैसे हमार शरीर ला बीमारी से लड़े और मजबूत बनाए बर ताकत के जरूरत होते, वैसने धान के पौधा पर पोटास हा इम्यूनिटी बूस्टर के काम करते। सबले पहली बीमारी और कीट से सुरक्षा। पोटास पौधा के बाहरी परत ला मजबूत और सख्त बनाते। एकर से धान में लगे वाले प्रमुख बीमारी जैसे ब्लास्ट, झुलसा रोग या सीथ ब्लाइट के खतरा बड़ कम हो जाते। एकर अलावा तना छेदक, तना काटे वाले जिन किरवा होते, कीड़ा होते और अन्य हानिकारक कीट भी पौधा ला आसानी से नुकसान नहीं पहुंचा पावे। सूखा और विपरीत मौसम से लड़े की ताकत। मौसम में कतको हम भरोसा कर ली, लेकिन मौसम कभू कभू धोखा दे देते। कभी सूखा पड़ जाते तो कभू तेज हवा चल लगते। पोटास पौधा के जड़ ला गहराई तक फैलाते, जेखर से पौधा जमीन

0: से मजबूती से जुड़े रही थे। तेज हवाएं आंधी आए में भी वो धान की फसल खड़े रही थे, लोजिंग नहीं हुए, गिरे नहीं। कतको जगह देखथन कि बाद में आखिरी समय में धान की फसल गिर जा रही थी, संग में पानी सहे के व्यवस्था ला बनाए रही थे, जमा रही थी। दाना अगर पोटास डाला था तो बढ़िया मजबूत वजनी और चमकदार दाना होते। दूसर जेन भी हमन चाहे नत्रजन डाली चाहे स्फूर डाली अन्य खाद ला हम पौधा तक सही ढंग से तभी पहुंचा सकथन जब पोटास के सही मात्रा हम खेत में डालबो। ऐसे नहीं है कि भाई हम दो चीज डाल दें ता हो गए, उन दोनों ला पौधा उपयोग कर ही ता तीसर चीज के माध्यम से करी। तो भाई हमन ला कतका मात्रा में डालना है, धान के फसल में प्रति एकड़ लगभग 20 से 25 किलो हम म्यूरेट ऑफ पोटास लाल खाद के रूप में जानथन ओला हम डाल सकथन। एला वैसे तो जब खेत के मताई हम करथन तैयार करथन तभी हमन ला डीएपी ला और पोटास ला डाल देना चाहिए। केवल नत्रजन जिला यूरिया के माध्यम से हम देथन ओला बस हमन ला 2 या 3 पैत देना चाहिए, वो भी कम कम मात्रा में। ज्यादा देबो तो पौधा ज्यादा मुलायम हो जाए और ज्यादा रोग राई लगी। तो ए हो इस पोटेशियम खाद के महत्व। राम राम, जय जोहार।
1: खेती की बात में अभी आपने सुनी जानकारी धान की खेती में पोटेशियम उर्वरक का महत्व, इस विषय पर वाचन स्वर अभिनव गौरह का था। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। अब प्रस्तुत है रामचरित मानस गान। मुख्य गायन स्वर शिप्रा बोस और रामकृष्ण चंदेश्री का और संगीत संयोजन है सतीश भाटिया का।

विधि के विधान के अनुसार श्री राम तथा जानकी का विवाह शिव के धनुष के अधीन था, जो उसके टूटते ही संपन्न हो गया। किंतु लोकाचार का अपना ही महत्व होता है। प्रत्येक कुल की अपनी मर्यादा तथा परंपरा होती है, जिसका परिपालन ऐसे शुभ अवसरों पर ही होता है। अतः वेदों में वर्णित तथा राज पुरोहितों द्वारा अनुशंसित आचार के लिए राजा जनक ने महाराज दशरथ के पास शुभ संदेश लेकर अपने दूत भेजे। संदेशवाहक पत्र लेकर श्री राम की पवित्र नगरी अयोध्या पहुंचे। पाती बांचते हुए महाराज दशरथ का हृदय पुलकित हुआ और नैनों में आनंद के आंसू छलक आए। जनकपुरी से आए दूतों का समाचार सुन मित्र मंडली के साथ खेलते हुए भरत तथा शत्रुघ्न दौड़े आए। अपने प्राणों से भी प्रिय भाइयों श्री राम तथा लक्ष्मण का कुशल क्षेम जानने के लिए। जब से ऋषि विश्वामित्र के साथ राजा दशरथ के दो पुत्र ऋषि मुनियों की यज्ञ रक्षा के लिए गए थे, तब से आज पहली बार उन दो किशोरों के कुशल क्षेम का समाचार मिला था। दूतों ने धनुष यज्ञ में श्री राम के पराक्रम की कथा सुनाई, जिसे सुनकर सभी गदगद हो गए।

रामचरितमानस गान अभी आपने सुना। मुख्य गायन स्वर शिप्रा बोस और रामकृष्ण चंदेश्री के थे और संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। अब लीजिए सुनिए चिंतन। विषय है सत्यमेव जयते। आलेख सुश्री निशा रहट गांवकर का।

सत्यमेव जयते, इस वाक्य को हम हमारे पूर्वजों के समय से सुनते आ रहे हैं। सत्यमेव जयते का अर्थ होता है कि सत्य की विजय होती है, हमेशा सत्य ही जीतता है। परंतु इस कलयुग में हम इस अर्थ को दूरबीन लेकर भी ढूंढें तो हमें सच्चाई के दर्शन नहीं होते। कई बार झूठ, फरेब, छल कपट ने सत्य को पीछे धकेल दिया है। जब पूर्वज कहते हैं तो इसके अर्थ में अवश्य ही सच्चाई होगी। इस वाक्य को सरकार ने श्रीद वाक्य के रूप में अपनाया है। यदि हम सरकार के इस वाक्य को उसके ही नुमाइंदों पर आजमा कर देखें तो हमें पता चलता है कि छोटे से लेकर बड़े तक इनमें से कितने लोग हैं जो सच बोलते हैं, सच बोलने का साहस जुटा पाते हैं। ऐसे में सत्य ही जीतता है, इस बात को कहने में बहुत परेशानी होती है। सच बोलने के लिए साहस चाहिए, क्योंकि सच बड़ा कटु होता है, शायद जहर से भी ज्यादा, जिसे पी पाना या हलक के नीचे उतारना सबके लिए आसान नहीं होता। पिछले दिनों टेलीविजन पर एक कार्यक्रम प्रसारित हुआ था जो सत्य पर आधारित था। इस टीवी कार्यक्रम के जरिए भी सच्चाई बताने का प्रयत्न किया गया, फिर भी लोग इसे सिर्फ टीवी सीरियल है समझकर देखते हैं और भूल जाते हैं, सहसा विश्वास नहीं करते। परंतु इस वाक्य को ही पूर्ण रूप से छुटला देना उचित नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने इसे आजमाया है, आचरण किया है, तब हमें वास्तविकता को बताया है। महर्षि उवध्य अपनी कुटिया में पूजा अर्चना में ध्यान मग्न थे। हिरण के चरमासन पर बैठकर वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, तभी एक हिरण आया और दुबक कर उनकी कुटिया में जा बैठा। थोड़ी देर बाद एक शेर भी वहां आया। उसने महर्षि उवध्य से पूछा, गुरुदेव, क्या आपने मेरे शिकार को देखा है? वो इसी तरफ दौड़ते आया है। महर्षि बड़े असमंजस में पड़ गए। वे सत्यवादी थे, अपने जीवन में उन्होंने कभी भी झूठ नहीं बोला था। आज उनके सामने बड़ी विकट समस्या खड़ी हो गई। यदि सच बोलते हैं तो नाहक ही उस हिरण के प्राण गंवाने पड़ेंगे, और यदि झूठ बोलते हैं तो सत्यवादी का खिताब उनसे छीन जाएगा। इसी बीच उस शेर ने पुनः महर्षि से प्रश्न किया, गुरुवर, आप मुझे वो हिरण किस दिशा में गया है बस इतना बता दीजिए।

0: तो मैं उसे ढूंढ लूंगा, सहसा महर्षि के मुख से निकल पड़ा। हे वनराज, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, क्योंकि देखने का कार्य आंखें करती हैं, जबकि बोलने का कार्य मुख द्वारा होता है। समस्या यह है कि आंखें बोल नहीं सकती और मुख देख नहीं सकता। वनराज, तुमने बोलने वाली इंद्रिय से प्रश्न किया है कि क्या उसने तुम्हारे शिकार को देखा है। जो देख नहीं सकता वो भला इसका उत्तर कैसे दे सकता है। महर्षि के जवाब से शेर को समाधान तो हो गया, लेकिन शिकार भी नहीं मिला। वो शेर तो वहां से मायूस होकर चला गया, लेकिन महर्षि ने सच की रक्षा करते हुए उस हिरण के प्राण बचाए। उस तर्क को ही तर्कशास्त्र का नाम मिल गया। यदि मनुष्य का तर्क सही हो तो वो बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाल सकता है।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, विषय था सत्यमेव जयते, आलेख सुश्री निशा रहटगांवकर का। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 6:50 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

आज शाम 7:10 पर आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम। विषय होगा आर्थिक विकास। सुबह 8:30 पर छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइयां और सुबह 10 बजे प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर, ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी रायपुर से रिले किए जाएंगे। आज रात 8 बजे विविधा कार्यक्रम में श्रेयांश बुधिया के साथ डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की बातचीत सुनिएगा। विषय होगा भूजल संवर्धन और पर्यावरण संरक्षण में तालाबों की भूमिका। कार्यक्रम प्रस्तुति होगी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की। शाम 5:35 पर महिला सभा में सामयिक चर्चा का विषय होगा रसोई से सेहत तक, और क्रम स्वास्थ्य वार्ता में डॉक्टर अर्चना अग्रवाल द्वारा श्रोताओं के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सुनिएगा फोन इन कार्यक्रम में। आज सुबह कार्यक्रम में प्रस्तुत करेंगे सुबह 7:05 पर सदाबहार नगमे, सुबह 7:30 पर और नए तराने सुनिएगा सुबह 10:30 पर। चित्रपट संगीत शाम 7:45 पर और रजनीगंधा कार्यक्रम का समय होगा रात 8:20। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी दिन में 11 बजे और प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट शाम 5 बजे प्रसारित किए जाएंगे। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे सुबह 9 बजे से 9:55 तक, फिर दिन के 11:30 से 11:55 तक, और फिर दिन के 12 बजे से शाम के 5 बजे तक, और फिर रात के 9:15 से रात के 11 बजे तक। शाम 5:05 पर किसानवाणी में आज की बात का विषय होगा हरी खाद सनई ढेंचा की खेती, और स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम भी आप सुनेंगे।

कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। FM बैंड 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। आप समाचार आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे।

0: परिवर्तनम् अभवत्। महिला क्रिकेट क्रीडायां यूनाइटेड किंगडम देशस्य कार्डिफ नगरे 26,000+ आईसीसी महिला 20-20 विश्व चषक क्रीडायाः प्राक् ह्यः पूर्वाभ्यास क्रीडायां भारतेन वेस्टइंडीज दलं 20 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता ही दर्शाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपये स्मारक सिक्का और 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री गोयल ने कहा है कि नवाचार, वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ती पहुंच से अगले 5 वर्ष में भारत का उद्योग दोगुना होने की संभावना है। नई दिल्ली में कल फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर आयोजित ग्लोबल एम्बेसडर मीट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और अब 50 से अधिक देशों के साथ व्यापारिक समझौते हो चुके हैं, जिससे भारत को व्यापक बाजार हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल जेनरिक दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और उच्च मूल वाली औषधियों के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। असम की प्रसिद्ध टैग प्राप्त तेजपुर लीची अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि तेजपुर लीची की पहली खेप दुबई के लिए रवाना की गई है। श्री गोयल ने कहा कि इस साल से तेजपुर लीची को वैश्विक पहचान मिलेगी, किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त होगा और पूर्वोत्तर भारत के कृषि उत्पादों के लिए नए अवसर खुलेंगे। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हुए हैं। इनमें 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार ये हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजनों 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमारस्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू ने भी मुख्य सचिव, जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। दुर्घटना की जांच जारी है। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में संपन्न हो गई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले शामिल थीं। अमरीका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए 1 लाख अमरीकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के तहत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि कांग्रेस की मंजूरी के बिना ये शुल्क नहीं लगाया जा सकता। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की है। ये फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल युद्ध विराम अपील के बाद लिया गया। भारत ए और श्रीलंका

0: एक क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मैच आज दम्बुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों तक पहुंच गया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचार अभी हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 7:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आज सुबह।

मित्रों नमस्कार। सुबह सुबह का ये माहौल हम सब में ताजगी भर देता है। नया सवेरा हमेशा नया उत्साह लेकर आता है, चाहे वो उस दिन भर के लिए हो या फिर पूरे जीवन के लिए। ऐसे ही नए उत्साह और रोशनी से भरना चाहते थे कई लोगों का जीवन धरती के आवाज कहे जाने वाले बिरसा मुंडा। मुंडा जनजाति के लोकनायक जिन्होंने ब्रिटिश राज के दौरान 19वीं शताब्दी के अंत में उस वक्त की बंगाल प्रेसिडेंसी, जो अब झारखंड में है, वहां हुए आंदोलन का नेतृत्व किया, जिससे वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए। उन्होंने आदिवासी अस्मिता, स्वायत्तता और संस्कृति को बचाने के लिए सभी को संगठित कर महाविद्रोह छेड़ा था। सन 1900 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और उसी वर्ष 9 जून को उन्होंने अपना देह त्यागा। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।

कृपया अब कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 11 जून 2026 को स्टूडियो में कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर परमेंद्र कुमार केशरी उपस्थित रहेंगे। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा धान फसल में नील हरित काई एवं भूरा खाद का उपयोग, और सुबह 11 बजे से 11:30 तक का विषय होगा जैविक खेती की आवश्यकताएं एवं संभावनाएं। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 2665592। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 11 जून 2026 और 12 जून 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे तक आप सुन सकते हैं।

मित्रों आइए अब याद करें हिंदी और बांग्ला फिल्मों के निर्देशक सत्येन बोस को। उनकी फिल्म जागृति को 1956 में और फिल्म दोस्ती को सन 1964 में फिल्म फेयर बेस्ट मूवीज के अवार्ड मिले हैं। चलती का नाम गाड़ी, रात और दिन, जीवन मृत्यु जैसी कई हिट फिल्में उन्हीं के नाम हैं। सिनेमा में किसी औपचारिक प्रशिक्षण के बिना अपनी अनोखी पहली फिल्म जिसका नाम था परिवर्तन, उसके लिए प्रसिद्धि प्राप्त की सत्येन बोस जी ने। ये फिल्म आई थी सन 1949 में। आज उनकी पुण्यतिथि पर उनकी फिल्म चलती का नाम गाड़ी का गीत सुनते हैं, आइए उन्हें याद करते हुए। ये फिल्म आज भी मनोरंजन का पिटारा मानी जाती है।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप।

0: वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
2: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
1: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
2: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
2: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
0: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
3: और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर उमा शंकर पांडे जी से।
4: नमस्कार, ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर की श्रृंखला में यातायात संबंधी नवीन सूचनाओं के साथ मैं हूं उमा शंकर पांडे। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज ग्राम पथर्रा मोड़ बिलासपुर कोटा रोड पर स्थानीय लोगों के द्वारा अपनी मांगों के संबंध में प्रातः 10 बजे से चक्का जाम किए जाने का आह्वान किया गया है। अतः समय विशेष पर इस मार्ग पर यात्रा करने वाले वैकल्पिक मार्ग का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही चक्का जाम कर रहे सभी सदस्यों से अनुरोध है, चक्का जाम के दौरान भी फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस जैसे अति आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों की सेवा किसी भी स्थिति में बाधित नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार आज ही कांग्रेस के सदस्यों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर आज प्रातः 11 बजे कांग्रेस भवन में एकत्र होकर रैली स्वरूप यहां से चलकर नेहरू चौक होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपे जाने की योजना है। रैली के प्रत्येक सदस्यों से पुनः अनुरोध है कि बिलासपुर शहर की शान नेहरू चौक में एवं ज्ञापन सौंपते समय कलेक्टर कार्यालय के सामने मुख्य सड़क पर यातायात बाधित ना हो, क्योंकि यदि यहां पर यातायात बाधित होता है तो इससे शासकीय कार्य भी बाधित होता है। इस बात का पूरा ध्यान रखें कि अपने अधिकारों की मांग करते करते दूसरे के अधिकारों का हनन ना हो, क्योंकि यह विधि विरुद्ध है। इसलिए जिस मार्ग में सभी को जाने की आजादी है उस मार्ग को जाम करना किसी के अधिकार पर अतिक्रमण करना है। इसके साथ ही शहर से लेकर गांव-गांव में भी अर्थात संपूर्ण बिलासपुर जिले में यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। साथियों, जिला कलेक्टर कार्यालय के आसपास जिला न्यायालय सहित पुलिस अधीक्षक कार्यालय, दो दो कंपोजिट बिल्डिंग सहित अनेकों शासकीय कार्यालय है। यहाँ प्रतिदिन

0: अच्छे खासे पढ़े लिखे, ज्ञानवान और साधन संपन्न लोग महंगी से महंगी गाड़ियों में आते हैं और अपनी कारें मुख्य मार्ग में या रोड से एक पहिया नीचे उतार कर खड़ा कर चले जाते हैं। परिणाम इस महत्वपूर्ण सड़क में जाम की स्थिति बनती है, जबकि पास ही सर्व सुविधा युक्त सुरक्षित मल्टी लेवल कार पार्किंग है। 50 लाख की कार वाले भी 20 रुपए पार्किंग शुल्क से बचना चाहते हैं, जो नैतिकता, मानवता और विधि के विरुद्ध है। अतः ऐसा न करें, हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
1: ये थे आज के ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर। आइए मित्रों, अब याद करते हैं हिंदी फिल्मों के जाने माने डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर राज खोसला जी को। सन 1950 से 1980 तक बेहतरीन फिल्में दी इंडस्ट्री को उन्होंने। गुरुदत्त साहब के अंडर अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी, देवानंद साहब के साथ कई हिट फिल्में दी और हाँ, भारतीय फिल्मों में नियो नॉयर लाने का श्रेय इन्हें ही जाता है। नियो नॉयर यानी ऐसी फिल्में जो न्यू एंड डार्क हैं, यानी अपराध या अन्य समस्याओं पर केंद्रित, और इनकी सस्पेंस थ्रिलर्स तो मशहूर हैं इस तरह की, वो कौन थी, मेरा साया, अनीता, सीआईडी जैसी कई फिल्में। आज सुबह 7:30 पर सदाबहार नगमों के कार्यक्रम में राज खोसला साहब की फिल्मों से लिए गए कुछ गीत हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उन फिल्मों के गीत सुनवाएंगे जो सन 1970 के बाद बने हैं। तो उन्हें याद करते हुए फिलहाल आइए सुनते हैं 1964 में बनी फिल्म वो कौन थी का ये मशहूर गाना।

सर्वे जना सुजना भवन्तु, सर्वे सुजना सुखिनो भवन्तु। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज सुबह कार्यक्रम से अब हमें दीजिए विदा। नमस्कार।

आज सुबह ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। FM बैंड 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। और इसमें आज जैसे कि हमने आपको बताया, डायरेक्टर प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर राज खोसला जी के फिल्मों से लिए गए गीत हम आपको सुनवाएंगे जो 1970 के बाद बनी थी। शुरुआत करते हैं मैं तुलसी तेरे आंगन की इस फिल्म से, जिसके लिए बेस्ट फिल्म का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
2: अब आइए सुनते हैं मेरा गांव मेरा देश फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

कृपया अब एक सूचना सुनिए। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष से कम उम्र के बालक बालिकाओं को वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। नामांकन या अनुशंसा ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in पर 31 जुलाई 2026 तक जमा किए जा सकते हैं। विस्तृत विवरण राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर जाकर प्राप्त किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई।

FM बैंड 103.2 मेगा हर्ट्ज़ पर आकाशवाणी बिलासपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमों का कार्यक्रम। और आज हम आपको सुनवा रहे हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर राज खोसला की फिल्मों से लिए गए गीत। आइए अब सुनते हैं सनी फिल्म का ये गाना सुरेश।

और अब आइए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं दोस्ताना फिल्म का गीत है। मोहम्मद रफी और किशोर कुमार की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

एक और गीत की गुंजाइश थी, तो प्रेम कहानी फिल्म का गीत आप तक पहुंच रहा है मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल और लता लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: प्रेम कहानी फिल्म के इस गीत के साथ ही सदाबहार नगमों का ये कार्यक्रम अब हम यहीं समाप्त करते हैं। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 8 बजे हैं। अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही

0: पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में एमटी मारीवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर फिर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अमेरिका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: गृह मंत्रालय ने कहा है ये प्लेटफॉर्म व्यापार सुगमता, संपर्क, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप है। LPMS एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भूमि बंदरगाहों के संचालन को एकीकृत प्रणाली में समाकलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रणाली कार्गो और यात्री प्रसंस्करण के लिए स्लॉट बुकिंग, भुगतान, ट्रैकिंग और सिंगल विंडो क्लीयरेंस सहित संपूर्ण डिजिटल कार्य प्रभावी प्रदान करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के दावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंडपोर्ट में नव विकसित हितधारक आवास सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे सीमा प्रबंधन और कर्मियों के लिए बुनियादी ढांचागत सहायता मजबूत होगी। शिवम मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। इनमें ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
5: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
3: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और खाद्य सुरक्षा मजबूत करना है।
6: भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित कुल 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग लेंगे। 13 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन की शुरुआत कृषि कार्य समूह की बैठकों से हो रही है। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। 12 जून को कृषि मंत्रियों का विशेष संवाद आयोजित होगा, जिसका फोकस लघु किसानों, महिलाओं एवं युवाओं के माध्यम से भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर रहेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
3: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी देंगे।

0: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत व्यय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
1: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या होता है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का, इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे।
0: वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
2: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक रह रहा हूँ।
0: सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवम्बर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने अस्पतालों के विस्तार और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष में भारत के कोयला और खनन क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है। हैदराबाद में कल श्री रेड्डी ने बताया कि भारत ने 1 अरब टन कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड हासिल कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश बन गया है। उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र से लगभग 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हो गए हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतकों के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हादसे की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की है। समाचार कक्ष से मैं चाहत सिंह।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ओमान के मस्कत में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मेरिवेक्स जहाज पर लगी आग के बाद 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। दूतावास ने त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान का आभार भी जताया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता उपेश कुमार शर्मा ने बताया था कि दोपहर करीब 1:30 बजे जहाज पर आग लगने की सूचना मिली। हादसे की जांच जारी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए $1,00,000 के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी

0: के बिना ऐसा शुल्क नहीं लाया जा सकता। H-1B वीजा के लिए जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। ईरान और इसराइल के बीच एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित हो सकती है। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला में अफगानिस्तान ए की टीम भी शामिल है। भारत ए का अगला मैच अफगानिस्तान ए से बृहस्पतिवार को होगा। फाइनल 21 जून को होगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के पहले अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। भारतीय फूलमाली ने नाबाद 56 रन और स्मृति मानधना ने 39 रन का योगदान दिया। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ में आज लू चलने की आशंका व्यक्त की है। कोंकण और गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में दिन भर गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। तटीय कर्नाटक, केरलम, माहे और उत्तरी तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में आज तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों में बगावत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, टीएमसी में टूट, 20 सांसदों का अलग गुट एनडीए के साथ। पत्र के अनुसार काकोली घोष की अगुवाई में अलग सेटिंग की भी मांग। दैनिक जागरण ने तृणमूल में एक और टूट शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जैसी आशंका थी तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्यों ने भी ममता बैनर्जी के खिलाफ बगावत कर दी है। इससे पहले पार्टी के 80 में से 60 विधायक अलग गुट बनाकर नेता प्रतिपक्ष का चयन कर चुके हैं। पंजाब केसरी ने विपक्षीय एकता का अंतर विरोध शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, हाल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली शानदार सफलता बताती है कि इंडिया गठबंधन में इतनी भी कुव्वत नहीं है कि उसके सहयोगी दलों के नेता एक साझा मंच पर इकट्ठे होकर भाजपा को ललकार सके। हिंदुस्तान ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को का साक्षात्कार देते हुए लिखा है, चीन से सिर्फ उम्मीद के भरोसे शांति संभव नहीं, थिएटर कमान पर भी सहमत। जनसत्ता के अनुसार इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए, 8 अप्रैल के बाद यह गंभीर झड़प, ट्रंप की अपील के बाद दोनों देशों ने किया संघर्ष विराम। पत्र के अनुसार भारत ने नागरिकों को सलाह देते हुए लिखा है, ईरान और इसराइल छोड़े भारतीय और यात्रा भी ना करें। अमर उजाला ने दिया है, वायुसेना के हेलीकॉप्टर पहुंचाएंगे नीट के प्रश्न पत्र, पहली बार सरकारी प्रोफेसर और शिक्षकों ने तैयार किया पेपर। बाहरी को जिम्मेदारी नहीं, लॉजिस्टिक्स सेंटर से परीक्षा केंद्र तक जीपीएस से निगरानी। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, पिछले 12 वर्ष में भारत में कई परिवर्तन आए। देशबंधु की सुर्खी है, कल्याणकारी योजनाओं से 12 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मरवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। अमेरिका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दाम्बुला में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह टू लॉन्च लैंड पोर्ट।

0: छत्तीसगढ़ी समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइयां के आज के ए अंक में आप मन के स्वागत है। जय जोहार, राम राम महेंद्र साहू को तीले। श्रोता साथी हो, आज के अंक में आप मन ल सुनवात हन कवि गोष्ठी, और एक कवि गोष्ठी के संचालन करत हैं श्री ईश्वर साहू।
1: संगवारी हो, जय जोहार। मोर भुइयां कार्यक्रम के कवि गोष्ठी में आज संग्रह हवें श्री

0: शिवकुमार अंगारे जी, बंगला मटिया बालोदले, सुश्री सुनंदा शर्मा जी भनपुरी रायपुर ले, और मैं स्वयं ईश्वर साहू ग्राम बंधी बेमेतरा ले। आज की कवि गोष्ठी में मैं सबले पहली आमंत्रित करत हूँ सुनंदा शर्मा जी ला।
1: बहुत धन्यवाद ईश्वर भैया। और जैसे कि आज मोर कार्यक्रम के अंतर्गत हमन आयन कवि गोष्ठी करे बर, और सबले पहली मैं गर्मी के बात ला करूँ। और कही थे ना कि जेठ जेठ ही होते, ये जेठ के महीना में सबो जन ला अपन मूड़ी ला ढाके ला पर जथे। मैं वही जेठ के बात ला करता हूँ और ये कविता ला आप मन के सामने रखता हूँ, सुनू।
0: स्वागत स्वागत।
1: जेठ के महीना, जेठ के महीना आवत है पसीना, जेठ के महीना, जेठ के महीना आवत है पसीना। संजबिया भोंबरति पत है मुश्किल होगे जी। जेठ के, जेठ

0: बात है मुश्किल होगे जीना। जेठ के महीना, जेठ के महीना आवत है पसीना।
1: बढ़िया
0: अब का
1: बढ़िया।
0: खाता ने जेठ माँ,

0: चटाचट सरी देह चटाचट भोंभरा जरा थे तरी पाँव हो।
1: वाह,
0: सुरुजरी सागे सब जीव अकुलागे

0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बढ़िया श्री सुनंदा शर्मा जी, ले आप मन सुने हो। जेठ के महीना आवत है पसीना। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री शिव कुमार अंगारे जी ला अपन कविता पाठ करे बार।
2: ये साल घाम ह बड़ जीवलेवा हो गए है, और वही सब बात ल लेके मोरे रचना है सुरुज रिसागे। घाम जरत है, घाम जरत है सच।

0: जंगल झन काटो, जंगल झन काटो, जिन दाव झन लगाओ हो। अपने च गोड़ माँ, अपने च गोड़ माँ, टंगिया झन मारो, टंगिया झन मारो, पर्यावरण ला बचाओ हो।
1: बहुत सुंदर।
0: बिन पानी के, बिन पानी सब सुन है सिर तो सब।

0: जुर मिल पेड़ लगावन औ पेड़ बचावन, हरियाली छाही गाँव गाँव हो,
1: वाह
0: हरियाली छाही गाँव गाँव हो।
2: आघू के कवि गोष्ठीला आगे बढ़ाए बर में भैया ईश्वर साहू बंधीला आवाज देता हूँ।
1: धन्यवाद सुनंदा जी। गर्मी उमिहाव लेवत है, सबोला जियान परत है।
2: सही बात है,
3: बढ़िया।
1: आवो वही जियान परत तेला सुनथन, कावर जियान परत है।
3: स्वागत
2: स्वागत है भैया।

0: हे जेला हमन काट डारे हन, भला करते चहे जेला हमन काट डारे हन, भला करते चहे जेला हमन काट डारे हन, बिन सुवारथ छा हम ल छाओ देवा
1: वाह वाह
0: थे,
1: वाह वाह, क्या
0: बिन
1: बात।
0: सुवारथ वो हम ल छाओ दे।

0: लाए बल, प्रकृति ला बिगाड़े हन विकास लाए बल, प्रकृति ला बिगाड़े हन विकास लाए बल, उहिच कर के फल हम लगाव
1: अरे वाह
0: देवा
1: वाह
0: थे,
1: वाह,
0: उहिच
1: सच्चे बात है।
0: करनी के फल हम लगाव देवा थे,
1: लगाव
0: अब दिनों दिन ये गर्मी उमिहाव लेवा थे, जे मन कही थे तार देना हमर काय गरज है, जे मन कही थे तार देना हमर काय गरज है, जे मन कही थे तार देना

0: ये गर्मी उमिहावले वथे
1: आगु के गोष्ठी अब हमन बरसात के आगमन के ऊपर सुनथन। तो सबले पहली मैं श्री शिव कुमार जी अंगारेला आमंत्रित करत हूँ बरसात के स्वागत बर कविता पढ़े बर।
2: जेठ के घाम जब जना थे तब सब ल बरसात के सुरता थे। तो वही बात ला अपन रखत हूँ, बादर ल बलाय कोशिश करत हूँ।
3: स्वागत है सर।
2: जेठ के जाती असाड़ आती करते घुरुर घारर, उमड़ घुमड़ गरजे बाजत है मांदर, बाट जोहत करत हवन बिन

गजब तपिस झांझ झोला जेठ के महीना, बाय बिया कुल करी से अबड़ घमुरी पछीना। गजब तपिस झांझ झोला जेठ के महीना, बाय बिया कुल करी

0: गोहरावत हन, परघौनी गावत हन, तोला गोहरावत हन, रज रजा के गिर जाते एक मन के आगर, झूम के बरस जा रे अब तो करिया बादर,
1: वाह
0: झूम के बरस जा रे अब तो करिया बादर,
1: सुंदर।
0: रिमझिम के घुंघरू बांध बरखा रानी नाच ही, लौकत बिजली संग नर व ढोड़गा हाँस ही, लौकत बिजली के संग नर व ढोड़गा।

ही मिचका मन एक सुर तब आल्हा बाँच ही, मिचका मन एक सुरमा तब आल्हा बाँच ही। पानी के पहली फुहार भुइयां कर ही सिंगार, छल कंदे चारों मुड़ तोर माया के गागर, झूम के बरस जा रे अब तो करिया बादर, झूम के बरस जा रे अब तो करिया बादर। गिर मुसर के धार पर खेत झन परिया, जाग ही धनहा डोली तहर से हलधरिया। गिर मुसर के धार पर खेत झन परिया, जाग ही धनहा डोली तहर से हलधरिया। गूंजन दे खेत खार करमायो ददरिया, सुन के अरतता के राग जागे भुइया के भाग, सुन के अरतता के राग जागे भुइया के भाग। मगन मन किसान लयब जो तंदे नांगर, झूम के बरस जा रे अब तो करिया बादर, झूम के बरस जा रे अब तो करिया बादर। आखिरी बंद है। बादर तोर हाथ माहे सबके दाना पानी, लिखतस तही तो सबके सुख दुख कहानी। बादर तोर हाथ माहे सबके दाना पानी, लिखतस तही तो सबके सुख दुख कहानी। सरबस जिंदगी देवैया तय दधीचि दानी,

0: वाह वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आप मन सुनियो श्री शिव कुमार अंगारे जिले। अब मैं आमंत्रित करता हूँ सुश्री सुनंदा शर्मला
1: धन्यवाद भैया। और जेठ के बाद तो अमन कट ड्रेन, बारिश के बाद अब शुरू हो चुके हैं, तो
0: जी।
1: कैसे हम उमन इंतजार करथन कि पानी गिरे, हम उमन के मन प्रसन्न होए। मैं वही क्रम लागे बढ़ाता हूँ, अपन कविता
0: स्वागत है
1: सुनाता
0: स्वागत
1: हूँ।
0: स्वागत।
1: बरखारानी

0: संझा होतले बरा
1: वाह
0: सोहारी,
1: वाह वाह वाह,
0: संझा
1: बढ़िया।
0: होतले बरा सोहारी, भजिया रखागे बनके बरखा रानी के हो।

0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी हमन सुश्री सुंदर शर्मा जी ला सुनत रहिन, बड़ अच्छा भाव लेके कविता सुनाइन। अब हमर संचालन भैया भाई ईश्वर साहू जी ला मैं आरो देत हूँ कि वो अपन सुघर कविता पाठ ला हम ला सुनाए।
2: बहुत धन्यवाद। बारिश आए बर रिथे तब हमर प्रकृति बहुत आनंद से झूमर उठते, काबर की सबके प्यास बुताए बर रिथे।
0: हाँ
2: तो आओ, डबरा मुस्कावत है हासे नरवा ढोड़गा,
1: वाह
2: रुख राई जामत है कांदी कोला करगा। अरे डबरा मुस्कावत है हासे नरवा ढोड़गा, रुख राई मत है कांदी कोला करगा, धरती दाई हा सिंगार साजे
1: वाह वाह वाह
2: रे। झमझमा झमना छत बरसात
1: वाह
2: आगे रे,
1: वाह
2: आज भुइया के हृदय तो जुड़ा गे रे। झमझमा झमना छत बरसात आगे रे, आज भुइया के हृदय सिर तो जुड़ा गे रे। आगे है किसान बैला नांगर ला धर के, भुइया ला जोहारत है सुघर पांव पर
1: पढ़
2: के,
1: के
2: भुइया ला जोहारत है सुघर पांव पर के। झूमर झूमर बैला रेंगे सुन के रे ददरिया, अर तता नहीं लागे जोते हरिया
1: वाह
2: हरिया,
1: वाह वाह
2: अर तता नहीं लागे जोते हरिया हरिया। बाँव को बोवारा माते चारों कोती जम के, पानी पी के भुइया गजब सोंधे सोंध गम के।
1: वाह
2: बाँव को बोवारा माते चारों कोती जम के, पानी पी के भुइया गजब सोंधे सोंध के, अन्नदाता के भाग जागे
1: बहुत बढ़िया चित्रण। वाह वाह वाह
2: रे। झमझमा झमना छत बरसात आगे रे, आज भुइया के हृदय तो जुड़ा गे रे। झमझमा झमना छत बरसात आगे रे, आज भुइया के हृदय सिर तो जुड़ा गे रे। डोंगरी का छारे डो के जला रंग है, भुइया के जीव जंतु सबोला उमंग है, भुइया के जीव जंतु
1: सबोला
2: सबोला उमंग है।
1: उमंग
2: कभू घाम छाँव सूरज रही रही के झाके, शीतलपुर वैया सुघर संगीत साजे, शीतलपुर वैया सुघर संगीत साजे। घटा छागे चारों डहर निचट अंधियार के, छनकत है बूंद बूंद फुटे फुटका पार। घटा छागे चारों डहर निचट अंधियार के, छनकत है बूंद बूंद फुटे फुटका पार। चिरई चिरगुन मनोलिया गे रे। झमझमा झमना छत बरसात
1: बात
2: लागे
1: लागे।
2: रे,
1: वाह क्या बात
2: आज
1: क्या बात।
2: भुइया के हृदय सिर तो जुड़ा गे रे। झमझमा झमना छत बरसात लागे रे, आज भुइया के हृदय सिर तो जुड़ा।

0: गा, रुख राय मत है कांदी कोला करगा, डबरा मुस्कावत है हासे नरवा ढोड़गा, रुख राई जामत है कांदी करगा, धरती दाई हा सिंगार साजे रे, झमझमा झम नाचत बरसात आगे रे, आज भुइया के हृदय सिर तो जुड़ा गे रे, झमझमा झम नाचत बरसात आगे रे, आज भुइया के हृदय सिर तो जुड़ा गे रे।
1: संगवारी हो, अब बेरा है तो जाए के बेरा में एक ठन छोटे से कविता में फिर से आप मल्ला सुनावत हो।
2: स्वागत है।
0: मऊ बरसात

0: भीज गए धरती के कोरा पेड़ लगा
1: वाह
0: लो
1: वाह वाह
0: जी,
1: वाह वाह,
0: भीज गए भुइयां के कोरा पेड़
1: बिल्कुल
0: लगा
1: बेरंग बात।
0: लो जी, हाँ वो पेड़ लगा लो जी, सब जन पेड़ लगा लो जी। कुंवर होते माटी कुंवर, जीव जंतु के तन, घाम के देखे तरुआ झुकाते हो जाते
1: वाह
0: अलहन। जथे रुख राई संग माया टा जथे पानी, बिन बिरछा बिन जुड़ छई हाँ के जर जाथे जिन गानी।
1: वाह।

0: भीज गए धरती के कोरा पेड़ लगा लो जी, भीज गए भुइयां के कोरा पेड़ लगा लो जी। बहुत बहुत धन्यवाद संगवारी हो, आज के कवि गोष्ठी माँ श्री शिव कुमार अंगारी जी संग्रह रहीन, सुश्री सुनंदा शर्मा जी संग्रह रहीन, और महू ईश्वर साहू रहे हो। तो जाय के बेरा आप सबला जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।
1: अभी आप मन सुनत रहो कवि गोष्ठी, एकर संचालन करत रहिन श्री ईश्वर साहू, और एकरे संग छत्तीसगढ़ी समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइया के आज के अंक ले विदा देवा। जय जोहार, राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ी में समन्वय साहित्यिक कार्यक्रम मोर भुइयां। संपादक और प्रस्तुतकर्ता थे महेंद्र साहू। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।
1: छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइयां आकाशवाणी रायपुर से अभी हम रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 9 बजने वाले हैं। 9 बजे से 9:55 तक हम रिले करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम और 9:55 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रायपुर से हम रिले करेंगे। आइए फिलहाल जुड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा से।
2: अंतराल का

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
3: आप सुन रहे हैं चित्रलोक विविध भारती से। एजेंट विनोद इस फिल्म से ये गीत अरिजीत सिंह की आवाज में, प्रीतम का संगीत है, अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा।

तुम्हारी सुलु इस फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे। कविता कृष्णमूर्ति और साशा तिरुपति की आवाजों में जावेद अख्तर ने इसे लिखा और तनिष्क का म्यूजिक था। स्टूडेंट ऑफ द ईयर यह है फिल्म का नाम। शेखर रावजानी, समीर सलीम मर्चेंट और साथियों की आवाजें, विशाल शेखर का संगीत।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली डालियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं चित्रलोक इस वक्त विविध भारती से। रावता फिल्म का नाम है। अरिजीत सिंह की आवाज में ये गीत सुनिए। प्रीतम का संगीत है, अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो शाम सावरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था, वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

लीजिए पेश है प्रोग्राम आज के फनकार। दोस्तों आज के फनकार हैं अपने दौर के जाने माने फिल्मकार राज खोसला।

दोस्तों, फिल्मकार राज खोसला के कृतित्व की बातों का जिक्र जब होता है तो तमाम लोग उन्हें बतौर निर्देशक, निर्माता या पटकथा लेखक के रूप में जानते हैं। लेकिन राज खोसला एक प्रशिक्षित क्लासिकल सिंगर भी रहे थे। 31 मई 1925 को पंजाब के लुधियाना में जन्मे राज खोसला बहुआयामी प्रतिभा के स्वामी थे। वो जब गायक बनने की चाह लेकर तत्कालीन बॉम्बे आए तब वो ऑल इंडिया रेडियो में बाकायदा म्यूजिक स्टाफ के रूप में कार्य करते थे।

लीजेंड फिल्मकार और जाने माने अभिनेता गुरुदत्त के सहायक रहे राज खोसला ने 1956 में जो फिल्म निर्देशित की वो थी फिल्म सीआईडी।

राज खोसला को आरंभ से ही वुमेन्स डायरेक्टर कहा जाता रहा है। दोस्तों, फिल्में जो भी हो लेकिन नारी के चरित्र को राज खोसला ने बड़ी महत्ता दी है अपनी फिल्मों में। 1964 में उन्होंने निर्देशित की फिल्म वो कौन थी, जिसमें अभिनेत्री साधना को मिस्ट्री गर्ल कहा गया था।

1966 में आशा पारेख अभिनीत फिल्म बनाई दो बदन। इस फिल्म के लिए अभिनेत्री सिमी गरेवाल को फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी प्राप्त हुआ था राज खोसला की फिल्म दो बदन के लिए।

0: 1969 में राज खोसला निर्देशित फिल्म आई थी दो रास्ते। अभिनेत्री मुमताज के अभिनय को भला कौन भुला सकता है।
1: मैंने

पृथ्वीराज खोसला निर्देशित 1978 की फिल्म थी मैं तुलसी तेरे आंगन की। दोस्तों इस फिल्म के लिए अभिनेत्री नूतन को मैच्योर एज में फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी प्राप्त हुआ था।

जाने माने फिल्मकार और सदाबहार हीरो देवानंद ने राज खोसला की प्रतिभा को पहचाना था शुरू में, और राज खोसला के डायरेक्टर बनने का ये सिलसिला शुरू हुआ था 1954 में बनी फिल्म बिलाप के साथ। इस फिल्म के हीरो थे देवानंद और नायिका थी गीता बाली, और उसके बाद राज खोसला ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

चूंकि राज खोसला शास्त्रीय संगीत के जानकार थे, क्लासिकल सिंगर थे, यही वजह है कि अपनी फिल्मों की नायिकाओं के किरदार की महत्ता बनाए रखने के साथ साथ ही उनकी फिल्मों का संगीत भी बेहतरीन होता था।

अपनी शैली से हटकर, स्टाइल से हटकर भी चंद फिल्मों का निर्देशन किया दोस्तों। इसमें प्रमुख है 1958 की फिल्म 16वां साल।

1971 में डकैत ड्रामा जैसी फिल्म बनाकर राज खोसला ने धूम मचा दी थी। याद होगा आपको, वो फिल्म थी मेरा गांव मेरा देश।

पृथ्वीराज खोसला ने अपने फिल्मी करियर में लगभग 21 फिल्मों का निर्देशन किया, जिसमें अमिताभ बच्चन, जीनत अमान और शत्रुघ्न सिन्हा अभिनीत फिल्म भी शामिल है, और ये फिल्म है दोस्ताना।

राज खोसला निर्देशित मैं तुलसी तेरे आंगन की फिल्म को 1978 का बेस्ट मूवी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। दोस्तों, राज खोसला ने अपनी हर एक फिल्म के संगीत को बेहतर से बेहतरीन बनाए रखा। 9 जून 1991 को राज खोसला ने अपने जीवन की अंतिम सांस मुंबई में ली।

वो तो यकीनन इस दुनिया में नहीं है, लेकिन राज खोसला की फिल्में और उन फिल्मों का गीत संगीत हमेशा उनकी यादों को तरोताजा बनाए रखेगा।

0: फिर से 10:30 बजे, लेकिन उससे पहले
1: भोजराम साहू के रहने वाले हैं। इन्होंने वर्ष 2025 में मणिपुर में एक आतंकवादी विरोधी अभियान के दौरान अद्भुत वीरता का परिचय दिया था। वहीं पुलिस निरीक्षक लक्ष्मण केवट और निरीक्षक रामेश्वर देशमुख लंबे समय से बस्तर और राजनांदगांव के दुर्गम जंगलों में नक्सल विरोधी अभियानों का नेतृत्व कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि पुलिस इंस्पेक्टर

0: लक्ष्मण केवट और रामेश्वर प्रसाद देशमुख को उनके अदम्य साहस, असाधारण वीरता और राष्ट्र सेवा के प्रति अटूट के लिए राष्ट्रपति द्वारा शौर्य चक्र प्रदान किया जाना पूरे प्रदेश के लिए गर्व और गौरव का क्षण है। इन्होंने नक्सल विरोधी अभियान के दौरान विषम परिस्थितियों में प्रदर्शित अदम्य साहस, रणनीतिक कौशल और कर्तव्य निष्ठा से न केवल अभियान को सफल बनाया बल्कि नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ के संकल्प को नई ऊर्जा भी दी है। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी छत्तीसगढ़ पुलिस के दोनों अधिकारियों को शौर्य चक्र से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आज से पीएमएसएमए के 10 वर्ष एक दशक की देखभाल राष्ट्रव्यापी समारोह की शुरुआत करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इस अवसर पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता और जनसंपर्क गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज सुबह 11 बजे से नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय में राज्य मंत्री परिषद की बैठक होगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। महासमुंद जिले की बसना पुलिस ने धान खरीदी में करीब 4.5 करोड़ रुपए के गबन मामले में लंबे समय से फरार दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति पिरदा में वर्ष 2020-21 के दौरान 210 क्विंटल से अधिक धान की हेराफेरी की गई थी। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर तत्कालीन व्यवस्थापक कन्हाई सेठ और सेल्समैन राजकुमार पटेल को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। गौरतलब है कि इस मामले में दो आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ स्थानों पर आंधी के साथ बारिश होने की चेतावनी दी है। इस दौरान करीब 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिर सकती है। केंद्र सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि ईंधन की निर्बाध आपूर्ति और ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ के 3 जवानों को चक्र से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर आज से राष्ट्रव्यापी समारोह की शुरुआत होगी। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ स्थानों पर आंधी के साथ बारिश होने की चेतावनी दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रायपुर से अभी हम रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 10 बजे हैं। अब प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर हम रिले करेंगे आकाशवाणी रायपुर से।
2: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं छत्तीसगढ़ संवाद।

0: छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के विकास के लिए मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है। अपने नागरिकों की खुशहाली के लिए प्रदेश शासन कृत संकल्पित है। सरकार ऐसा कोई भी मौका गंवाना नहीं जिससे संवादहीनता की स्थिति पैदा हो, इसीलिए छत्तीसगढ़ सरकार लेकर आई वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम। राज्य में उद्योगों की स्थापना और एकीकृत औद्योगिक मंच है। सिंगल विंडो सिस्टम से कम समय में सभी सेवाएं एक जगह पर पूरी पारदर्शिता के साथ उपलब्ध होती है। इससे भूमि आवंटन और सब्सिडी प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। सिंगल विंडो सिस्टम के आ जाने से विभिन्न विभागों से मिलने वाली स्वीकृतियों का समय अधिकतम 30 दिन हो गया है। साथ ही 90 से अधिक औद्योगिक सेवाएं एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो गई है। इसके साथ सेम डे इंस्पेक्शन रिपोर्टिंग को जोड़कर इसे द्रुतगामी बना दिया गया है ताकि उद्योगों की स्थापना प्रक्रिया सरल और तेज हो सके।
1: मैं ऋतुराज ताम्रकार, उप संचालक उद्योग संचालनालय रायपुर में पदस्थ हूँ। छत्तीसगढ़ आज देश के उभरते हुए औद्योगिक राज्यों में अपनी एक मजबूत पहचान बना रहा है। हमारी औद्योगिक विकास नीति 2024-30 और निवेशक अनुकूल दृष्टिकोण का मूल उद्देश्य है कि निवेशकों को उद्योग स्थापित करने और संचालित करने की प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और समयबद्ध रूप से उपलब्ध हो। इसी सोच को साकार करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 इसके अंतर्गत इन्वेस्ट सीजी पोर्टल विकसित किया है, जो निवेशकों और शासन के बीच एक आधुनिक डिजिटल और पारदर्शी मंच के रूप में कार्य कर रहा है। अक्सर निवेशकों को उद्योग स्थापित करने के दौरान विभिन्न विभागों से अनुमति, लाइसेंस और अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अलग अलग कार्यालयों में जाना पड़ता था। कई बार आवेदन की स्थिति जानना भी चुनौतीपूर्ण होता था। इन समस्याओं को दूर करने के लिए इन्वेस्ट सीजी को एक ऐसे एकीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है जहां निवेशक को अधिकांश सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जाती है। वर्तमान में इन्वेस्ट सीजी के माध्यम से 10 विभागों की 130 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। निवेशक एक ही पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं, आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं और अपने आवेदन की प्रगति को रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हैं। साथ ही एक बार आवेदन में दी गई जानकारी को बार बार भरने की भी आवश्यकता नहीं रहती। आवेदक द्वारा दी गई जानकारी सिस्टम में स्वतः उपलब्ध हो जाती है। सिंगल विंडो 2.0 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पारदर्शिता और जवाबदेही। जब कोई आवेदन ऑनलाइन जमा किया जाता है तो उसकी पूरी प्रक्रिया डिजिटल रूप से रिकॉर्ड होती है। आवेदन किस अधिकारी के पास लंबित है, किस स्तर पर परीक्षण चल रहा है, आगे क्या कार्यवाही हुई है, इसकी जानकारी सिस्टम में उपलब्ध रहती है। इससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनती है और निवेशकों का विश्वास भी बढ़ता है। इसके साथ ही विभिन्न सेवाओं के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम में मॉनिटरिंग की व्यवस्था है। इससे विभागों की जवाबदेहिता बढ़ती है और निवेशकों को समयबद्ध सेवाएं प्राप्त करने में भी सहायता मिलती है। इसी प्रकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यवसाय करने में सुगमता केवल नियमों को सरल बनाने तक सीमित नहीं है। इसका अर्थ है कि निवेशक अपना समय उद्योग के विकास और अपने उत्पादन पर लगाएं, न कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं में। इन्वेस्ट सीजी इसी उद्देश्य को पूरा करता है। इस प्रणाली के माध्यम से विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हुआ है। पहले जहां विभिन्न विभागों में अलग अलग आवेदन करने पड़ते थे, वहीं अब एकीकृत डिजिटल व्यवस्था के कारण प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और सुविधाजनक बन गई है। इससे समय की भी बचत होती है, कागजी कार्यवाही कम होती है और निवेशकों को एक बेहतर अनुभव प्राप्त होता है। साथ ही एक बार आवेदन

जी दी गई जानकारी को बार बार भरने की आवश्यकता नहीं रहती। आवेदक द्वारा दी गई जानकारी सिस्टम में स्वतः उपलब्ध होती है, जैसा मैंने पहले भी बताया। इसके साथ साथ इन्वेस्ट सीजी निवेशकों के लिए एक व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहां पे राज्य की औद्योगिक नीति, निवेश के क्या अवसर हैं, औद्योगिक भूमि की उपलब्धता, कोई सेक्टर विशेष में क्या संभावनाएं हैं, निर्यात, स्टार्टअप, उद्यमिता प्रशिक्षण, इस तरह की समस्त जानकारियां एक ही प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है। अर्थात निवेश की योजना बनाने से लेकर आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने तक की पूरी यात्रा को एक ही डिजिटल इकोसिस्टम में समाहित किया गया है। इसके अतिरिक्त हमने नई तकनीकों का भी प्रयोग करना शुरू किया है। तो हमने ये किया कि निवेशकों की सहायता के लिए वाणी AI आधारित एक वर्चुअल असिस्टेंस उपलब्ध है। वाणी के माध्यम से निवेशक जो है अपनी विभिन्न प्रक्रियाओं, सेवाओं और प्रावधानों की जानकारी सरल भाषा में प्राप्त कर सकते हैं। इससे जानकारी सामान्य जन तक और भी आसानी से पहुंच जाती है। तो छत्तीसगढ़ सरकार का स्पष्ट विश्वास है कि निवेश आकर्षित करने का सबसे प्रभावी तरीका है निवेशकों को भरोसेमंद, पारदर्शी और सुविधाजनक सेवाएं प्रदान करना। हमारा सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो तकनीक के माध्यम से प्रशासन को और अधिक उत्तरदायी और निवेशक केंद्रित बना रहा है। आज छत्तीसगढ़ केवल प्राकृतिक संसाधनों के लिए नहीं, बल्कि अपनी प्रगतिशील नीतियों और निवेशक अनुकूल प्रशासनिक व्यवस्था के लिए भी जाना जा रहा है। इन्वेस्टसीजी जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म इस परिवर्तन के प्रमुख आधार है। मैं सभी उद्यमियों, निवेशकों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करता हूं कि वे छत्तीसगढ़ में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाएं और राज्य की विकास यात्रा के भागीदार बनें।

0: छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति रोजगार और आर्थिक समृद्धि पर केंद्रित है। सरकार ये चाहती है कि प्रदेश की युवा शक्ति इधर उधर भटके बिना अपने ही राज्य में रोजगार पाकर राज्य की उन्नति में सहायक बने। छत्तीसगढ़ अब बड़ी ही तेजी के साथ औद्योगिक और तकनीकी हब बन रहा है। ये अब निवेश का सबसे आकर्षक केंद्र बन चुका है। छत्तीसगढ़ में कई संरचनात्मक सुधार लागू किए गए हैं, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस में अभूतपूर्व सुधार हुआ है।
1: मैं गुंजन शुक्ला, मुख्य निवेशक वाजपेयी छत्तीसगढ़। साथियों, जैसा कि आप सभी भली भांति जानते हैं कि छत्तीसगढ़ महतारी की ये पावन धरती हमारे देश की औद्योगिक तरक्की का एक बहुत मजबूत पावर हाउस बनती जा रही है और शासन की सुगम नीति के कारण उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर लगातार अग्रसर है। फैक्ट्रियों और मिलों की धड़कनों के देने का काम वाल्व या वाष्प यंत्र करते हैं। हमारे विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी हमारे प्रदेश की औद्योगिक सुरक्षा को सबसे ऊपर रखने के लिए और आपकी सेवा में सर्वदेश पर रहने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। हमारा एकमात्र उद्देश्य यह है कि बेहतर से बेहतर सर्विस देकर एक सुरक्षित वातावरण में छत्तीसगढ़ को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यापार और उद्योग को और अधिक सफल बनाने और आसान बनाने की अवधारणा को एक नई ऊंचाई पर ले आया जा सके। इसी कड़ी में सेवा और सुरक्षा की भावना के साथ शासन के मार्गदर्शन में एक बेहद आसान डिजिटल समाधान SWS 2.0 वन क्लिक बनाया गया है। आइए सरल शब्दों में इसे समझते हैं कि एक नया पोर्टल आपके लिए कितना मददगार साबित होगा और इसे अधिक बेहतर बनाने के लिए भविष्य में हम निरंतर प्रयास जारी रखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, छत्तीसगढ़ में उद्योग स्थापित करने और व्यवसाय को पंजीकृत करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक नया एकीकृत वन क्लिक और सिंगल विंडो पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल से बॉयलर से संबंधित सुरक्षाओं में कितनी बढ़ोतरी हुई है, सबसे पहले इस पे बात करते हैं। एक ही छत के नीचे अब आपको सब कुछ मिलेगा। बॉयलर की स्थापना से लेकर ड्रॉइंग्स का अनुमोदन

0: एवं बॉयलर का हर साल होने वाला रिन्यूअल, ये सभी सुविधाएं एक ही वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। इसके अतिरिक्त वेल्डर टेस्ट की नई सुविधा हमने चालू की है SWS2 में, जिससे बॉयलर को सुरक्षित चलाने के लिए कुशल वेल्डर्स की जो जरूरत होती है उसकी कमी को छत्तीसगढ़ राज्य में ही टेस्ट और सर्टिफिकेशन के माध्यम से पूर्ण कर लिया जाएगा। ये प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है जिससे उद्योगों को समय पर प्रमाणित कुशल कारीगर मिल सके। इकोनॉमाइजर की सेवा को भी हमने ऑनलाइन कर दिया है जिसमें रजिस्ट्रेशन और उसका सालाना रिन्यूअल भी अभी एक ही पोर्टल में जोड़ दिया है। इसके अलावा दूसरे राज्यों से स्थानांतरित होने वाले बॉयलरों को स्थानांतरण की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन प्रारंभ कर दी गई है। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव ये आया है कि उद्योगों में अब सरकारी जो काम है वो कागजी काम बहुत आसान कर दिया गया है, कागजी काम की जरूरत ही नहीं है। समझने के लिए बहुत एक आसान फॉर्म्स हमने बनाए हैं। आवेदन फॉर्म्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो पूरी जानकारी देने के साथ साथ बेहद सरल भी रहे, जिसे भरने में किसी भी इंडस्ट्री को कोई उलझन नहीं है। जब आप कोई एक फॉर्म भरते हैं और दोबारा उस फॉर्म को लिए रिन्यूअल के लिए अप्लाई करते हैं तो बुनियादी जानकारी जैसे फैक्ट्री का नाम, बॉयलर का मॉडल, पता सब फॉर्म में पहले से भरा हुआ मिलेगा, जिससे आपका कीमती समय बचेगा। करेक्शन ऑफ सर्टिफिकेट की प्रक्रिया को भी आसान बना दिया गया है। ऑनरशिप चेंज होने की प्रक्रिया भी आसान कर दी गई है और यह भी प्रक्रिया सब ऑनलाइन शामिल कर ली गई है। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि फाइलों के निपटारे और काम की रफ्तार में बहुत तेजी से गति आई है। दिनों की पक्की सीमा कर दी गई है जिसके लिए लोक सेवा गारंटी नियमों के अंतर्गत हर काम के लिए दिन तय कर दिए गए हैं। बॉयलर के रजिस्ट्रेशन नियम निरीक्षण के लिए अधिकतम 30 दिन और नवीनीकरण के लिए अधिकतम 15 दिन का समय सीमा है। कंप्यूटर का ऑटोमेटिक रिमाइंडर है, यदि किसी फाइल पर तय समय पर फैसला नहीं हो पाता है तो कंप्यूटर सिस्टम उसे खुद ब खुद वरिष्ठ अधिकारियों के ध्यान में ले आएगा। अगर कोई राइस मिल या इंडस्ट्री वाला बॉयलर का रिन्यूअल या वार्षिक अनुमोदन कराना भूल जाता है तो हमारा सिस्टम उसे 30 दिन पहले ही SMS के माध्यम से याद दिला देगा, जिससे समय पर उसकी जांच हो सकती है और फैक्ट्री का अनावश्यक उत्पादन रुकेगा भी नहीं। ऑनलाइन बातचीत और सुधार में अगर कोई कमी रह जाती है तो आवेदन को खारिज करने की जगह हमारे अधिकारी उसे सीधे ऑनलाइन पे ही आप संपर्क कर सकते हैं और उसे करेक्शन करके वापस अपलोड कर सकते हैं। सबसे प्रमुख जो चीज हमने इसमें इंट्रोड्यूस की है वो पारदर्शिता, ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है क्योंकि किसी भी व्यवस्था में काम करने के लिए पूर्ण पारदर्शिता सबसे अच्छी बात होती है। घर बैठे अब कोई भी उद्योगपति अपने आवेदन की प्रकृति को मोबाइल या कंप्यूटर पर लाइव देख सकता है। यदि समय पे आवेदन पे आपको सेवा नहीं प्राप्त होती है तो पोर्टल के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी समीक्षा का अनुरोध भी कर सकते हैं। जब कोई भी इंस्पेक्टर साइट पे जांच के लिए जाता है मोबाइल ऐप के माध्यम से उसकी सटीक लोकेशन और समय सिस्टम खुद ही दर्ज हो जाएगा। निरीक्षण के समय बॉयलर की तस्वीर जो ली जाती है वो लाइव रहेगी, जिससे अपने आप यह साबित हो जाएगा कि जांच किस तारीख को, किस समय और किस कारखाने में जाके की गई। इसके बाद जब जैसे ही जांच का काम सफलतापूर्वक पूर्ण होता है डिजिटल सर्टिफिकेट का लिंक तुरंत आपके सिंगल विंडो ID पर आ जाता है, जिसे आप तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको तुरंत प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर आप प्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं। अंत में प्रिय मित्रों, हमारा एकमात्र लक्ष्य प्रगतिशील और सुरक्षित औद्योगिक माहौल तैयार करना है जहाँ हमारी फैक्ट्री बिना किसी रुकावट के प्रदेश की तरक्की में अपना योगदान दे सकें। वाजपेयी निदेशालय की यह पहल और पेपरलेस व्यवस्था छत्तीसगढ़ के उद्योगों को एक नया आयाम देगी। मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि इस आधुनिक SWS 2.0 पोर्टल को अधिक से अधिक उपयोग में लाएं और सुरक्षा के साथ साथ छत्तीसगढ़ को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाएं।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं छत्तीसगढ़ संवाद।

0: छत्तीसगढ़ में सिंगल विंडो सिस्टम को सुशासन की दिशा में एक अभूतपूर्व पहल के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि इसके तहत प्रदेश में निवेश और उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रक्रिया को आसान और प्रभावी बनाया है। अब सभी विभाग एक ही मंच पर आ गए हैं। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कम समय में ऑनलाइन क्लीयरेंस इस सिस्टम की विशेषता है। सिंगल विंडो सिस्टम यानी एक क्लिक में मंजूरी। जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र रायपुर के उप महाप्रबंधक श्री विश्वजीत का कहना है,
1: अगर

देखें कि एक उद्योग को स्थापित होने के लिए विभिन्न शासकीय विभागों से अनुमति, एनओसी, क्लियरेंस की आवश्यकता होती है। तो इन सब के लिए भी औद्योगिक नीति के अंदर ही ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए उद्योग विभाग की invest.cg.gov.in वेबसाइट लाइव है। इस वेबसाइट के माध्यम से विभिन्न शासकीय एनओसी, अनुज्ञप्ति, लाइसेंस इत्यादि के लिए, जो कि उद्योग स्थापना करने के लिए, उद्योग को संचालन करने के लिए आवश्यक होते हैं, अनिवार्य होते हैं, इन सब के लिए जो निवेशक हैं, जो उद्योगपति हैं, वो सीधे इस वेबसाइट के माध्यम से, सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से, ऑनलाइन एक ही जगह पर एकल खिड़की के रूप में आवेदन कर सकते हैं। जब कोई उद्योग स्थापित होता है तो उद्योग स्थापित करने के लिए जो पूंजी निवेश निवेशक करता है, यानी जो अपने अपने पैसे लगाता है उद्योग को स्थापित करने के लिए, तो उस पर शासन की तरफ से अनुदान छूट का प्रावधान है। तो ये अनुदान छूट, विभिन्न प्रकार के अनुदान छूट औद्योगिक विकास नीति के अंतर्गत है। जैसे कि कुछ का मैं नाम आपको बता देता हूँ, जैसे स्टाम्प शुल्क से छूट, स्थायी पूंजी निवेश अनुदान, ब्याज अनुदान, विद्युत शुल्क में भी छूट है। इन सब के अलावा ऐसे विभिन्न प्रकार के 20-22 प्रकार के अनुदान छूट एवं रियायतें इस नीति के अंतर्गत निवेशकों को मिल सकती हैं। अर्थात कुल मिलाकर उद्योग लगाने में जो खर्च, जो निवेश होता है, उसका कुछ प्रतिशत नीति के माध्यम से निवेशक वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो यह निवेश प्रोत्साहन उद्योगों के सफल स्थापना के लिए इसलिए भी दिया जाता है कि अधिकाधिक मात्रा में वो छत्तीसगढ़ राज्य के लोगों को रोजगार दे सकें, और साथ ही साथ शीघ्र ही वो अपने उद्योग को स्थापित करके राज्य के व्यापार, व्यवसाय और निवेश में प्रोत्साहन दे सके। तो जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विदेशों में भी, जैसे जापान और दक्षिण कोरिया का भी दौरा कर नीति का प्रचार प्रसार किया। साथ ही साथ हमारे माननीय उद्योग मंत्री जी ने विदेश में जर्मनी का दौरा किया था विगत वित्तीय वर्ष में, वर्ष 2025 में। इसके अलावा देश के जो प्रमुख शहर हैं, जैसे दिल्ली और मुंबई, बैंगलोर, अहमदाबाद, यहाँ पर भी निवेश को आकर्षित करने के लिए निवेशकों के निवेश के सम्मेलन किए गए, इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम किए गए, जहाँ छत्तीसगढ़ राज्य में निवेश के विभिन्न प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा हमारे प्रदेश के अंदर रायपुर, बस्तर एवं अन्य समस्त जिलों में भी इन्वेस्टर कनेक्ट के कार्यक्रम सफलतापूर्वक कराए गए हैं, जिसमें भी संपूर्ण प्रदेश के निवेशकों, उद्योगपतियों द्वारा विभिन्न निवेश के प्रस्ताव उद्योग विभाग को दिए गए हैं, और इसके आधार पर अभी पूंजी निवेश चल भी रहा है।

छत्तीसगढ़ अब समझ रहा है नई तेज और पारदर्शी योजनाओं की बदौलत। ऐसी ही एक कारगर और सर्व सुलभ व्यवस्था का नाम है वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0। ये व्यवस्था छत्तीसगढ़ में औद्योगिक क्रांति लाने के दिशा में तेजी के साथ अग्रसर है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ भारत का नया ग्रोथ इंजन बनने की राह पर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ अब कोर सेक्टर तक सीमित नहीं है, बल्कि अब ये अत्याधुनिक उद्योगों का राष्ट्रीय केंद्र बनने के लिए तैयार है।

छत्तीसगढ़ अब औद्योगिक विकास के पथ पर आगे बढ़ते हुए विकसित राज्य की श्रेणी में आने के लिए बेताब है। उद्योग धंधों ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को

0: छत्तीसगढ़ में छोटे मझौले और भारी उद्योग पहले से ही स्थापित हैं, लेकिन अब वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम के आ जाने से नए उद्योगों को लगाने का सिलसिला गति पकड़ रहा है। इससे प्रदेश में रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ रही है और कौशल विकास को भी बल मिल रहा है। तकनीकी संस्थानों से प्रशिक्षित युवा नई औद्योगिक नीति के प्रति जितने आश्वस्त हैं, उतने ही उत्साहित हैं। सिंगल विंडो सिस्टम को लेकर ये है सरकार के प्रति युवाओं और निवेशकों का विश्वास। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र सरगुजा के मुख्य महाप्रबंधक श्री त्रिपुरारी राम कश्यप।
1: औद्योगिक विकास नीति के तहत हम लोग शासन के निर्देश के अनुसार जो औद्योगिक विकास नीति को हमारे जिले सरगुजा के हिसाब से तीन समूह में बांटा गया है, पूरे राज्य में तीन समूह, समूह एक, समूह दो और समूह तीन, जिसमें हमारे जिले के 7 विकास खंड में समूह दो और समूह तीन प्रावधानित है। समूह एक में अंबिकापुर विकास खंड है और समूह तीन में लुंड्रा, बतौली, मैनपाट, सीतापुर, ये 6 विकास खंड अंबित है। तो मैं जो शासन के प्रावधान हैं और छूट और रियायतें हैं उसके संबंध में बिंदुवार बताना चाहूंगा। स्थायी पूंजी निवेश अनुदान, इसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम और बृहद श्रेणी के उद्योग सम्मिलित हैं। सूक्ष्म उद्योग में निवेश राशि 1 करोड़ तक का है और लघु उद्योग में 10 करोड़ तक का है, मध्यम में 50 करोड़ और बृहद में 50 करोड़ से अधिक की है। इस राशि में बताना चाहूंगा कि ये राशि तो अधिकतम राशि है, लेकिन इसमें हम लोग न्यूनतम राशि से भी अपने उद्योगों को प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे स्थायी पूंजी निवेश, इसमें जो भूमि रहता है या जो शेड बनता है फैक्ट्री के लिए, उसमें हमको सूक्ष्म उद्योग में 45% तक का छूट मिलता है। मतलब कोई उद्योग यदि 1 करोड़ का राशि का लागत है तो उसमें 45% छूट मिलेगा, ये लघु उद्योग में है। उसी प्रकार मध्यम उद्योग में 35% छूट है और अधिकतम राशि इसका 4.5 करोड़ है। ब्याज अनुदान में सूक्ष्म उद्योग में समूह एक मतलब अंबिकापुर विकास खंड में 45% का अनुदान है और समूह तीन मतलब अंबिकापुर छोड़ के 6 जो विकास खंड हमारे आते हैं जिले के अंतर्गत, उसमें 50% का अनुदान है। मतलब ब्याज अनुदान ऐसा है जैसे अपन बैंक से ऋण लेते हैं तो उसमें जो ब्याज लगता है उसमें 50% तक शासन अनुदान के रूप में संबंधित इकाई जो उद्योग लगाता है उसको दिया जाता है। उसी प्रकार लघु उद्योग के लिए अंबिकापुर विकास खंड में 45% छूट है, जो अधिकतम राशि 30 लाख तक की जाती है, और समूह तीन जो अंबिकापुर विकास खंड छोड़कर 6 विकास खंड बचते हैं उसमें 50% तक का अनुदान मिलता है, जो बैंक से ब्याज मिलता है उसमें। इसी प्रकार विद्युत शुल्क छूट, मतलब विद्युत शुल्क में कोई इकाई उद्योग लगाता है तो उसमें विद्युत शुल्क में जो छूट होता है, जो बिल देयक राशि होता है उसको छोड़ के जो विद्युत विभाग द्वारा शुल्क लिया जाता है, उसमें 7 वर्ष तक का पूर्ण छूट अंबिकापुर विकास खंड में है और शेष विकास खंड में 9 वर्ष तक का पूर्ण छूट मिलता है। उसी प्रकार स्टाम्प शुल्क छूट में यदि कोई इकाई उद्योग लगाना चाहते हैं और किसी से जमीन खरीदते हैं, उसमें भी जो स्टाम्प शुल्क का प्रावधान है उसमें 1 लाख तक का छूट इनको मिलता है। और उसी प्रकार बैंक से ऋण लेते हैं और उसमें जो अनुबंध करते हैं उसमें भी 1 लाख तक का छूट इनको स्टाम्प शुल्क से छूट मिलता है। उसी प्रकार परियोजना प्रतिवेदन में यदि उनकी लागत आती है उसमें 2% तक का छूट है, यदि कुल इनका लागत 1 करोड़ का आता है तो उसमें 2% 2 लाख, ये भी उसमें छूट का प्रावधान है।

भौगोलिक विविधताओं से भरा छत्तीसगढ़ का हर भूभाग अपनी किसी न किसी विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। यही खासियत अपने संसाधनों के साथ अब उभर कर सामने आ रही है। वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम वो झरोखा है जो छत्तीसगढ़ की समृद्ध विरासत को लेकर बढ़ रहा है उजाले की ओर।

0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे छत्तीसगढ़ संवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर। यह आकाशवाणी का रायपुर और सराईपाली केंद्र है।
2: प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर अभी आकाशवाणी रायपुर से हम रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 10:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं, सोनू निगम और तुलसी कुमार की आवाज़ों में। इरफान कमल के गीत को स्वरबद्ध किया है साजिद वाजिद ने। फिल्म का नाम है दबंग 2।

0: दबंग टू फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाजें थी सोनू निगम और तुलसी कुमार की। इरफान कमाल का गीत था साजिद वाजिद का संगीत।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
2: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
3: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
7: देश की सुरीली धड़कन
8: विविध भारती,
6: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
7: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत।
6: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
7: वीर सैनिकों की जय माला
6: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
7: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
9: सखी सहेली,
7: बॉम्बे टॉकीज और
10: सेल्यूलॉइड के सितारे,
7: हम क्या कहें आपको याद सब।

कृपया आप कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान

भाई, कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 11 जून 2026 को स्टूडियो में कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर परमेंद्र कुमार केशरी उपस्थित रहेंगे। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा धान फसल में नील हरित काई एवं भूरा खाद का उपयोग, और सुबह 11 बजे से 11:30 तक का विषय होगा जैविक खेती की आवश्यकताएं एवं संभावनाएं। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 2665592। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752077752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों के रिकॉर्डिंग का प्रसारण 11 जून 2026 और 12 जून 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे तक आप सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई।

एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी बिलासपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नए तराने। और अब आइए सुनते हैं, टू स्टेट्स फिल्म का गीत है, के मोहन और यशिता शर्मा की आवाज़ें, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: और अब लीजिए सुनिए वजीर फिल्म का गाना, आवाज अमिताभ बच्चन और फरहान अख्तर की। गुरप्रीत सैनी ने लिखा है, रोचक कोहली का संगीत है।

0: और अब अगले गीत से पहले आइए सुनते हैं ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर।
1: नमस्कार, ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर की श्रृंखला में यात्रा संबंधी नवीन सूचनाओं के साथ मैं हूं उमाशंकर पांडे। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज ग्राम पथर्रा मोड़ बिलासपुर कोटा रोड पर स्थानीय लोगों के द्वारा अपनी मांगों के संबंध में प्रातः 10 बजे से चक्का जाम किए जाने का आह्वान किया गया है। अतः समय विशेष पर इस मार्ग पर यात्रा करने वाले वैकल्पिक मार्ग का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही चक्का जाम कर रहे सभी सदस्यों से अनुरोध है, चक्का जाम के दौरान भी फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस जैसे अति आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों की सेवा किसी भी स्थिति में बाधित नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार आज ही कांग्रेस के सदस्यों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर आज प्रातः 11 बजे कांग्रेस भवन में एकत्र होकर रैली शुरू, यहां से चलकर नेहरू चौक होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपे जाने की योजना है। रैली के प्रत्येक सदस्यों से पुनः अनुरोध है कि बिलासपुर शहर की शान नेहरू चौक में एवं ज्ञापन सौंपते समय कलेक्टर कार्यालय के सामने मुख्य सड़क पर यातायात बाधित ना हो, क्योंकि यदि यहां पर यातायात बाधित होता है तो इससे शासकीय कार्य भी बाधित होता है। इस बात का पूरा ध्यान रखें कि अपने अधिकारों की मांग करते करते दूसरे के अधिकारों का हनन ना हो, क्योंकि यह विधि विरुद्ध है। इसलिए जिस मार्ग में सभी को जाने की आजादी है उस मार्ग को जाम करना किसी के अधिकार पर अतिक्रमण करना है। इसके साथ ही शहर से लेकर गांव गांव में भी अर्थात संपूर्ण बिलासपुर जिले में यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। साथियों, जिला कलेक्टर कार्यालय के आसपास जिला न्यायालय सहित पुलिस अधीक्षक कार्यालय, दो दो कंपोजिट बिल्डिंग सहित अनेकों शासकीय कार्यालय है। यहाँ प्रतिदिन अच्छे खासे पढ़े लिखे ज्ञानवान और साधन संपन्न लोग महंगी से महंगी गाड़ियों में आते हैं और अपनी कारें मुख्य मार्ग में या रोड से एक पहिया नीचे उतार कर खड़ा कर चले जाते हैं। परिणाम इस महत्वपूर्ण सड़क में जाम की स्थिति बनती है, जबकि पास ही सर्व सुविधा युक्त सुरक्षित मल्टी लेवल कार पार्किंग है। 50 लाख की कार वाले भी 20 रुपए पार्किंग शुल्क से बचना चाहते हैं, जो नैतिकता मानवता और विधि के विरुद्ध है। अतः ऐसा न करें, हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
0: ये थे ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर। और अब नए तराने कार्यक्रम का यह अंतिम गीत आप तक पहुंचाते हैं। शान और श्रेया घोषाल की आवाजों में स्वानंद किरकिरे ने लिखा है, शांतनु मोइत्रा का संगीत है, फिल्म का नाम है पीके।

पी के फिल्म के इस गीत के साथ ही नए तराने कार्यक्रम अब हम यहीं समाप्त करते हैं। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। दिन के 11 बजे हैं। अब लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। आप सबको विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ जिसे हमें भेजा है
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल रंजीत कौर जयप्रकाश राहुल प्रियंका और मन्नत जी ने। लिखते हैं
0: मानव की इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती
2: जी।
0: एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जाग जाती है। हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए और जो मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए।
2: धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
0: तो पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगहत परवीन अब्बासी शाहनवाज अब्बासी सरफराज अब्बासी।
2: कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा जी।
0: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा प्रकाश अरोड़ा चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है
2: सप्रेम नमस्ते जी। गर्मी की छुट्टियों में बच्चे पेड़ पौधे लगाना पक्षियों को दाना खिलाना डायरी लिखना और दादा दादी नाना नानी के यहाँ जाना कार्य कर सकते हैं।
0: आगे आप लिखते हैं सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी उमंग कार्यक्रम में गर्मी से संबंधित विषय पर जानकारी एवं जो अन्य कार्यक्रम सुनाए जा रहे हैं बेहद पसंद आ रहे हैं। कार्यक्रम सुनकर गर्मी में भी दिल को ठंडक का एहसास हो रहा है
2: जी।
0: आपने यहीं पर विराम नहीं दिया, आपने आगे लिखा है
2: भारत के वीर सेनानियों पर आधारित कार्यक्रम की श्रृंखला वीर गाथा उमंग कार्यक्रम में सुनवाई जा रही

0: है वो प्रशंसा योग्य है। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी एवं लांस नायक अल्बर्ट एक्का जी पर केंद्रित कार्यक्रम सुनकर हमारी आंखें नम हो गईं। कार्यक्रम बेहद पसंद आया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए समस्त उमंग टीम का हम दिल से आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद आप सभी श्रोताओं को। और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए।
1: तो विमलेश जी अब ये बताइए कि ये भी जानिए श्रृंखला में आज हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा?
0: अजीत जी इस सप्ताह हम पूरे विश्व परिवार की अनेक रोचक परंपराओं की चर्चा करेंगे
1: जी।
0: आज की चर्चा का विषय होगा जापान का चाय समारोह। इसे टी सेरेमनी भी कहा जाता है और जापानी भाषा में इसे चानो यू कहते हैं। ये दुनिया की सबसे सुंदर और अनुशासित परंपराओं में से एक है।
1: जी हाँ श्रोताओ, जापान की चाय परंपरा केवल चाय पीना नहीं लेकिन सम्मान, शांति, अनुशासन और व्यवहार की सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो आइए जानते हैं विमलेश जी से कि ये परंपरा जापान में कब शुरू हुई।
0: जी अजीत जी, हम सब जानते हैं कि चाय की शुरुआत चीन से हुई है। 9वीं शताब्दी की बात है जब कुछ बौद्ध भिक्षु चीन से चाय की पौध लेकर जापान आए और तब चाय का प्रचलन जापान में भी शुरू हुआ।
1: लेकिन विमलेश जी, ऐसी कौन सी बातें हैं जो जापानी चाय समारोह को इतना विशेष बनाती हैं कि हम उसकी चर्चा कर रहे हैं?
0: जी अजीत जी, जापान में चाय पीना एक विशेष अर्थ रखता है।
1: जैसे?
0: जैसे कि वहाँ चाय पीना एक औपचारिक और सामान्य बात नहीं है। इस समारोह में बहुत सी बातों का खास ध्यान रखा जाता है। आइए अपने श्रोताओं को कुछ जापानी शब्दों से भी परिचित कराते हैं जो वहाँ की चाय परंपरा को खास बनाते हैं।
1: जी, सचमुच चाय पीने के संदर्भ में इन जापानी शब्दों को जानना बड़ा रोचक रहेगा।
0: अजीत जी, भिक्षुओं ने इसे आध्यात्मिकता से जोड़ दिया और इसके कुछ नियम बनाए।
1: तो क्या क्या नियम है इसके?
0: जापान का चाय समारोह चार मूल सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सिद्धांत है वाह।
1: वाह यानी?
0: यानी हारमोनी या सामंजस्य।
1: और दूसरा शब्द क्या है?
0: दूसरा शब्द है केई।
1: जी,
0: यानी रिस्पेक्ट या सम्मान।
1: और श्रोताओ, तीसरा शब्द है से यानी पवित्रता या प्यूरिटी। और चौथा शब्द है याकू यानी आंतरिक शांति या इंटरनल पीस।
0: श्रोताओ, इन चार सिद्धांतों पर टिकी है जापानी चाय परंपरा, जिससे हम स्पष्ट अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी अर्थपूर्ण है। तो जी जी, अब करते हैं साझा कुछ और रोचक बातें जो जापानी चाय परंपरा में अनिवार्य मानी जाती हैं।
1: जी हाँ, तो श्रोताओ, चाय समारोह में अतिथि सर झुकाकर अभिवादन करते हुए चाय का कटोरा दोनों हाथों से लेते हैं। ये सम्मान दर्शाने का प्रतीक है।
0: जी, एक और खास मेजबान की तरफ देकर हाथ को हल्का सा घुमाता है। इस कार्यक्रम में इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि अतिथि कहाँ बैठेंगे, उन्हें कैसे आराम दिया जाए, ये भी ध्यान दिया जाता है कि प्याला कैसा होगा।
1: जी, और अब एक जानकारी और आपको दे दें कि समारोह का आयोजन पारंपरिक तौर पर कहाँ होता है।
0: ये समारोह अक्सर एक शांत टी हाउस या चाय कक्ष में होता है जो लकड़ी और बांस से बना होता है। फर्श पर परंपरागत चटाई बिछी होती है, बाहर छोटा सा बागीचा भी हो सकता है। चाय घर या कक्ष को जापानी में चा शित्सु कहा जाता है। पारंपरिक रूप से चाय पार्टी में किमोना पहना जाता है। चाय कक्ष के मार्ग में रंगीन छोटे छोटे पत्थर मार्गदर्शक के रूप में लगाए जाते हैं।
1: यानी कुल मिलाकर ये चाय समारोह सादगी, विनम्रता और प्रकृति के सौंदर्य का मेल कहा जा सकता है।
0: जी
1: विमलेश जी, हमने ये तो बताया ही नहीं कि जापानी चाय समारोह में कौन सी चाय परोसी जाती है।
0: अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए थे। श्रोताओं, इस समारोह में माचा चाय दी जाती है। ये चाय की हरी पत्तियों को पीसकर पाउडर की तरह बनाई जाती है। जहाँ तक इसके स्वाद की बात है, स्वाद थोड़ा कड़वा हो सकता है।
1: कड़वा हो सकता है, तो इसीलिए सबसे पहले एक जापानी मिठाई दी जाती है जिसे वागाशी के नाम से जाना जाता है। पूरे जापान में ये मिठाई बहुत ही लोकप्रिय है। और श्रोताओं, एक खास बात आपको बताएं, प्रत्येक मिठाई बिल्कुल कलात्मक दिखाई देती है।
0: जी, तो श्रोताओं, जापान की चाय परंपरा हमें सिखाती है कि चाय पीना मात्र चाय पीना ही नहीं है बल्कि वर्तमान क्षण को पूरी शांति और सुंदरता के साथ जीना है।
1: तो ये चाय समारोह हमें संदेश देता है कि साधारण सी चीज यानी एक कप चाय भी सम्मान, परस्पर सामंजस्य और व्यस्त जीवन में गहरी शांति का अनुभव बन सकती है।
0: जी, तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी जानकारी ये जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
1: और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: जी, तो चलिए अब रुख करते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है संवदिया।
0: ये कार्यक्रम हमें उस समय की याद दिलाता है जब इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम नहीं थे। उन दिनों में संवाद या कोई सूचना लेकर जाने वाले को संवदिया कहा जाता था। संवदिया मात्र संदेश या पत्र वाहक ही नहीं थे, लेकिन समाज के महत्वपूर्ण सेतु थे जो एक दूसरे को जोड़ते थे। कार्यक्रम एक मार्मिक नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
2: आजकल तो घर बैठे ही कहीं से कहीं खबर भेज सकते हैं और वहां का कुशल संवाद मंगवा सकते हैं। फिर आज बड़ी हवेली से बड़ी बहुरिया की ओर से हरगोबिंद संवदिया की बुलाहट क्यों हुई?
3: हाँ, लो आ गई बड़ी हवेली। निश्चय ही कोई गुप्त समाचार ले जाना है। चांद सूरज को भी ना मालूम हो, परेवा पंछी तक न जाने। हाँ। पाए लागू बड़ी बहुरिया।
4: आ गए भैया। हाँ। लो ये पीढ़ी सरका लो, कुछ देर बैठ जाओ। हाँ।
3: बड़ी हवेली तो अब नाम मात्र की ही बड़ी हवेली है, जहां नौकर नौकरानियों की भीड़ लगी रहती थी। आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूपा में अनाज लेकर भटक रही है। ओह, कहां गए वो दिन? बड़े भैया क्या गए, जैसे सब खेल खत्म।

0: तीनों भाइयों ने आपस में झगड़ा शुरू किया। रैयतों ने जमीन पर दखल कर लिया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। रह गई बड़ी बहुरिया। कहां जाती बेचारी?
1: अरे ये मुदियाइन बूढ़ी काकी काहे बड़बड़ा रही है?
2: अरे देखो बड़ी बहुरिया, उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है, पर दाम देते समय कड़वा। मैं तो आज दाम लेकर ही उठूंगी यहाँ से। हाँ।
3: अरे मोदियाइन काकी, बाकी बकाया वसूलने का ये काबुली कायदा तो तुमने खूब सीखा है।
2: क्या कहा? काबुली कायदा? फिर काबुली का नाम लिया तो अच्छा ना होगा, कहे देती हूँ। हाँ
3: लो।
2: देखो जी, मैं फिर आऊंगी और अब की बार उधार लिए बिना हिलूंगी नहीं यहाँ से, कहे देती हूँ। बड़े आ जाते हैं उधार लेने, मांगने जाओ तो वापस नहीं करते।
3: और हाँ।
4: हर गोविंद भाई,
3: हाँ?
4: तुमको एक संवाद ले जाना है, आज ही। बोलो, चाहोगे ना?
3: कहाँ बड़ी बहुरिया?
4: मेरी माँ के पास।
3: माँ के पास? कहिए क्या संवाद है?
4: माँ से कहना मैं भाई भाभियों की नौकरी कर अपना पेट पालूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं? किस लिए, किसके लिए?
3: बड़ी बहुरिया,

0: हर गोविंद भैया, ये 5 का नोट ही बचा है, अब पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकी। आने का खर्च माँ से मांग लेना।
1: ना बड़ी बहुरिया, राह खर्च देने की जरूरत नहीं है, मैं इंतजाम कर लूंगा।
0: तुम कहाँ से इंतजाम करोगे? और सुनो, लगता है सुनते ही भैया तुम्हारे साथ आ जाएंगे।
1: अरे वो तो ठीक है, लेकिन मैं इंतजाम कर लूंगा बहुरिया, आप फिक्र मत करिए। ये नोट रखिए,
0: अरे
1: हारे गाढ़े काम आएंगे। अच्छा मैं

0: आज 10 बजे की गाड़ी से ही निकल जाऊंगा।
1: अच्छा, मैं तुम्हारी राह देखती रहूंगी।
2: अच्छा,
0: चलता हूँ।
3: संवाद यानी संदेश पहुंचाने का काम सहज नहीं होता। प्रत्येक शब्द को याद रखना, जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से सुनाना बहुत कठिन है। बिना मजदूरी लिए ही जो गांव-गांव संवाद पहुंचाए उसको और क्या कहेंगे, निठल्ला, कामचोर, पेटू और क्या क्या नहीं। पर सच ये भी है कि गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ बहु बेटी का संवाद हरगोबिंद ने नहीं पहुंचाया है।

0: भाई साहब।
1: हाँ
0: थाना बिहपुर में ये डाक गाड़ी रुकती है या नहीं?
1: अरे भैया, थाना बिहपुर में सभी गाड़ियाँ रुकती हैं।
0: अच्छा अच्छा।
1: हाँ, और मैं भी वहीं पर उतरूंगा।
0: अच्छा,
1: घबराओ मत, बता दूंगा।
0: तो कितना समय और लगेगा?
1: अरे बस थोड़ी दूर है, आने वाला है। हाँ?

0: थाना बेहपुर पर गाड़ी पहुंची तो हरगोबिंद का जी भारी हो आया। बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाते समय वो अपने कलेजे को कैसे संभालेगा। बड़ी बहुरिया के संवाद रह रह कर उसके कानों में गूंज रहे थे।
1: हरगोबिंद भाई, माँ से कहना भगवान ने आंखें फेर ली, लेकिन मेरी माँ तो है, किस लिए, किसके लिए? मैं बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं, कब तक जीऊं?
2: बड़ी बहुरिया, हम क्या करें?
0: हरगोबिंद का मन कलपने लगा। गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर चली जाएगी तो गांव में क्या रह जाएगा? किस मुंह से वो ऐसा संवाद सुनाएगा? ये सोचते सोचते हरगोबिंद गांव पहुंच ही गया।
3: माँ, माँ देखो, हरगोबिंद काका आए हैं।
4: पाए लागू माँ जी।
5: जीते रहो हरगोबिंद बेटा, क्या समाचार है?
4: जी, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है।
5: मेरी बेटी का कोई संवाद?
4: संवाद? जी संवाद तो कोई नहीं। हा? बस मैं कल सिरसिया गांव आया था तो सोचा कि चलकर आप लोगों के दर्शन कर लूं।
5: तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो?
4: जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसे ही बड़ी बहुरिया ने कहा है कि हाँ, अगर छुट्टी हुई तो दशहरे के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी।
5: सो तो है।
4: अरे छुट्टी मिलेगी तो कैसे, सारी गृहस्थी बड़ी बहुरिया के ऊपर ही तो है।
5: अरे हरगोबिंद, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर अपनी दीदी को लिवा ला, यहीं रहेगी। अरे वहाँ अब क्या रह गया है उसका? जमीन जायदाद तो सब चली गई, तीनों देवर भी शहर जाकर बस गए, कोई खोज खबर भी नहीं लेता उसकी। अब तो मेरी बेटी अकेली रह गई है।
4: नहीं नहीं नहीं नहीं माँ जी, जमीन जायदाद

0: बाद अभी भी कुछ कम नहीं है।
1: हाँ?
0: टूट फूट गई है तो भी है तो आखिर बड़ी हवेली, बड़ी बहुरिया का गांव ही परिवार है। हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया, और गांव की लक्ष्मी गांव छोड़कर कैसे जाएगी माँ जी?
1: हाँ सो तो है, चलो अच्छा है। बबुआ अब थोड़ा जलपान कर लो।
0: अच्छा अच्छा माँ जी।
1: अरे हर गोबिंद क्या सोच रहे हो, कुछ खाते क्यों नहीं बबुआ?
2: हर गोबिंद ने थाली की ओर देखा। थाली में दाल भात, तीन किस्म की भाजी, घी, पापड़, अचार, इतना सब कुछ। उधर बड़ी बहुरिया का बथुआ साग उबाल कर खाना। हर गोबिंद के मुंह में एक निवाला भी न जा सका। वो सोचने लगा, ये उसने क्या किया, वो किस लिए आया था, वो झूठ क्यों बोला? ये सोच सोच कर रात भर हर गोबिंद को नींद ही नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बड़ी बहुरिया बैठी रही, सिसक रही। उसने जी कड़ा किया, वो संवदिया है, उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। उसने निर्णय लिया कि वह सुबह उठते ही बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का सही संवाद अक्षर अक्षर सुना देगा। अगले दिन सुबह उठते ही वो माँ जी के पास जा पहुंचा।
0: माँ जी अब आज्ञा दीजिए।
1: अरे
0: मुझे पहली गाड़ी से वापस जाना होगा, कई दिन हो गए। अच्छा माँ जी अब पाए लागू।
1: जीते रहो बेटा,
0: अब चलता हूँ।
3: क्यों भाई, रहा खर्च तो है?
0: अरे भैया जी आपकी दया से किसी बात की कमी नहीं है।
3: अच्छा
0: अच्छा राम राम
3: राम राम
0: राम राम।

0: हरगोबिंद के पास तो बस कटिहार तक जाने के पैसे थे। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। वो कहाँ आया था, क्या करके जा रहा है? बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा?
1: कटिहार आ गया। उतर लो, जाना है जलालगढ़। टिकट कटिहार तक का ही है। जलालगढ़ है 20 कोस दूर। अरे बड़ी बहुरिया राह देख रही होगी, पैदल ही चलता हूं। बीस कोस की मंजिल भी भला कोई दूर की मंजिल है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय।

0: Schabasch, Schabasch, Schabasch. अब जी कैसा है?
1: बड़ी बहुरिया, मुझे माफ कर दो।
0: कहे?
1: मुझे माफ कर दो।
0: पर
1: मैं तुम्हारा संवाद न कह सका। तुम गांव छोड़कर मत जाओ।

0: water. They burrow underground during the hot day and come out at night to eat. Some of them eat other animals and get the water they need from the moisture in the meat. Others eat plants and seeds and get the water they need from plant juices. Desert plants also adapt themselves to the life they lead. Cactus plants store water in their thick stems. Their roots lie close to the surface of the ground and quickly absorb the moisture from the light rains that occasionally fall. The major feature of all deserts is, of course, dryness and variations of temperature. In humid climates, the moisture in the air acts like a blanket and protects the earth's surface from the hot rays of the sun. The absence of this blanket in desert lands causes the desert to heat up rapidly during the day and to cool off rapidly at night. Deserts are an important part of nature's great plan. They are there like the dense forests and the deep oceans. Just because they are hot and dry, one should not look upon them as useless parts of the earth.
1: आशा है कि ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम के समापन की आपसे आज्ञा चाहेंगे, तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: प्रायोजित कार्यक्रम NCERT अभी आप सुन रहे थे। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी बिलासपुर है। दिन के 11:30 हुए हैं। अब से 11:55 तक हम रिले करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम और 11:55 पर आकाशवाणी रायपुर से प्रादेशिक समाचार हम रिले करेंगे। फिलहाल आइए जुड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा से।

हम सुन रहे थे एल्बम मनमस्त कबीरा से बैजू मंगेशकर की आवाज में, कबीर के बोल और बैजू मंगेशकर के संगीत के साथ।

हम सुन रहे थे वडाली ब्रदर्स की आवाज में याद पिया की आए। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में जिगर मुरादाबादी के बोलों से सजे हुए इस नगमे को, जिसे महेश चेदर ने संगीतबद्ध किया है और इस एल्बम का नाम है जिगर से जिगर तक।

0: इलाहाबाद से पहुँचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक मैं देख लूं,
0: क्या
1: जैसे
0: बात है।
1: मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत

0: तो ऐसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई। विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा। करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग का अंतिम नगमा, जिसे गाया है लता मंगेशकर जगजीत सिंह ने, शाहिद कबीर ने इसे लिखा है, जगजीत सिंह ने इसे संगीतबद्ध किया है।

ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मुख्यमंत्री आज सीएम हेल्पलाइन नंबर का शुभारंभ करेंगे और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर आज से राष्ट्रव्यापी समारोह शुरू हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों के आशीर्वाद और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जनकल्याण के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन अथक प्रयासों के फलस्वरूप आज देश ने बुनियादी ढांचे से लेकर डिजिटल क्रांति तक वैश्विक मंच पर एक नई पहचान हासिल की है। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि विकसित भारत के अपने संकल्प को साकार करने के लिए सरकार सेवा, सुशासन और समृद्धि के इस पथ पर निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। आज से प्रदेश में मुख्यमंत्री की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसका शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री नवा रायपुर में स्थित सीएम हेल्पलाइन कॉल सेंटर का अवलोकन भी करेंगे। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076107 होगा। ये एक टोल फ्री नंबर होगा। इसके अलावा नागरिक वेब मोबाइल, मोबाइल ऐप या व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकेंगे। शिकायत दर्ज होते ही आवेदक को एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी। इसके जरिए वो अपनी शिकायत की पूरी प्रगति को ऑनलाइन देख सकेगा। ये हेल्पलाइन नंबर सप्ताह के 7 दिन और 24 घंटे संचालित रहेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने उल गुलान आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता का स्वर बुलंद किया। उन्हें आदिवासी गौरव, देशभक्ति और सांस्कृतिक चेतना का अमर प्रतीक बताते हुए गृह मंत्री ने कहा कि बिरसा मुंडा ने आदिवासी समाज को उनके अधिकारों और विरासत की रक्षा के लिए किया और जल, जंगल और जमीन के संरक्षण को जन आंदोलन का रूप दिया। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आज से पीएमएसएमए के 10 वर्ष एक दशक की देखभाल राष्ट्रव्यापी समारोह की शुरुआत करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इस अवसर पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता और जनसंपर्क गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के

0: पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में प्रदान किए गए। छत्तीसगढ़ के 3 लोगों को राष्ट्रपति ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। इनमें राइफल के राइफलमैन भोजराम साहू के साथ ही छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान बहादुरी और नेतृत्व क्षमता का परिचय देने वाले पुलिस निरीक्षक लक्ष्मण केवट और निरीक्षक रामेश्वर देशमुख शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ये पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है। रायपुर जिले में कल देर रात तेज बारिश हुई, इससे तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट। मौसम विभाग ने इसे प्री मानसून की बारिश बताया है। अगले 2 से 3 दिनों में छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बताई गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक प्रदेश में गर्जन, तेज हवा और हल्की बारिश की गतिविधियां जारी रहने तथा 11 जून से इसमें वृद्धि होने का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मुख्यमंत्री आज सीएम हेल्पलाइन नंबर का शुभारंभ करेंगे और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के पूरे होने पर आज से राष्ट्रव्यापी समारोह शुरू हो रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: की सुरीली धड़कन, दोपहर के 12 बजने वाले हैं। बस थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक 13 जून को होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जनकल्याण के लिए समर्पित है। प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धनशोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय ने उनके और उनकी कंपनियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर धन शोधन और 100 करोड़ रुपए से अधिक के कथित जीएसटी धोखाधड़ी तथा फर्जी मोबाइल फोन बिक्री का पर्दाफाश किया है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने आगामी श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन तूती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है।

0: भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए $1,00,000 के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के तहत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। अमेरिका में भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। H-1B वीजा के जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि धरती आबा का जीवन साहस, आत्मसम्मान और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक था। श्री शाह ने कहा कि आज भी बिरसा मुंडा का धर्मांतरण के विरुद्ध संघर्ष और आदिवासी गौरव के प्रति उनका समर्पण लाखों देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मुकाबला श्रीलंका में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ए ने 26वें ओवर में 3 विकेट पर 112 रन बना लिए हैं। कप्तान तिलक वर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली बढ़त देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 114 अंक बढ़कर 73,668 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में।

हम सुन रहे थे दो आंखें 12 हाथ फिल्म से यह गीत, जिसे साथियों ने गाया भरत व्यास के बोल और वसंत देसाई के संगीत के साथ। आज दिनांक है 9 जून, और आज ही के दिन यानी 9 जून 1912 को सोनावड़े विलेज यानी सोनावड़े गांव में, सिंधु दुर्ग महाराष्ट्र में जन्म लिया था वसंत देसाई ने, यानी आज उनका जन्म दिवस है। तो चलिए उनके ही गीतों के साथ यानी वसंत देसाई के गीतों के साथ हम उन्हें याद करते हैं।

0: हम सुन रहे थे दो बहनें फिल्म से प्रदीप की आवाज में, प्रदीप के ही बोलों को वसंत देसाई ने जिसे संगीतबद्ध किया है। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज दो सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं।

0: सखिया ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
1: सखी सहेली
0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी
2: देखो जी बहार आई गांवों में
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत
4: तुम्हारी याद सताते
0: हैं हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम है यादों की महफिल आइए लेते हैं यादों की महफिल में एक छोटा सा विराम उसके बाद पुनः हाजिर होते हैं हम आपके बीच में बहुत सुंदर से नगमों को लेकर जिसे सजाया है हमने संगीतकार वसंत देसाई की यादों के साथ

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल में गुड्डी फिल्म का यह गीत। वाणी जयराम की आवाज में गुलजार की बोल हैं और संगीतकार वसंत देसाई ने इसे संगीतबद्ध किया है।

दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं वसंत देसाई को। गूंज उठी शहनाई, इस फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी ने गाया है। भरत ब्यास के बोल हैं और वसंत देसाई का है संगीत। आइए सुनते हैं।

हम सुन रहे थे गीत तूफान और दिया फिल्म से मन्ना डे की आवाज में भरत व्यास के बोल और वसंत देसाई के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं फिल्म प्यार की प्यास से लता मंगेशकर तलत महमूद पर की आवाज में भरत व्यास के बोल हैं और वसंत देसाई का है संगीत।

हम सुन रहे थे अमर ज्योति फिल्म से यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में भरत व्यास के बोल और वसंत देसाई के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल में अगला गीत सम्राट पृथ्वीराज चौहान फिल्म से। महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजें हैं। अनंत श्याम ने इसे लिखा है और वसंत देसाई ने संगीतबद्ध किया है।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उन किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गीत, जो कि है फिल्म यादें से। लता मंगेशकर की आवाज है, आनंद बख्शी के बोल हैं और वसंत देसाई का संगीत।

हम सुन रहे थे आशीर्वाद फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में गुलजार के बोल बसंत देसाई के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल में, जहां हम याद कर रहे हैं बसंत देसाई को उनके सुंदर गीतों के लिए। गूंज उठी शहनाई फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर की आवाज है, भरत व्यास के हैं बोल और बसंत देसाई का है संगीत।

और इसी के साथ समाप्त होता है आज का यह कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें याद कर रहे थे हम संगीतकार वसंत देसाई को। आज उनका जन्मदिवस है और उनको याद करते हुए हमने उनके ही द्वारा संगीतबद्ध किए गए गीतों को सुना। आज्ञा दीजिए,

चलिए, स्वागत है आप सभी का विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन में, और स्वागत है कार्यक्रम सुरीला सफर में। अब ये सुरीला सफर शुरू हो रहा है और आज की जो इबारत है वो हम आपके बीच में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि कुछ मित्र हैं जो सोशल मीडिया पर हमें नहीं पढ़ते हैं, तो उनके लिए इबारत हम जरूर पढ़ेंगे। इबारत थोड़ी बड़ी है, जरा ध्यान से सुनिएगा। इसमें बहुत सारी पहेलियां हैं, तो हम प्रत्येक गीत के पहले आपको ये पहेली सुनाते जाएंगे। हम कुछ पहेलियां दे रहे हैं, उसके साथ आज के शब्दों को ढूंढना है और बताना है, और पहेली प्रत्येक गीत के पहले आपके बीच में रखी जाएगी। और अब हम जो चल रहे हैं इस इबारत के साथ में, हमने एक और बात आपसे कही है कि अगर आपके पास में कुछ पहेलियां हैं जो आप हमसे साझा करना चाहते हैं तो जरूर करें। हो सकता है उससे जुड़ा हुआ कोई गीत हम आपको सुनवा दें कार्यक्रम के होने होने तक। तो चलिए चलते हैं। आज के कुछ संदेश हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे भेजे हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज सुरीला सफर को शब्द संगीत पहेली का रूप दिया गया है। हम श्रोताओं को दिमागी कसरत और कुछ नवीन प्रयोग अच्छा लगा और सराहनीय भी। धन्यवाद कुछ नई सोच के लिए। और उन्होंने सारे उत्तर दिए हैं एक के बाद एक। इसके साथ ही हमारे एक और श्रोता ने लिखा कि कार्यक्रमों में विविधता ही विविध भारती की पहचान है। पहेलियों का सुंदर प्रयोग कुछ अलग हटकर करने की प्रामाणिकता है। समरसता अक्सर मनोरंजन बाधित होती है, अतः यह विविधता स्वागत योग्य है। और इसके साथ ही उन्होंने भी हर पहेली का उत्तर दिया है। इसके साथ ही जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है एक और संदेश, जहां हमारे मित्र लिखते हैं कि विविध भारती के सुरीले सफर में आज पहेलियां पूछते हैं। कभी कक्षा के खाली समय में दो चार लोग यह खेल खेला करते थे, या शादी किसी शादी

के फंक्शन में रिश्तेदारों का जमघट होता था तो लोग मनोरंजन के लिए पहेलियां बुझाने का काम करते थे और सही जवाब पर ठहाके लगाते थे। हमारे एक श्रोता ने तो बड़ी गंभीर बात लिखी है। वो लिखते हैं, पहेलियों की विषय वस्तु में वैदिक, पौराणिक, प्राकृतिक और लोक जीवन के प्रसंग प्रचुर मात्रा में देखने सुनने को मिलते हैं। पहेलियां ज्ञानवर्धक और स्मरण शक्ति बढ़ाने के उद्देश्य से कही और सीखी जाती हैं। पहेलियां प्रायः व्यंजना शैली में रची जाती हैं। इनकी भाषा में विशिष्ट भंगिमा होती है, रचना में बाकपन होता है। इस कारण इसका अर्थ लगाने में दिमागी कसरत तो होती ही है, भाषा भी निखरती है और विषय वस्तु के प्रति जिज्ञासा और हाजिर जवाबी भी बढ़ती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और कुछ तो कह रहे हैं कि वो अपने बचपन को याद कर रहे हैं इन पहेलियों के साथ में, तो वह भी बहुत अच्छी बात है। हमारे एक श्रोता ने कहा है कि पहेलियां दिमाग की कसरत नहीं बल्कि मानवीय संवेदनाओं, धैर्य और दृष्टिकोण का एक खूबसूरत दर्पण है। वे सिखाती हैं कि जीवन की उलझन में गहरा अर्थ छिपा है। यह जीवन के उस फलसफे को दर्शाती हैं जहां हर सवाल का जवाब हमारे अपने भीतर मौजूद होता है और शब्दों और छवियों का यह खेल हमें अपनों के साथ जोड़ता है, संवाद बढ़ाता है और कठिन परिस्थितियों में मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। चाहे वह जीवन की जटिलता हो या शब्दों का कोई मनमोहक खेल, हर पहेली हमें बेहतर और समझदार बनाती है। तो चलिए हम चल रहे हैं उन्हीं पहेलियों की तरफ। हमारे श्रोता ने एक और बात लिखी है कि ये पहेली वाला विषय नहीं है, इन्होंने अपने किसी दूसरे पहेली विषय से जोड़कर लिखा है। तब हम जब वह गीत हम सुनाएंगे तब उसके बारे में चर्चा करेंगे, परंतु अब हम चलते हैं इस पहले गीत की तरफ। और ये पहला गीत जो है वो बड़ा सुंदर सा है। आपको पहचानना है कि इसके ये जो गायक कलाकार हैं वो कौन है, और अगर आपके मन में कोई पहेली है तो उस पहेली को हम तक पहुंचाना है और उस पहेली का उत्तर भी पहुंचाइएगा। हम हमारे श्रोताओं जितने समझदार नहीं हैं, तो हम चाहते हैं आप उत्तर सहित पहुंचाएं और हम अगला गीत आपको पहुंचा दें, सौंप दें।

हम सुन रहे थे ये प्यारा सा गीत जो हमने लिया था फिल्म पहेली से। रविंद्र जैन ने इसे लिखा और रविंद्र जैन ने ही इसे संगीतबद्ध किया। अब हमने आपसे पूछा था कि इसके जो गायक कलाकार हैं उनका नाम आप हमें सुझा दें, बता दें। तो आपने हमें उन गायक कलाकारों के नाम बताने के साथ साथ बड़ी सुंदर तरीके से बता दिया इस पूरे गीत के बारे में। हमारे श्रोता लिखते हैं, सुरेश वाडकर, हेमलता और चंद्रानी मुखर्जी की आवाज में 1977 के दशक के कुछ सबसे खूबसूरत और यादगार गानों का आनंद लें। ये गाने केवल मधुर हैं और सहेली हो पहेली पूछो जैसे गानों के दौर सुंदर दौर है। और इन्होंने इसी फिल्म के इस फिल्म के नाम के बारे में भी जिक्र किया है कि ये फिल्म है पहेली। और इसके साथ ही हमारे कई सारे और श्रोताओं ने भी ये उत्तर दिया है, उसके लिए भी हम उन्हें धन्यवाद कहते हैं। और इस सुंदर आगाज के साथ में अब हम आज की पहली पहेली की तरफ बढ़ते हैं। और आज की पहली पहेली है, जो जन्म से भी पहले पहचान लेती है, जो जन्म से पहले भी पहचान लेती है और मृत्यु के बाद भी स्मृति बनकर साथ चलती है, जिसे खोकर लोग बड़े तो हो जाते हैं पर कभी सचमुच बड़े नहीं हो पाते हैं। और इसका उत्तर हमारे श्रोताओं ने सही दिया और उत्तर दिया माँ। बिल्कुल सही बात है, माँ ही है ना जो हमारे जन्म के पहले, यानी हर कोई हमारे जन्म के बाद हमें प्रेम करता है, लेकिन माँ होती है जो हमारे गर्भ में आने के बाद ही वह हमें प्रेम करने लग जाती है और उसी प्रेम के लिए हम उसे याद करते हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है कि सभी सांस्कारिक प्रश्नों पर गीतों पर चर्चा का समन्वय रहेगा। जन्म लेने से पहले माँ का साथ रहता है, किंतु जब वह हमें छोड़कर जाती है तो बहुत अकेलापन महसूस होता है। बिल्कुल सही कहा। हमारे श्रोता लिखते हैं कि वो माँ है, अपने बच्चों को के बारे में कितना कुछ सोचती है, कितना करती है। उस आंगन में नन्ही सी चिड़िया की तरह फुदकते हम कब बड़े हो जाते पता नहीं चलता। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहो, लाख पैसा कमा लो, पर अपना घर अपनी माँ हमेशा दिल में रहती है। बिल्कुल सही कहा आपने भी। और इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें कही हैं, पर मैं आपको अगला गीत सौंपना चाहती हूँ। ये बड़ा सुंदर सा, बड़ा प्यारा सा गीत है। बस बता दीजिए, माँ के लिए इतना प्यारा लिखने वाले गीतकार कौन है? इस गीत को लिखने वाले गीतकार कौन है, ये नाम बस बता दीजिए। और अगर आपके मन में कोई पहेली आ रही है तो वो हमसे जरूर साझा कीजिएगा।

अपनी माँ के साथ जाते हुए बच्चों को एक सुंदर सी घोड़े की टाप के संगीत के साथ रोशन ने संगीतबद्ध किया इस गीत को। मन्ना डे और महेंद्र कपूर ने अपनी सुरीली आवाज के साथ इसे गाया। दादी माँ फिल्म से लिया गया यह गीत है। और हमने आपसे पूछा था कि इतना सुंदर गीत रचा किसने, यह जरूर बताएं उस गीतकार का नाम। तो सच में इतने सुंदर गीत को रचने के लिए मजरूह सुल्तानपुरी को धन्यवाद बनता है। माँ के प्रति समर्पित हमारी भावनाओं को हम तक, हमारा वहां तक पहुंचाना। अब हम बात कर रहे हैं, अच्छा हमारे श्रोताओं ने इस गीत के बारे में भी लिखा है कि इस गाने की शूटिंग उदयपुर में हुई थी, हमने वो रास्ता देखा है। अरे वाह, इसके साथ ही हमने आपसे जो प्रश्न पूछे उसमें हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से उत्तर दिया कि फिल्म दादी माँ का गीत है और मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा है। बिल्कुल सही, हमारे श्रोता ने लिखा है, कहते हैं तेरी शान से ऊंचे बोल नहीं, भगवान के पास भी माता तेरे प्यार का मोल नहीं। बिल्कुल, माँ के बिना तो ईश्वर भी स्वयं को ईश्वर कहलाने के लिए इस धरती पर नहीं आ सकते, उन्हें भी उनकी आवश्यकता होती है। और हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी कि हाथ दुआ वाले सदा रहते हैं सदा सर पर, तू है तो अंधेरे पथ में भी, सूरज की जरूरत क्या होगी। बहुत खूबसूरत गीत हम सब ने अभी सुना और इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने कुछ कुछ कुछ बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें हमारे बीच में लिखी हैं और कुछ पहेलियां लिखी हैं। जैसे हमारे एक श्रोता लिखते हैं, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर, उन्होंने बताया तीन तीतर। चलो बढ़िया बात है, पर हमारे एक श्रोता ने एक और प्रश्न छोड़ दिया है, अब उसका उत्तर मुझे भी नहीं पता, शायद आपको पता हो, और अगर सही होगा तो हमारी ये श्रोता आपके उस पर जाकर अवश्य बता देंगी कि आपने सही उत्तर दिया नहीं या नहीं इस पहेली का। काले रंग का प्राणी हूं, उजाले के साथ में रहता हूं, रात के अंधेरे में छुप जाता हूं, बताओ मैं कौन हूं। अब ये प्रश्न आपके बीच में हमने हमारी श्रोता का रख दिया है कि काले रंग का प्राणी हूं, उजाले के साथ में रहता हूं, रात के अंधेरे छुप जाता हूं, बताओ मैं कौन हूं। चलिए इसका उत्तर आप ढूंढिए। इसके साथ ही हम चलते हैं अगली पहेली की तरफ। फूलों की गलियों का मैं मुसाफिर अनजाना, आज की इबारत में हमने लिखा है कि फूलों की गलियों का मैं मुसाफिर अनजाना, गुनगुन मेरा गीत ना कोई शब्द पुराना, श्याम वसन ओढ़े फिरूं मधु की खोज में, बताओ कौन हूं मैं जिसका घर है हर बाग में।

हम जानते हैं आप सही उत्तर दे चुके हैं और इसका उत्तर आपने दिया है बहुत अच्छे से, भंवरा। और जब भंवरे की बात चल रही है तो हमने हमारी श्रोता की वो पंक्तियां भी आपको सौंपी हैं और ये गीत भी हम आपको सौंप रहे हैं। बस इतना बता दीजिए इस गीत के संगीतकार कौन है, और अगर आपकी कोई पहेली है जो बड़ी सुंदर सी है तो हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा।

देखिए, हम सुन रहे थे ये बढ़िया सा गीत, और इस बढ़िया से गीत में हमने आपसे पूछा था कि बताइएगा इसके बारे में, और आपने बड़े अच्छे से उत्तर हमें दिए हैं। हमारे श्रोताओं के उत्तर सुनते सुनते बड़ा आनंद आ रहा है, पढ़ते पढ़ते बड़ा मज़ा आ रहा है। बहुत सारी पहेलियाँ हमारे बीच में आ रही हैं, और उन पहेलियों के साथ बड़े प्यारे जज्बात भी आ रहे हैं। और हम ये जो गीत सुन रहे थे वह

आज और कल, आज और कल फिल्म से सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में हसरत जयपुरी के पोल, और जो प्रश्न है वो शंकर जयकिशन ने इसे संगीतबद्ध किया है। इसके साथ ही हमने आपसे पूछा था तो हम आपका उत्तर काले रंग की परछाई है, ऐसा उन्होंने कहा है। चलिए देखते हैं उत्तर सही है या नहीं, आप अवश्य देख लीजिए। अब हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ, लेकिन उस गीत के पहले हमारे श्रोता ने बहुत अच्छे से लिखा है कि फिल्म कल आज और कल का सदाबहार गीत भंवरे की गुंजन हसरत जयपुरी के द्वारा रचित, किशोर कुमार द्वारा गाया गया।

बुनने वाली दो सलाइयाँ। हाँ, माँ जब स्वेटर बुनती थी तो कुछ ऐसे ही बुनती थी। इसके साथ ही हमारे श्रोता ने बड़े अच्छे से उसका उत्तर भी दिया है। हमने जो आपसे पूछा था, हमारे एक और श्रोता ने बोला है कि एक गुफा में 32 चोर हमेशा करते आपस में शोर। बताइए इस पहेली का उत्तर। तो इस पहेली को उत्तर सहित हमारे एक और श्रोता पहले ही बता चुके हैं। इसका 32 चोर होते हैं हमारे दांत। इसका उत्तर हमको पता है। इसके साथ ही हम आपसे कह रहे हैं कि आप इसका उत्तर सहित बता दें, क्योंकि हम तो बड़े अनभिज्ञ व्यक्तित्व हैं, तो अगर आप बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिख रहे हैं, वो कौन है जिसकी परछाई नहीं होती रास्ता। अच्छी बात है, ये भी बढ़िया बात आपने कही है। इसके साथ जब हम आगे बढ़े तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि पहेली पूछना और समझना एक दिमागी विकल्प है। आज के समय में हर इंसान पहेलियों में उलझा हुआ है। बहुत बढ़िया। हमारी एक श्रोता की एक संवेदना हम आपके साथ साझा नहीं कर पाए, जो पिछले गीत के लिए उन्होंने की थी कि हजारों गम हो मेरी जिंदगी में तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां माँ साथ हो वहां कोई भी दुख ठहर नहीं सकता, लिखूं जो माँ पे तो स्याही कम पड़ जाए, वो एक हस्ती है जिसके आगे सारा जहान भी झुक जाए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हमारे श्रोता ने एक बढ़िया सी पहेली लिखी है कि वो कौन है जो पूरे गांव में घूमती है पर मंदिर नहीं जाती। उन्होंने लिखा, चरण पादुका। कटोरी के अंदर कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा, कौन होता है? बताइएगा जरूर। इस पहेली का अर्थ आपको बताना है, उत्तर बताना है। बचपन की पहेली है जो हम सुनते आए हैं, कटोरे के अंदर कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। इस पहेली का उत्तर आप बताइए। और अब हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ। ये गीत के साथ इसकी पहेली भी हम आपको सुनवा देते हैं। तो ये पहेली है कि नन्ही सी मैं उड़ती जाऊं, चीची करके गीत सुनाऊं, पेड़ों पर मैं घर बनाती, पूछो कौन कहलाती। और इसका उत्तर है चिड़िया। जब चिड़िया पर मैं आपको ये सुंदर सा गीत सुनवा रही हूं, और इसके पहले मैंने भंवरे पर आपको गीत सुनवाया, हम मान लें तो मधुमक्खियां और जो भी फूलों का रस चखती हैं उन सबको अगर इसमें हम जोड़ लें तो ये सब जीव खत्म हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। इनकी रक्षा कैसे कर सकते हैं, विचार कीजिएगा। और गर्मियों के दिन है, चिड़ियों के लिए दाना पानी तो जरूर डालिएगा। गायक का नाम बताइएगा।

भी आया बंदर भी आया, चुन चुन करती आई चिड़िया, चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया, चुन चुन करती आई चिड़िया।

0: आया बंदर भी आया छन छन करती आई चिड़िया
1: चुन चुन करती आई चिड़िया। ये गीत बड़ा सुंदर सा है जो हम सुन रहे थे। ये फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं से है, हसरत जयपुरी के बोल हैं, दत्तराम का संगीत है। और हमने पूछा था कि आवाज किस गायक की है, तो आप सबने बिल्कुल सही उत्तर दिया, मोहम्मद रफी की आवाज है। और ये प्यारा सा गीत हम सुन रहे हैं, इस गीत के साथ एक शिक्षा तो मिलती है कि ये छोटे छोटे जीव हैं और हम इतने बड़े बड़े मनुष्य, छोटे जीवों को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं उस पर विचार करते हैं और उन जीवों को बचाते हैं। क्योंकि अगर ये जीव नहीं होंगे तो ये बड़े बड़े मनुष्य भी समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये प्रकृति, ये विज्ञान कहता है। तो चलिए हम अगले गीत की तरफ बढ़ेंगे, उसके पहले हमारे श्रोताओं ने और भी बहुत सारी पहेलियां भेजी हैं। जैसे हमारे एक श्रोता ने पंजाबी कहावत पहेली भेजी है कि गुड़िया विच तकतेनी परने सड़ गए थे कुआरे अख्तेनी, शादी की इच्छा रखने वाले ऐसा कुछ कहते हैं। और एक बहुत अच्छा उन्होंने पहेली भेजी है, बूझ मेरा बुझक का सुंदर लाल मेरा सक का सुंदर लाल मेरा भाई मैं सदा कुछड़ पाई। इसका उत्तर उन्होंने घड़ा या मटका दिया है। हर भाषा में अपने अपने अलग अलग बात आ जाती है ना। इसके साथ ही हमारे एक श्रोता ने लिखा है, लिखा नहीं जाता पर पढ़ा जाता है, खामोश रहकर भी बहुत कुछ कहा जाता है, आंखें इसे देखकर नम हो जाती हैं, बताओ वो क्या है जो दिल को छू जाता है। तो उन्होंने इसके दो उत्तर दिए हैं, पुरानी यादें या एक भावुक पत्र। बहुत बढ़िया, बड़ी मजेदार सी बातें भी आई हैं। ना खून का रिश्ता है ना घर का नाम, फिर भी रहता हरदम साथ। और इसका उत्तर उन्होंने दिया है, सोशल मीडिया। जी, इसके बिना तो जीवन चल ही नहीं रही है, इसके साथ ही जीवन चलता नहीं है, जीवन रुक जाता है, ऐसा हम मान के चलते हैं, पर चल सकता है। इसके साथ ही हमारे एक और श्रोता ने लिखा है, ये जो जेब में रहता है काम में आता है, बाजार जाके शॉपिंग भी करवाता है, आजकल वो स्मार्टफोन भी है, फोन भी हो सकता है, भाई इसके बिना कहाँ रहा जाता है। जी, आपकी इस बात को भी हम मान लेते हैं। एक पहेली है जो हम आपको सौंप रहे हैं, और हमने इसके पहले आपको सौंपी थी कि कटोरे में कटोरा बेटा बाप से भी गोरा, तो आपने सही उत्तर दिया नारियल। अब एक पहेली सौंप कर मैं बस आपको एक संदेश सुनवाने वाली हूँ। वो पहेली है, हरी थी मन भरी थी मोतियों से भरी थी, राजा जी के खेत में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। हरी थी मन भरी थी मोतियों से भरी थी, राजा जी के खेत में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। इसका एक हिंट दे देती हूँ, अरे बड़े शौक से इसे कोयले पर सेक कर उसमें नींबू और दही घी लगाकर नमक लगाकर हम बड़े चाव से खाते हैं। बताइएगा, तब तक सुनिए ये संदेश।
2: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
3: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
2: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
3: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
2: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
3: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
2: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सुरीला सफर, और सुरीला सफर कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं बहुत सारी पहेलियां। और अगली पहेली आपको सौंपने से पहले, पिछली पहेली जो हमने यूं ही बूझी थी, उस पहेली का हरी थी मन भरी थी, इस पहेली का जो उत्तर हमने आपसे पूछा था उसका उत्तर आपने दिया है भुट्टा। बिल्कुल सही बताया आपने। और इसके साथ ही हम कई सारे और प्रश्नों के साथ चल रहे हैं। हमारे एक श्रोता ने प्रश्न दिया, मुझे पहेली बस का उत्तर पता नहीं होता है, तो मैं पहेली बताती नहीं हूँ, मैं भी थोड़ी सी चीटिंग कर लेती हूँ। जी चलिए, हमारे एक श्रोता ने लिखा है, जहाँ जितने ज्यादा पेड़ पौधे फूल होते हैं वहाँ चिड़िया पंछी भंवरे तितलियाँ दिखते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाना सारी समस्याओं, बहुत सारी समस्याओं का हल है। आपने बहुत अच्छा हल बताया है और हम सबको ये हल मानना चाहिए। और अभी मौसम भी आ रहा है, जैसे ही बरसात का मौसम आता है, ऐसा कहा जाता है कि बरसात के मौसम के कुछ 10-15 दिन पहले गड्ढा खोद देना चाहिए ताकि जमीन जो है वो सूख जाए,

का हाथी, मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी, सीधा दिल्ली जाऊंगा, तेरी दुल्हनिया लाऊंगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया।

कीट रहित हो जाए, और उसके बाद जब वह गड्ढा सूख जाता है 10-15 दिन में, तो फिर उसमें पेड़ लगा देना चाहिए और पानी डाल देना चाहिए, और धीरे धीरे बारिश आएगी, बरसात स्वयं उसको पानी देती रहेगी और 4 महीने में वो हरा भरा हो जाएगा। तो अभी ये काम कर सकते हैं, मौसम आ गया है, गड्ढा खोदने की शुरुआत कर दीजिए। हमारे श्रोता ने लिखा है, हवा में उड़कर आती हूँ, बिना छुए दिल को छू जाती हूँ, मेरी हर सुर में कहानी है, विविध भारती की मैं रानी हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। और उन्होंने उत्तर दिया है, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा का सुरीला सफर। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। हमारे श्रोता लिखते हैं, बचपन में हम सब छुट्टियों में दादी के घर जाते थे, तो रात को सब अपने बिस्तर पे लेते लेटे लेटे पहेलियां बुझा करते थे, और हमारे बड़े भी हिस्सा लेते थे, और उनमें से एक पहेली, पंछी उड़ता आकाश में मगर रहता कहाँ। हाँ, इसका उत्तर उन्होंने बहुत अच्छे से दिया, पानी में रहता है मगर। पंछी उड़ता आकाश में मगर रहता कहाँ, तो मगर रहता है पानी में। हमारे श्रोता लिखते हैं कि खामोशी और मौन दोनों ही, एक श्रोता ने पूछा कि अच्छा आपने इसका उत्तर दे दिया, चलिए बहुत अच्छी बात है। उन्होंने प्रश्न पूछा था कि बोलते ही क्या टूट जाता है, तो उन्होंने कहा खामोशी और मौन टूट जाता है। बिल्कुल सही। चलिए अब हम चल रहे हैं कि अब बड़ी खूबसूरती के साथ में अगले गीत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और अगली जो इबारत में से जो कवि पहेली है वो हम आपको सौंप रहे हैं। ईंटों पत्थरों का तन मेरा, पर यादों से सजता मन मेरा, हंसी आंसू अब सपनों का स्वर, बताओ कौन हूं मैं। ईंटों पत्थरों का तन मेरा, पर यादों से सजता मन मेरा, हंसी आंसू सपनों का स्वर, बताओ कौन हूं मैं। और इसका उत्तर है घर। और सुनते हैं ये घर का गीत, बस बता दीजिए कौन सी फिल्म का गाना है। और इसके साथ ही आपके जो पहेलियों के किस्से हैं, या किसी ने आपसे कोई पहेली पूछी है, या आपके परिवार में सबसे बढ़िया पहेलीकार था कौन, जो बड़ा सताता था, जरूर बताइएगा।

हम सुन रहे थे ये गीत जगजीत सिंह चित्रा सिंह की आवाज में, जावेद के बोल और जावेद अख्तर के बोल और कुलदीप सिंह के संगीत के साथ। और हमने आपसे पूछा कि ये गायक कलाकार कौन है, तो आपने सही उत्तर दिया जगजीत सिंह और चित्रा सिंह। बिल्कुल सही उत्तर आपने यहाँ पर दिया है। और इसके साथ ही अब हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ। और अगले गीत की तरफ बढ़ने से पहले, जो आपने हमें बहुत सारी बातें बताई हैं, सुझाई हैं, संदेश भेजे हैं, वह तो हमें आपको सुनवाने ही हैं। तो हमारे श्रोताओं ने इसके बारे में बहुत अच्छी बात लिखी, दीप्ति नवल, फारूक शेख, जगजीत सिंह, चित्रा सिंह, फिल्म साथ साथ, बहुत बढ़िया। हमारे श्रोता लिखते हैं, घर वो जगह है जहाँ आकर हमें सबसे ज़्यादा सुकून और शांति मिलती है, सुरक्षित महसूस करते हैं और घर चाहे बड़ा हो या छोटा हमें आश्रय देता है। हमारे श्रोता लिखते हैं, आज भी लोग रिश्ता करने जाते हैं तो घर देखते हैं, कैसी बड़ी बिल्डिंग हवेली, वर नहीं देखते पर वर के खूबसूरत बलवान कितना कमाता है, विचार क्या है ये देखना चाहिए। बिल्कुल सही संदेश आपने दिया। और हमारे श्रोता ने, हमने भुट्टे के बारे में पूछा था, उसे छल्ली भी कहते हैं, मक्की भी कहते हैं, अरे वाह इतने सारे नाम हैं भुट्टे के, हमें भी पता पड़ गए। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से चिड़िया या गौरैया को कम देखा जा रहा है, हमारे घर में चिड़िया का एक जोड़ा जहां हम दाना डालते हैं आता है, पिछले कुछ महीनों से दो जोड़े आने लगे हैं, उनके लिए मिट्टी का घर टाका है छज्जे पर और आज ही एक चिड़िया का जोड़ा उसका मुआयना कर रहा था, आशा है कि घर में घोंसला बनाए और उनकी संख्या बढ़ जाए, फिर से उनकी चहचहाट से मेरी आँख खुले और मेरा दिन खुशनुमा हो जाए, कितनी बढ़िया बात है। हमारी श्रोता लिखते हैं कि बिहार में जब लड़की की शादी होती है तो मायके में ही लड़का लड़की कोहबर में बैठने के लिए लाया जाता है, तब घर की सालियां दरवाजे से को घेरती हैं और दूल्हे राजा से गाने की कुछ लाइनें या कुछ पहेलियां पूछती हैं, पहले तो दूल्हे राजा गड़बड़ाते हैं, गाने की दो लाइन गा देते हैं, फिर उन्हें शगुन भी देना पड़ता है, ये सब प्रेम की बातें हैं ना। हमारी श्रोता लिखते हैं, बचपन में रीत के बहुत से घर बनाते थे, जब दो मंजिला घर बन जाता था तो बहुत खुश हो जाते थे, और वो दो मंजिला घर भी हमारे लिए स्वर्ग से कम नहीं होता था, और टूट भी जाता था तो हम फिर से बनाते थे, टूटते नहीं थे, है ना। अब हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि जितना पास आए उतना कम दिखाई दे, और इसका उत्तर उन्होंने बताया, अंधेरा। आहा क्या बात है, एक बचपन वाली पहेली भी हमारे पास में आई है, एक खड़ी एक पड़ी एक चमाचम नाच रही, बताओ कौन, और उसका उत्तर है रोटी, जिसके बिना हमारा जीवन नहीं चलता, ये हमारे श्रोताओं ने उत्तर दिए हैं। और इसके साथ ही हम चलते हैं हमारी अगली पहेली की तरफ, और वो जो पहेली है बड़ी सुंदर सी है, और इन पहेलियों की स्मृति दौर में हम चल रहे हैं, बड़ा

आनंद आ रहा है क्योंकि हम अपना कहीं ना कहीं बचपन या हम अपने वो दिन जी रहे हैं जो हमने आज की तकनीकी युग में कहीं छोड़ दिए हैं। तो चलिए हम अगली पहेली की तरफ बढ़ते हैं और हमने हमारी जो इबारत है उस इबारत में अगली पहेली लिखी है, जेब में रहता काम ना आता, जेब में रहता काम में आता, बाजार जाकर चीज दिलाता, सबको मेरी होती चाह है, बताओ मेरा नाम क्या है। और इसका उत्तर है पैसा या रुपया या धन। जी बिल्कुल, सबको चाहिए होता है, इसके अलावा इसके बिना कुछ काम होता नहीं है, लेकिन जब यही पैसा लालच बन जाता है तो इस लालच के कारण बहुत सारा नुकसान भी होता है। तो पैसा जो है वह एक सोच और समझ के साथ आना चाहिए और सोच और समझ के साथ संभालना भी चाहिए, है ना। चलिए मैं आपको अगला गीत सौंप रही हूं, आप बताइएगा कि आपको लालच आया था कभी पैसा देखकर? किसी उम्र में तो आया होगा, किसी के पर्स में रखा पैसा देखकर लगा होगा, काश इतना मेरे पास होता। अरे मैं अपना बता देती हूँ, मैं तो बचपन में सोचा करती थी कि काश कोई बड़ा रईस आदमी आए, वो हमसे कहे चलो हम तुम्हें इस शहर में ले चलते हैं, बड़ा बना देते हैं। बैठे बैठे बड़े बनने के ख्वाब सबके होते हैं, है ना, आपके भी होंगे, मेरे भी थे, पर बाद में सत्य का पता चला। चलते हैं अगले गीत की तरफ, बताइएगा ये गायक कलाकार कौन है।

हम सुन रहे थे पापा कहते हैं फिल्म का यह गीत, और हमने पूछा था कि इसके गायक कलाकार कौन है, तो आपने सही उत्तर दिया है, परंतु हम गीतकार जावेद अख्तर इसके हैं और राकेश रोशन ने इसे संगीतबद्ध किया है। और हमारे श्रोताओं ने जो उत्तर दिया वो बिल्कुल सही दिया कि कुमार सानू की इस आवाज़ को हम सुन रहे हैं। और हमने आपसे पूछा था कि आप बताइए कि आपको लालच किस चीज़ का है, तो हमारी श्रोता लिखती है, मुझे तो पति के पॉकेट से मिलने वाले पैसे का लालच आज भी है। जब भी उनके कपड़े धोती हूँ मेरी नज़र पॉकेट पर ही रहती है, कुछ सिक्के भी मिल जाए तो खुशी होती है, वो नोटों की गड्डी से भी नहीं मिलती। बिल्कुल सही है, और ये तो हमारा अधिकार में भी आता है ना जी। और एक और श्रोता ने लिखा है कि एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उसमें से एक ना गिरे। इसका उत्तर मुझे पता है, आपने उत्तर नहीं दिया था लेकिन मुझे पता है, आसमान। और मैं आपको अगली पहेली सुनाने से पहले एक पहेली दे रही हूं, मैं हरी मेरे बच्चे काले, मुझे छोड़ मेरे बच्चे, मैं हरी मेरे बच्चे काले है ना, और मुझे छोड़ मेरे बच्चे खाले, बताइएगा ये कौन है। मैं हरी हूं मेरे बच्चे काले हैं, मुझे छोड़ दे और मेरे बच्चों को खा ले, ये उत्तर है, इसका उत्तर आपको देना है। और इसके साथ ही अगली पहेली हम आपके बीच में पढ़ने वाले हैं, और अगली पहेली के साथ में जो अगला गीत है उस अगले गीत के गायक कलाकार का नाम भी आप बता दीजिएगा। हम आपके बीच में बस इस पहेली को पढ़ देते हैं, न खून का रिश्ता है न घर का नाम, फिर भी रहता हरदम साथ, हंसाए खिलाए दुख भी बांटे, बताओ कौन है इतना खास, और वो होता है दोस्त। चलिए इस दोस्ती के नाम ये गीत, बताइए गायक कलाकार कौन है।

हम सुन रहे थे दोस्ती फिल्म का यह गीत मजरूह सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, और आप सबने बिल्कुल सही पहचाना, मोहम्मद रफी की आवाज का मैं था यह गीत। और आपने बहुत सारे संदेश भेजे हैं, उन सब संदेशों को हम पढ़ देते हैं जल्दी से। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे, पांच भाई एक साथ घूसा मारता है भात भी खाता है, पांच उसके साथ हैं दोनों मिलकर करते हैं नमस्कार, बिल्कुल सही, और दोनों हाथ का पंजा इसका इन्होंने कहा है। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि ये जो कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए, ये इनकी भावना है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं जब भी लॉटरी वॉटरी की टिकट रखती है तो उनको लगता है कि विदेश यात्रा मिल जाए तो बड़ा मजा आएगा। देखिए लालच तो सबको होता है, पर ये लालच कोई थोड़ी सी भावनाएं होती हैं, उन भावनाओं को अपन देख सकते हैं। अब मैं अंतिम पहली की तरफ जा रही हूँ। सागर जिसके चरण पखारे, हिमालय जिसका ताज कहाए, अनेक भाषाएं अनेक रंग, बताओ वह देश कौन सा कहलाए। और हमारे देश का नाम है भारत, भारत, भारत। यह अद्भुत देश जो बहुत विशाल है, बहुत सुंदर है, और जिसका ताज, जिसके सर पर मुकुट है हिमालय जैसा, और जिसके चरण प्रतिदिन पखारे जाते हैं समंदर से, ऐसा देश माँ के अलावा और क्या हो सकता है। ये गीत मैं आपको सौंपती हूँ, और बताइएगा कि इस गीत के गायक कलाकार कौन है, और पहेली वाला कार्यक्रम आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, बड़ा मजा आया होगा मुझे ऐसा लगता है।

एक समय था जब खुशियाँ बहुत छोटी छोटी चीजों में मिल जाया करती थीं। फुर्सत के क्षणों में परिवार के साथ बैठकर बोलना, बतियाना, खाना पीना, हंसी ठिठोली, बातें करना, छत पर देर तक बातें करना, चांद सितारों को निहारना, त्योहारों की हलचल, इन सब में हमारे चेहरे पर खुशी और मुस्कान खिली रहती थी। साधन उस समय सीमित थे, लेकिन प्रेम और अपनेपन की मिठास घुली रहती थी। आज हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम खुश नहीं हैं। हमारे मन में खुशी कम होती जा रही है, लेकिन खुश रहना कितना जरूरी है हमारे स्वास्थ्य के लिए, आज हमें ये सोचने की फुर्सत नहीं है। जब हम खुश होते हैं तो मन में जैसे तरंगे आती हैं, मन में ऊर्जा पैदा होती है। जब हम खुश होते हैं तो हमारा मन उड़ जाता है मुक्ताकाश की ओर, और पांव जमीन पर नहीं पड़ते।

आज पहले जैसे खुश न रहने का कारण ये है कि जीवन की रफ्तार, जीवन की गति बहुत तेज हो गई है। हर कोई व्यस्त है, सबके पास मोबाइल है, सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया एक दोधारी तलवार की तरह हमें बहुत सारी उपलब्धियां तो देता है, तो दूसरी ओर हमारे अपनों से हमें दूर करता जा रहा है। एक दूसरे के लिए हमारे पास समय कम होते जा रहे हैं, साथ रहते हुए भी मन की दूरी बढ़ती जा रही है। अपेक्षाओं और आकांक्षाओं की आगे बढ़ने की रेस मन को थकाने लगी हैं। रिश्तों में आत्मीयता और दिलों की चमक, मन की मिठास धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी हैं।

खुशी हमारे भीतर ही विद्यमान है, हमसे अलग नहीं है। जरूरत इस बात की है कि हम घर, बाहर, समाज और अपने कार्यस्थल पर अपनी मुस्कान और अपनापन जरूर बांटें, अपनी संवेदनाएं बाहर निकालें, सबका आदर और सम्मान करें। अपनी संवेदनाओं को कभी कुंठित नहीं होने देना चाहिए। किसी की बात ध्यान से सुन लेना, किसी के सुख दुख को बांट लेना, सहयोग के दो शब्द कह देना, मीठे बोल बोल देना, ये सभी चीजें जीवन को जीवंत बनाए रखता है। तब हमारे स्वयं के चेहरे पर भी सुकून और खुशी लौट आती है, और जब हम खुश होते हैं तब पूरा ब्रह्मांड खुश होता है। पेड़ पौधे खुशी से झूमते नजर आते हैं। खुश रहने के नियम बताए गए हैं, सकारात्मक सोच, स्वास्थ्य का ध्यान, दूसरों से तुलना न करना, वर्तमान में जीना, माफ करना और संतोष करना। इन नियमों का पालन मानसिक शांति जीवन में चेतना लाती है। जीवन खुशियों से भर जाता है और जिंदगी को पूरी तरह से प्यार कर पाता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। कर्नाटक, केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में लू का अनुमान। और पुरुष क्रिकेट में दांबुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने पिछले 12 वर्षों में सेवा भावना के माध्यम से शासन को नया रूप दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने आम नागरिकों के लिए पासपोर्ट जारी करने और दस्तावेजों के सत्यापन को सुगम बनाया है और नागरिकों को पूरा सहयोग प्रदान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान के सीमा पार सैन्य अभियानों की निंदा की और अफगानिस्तान में हवाई हमलों के कारण हुई मौतों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है।
1: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना

0: पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक 13 जून को होगी। सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण आज सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इससे कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रिमोट बटन दबाकर लद्दाख के मिनमर्ग में जोजिला सुरंग के पूर्वी प्रवेश द्वार के पास विस्फोट किया और इसे कश्मीर तथा लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करने का एक ऐतिहासिक क्षण बताया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर नितिन गडकरी ने कहा कि ये सुरंग श्रीनगर और लेह के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर निर्मित जोजिला सुरंग पूर्ण होने पर एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बन जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान ने देश भर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त, सुरक्षित और बेहतर प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, जोखिमों की समय पर पहचान और आवश्यक इलाज की सुविधा दी जाती है, ताकि माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। इस योजना के तहत अब तक 7,50,00,000 से अधिक गर्भवती महिलाएं लाभ उठा चुकी हैं। सरकार के लगातार प्रयासों के कारण भारत में मातृ मृत्यु दर में काफी कमी आई है। 2014-16 में जहां हर 1,00,000 प्रसव पर 130 महिलाओं की मृत्यु होती थी, वह 2022-24 में घटकर 87 रह गई है। इस योजना के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ₹75 का एक स्मारक सिक्का और ₹5 का एक विशेष डाक टिकट भी जारी किए जाएंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। सरकारी ई मार्केटप्लेस जिम ने सार्वजनिक खरीद को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में जिम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी, समावेशन और नागरिक केंद्रित सेवा वितरण के बल पर भारत ने ये उल्लेखनीय वृद्धि की है। श्री कुमार ने कहा कि जिम पर भाग लेने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों की संख्या 2016-17 में लगभग 2300 से बढ़कर आज लगभग 12,00,000 हो गई है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन तुती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पश्चिम एशिया में ईरान और इसराइल के बीच तनाव कम हुआ है, प्रत्यक्ष झड़पों में भी कमी आई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: पश्चिम एशिया में पिछले कुछ दिनों से जारी ईरान इसराइल सैन्य तनाव के बाद फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील लेकिन अपेक्षाकृत शांत बनी है। तनाव की शुरुआत बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों इसराइल की कार्रवाई से हुई। इसके बाद ईरान की ओर से उत्तरी इसराइल की दिशा में मिसाइलें दागी गईं। जवाब में इसराइल ने ईरान समर्थित ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं और गहरा गईं। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान

0: से जुड़ा मोर्चा फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं ईरान का कहना है कि क्षेत्र में स्थायी शांति और तनाव में तभी संभव है जब गाजा और लेबनान में इसराइली सैन्य अभियान समाप्त किए जाएंगे। इस बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि स्थिति को स्थिर रखने और व्यापक समझौते की दिशा में चल रही वार्ताएं निर्णायक दौर में पहुँच रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति

0: रही हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि हालिया सीमा पार मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता अभी भी आगे बढ़ रही है।
2: हम एक मजबूत और प्रभावी समझौते के बेहद करीब हैं। यदि बमबारी की जाती है तो बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है और ऐसा कौन चाहेगा। हमारा प्रयास है कि एक ऐसा औपचारिक समझौता हो जो सैन्य कार्रवाई से भी अधिक प्रभावी साबित हो। अब तक यह देखा गया है कि नाकाबंदी का असर बमबारी की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली रहा है, इसलिए हम शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता दे रहे हैं।
1: कोलंबो उच्च न्यायालय ने श्रीलंका के पूर्व उपमंत्री सरना गुणवर्धना को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराया है। ये आरोप 2006 में विकास लॉटरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान किराए पर वाहन खरीदने से संबंधित है। ये फैसला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद मिहाइल ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने वाले आयोग द्वारा दायर एक मामले में सुनाया है। फिलीपींस में कल दक्षिणी क्षेत्र के तट के पास आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या 37 हो गई है। भूकंप में 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं जबकि 4 लोग लापता हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। भूकंप के कारण 20,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.4% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 267 अंक बढ़कर 73,791 और निफ्टी 86 अंक बढ़कर 23,209 पर था। पूरा देश आज महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ऐसा नाम जिसने जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। हम बात कर रहे हैं धरती आबा यानी भगवान बिरसा मुंडा की। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों का पुरजोर विरोध किया बल्कि समाज में फैल रहे धर्मांतरण और लाल फीताशाही के खिलाफ भी बिगुल फूंका। आज सुबह से ही रांची के कोकर समाधि स्थल और बिरसा चौक पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य के तमाम मंत्रियों और गणमान्य नेताओं ने यहां पहुंचकर भगवान बिरसा के चरणों में माल्यार्पण किया है। रांची के अलावा उनके जन्म स्थान खूंटी के उलिहातू सहित राज्य भर के जनजातीय बहुल इलाकों में विशेष सांस्कृतिक और जागरूकता सभाएं आयोजित की जा रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ स्थानों पर भी इसी तरह का मौसम बना रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने की आशंका है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए की टीम ने 278 रनों का लक्ष्य दिया है। ये मैच श्रीलंका के रंगिरी दाम्बूला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 277 रन बनाए हैं। भारत के लिए ऋतुराज गायकवाड़ के शतक और तिलक वर्मा के 150 रनों की साझेदारी ने भारत को महत्वपूर्ण भूमिका दिलाने की मदद की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10

0: साल पूरे राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

0: लगें।
1: हम सुन रहे थे बड़ा आदमी फिल्म से यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में प्रेम धवन के बोल और चित्रगुप्त के संगीत के साथ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं डाक फिल्म से यह गीत। लता मंगेशकर की आवाज है, शैलेंद्र के बोल है, शंकर जयकिशन का है संगीत।

0: इलाहाबाद से पहुँचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, सदाबहार नगमे कार्यक्रम हम सुन रहे हैं।

0: झूम में हम जब चले तो।
1: हम हिंदुस्तानी फिल्म से हम सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में साहिर लुधियानवी की बोलों से सजे हुए उषा खन्ना के संगीत के साथ संगीतबद्ध इस गीत को। आइए सुनते हैं ये संदेश।
2: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
3: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
2: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
4: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
2: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
5: तुम्हारी याद सताती है
2: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। मॉडर्न गर्ल इस फिल्म का यह गीत सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाजों में गुलशन बावरा के बोल और रवि के संगीत के साथ आइए सुनते हैं।

जब प्यार किसी से होता है, फिल्म का यह गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अगला गीत, जो कि है घराना फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज है, शकील बदायूनी के बोल और रवि का है संगीत।

हम सुन रहे थे भाभी की चूड़ियां फिल्म का यह गीत आशा भोसले, मुकेश की आवाज में, महेंद्र नरेंद्र शर्मा के बोल और सुधीर फड़के ने इसे संगीतबद्ध किया। इसी के साथ कार्यक्रम सदाबहार नगमे समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सुमन जी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है सखी सहेली।

0: इलाहाबाद से पहुँचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक मैं देख लूं,
0: क्या
1: जैसे
0: बात है।
1: मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली हमारी बहुत सारी सखियों सहेलियों और अन्य सभी श्रोताओं को चंचल वर्मा का नमस्कार।
2: और मेरा भी अपने सभी जो भी सखियां हैं, जो भी सखा हैं, सभी सभी को, सभी श्रोताओं को और चंचल जी आपको नमस्कार।
1: आरती नमस्कार। हमारे सभी सुनने वाले बड़ी बेताबी से इंतजार करते हैं अपने पसंदीदा कार्यक्रम का। और बहुत सारे श्रोता हैं जो फेसबुक पेज से जुड़े हैं, लेकिन कुछ श्रोता हैं जो नहीं जुड़े हैं
2: जी।
1: तो आज किन विषयों पर हम बात करेंगे ये बता देते हैं। तो गर्मियों का समय है और पानी का बड़ा महत्व होता है। बहुत सारे लोग अनायास ही
2: बिल्कुल
1: बहुत सारा पानी खर्च कर देते हैं, तो किस तरह से इस पानी की बचत बहुत महत्वपूर्ण है, करनी चाहिए, क्यों जरूरी है, इन सब बातों पर हम
2: बिल्कुल
1: चर्चा
2: और
1: करेंगे।
2: मौसम कोई भी हो, पानी तो हमें चाहिए ही चाहिए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। और पानी के बारे में आप हमें भी बताइए, आप किस तरीके से पानी की बचत करते हैं आप खुद
1: जी
2: और लोगों को किस तरह से जागरूक करते हैं इस चीज के लिए।
1: जी
2: और साथ ही आज हम बात करेंगे सखी विशेष के अंतर्गत जीनिया पर्सी मास्टर जी की, जो कि हैं संस्थापक हैं जीनिया हॉस्पिटैलिटी सॉल्यूशंस की। और साथ ही हम हल्की फुल्की बातों में करेंगे बहाना ऐसा कौन सा है जो अक्सर काम कर जाता है।
1: बिल्कुल, ये बात तो बड़ी कहते ना कि एक रोचक भी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं अपने आप को बचाने के लिए या सुरक्षित करने के लिए कोई ना कोई बहाना उनके पास में तैयार होता है।
2: और बहुत सारे लोग बहाने तो बनाते हैं लेकिन पकड़े जाते हैं कि नहीं
1: हाँ,
2: ये झूठ बोल रहे, बहाना बना रहा है। लेकिन आप कैसे, कौन सा बहाना बनाते हैं जो कभी पकड़ा नहीं जाता है,
1: और कौन सा ऐसा बहाना है जो अक्सर काम आता है आपके, आपको सुरक्षित रखने के लिए।
2: बिल्कुल,
1: बहाने क्यों बनाते हैं, किस तरह बनाते हैं, इन सब चीजों के बारे में ढेर सारी बातें होंगी। और मुहावरे की आज हम एक बात करते हैं, तो आज हमने जो मुहावरा चुना है वो है आम के आम
2: गुठलियों के दाम,
1: यानी
2: वैसे भी आम का मौसम है ना, आम खाए जा रहे हैं।
1: हाँ, तो दोहरा जो फायदा है उसकी बात होगी, लेकिन भाई अब आम के आम गुठलियों के दाम तो जानकारी होगी, मनोरंजन होगा और गीत भी होंगे।
2: बिल्कुल, और चंचल जी मैं ये कहूंगी अपने जो भी श्रोताएं सखियां हैं, जो भी सखा हैं, कि आप उसमें आम के आम जो गुठलियों के दाम मुहावरा है ना, खाली इसका अर्थ ही मत लिख के भेजिए, क्योंकि अर्थ तो चलिए हमने समझा, आप थोड़ा सा उसके बारे में और रोचक बना के भेजिए उसको।
1: बिल्कुल, सुनने से ही पता लगता है कि दोहरे फायदे की बात हो रही है, तो उसका अर्थ तो सभी जानते हैं, लेकिन आपके जीवन में दोहरा फायदा किस तरह हुआ, मतलब आम के आम और गुठलियों के दाम,
2: और आपने किसी को ऐसा दोहरा फायदा पहुंचाया हो तो वो भी बताइए।
1: तो भाई कार्यक्रम में कैसे होते हैं आम के आम गुठलियों के दाम,
2: गीत सुनने से
1: जी।

0: लेकिन अब हमें
1: करते नहीं।
0: संदेश मिलते हैं हमारे
1: बिल्कुल
0: सुनने वालों के।
1: और अभी हम जो सेगमेंट सबसे पहले लेने वाले हैं वो है हमारा सखी विशेष,
0: जी
1: यानी अपने सखी विशेष के बारे में कुछ बातें बता
0: हम
1: देते
0: बात
1: हैं।
0: करेंगे जीनिया परसी मास्टर के बारे में।
1: जी, तो जीनिया परसी मास्टर भारत की एक जानी मानी महिला उद्यमी हैं, जो बिजनेस और फाइनेंशियल रणनीतिकार हैं। और जीनिया एक व्यवसायिक परिवार से आती हैं, उनके परिवार का लॉजिस्टिक्स और बिजनेस क्षेत्र में लंबे समय से संबंध रहा है।
0: जीनिया परसी ने स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध गिलियोन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन से हॉस्पिटैलिटी, फाइनेंस और रेवेन्यू मैनेजमेंट में पढ़ाई की। इसके अलावा उन्होंने लंदन में फिट्जी विलियम इंस्टीट्यूट से इवेंट मैनेजमेंट में डिप्लोमा भी लिया हुआ
1: जी,
0: है।
1: और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने दुबई और अन्य स्थानों पर होटल इंडस्ट्री में काम किया। उन्होंने प्री ओपनिंग टीमों में भी काम किया, जिससे उन्हें हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का व्यवहारिक अनुभव मिला। और साल 2013 में उन्होंने अपना फ्रीलांस इवेंट से शुरुआत की।
0: और इसे पहले जीनिया इवेंट्स कहा जाता था। बाद में 1 अगस्त 2014 को उन्होंने अपनी कंपनी जीनिया हॉस्पिटैलिटी सॉल्यूशंस को आधिकारिक रूप में स्थापित किया। और ये कंपनी इवेंट मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी कंसल्टिंग और रणनीति साझेदारियों के क्षेत्र में कार्य करती है।
1: जी, उन्हें विशेष रूप से लग्जरी हॉस्पिटैलिटी, कॉरपोरेट गवर्नेंस और इवेंट मैनेजमेंट के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कामों के लिए जाना जाता है। उनकी कंपनी मुख्यतः वेडिंग प्लानिंग, कॉरपोरेट इवेंट्स, हॉस्पिटैलिटी कंसल्टिंग और डेस्टिनेशन इवेंट्स, लग्जरी गेस्ट जो मैनेजमेंट होता है वो सेवाएं प्रदान करती है।
0: और उनका काम वी इनवाइट यू यू ओन इवेंट इस विचारधारा पर आधारित है, यानी ग्राहक अपने कार्यक्रम का पूरी तरह से आनंद लें और बाकी व्यवस्था सब कंपनी संभाल लेगी। हॉस्पिटैलिटी के साथ साथ वो कॉरपोरेट गवर्नेंस में भी सक्रिय हैं।
1: जी, वो कुछ बड़ी और प्रसिद्ध कंपनियों में निदेशक के रूप में भी जुड़ी हुई हैं। और एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कॉमेडी क्लब और लाइव इवेंट्स में काम करते हुए उन्हें अपने व्यवसाय की प्रेरणा मिली थी। और इसके बाद उन्होंने स्वयं का ब्रांड भी शुरू किया। जीनिया सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय रही हैं और पर्यावरण तथा CSR यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उसमें गतिविधियों में वो भागीदारी करती रही हैं।
0: ये रही बहुत अच्छी जानकारी उनके बारे में। और अब सुनते हैं ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं लेकर कार्यक्रम सखी सहेली। और अब जो बातें होंगी वो होंगी पानी के बारे में, पानी की बचत के बारे में।
1: बिल्कुल पानी। और देखो पानी का जो कहते हैं ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा।
0: पानी का कोई रंग नहीं है फिर भी हर एक की जरूरत है। कहते हैं कि
1: बिल्कुल
0: जिंदगी अगर है तो पानी सबसे जरूरी चीज है हमारे
1: बिल्कुल। और
0: लिए।
1: जितनी भी सोचिए सभ्यताएं बसी, जितनी भी
0: जी
1: हमने प्रगति करी, वो सब कहाँ, सिर्फ नदियों के किनारे बसी।
0: जी
1: जिससे कि हमारे देखो जीवन के लिए जरूरी क्या चीज है, पानी। और अभी कुछ रिसेंटली हम लोगों ने अभी कुछ खबरें भी सुनी कि किस तरह से पानी नहीं मिलने की वजह से 50 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो
0: बिल्कुल
1: ये सोचिए, ये हमें जागरूकता का विषय भी है
0: जी
1: कि अभी से हमें चेत जाना चाहिए कि अगर पानी नहीं होगा तो हमारे पास कल भी नहीं होगा।
0: बिल्कुल सही बात है। जल है तो ही कल है। जिस तरह हवा बहुत जरूरी है,
1: जी
0: ऑक्सीजन जरूरी है, वैसे ही पानी जरूरी है। और बहुत सारी नदियों में पानी का जल स्तर दिन ब दिन कम होता जा रहा है। कई बार हम पानी को प्रदूषित कर देते हैं।
1: जी
0: जिन जो हमारे पानी के स्रोत हैं उन्हीं को हम गंदा कर देते हैं। वहां पर जो कल कारखाने हैं उनसे पानी गंदा हो जाता है। या फिर हम जो प्लास्टिक प्रदूषण करते हैं, हम
1: बिल्कुल
0: बहुत सारी जगहों पर जब घूमने जाते हैं, झील नदी समंदरी किनारों पर हमें जाकर बैठना तो बड़ा अच्छा
1: बहुत
0: लगता
1: बहुत
0: है,
1: अच्छा लगता है।
0: लेकिन वहां पर हम बहुत सारी गंदगी छोड़कर आते हैं।
1: बिल्कुल
0: लेकिन बात अभी मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि पानी जो हमारी सबसे बड़ी जरूरत है
1: बिल्कुल
0: उसे हम किस तरह से यूं बेकार की चीज समझकर वेस्ट करते रहते हैं, और इसका खामियाजा हमें और हमारी आने वाली पीढ़ी को भुगतना
1: बिल्कुल।
0: पड़ेगा।
1: और लोग भुगत भी रहे हैं। सोचिए एक जगह हमें अभी यहाँ पे अगर सहूलियत से पानी मिल रहा है, बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे पानी के लिए लोग कितनी कितनी दूर तक चल के जाते हैं और मतलब दो दो बूंद पानी के लिए तरसते हैं कि वहां पे अगर अगर उनको पानी एक घड़ा मिल जाए तो बहुत बड़ी बात समझ लेते हैं उस चीज को।
0: इसीलिए देखो हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं कि पानी की बचत करना एक अच्छी बात है, फिर वो पैसा हो या पानी, इसके बिना सारी दुनिया है फानी। पृथ्वी पर बसे हर एक जीव के लिए पानी प्राथमिक जरूरत है। पृथ्वी पर पीने योग्य पानी का प्रतिशत बहुत कम है और यही सबसे बड़ा गम है। इन्होंने जो बातें लिखी है ना उसे इस तरह तुकबंदी में जोड़कर बड़े अच्छे ढंग से लिखा है। आगे देखिए क्या लिखते हैं ये। इसे बचाने के लिए हम भी अपना योगदान दे सकते हैं कि जल के बिना जल बिन जरूरी उपयोग बिना जरूरी उपयोग के इसे वेस्ट ना करें। पानी के बहते नल को बंद करना जरूरी है। वर्षा का जल का संचयन करना चाहिए जो साल भर तक शुद्ध रह सकता है। यदि
1: बिल्कुल
0: हम समय पर सतर्क नहीं हुए तो जल

0: दिन मछली जैसे तड़पती है, वैसे ही कभी हमें भी तड़पना होगा।
1: बिल्कुल, और कह सकते हैं कि जल की हर एक बूंद में जीवन का विस्तार है। सूखी धरती की प्रार्थना का ये मधुर उपहार है। मत छीनो इसकी सांसें, मत इसका मान हरो, जल बचेगा तो ही जग में मानवता का श्रृंगार है।
0: बिल्कुल सही है आरती, क्योंकि जल ही जीवन है, ये केवल एक कहावत नहीं बल्कि बहुत बड़ी सच्चाई है। पृथ्वी पर जीवन का आधार जो है वो कह सकते हैं कि पानी है।
1: जी
0: पीने के लिए, खेती के लिए, बड़े बड़े जो उद्योग चलते हैं उनके लिए, स्वच्छता रखने के लिए, भाई अगर हमें घर को, अपने आप को स्वच्छ रखना है तो उसके लिए भी पानी जरूरी है, और
1: बिल्कुल
0: पर्यावरण संतुलन के लिए भी पानी जरूरी है। लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या, जल प्रदूषण और पानी का जो दोहन हो रहा है सबसे ज्यादा, उसके कारण जल का संकट दिनों दिन बढ़ रहा है।
1: बिल्कुल। और चंचल जी, सबसे बड़ी बात यह है ना, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर पानी है,
0: जी
1: ठीक है ना। इसी वजह से यहाँ पे जीवन भी पनपा, क्योंकि कहते हैं ना महासागरों में सबसे पहले जीवन पनपा था। तो ये सोची कि अगर हम यहाँ पे अगर उस जल को ही खत्म कर देंगे तो फिर हमारा अस्तित्व ही कहाँ बचेगा। तो हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी तरीके से पानी को जरा सा भी ना बर्बाद करें। जैसे छोटे बच्चे, उनको अकल नहीं है, तो अगर उस चीज को वो कर रहे हैं तो उनको समझाइए, सिखाइए।
0: जी
1: अभी से हम सिखाएंगे तो ही वो आगे जाके समझेंगे।
0: इसी पर हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि पानी की बचत कैसे ना करें, कपड़े बर्तनों को धोया पानी कप पेड़ों में डालकर नल खोलकर कोई काम ना करें, मग्गे बाल्टी पानी का इस्तेमाल करें जिससे पानी की मात्रा कम खर्च होगी, और इस समय गर्मी के मौसम में पंछी जानवरों के लिए भी पानी जरूर से रखें, पेड़ पौधे लगाएं, आसपास गड्ढे करें जिससे उनमें पानी का संचय हो सके, और छतरी रखकर टंकी को ओवरलोड किया हुआ पानी सीधा आप इकट्ठा कर सकते हैं, इस तरह निकासी करे हुए पानी को गड्ढों या पेड़ पौधों में छोड़ सकते हैं और पानी की बचत हम कर सकते
1: बहुत
0: हैं।
1: जरूरी है। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि आंखों का पानी और धरा का पानी सूखना बड़ा ही दुखदायी होता है, जो अंदर तक दर्द के रेगिस्तान को जन्म देता है, और जहां फिर प्रेम का अंकुर पनपना मुश्किल हो जाता है, जीवन खतरे में आ जाता है। पिछले कुछ महीनों से लोगों को पानी के लिए भटकते देखते हुए मन में टीस सी उठती है, परंतु एक बार बरसात हो गई तो लोग भूल जाते हैं और फिर वही पानी का अपव्यय शुरू हो जाता है, जो कि बहुत चिंता का विषय है।
0: सही बात है, बारिश का जो मौसम है वो सिर्फ 3 महीने या ज्यादा से ज्यादा 4 महीने रहता है,
1: बिल्कुल
0: इसके बाद के जो 8 महीने हैं उसमें पानी नहीं बरसता, इसी पानी से हमें बाकी के 8 महीने निकालने हैं, इसीलिए बचत बहुत जरूरी है। लेकिन इस समय कार्यक्रम में गीत सुनना भी जरूरी है।
1: जी।

0: तो अब हमारे बहुत सारे
1: हम्म,
0: श्रोताओं ने, जिन्होंने अपना संदेश हमें लिखकर भेजा है, वो बताते हैं। पानी की बचत के महत्व को लेकर हमारे श्रोता ने लिखा है कि पानी की बचत करके हम आने वाली पीढ़ियों के लिए

0: तो अब हमारे बहुत सारे
1: हम्म,
0: श्रोताओं ने, जिन्होंने अपना संदेश हमें लिखकर भेजा है, वो बताते हैं। पानी की बचत के महत्व को लेकर हमारे श्रोता ने लिखा है कि पानी की बचत करके हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इस अमूल्य संसाधन को सुरक्षित रख सकते हैं। हमें नलों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, वर्षा जल का संग्रह करना चाहिए और पानी का उपयोग सोच समझ कर करना चाहिए। यदि हम आज पानी बचाएंगे तो भविष्य में जल संकट से बच सकेंगे। इसीलिए हमें जल है तो कल है के संदेश को अपनाकर पानी की एक एक बूंद की रक्षा करनी चाहिए।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि पानी की बचत का हमारे तो बहुत ज्यादा है, हम कई तरीकों से पानी को बचा सकते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं कि घर में नल को खुला छोड़ देते हैं और ध्यान नहीं देते हैं, मोटर लगाया है तो मोटर बंद नहीं करते हैं, लेकिन ये चीज सही नहीं है। इस तरीके से हम पानी की बचत नहीं करेंगे तो कल को ये जल जो हमारा जीवन है, ये हमारे आने वाले लोगों को, पीढ़ियों को कैसे मिलेगा। तो पानी की बर्बादी को रोकने के लिए हमें कई तरीके से अपना सकते हैं। नल को खुला ना छोड़ें। अगर किसी के घर में टंकी है तो कुछ लोग क्या करते हैं कि टंकी बंद करना भूल जाते हैं, तो उसको आप बंद करें सही समय पे, जैसे करके टाइमर लगाइए उसमें। और अगर किसी कोई इस तरीके के, मतलब जो उन्होंने लिखी है, इस तरीके की चीजों का आप पालन करेंगे तो आप पानी बचा सकते हैं। घर में किस तरह से बचा सकते हैं ये इन्होंने बताया। और साथ ही एक और श्रोता है जो कहते हैं कि पानी को बर्बाद, 70 जो पृथ्वी का 70% पानी है, वो जो 70% पानी है, और मतलब पानी से ढका होने के बाद भी पीने लायक पानी जो है वो बहुत ही कम है। तो आप वही, वो भी बता रहे हैं कि नलों को आप खुला मत छोड़ें, मोटर को बंद करें, और अगर कोई नल टिप टिप करता रहता है तो उसको भी ठीक कराइए। उसको ऐसे ही नहीं कि आपने इसे छोड़ दिया, अगर कहीं आपको बाहर
0: जी,
1: भी ऐसा दिखाई दे रहा है तो अगर आप खुद कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो उसको आप ठीक करने की कोशिश
0: बहुत
1: करिए।
0: सारी महिलाओं की आदत होती है, जब वो कपड़े धोती हैं या बर्तन धोती हैं तो नल चालू है, इधर कपड़ों पे वो साबुन लगा रही हैं या बर्तन को साबुन लगा रही हैं और पानी लगातार बह रहा है, तो उतनी देर के लिए जब आप साबुन का इस्तेमाल कर रही हैं, नल का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, पानी वेस्ट हो रहा है, तो आप नल को बंद कर दीजिए। इसी तरह से कुछ पुरुषों की आदत भी होती है, जब वो सुबह सुबह शेव करते हैं तो इधर नल
1: हाँ
0: चालू है, यहाँ
1: चल रहा है।
0: उधर काम चल रहा है उनका,
1: बिल्कुल
0: तो उतनी देर के लिए जब तक आप शेव कर रहे हैं, आपको अपना रेजर नहीं धोना है तो आप उसको बंद कर सकते हैं ना नल
1: बिल्कुल।
0: को। इसी तरह से महिला, पुरुष, बच्चे, ये
1: और साथ ही
0: सबकी
1: हम ये
0: जिम्मेदारी
1: अगर
0: है।
1: छोटी छोटी चीजें जैसे कि पानी पीते हैं तो हम पानी, थोड़ा सा पानी पिए, 2 घूंट पानी पिए और पानी बाकी
0: हाँ,
1: फेंक दिया,
0: आधा
1: क्योंकि
0: ग्लास
1: वो
0: पानी पीते
1: बिल्कुल,
0: हैं और आधा
1: क्योंकि
0: फेंक देते
1: पीने लायक
0: हैं।
1: पानी होता है, कितना कीमती पानी है, उसको हम फेंक देते हैं यूं ही।
0: कई बार जब हम किसी समारोह में जाते हैं, किसी आयोजन में, उत्सव में जाते हैं, तो आजकल पानी की बोतल देने का सबसे ज्यादा चलन है, तो वहां भी आधी बोतल पी के आधी बोतल को हम फेंक देते हैं। तो ऐसा ना करें, आप बची हुई आधी बोतल पानी को अपने पास ही रखिए, ताकि दोबारा जरूरत पड़ने पर एक नई बोतल का इस्तेमाल करने की बजाय आप उसी बोतल के पानी का फिर से इस्तेमाल कर सकें। और इसी तरह से एक अन्य संदेश में हमारे श्रोता लिखते हैं कि पृथ्वी पर अगर पानी नहीं होता तो ये अन्य ग्रहों की तरह सूखा और वीरान होता। पानी की बचत आज समय की सबसे बड़ी मांग है। पृथ्वी पर पीने योग्य पानी बहुत सीमित है और बढ़ती आबादी के साथ इसका संकट भी गहराता जा रहा है। पानी की एक एक बूंद बचाना पर्यावरण और भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यकता है, जबकि इसकी बर्बादी गंभीर परिणाम ला सकती है। घर में किसी भी नल या पानी से पाइप टपक रहा है तो उसे तुरंत ठीक कराएं। ये बात हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने
1: बिल्कुल
0: लिखकर भेजी है, तो अगर सभी जागरूक हैं तो जो जागरूक नहीं हैं उन तक ये बात जरूर पहुंचनी चाहिए। आगे इन्होंने लिखा है कि आजकल सभी घरों में वाटर प्यूरिफायर लगे हुए होते हैं और सबसे अधिक पानी की बर्बादी यहाँ होती है, तो कुछ लोग इसे संग्रहित करके पौधों में डालते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है।
1: बिल्कुल। और अगर आप कपड़े धो रहे हैं या इस तरीके का अगर पानी आपका बच रहा है, या आपने सब्जियां धोई, तो वो पानी जो आप पेड़ पौधों में डाल सकते हैं, अलग से आपको वहां पे पाइप लगा के डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो बहुत ज्यादा पानी की बर्बादी होती है पाइप लगा के जब हम पानी डालते हैं।
0: इसी तरह से बहुत से लोग एसी लगाकर जब घर में रहते हैं तो उसके पाइप से जो पानी रिस कर धीरे गिरते रहता है और बाल्टी में जमा हो जाता है, तो उसको भी आप पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं, कई बार छत या आंगन धोने में इस्तेमाल कर
1: बिल्कुल।
0: सकते हैं।
1: तो इस तरह की आप छोटी छोटी चीजें भी करेंगे ना तो बहुत सारा पानी बचेगा, और बहुत जरूरी है अपने जीवन को बचाने के लिए, क्योंकि अब अगली जो युद्ध होगा वो पानी के लिए होगा, है
0: क्या
1: ना। तो
0: बात है,
1: इसलिए हम उस युद्ध को रोक सकते हैं होने से।
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल।
1: उसके लिए हमें, क्योंकि अब देखिए खरीद के हमें पानी पीना पड़ता है, अगर हमें साफ पानी चाहिए तो जरूरी है पानी की बचत करनी।
0: तो बातें और भी बहुत सारी करनी है, लेकिन इस समय घड़ी की सुई इशारा कर रही है कि लेते हैं
1: अंतराल
0: छोटा सा अंतराल।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती देश की सुरीली धड़कन। इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। मैं हूं आपके साथ चंचल वर्मा
1: और मैं हूं आरती श्रीवास्तव।
0: और हम बात कर रहे थे पानी की बचत के बारे में। तो बहुत अच्छे अच्छे संदेश हमें मिल रहे हैं श्रोताओं से। एक श्रोता ने लिखा है कि सभी इंसानों, जानवरों और पौधों के लिए पानी अत्यंत आवश्यक है। स्वच्छ जल की उपलब्धता से बीमारियों को भी रोका जा सकता है।
1: बिल्कुल।
0: पानी की कम खपत से प्राकृतिक स्रोतों जैसे नदियों, झीलों पर दबाव घटता है, जिससे जलीय जीवों और जैव विविधता का संरक्षण होता है। जनसंख्या और पानी की मांग तेजी से बढ़ रही है। समझदारी से पानी का इस्तेमाल करने से पीढ़ियों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है।
1: बिल्कुल। और साथ ही हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे हम जब नहाने नहाते हैं तो ढेर सारा वो शॉवर चला के नहाने की आदत होती है ना, तो
0: जी
1: बहुत सारा पानी बर्बाद होता है। अब तो उससे बाल्टी से नहाइए, मग्गे से नहाइए, वो ज़्यादा अच्छा है। बल्कि जो इस तरीके से पानी की जो वेस्टेज है, जो बर्बादी है, वो भी रुकेगी। और साथ ही छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए, जो वर्षा का जो जल होता है उसको भी आप इकट्ठा करके रख सकते हैं, जिस तरह से वो बना के बताया गया, जैसे हमारे श्रोताओं ने भी बताया। इस तरीके से आप पानी की बचत ज़रूर करिए।
0: और जैसे कहते हैं ना कि जो चीज हमें फ्री में मिलती है, मुफ्त में मिलती है, कई बार उसकी कदर नहीं
1: कदर
0: होती।
1: नहीं करते हैं।
0: जिस तरह से हवा हमें मिल रही है, जो जीवनदायिनी ऑक्सीजन हमें जहां से मिलती है, हम उसकी कदर नहीं करते।
1: बिल्कुल।
0: पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, हम उसकी कदर नहीं करते। पेड़ों का कटाव बहुत तेजी से हो रहा है। इसी तरह से जब
1: इसी
0: वर्षा का
1: वजह
0: जल
1: से
0: हमें
1: बिल्कुल।
0: कोई बिना कीमत चुकाए वो वर्षा जल हमें मिलता है, हम उसका संचय करते नहीं और बाद में वही पानी हमें खरीद कर लेना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे देश हैं दुनिया भर में जहां जल संकट अति का बहुत ही ज्यादा है। वहां
1: बिल्कुल
0: चाय की कीमत से ज्यादा पानी की कीमत होती है। ऐसा हमारे श्रोता भी लिखकर बता रहे हैं कि
1: बिल्कुल।
0: चाय या अन्य चीजें वहां सस्ती मिल सकती हैं, लेकिन पानी
1: पानी
0: वहां पर
1: महंगा होता है
0: बहुत ज्यादा कीमत देकर खरीद कर वो लोग
1: बिल्कुल।
0: लेते हैं।
1: और जब से मैं बताऊं कि मैंने तो ये चीज खबर सुनी, तो सच में अजीब सा ही लगा। अब जब भी पानी का इस्तेमाल करते हैं तो खुद ही एकदम से सचेत हो जाती है, बस सोच के कि सोचो उस समय उन लोगों को सिर्फ एक दो बूंद पानी मिल जाती तो उनकी जान बच जाती। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है, पानी का क्या महत्व है। जब तक हमारे पास बहुत पानी आ रहा है, हम पानी पी रहे हैं, फेंक रहे हैं, और जब जिस समय कहते हैं ना कि अब पानी कटौती होने वाली है या
0: जी
1: पानी 2 दिन नहीं आने वाला, तब लगता है अरे यार अब कैसे होगा, अब का ऐसे काम चलेगा। तो हमें सोचना चाहिए इसी तरह से, समय से आप काम करना चाहिए कि अब पानी नहीं आए तो हम क्या
0: तो
1: करेंगे।
0: एक दिन की कटौती में अगर हम इतना परेशान हो जाते हैं, अगर ये कटौती पानी को बहुत जल स्तर अगर घट गया तो बहुत ज्यादा अगर होने लगी तो कितना हम परेशान होंगे।
1: बिल्कुल।
0: उस परेशानी से बचने के लिए महत्व इसका हम बता रहे हैं। और आप सुन लेते हैं गीत।

0: पे क्या हुआ, जब एक किसान ने आम तो बेचे ही, आम बेचकर पैसे कमाए, लेकिन जो गुठलियां बच गई वो एक नर्सरी को बेच दी ताकि नए पेड़ आम के लगाए जा सके। तो यानी कि जो मूल चीज है उसे तो आपने मुनाफा कमाया ही, लेकिन जो बची हुई चीज है उसे भी आपको मुनाफा मिला।
1: बिल्कुल,
0: दोहरा फायदा, दोहरा लाभ, डबल मुनाफा। इसीलिए कहते हैं आम के आम और गुठलियों
1: गुठलियों
0: के
1: के दाम, गुठलियों के
0: दाम।
1: दाम भी उसने ले
0: जी
1: लिए। और खाली उसी ने नहीं लिए, पेड़ लगाने से सबको ही फायदा हुआ,
0: जी
1: तो बहुत अच्छी चीज है ये।
0: तो ये तो
1: और
0: सिर्फ
1: हमारे
0: एक
1: श्रोता
0: कहावत
1: क्या
0: है,
1: कहते
0: लेकिन
1: हैं?
0: बहुत सारे इसी तरह से हम काम करते हैं कि दोहरा फायदा हमें मिलता है। तो हमारे श्रोताओं के साथ क्या अनुभव
1: हाँ
0: रहे हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं भाई।
1: बिल्कुल। तो हमारे एक श्रोता हैं जो कहते हैं कि आम के आम और गुठलियों के दाम, ये बहुत ही लोकप्रिय मुहावरा है, जिसका मतलब एक ही काम या किए गए प्रयास का दोहरा लाभ प्राप्त होना है। जैसे कि मैं ठहरा बुजुर्ग व्यक्ति, मेरे लिए सखी सहेली सुनना और कमेंट लिखना समय जो प्रसार करने के साथ साथ मनोरंजन और उपयोगी जानकारी प्राप्त करना होता है। मतलब आम के आम और सखी सहेली के नाम।
0: हमारे श्रोता लिखते हैं कि आम तेन दिन हम रोज ही खा रहे हैं और गुठलियों को सहेज कर रख दिया जाता है ताकि जब बारिश आएगी तो इन्हें उगा देंगे। तो हो
1: हाँ
0: गया ना आम के आम और गुठलियों के दाम,
1: सच में
0: एक पंथ दो काज की तरह ही होती है ये कहावत।
1: जी, बिल्कुल सही कहा। और एक और हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि इसमें इसे अंग्रेजी में टू बर्ड्स विद वन स्टोन भी कहा जाता है, यानी कि एक तीर से दो निशाने। मतलब एक ही मुहावरा है, उस मुहावरे को बहुत कई
0: हाँ,
1: कई तरीकों से
0: एक
1: कहा
0: पंथ
1: जाता
0: दो
1: है।
0: काज, आम के आम गुठली के दाम और एक तीर से दो निशाने, लगभग एक जैसा ही अर्थ है इन बातों का।
1: बिल्कुल। और व्यवहारिक जीवन में इसका इसको कहा जाता है कि यदि कोई छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी पुरानी किताबें अच्छी कीमत पर बेच देता है तो उसे दोहरा लाभ होता है। और व्यापार की बात करें तो जब कोई किसान आम बेचने के साथ साथ उसकी गुठलियों या छिलकों का उपयोग करके अचार, तेल या अन्य उत्पाद बनाने के लिए करता है, तो आम के आम और गुठलियों के दाम भी तो सच में एकदम सही बैठा कि
0: जी,
1: उन्होंने आम खाया और गुठलियों से उसके छिलकों से अचार भी बना लिया।
0: और आगे एक श्रोता का संदेश है कि ये मुहावरा हमें संसाधनों का सही उपयोग करने और अवसरों का पूरा लाभ उठाने की सीख देता है।
1: जी
0: दैनिक जीवन में जब किसी व्यक्ति को एक प्रयास से कई फायदे मिलते हैं तब इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि मुहावरा आज भी उतना ही प्रासंगिक है और लोकप्रिय भी है।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि भाषा की सुंदरता वृद्धि में मुहावरों और कहावतों का महत्वपूर्ण योगदान भी होता है। आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ ही है उपभोक्ता के पूरे पैसे वसूल। वार्तालाप या कहानी लेख में विषय संग वस्तु का कोई संबंध नहीं रहते हुए भी वस्तु अपनी उपयोगिता, गुण और महत्वपूर्णता की उपस्थिति दर्ज करा ही देती है।
0: और हमारे श्रोता तैयार हो जाएं भाई अपने बहाने बनाने के लिए, जिन्हें वो अक्सर काम में लेते हैं, लेकिन तब तक एक गीत सुन लेते हैं।

0: आरती, अक्सर हम अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए बहाने का इस्तेमाल करते हैं। और कुछ बहाने मैं तुम्हें बताती हूँ, देखो जिनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है सभी के द्वारा, कि बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ या 5 मिनट में पहुंच रही हूँ, या अगर फोन नहीं उठाया तो क्या बोलते हैं, भाई मेरा तो फोन ही साइलेंट पे था इसलिए कॉल नहीं देखा, या कहेंगे कि नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, कहीं अगर समय पे ना पहुंचे तो कहेंगे भाई ट्रैफिक बहुत मिल गया, और अगर समय पे ना पहुंचे या फोन भी नहीं देखा तो अगर मैसेज करने की बात हुई मैसेज करना भी भूल गए, अचानक से बहुत जरूरी काम आ गया, फोन की बैटरी खत्म हो गई, इस तरह के ब्ला ब्ला बहुत सारे बहाने हैं जो बहुत सारे लोग बनाते हैं। तो हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है बहाने के बारे में, अब ये बात है पढ़ने वाली।
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि बहाना बनाना कोई आसान काम नहीं है, सभी को
0: हाँ
1: उल्लू बनाना ये भी आसान काम नहीं है, अगर बहाने में वफाएं हो तो तूफा भी किनारा है, वरना साहब के गुस्से से गिरती बिजली का नजारा ही नजारा है,
0: क्या बात है,
1: सामने वाला आसानी से विश्वास कर सके ऐसा बहाना बनाओ कि हम राहत की सांस ले सकें। ज्यादातर लोग तबीयत ठीक नहीं होने का बहाना बनाकर आसानी से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन ऐसे बहाने का उपयोग कब और कहाँ करना है ये सोचना चाहिए, नहीं तो आपके योग वियोग में बदल सकते हैं, क्योंकि कई बार लोगों को लगने लगता है कि नहीं ये तो बहाना बनाया जा रहा है तबीयत खराब होने का, जो बच्चे अक्सर बनाते हैं स्कूल से छुट्टी लेने के लिए।
0: और बहाना जो अक्सर काम करता है, सबसे पहले तो बहाना विद्यालय में बच्चे होमवर्क नहीं करें और कहेंगे कि मैडम कर तो लिया लेकिन कॉपी घर पे रह गई, अब क्या कहें।

0: और शिक्षक बहाना एक्सक्यूज, किसी काम करने के लिए बचने के लिए, अपनी गलतियां छिपाने के लिए, स्पष्टीकरण देने के लिए ये एक कारण होता है। यानी कि ये अलग अलग तरह का बचाव है
1: जब बहुत
0: जिसका
1: ज्यादा स्पष्टीकरण मिलने लगे तो समझ लीजिए
0: बिल्कुल
1: बहाना है
0: बहानों का इस्तेमाल
1: जी।
0: लोग स्थिति से बचने के लिए, टाल मटोल करने के लिए या असफलता को सही ठहराने के लिए करते हैं। जैसे लेट हो गया, ट्रैफिक बहुत था, तबीयत खराब हो गई, बैटरी खत्म हो गई, कोई जरूरी काम आ गया, वगैरह वगैरह।
1: बिल्कुल, एक श्रोता है जो कहते हैं कि बहाने जो अक्सर काम आते हैं इस विषय पर, एक बहाना ऐसा है जो हम सभी ने कभी ना कभी, बहुत लोग अक्सर करते ही हैं, और वो भी सटीक लग भी जाता है, और वो है फोन कॉल से संबंधित। अगर किसी अनचाहे का कॉल अटेंड नहीं करना हो तो सीधा सीधा बहाना होता है, अरे फोन तो चार्जिंग पर लगा था या साइलेंट मोड में चला गया था। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल हटकर है, कोई भी रिश्ता झूठ से नहीं बल्कि सच से चल सकता है। ये तो आप सही कह रहे हैं कि अगर हम जबरदस्ती में बार बार बहाना करेंगे तो सामने वाले को भी एहसास हो जाएगा कि ये बहाना ही है।
0: और हमारे श्रोता ने लिखा है कि बचपन में जब भी स्कूल जाने का मन नहीं होता तो सबसे बड़ा अच्छा बहाना होता था कि पेट दुख रहा है, और अक्सर बच्चे ये बहाना करते हैं।
1: जी।
0: और आगे श्रोता लिखते हैं कि बहाना जो अक्सर काम आता है, तो ये कहूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, दफ्तर ना जाना हो तब भी हम यही बहाना बनाते हैं, घुटनों में दर्द है, कहीं जाना आना संभव ही नहीं
1: बिल्कुल,
0: है।
1: अक्सर होता है ऐसा। और एक कुछ होता है जो कहते हैं कि बहानों में हमारी श्रीमती जी का हमारे जो श्रीमती जी हैं वो एक नंबर है, कुछ काम कहो तो बहाना बनाती हैं। तो मैं समझ जाता हूँ कि, और वो स्वयं वो काम कर लेता हूँ, और फिर वो कहती है मैडम अरे वाह तनिक थोड़ा धैर्य रखते तो हम कर ही देते, लेकिन इसमें हल्की फुल्की बहाने, नोक झोंक, प्यार और स्नेह तो दोनों खुश हो जाते हैं, और फिर वो हमारी तारीफ भी करती है, भाई आप काम कर देंगे तो तारीफ तो आपकी होगी। वैसे अच्छी चीज है ये, इस तरीके का बहाना, और आप उनकी बात मान के थोड़ा बहुत काम करने का हाथ बटा देते हैं तो
0: हमारे
1: अच्छी चीज
0: श्रोता ने
1: है।
0: लिखा कि बचपन में स्कूल जाने के नाम पेट दर्द का बहाना बनाया करते थे, पर मैंने एक बहाना अभी भी मारा है। मुझे सोशल मीडिया पर कुछ अटेंड करना था, स्कूल में ट्रेनिंग चल रही थी, तो मैंने ऐसे ही बहाना मार दी कि मेरा पेट खराब है, लेकिन मैं पकड़ी गई और मुझे स्कूल जाना ही पड़ा। और उस समय सोशल मीडिया पर प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाए, वो प्रोग्राम सोशल मीडिया पर भी आ रहा था और वीडियो पर भी था, लेकिन मैंने ना दे दिया, और इसलिए सोशल मीडिया, लेकिन मुझे याद है कि मैंने क्या किया था।
1: हाँ, लेकिन अब सबको पता चल गया कि वो
0: और
1: आपने बहाना बनाया था।
0: जी
1: एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मेरे हिसाब से हर व्यक्ति के अपने अपने बहाने होते हैं, समय और परिस्थिति के अनुसार लोग वही बहाना चुन लेते हैं जो उस वक्त उनको सही लगता है। और मेरे साथ भी एक मजेदार घटना हुई, मेरा एक दोस्त का जन्मदिन था, मुझे उसे विश करना था। सुबह तक तो मुझे उसका जन्मदिन याद था, लेकिन दिन भर की व्यस्तता में मैं उसे विश करना भूल गई। शाम को जब उसका फोन आया तो वो मुझसे थोड़ी नाराज थी, तब मैंने मुस्कुराते हुए कहा अरे यार मुझे याद था, बस दिमाग से निकल गया। सच कहूं तो अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी, या मुझे याद था बस दिमाग से निकल गया। ऐसे बहाने हैं जो हम में से ज्यादातर लोग कभी ना कभी जरूर इस्तेमाल करते हैं, मैं करती हूँ अक्सर। हालांकि कई बार ये सिर्फ बहाना नहीं बल्कि सच भी होता है, क्योंकि रोजमर्रा की भागदौड़ और जिम्मेदारियों के बीच कुछ बातें सचमुच दिमाग से निकल जाती हैं।
0: तो चलो अब एक गीत सुन लें।
1: बिल्कुल, सुनते हैं।

0: तो आरती तुमने कभी कोई बहाना बनाया है? बताओ मुझे।
1: बनाए तो बहुत सारे बहाने, मैं अक्सर बना लेती हूँ बहाने, लेकिन अभी मैंने बनाया था कि हाँ यही वाला कि मेरा फोन चार्जिंग पे लगा हुआ था इसलिए मैं उठा नहीं पाई।
0: हाँ, ये जो है ना, फोन साइलेंट पे था, बैटरी खत्म हो गई थी, चार्जिंग पे लगा था। आजकल क्योंकि जब कहते हैं भाई फोन करना भूल गए, तो ये बहाना तो हर कोई बनाता है, या हम कहेंगे कि भाई घर पे कोई आ गया था,
1: बिल
0: ये भी
1: बिल्कुल
0: बहाना बहुत होता है। तो अब बहानों की बात चली है तो बताएं हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं। कहते हैं कि बहाने यानी दो तरह के होते हैं। इससे हमें नहीं मिलना होता है तो हमारे किसी से अगर हमें नहीं मिलना होता है तो हमारे पास 100 बहाने आ जाते हैं,
1: बिल्कुल
0: और किसी से मिलना चाहते हैं तो बहुत बहाने हम निकाल ही लेते हैं। बस बहाने की ही बात है। मिलना ना हो तो हम बहाने बनाकर मिलने भी जाते हैं, ना मिलना हो तो बहाना बनाकर टाल देते हैं, और यही बता रहे
1: बिल्कुल।
0: हैं।
1: और एक हमारी श्रोता है जो लिखती है कि अभी कल की ही बात है, मैं अपनी बहन के घर आई हूँ, वो लोग कहीं घूमने गए, उनकी देवर की लड़की इतवार को मेरे साथ मेरे ही घर पर लंच करना चाह रही थी अपनी माँ के साथ। इतनी गर्मी हो रही है, मैंने बचने के लिए कहा कि मैं अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रही हूँ। इस तरह से मैं कहीं गई भी नहीं और घर में इतनी गर्मी में किचन में काम करने से बच गई। ये बहाना मेरे लिए बहुत लाभदायक रहा, लेकिन अब उनको पता चल गया होगा, उन्होंने सुना होगा
0: हाँ,
1: प्रोग्राम
0: अगर वो रेडियो सुनते हैं उन्हें रेडियो पर बात पता लग गई होगी।
1: कि आपने बहाना बनाया था खाना बनाने से बचने के लिए।
0: और हमारे श्रोता ने लिखा है कि जब बहुत छोटे थे और स्कूल में पढ़ते थे, तो एक तो बच्चों का कॉन्वेंट स्कूल और बहुत खर्च भी वहां पर था, और कई बार बजट डिस्टर्ब ना हो जाए तो कई बार बहाने बनाने पड़ते थे। जैसे एक बार बच्चों ने महंगी साइकिल लाकर देने को कहा तो मुझे बहाना बनाना पड़ा कि मेरे मित्र ने अपने बेटे के लिए जो साइकिल खरीदी थी वो 15 दिन में ही टूट गई, और वो यहाँ बन भी नहीं पाती है, इसीलिए फैक्ट्री में जाकर चीज लानी पड़ती है, तो बहुत पैसे लग जाते हैं। और इसी तरह बहाना बनाकर बच्चों ने जब साइकिल मांगने की जो जिद थी वो छोड़ दी।
1: बहुत बढ़िया बात है। और देख, हम इस समय एक थोड़ी सी एक बात कर लेते हैं, आम के आम गुठलियों के दाम पर भी हमारे जो एक सखी उन्होंने लिखकर भेजा है, कहती है कि जब मैं बहुत छोटी थी तो उसमें चूसने वाले आम बहुत आते थे, उसमें जब हम आम खा चुकते थे तो गुठली को मेरी दादी एक टीन के डिब्बे में इकट्ठा कर लेती थी। बाहर छत पर रखा डिब्बा बहुत दिन तक रखा रहता था और गुठली इकट्ठा होती रहती थी, और फिर बरसात में भी भीगती थी। जब बहुत सी गुठली इकट्ठा हो जाती थी तो उसी डिब्बे में उबाल कर ठंडा होने पर गुठली को तोड़कर उसके बीच को नमक लगाकर खाते थे। यही हमारा मुहावरा बन गया कि मतलब आम तो खाए गुठलियां भी खाएं।
0: अचार में भी कई बार गुठलियों का प्रयोग किया जाता है, और गुठलियों में एक बड़ा अच्छा तो स्वाद होता है
1: बिल्कुल
0: लेकिन बहुत मीठा स्वाद होता है। हमारे पुराने फिल्मी गीता में भी तो सुन लें गाना।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: दिल तो हमारा भी नहीं भरा अपनी सखियों से बातचीत करते करते,
1: बिल्कुल
0: लेकिन घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हमें जाना होगा।
1: जाना ही
0: इसीलिए
1: होगा।
0: ये था इस कार्यक्रम का आज का आखिरी गीत। लेते हैं विदा चंचल वर्मा,
1: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं फिल्मी दुनिया के चमकीले सितारों से। आज एक ऐसी सितारा आ रही है जिन्होंने एक दिन नीले आसमान की तरफ देखकर ये कहा था,

0: जी हाँ, जानी मानी अभिनेत्री वहीदा रहमान आज विविध भारती के स्टूडियो में हमारे साथ हैं और उनकी मौजूदगी से रोशन है हमारी दुनिया। आइए वहीदा रहमान से करते हैं ढेर सारी बातें अपने साथी कमल शर्मा के साथ।
1: प्रिय श्रोताओ, आज हमारे स्टूडियो में उतर आया है चौदहवीं का चांद। इन्हें इंडियन स्क्रीन की क्लासिक ब्यूटी कहा जाता है और इन्हें जाना जाता है अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए। आप समझ गए होंगे, जी हाँ, आज इस प्रोग्राम में हमारी खास मेहमान हैं वहीदा रहमान जी। वहीदा जी, मैं अपनी ओर से विविध भारती के करोड़ों श्रोताओं की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ इस प्रोग्राम में। नमस्कार।
2: नमस्कार, शुक्रिया।
1: कैसा लग रहा है हमारे स्टूडियो में आकर के आपको?
2: मेरे ख्याल से पहली बार आई हूँ मैं स्टूडियो में और अच्छा लग रहा है। अच्छा है
1: क्योंकि इस समय करोड़ों लोग आपकी बातचीत सुन रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से, और जिन्होंने आपकी फिल्में देखी उन्हें बहुत सारी बातें याद आ गई होंगी, बहुत सारे सीन याद आए होंगे, कभी आपने उनको रुलाया होगा, कभी हंसाया होगा। मैं इससे पहले कि फिल्मों की जो आपकी यात्रा शुरू हुई, हम जानना चाहेंगे आपके बिल्कुल बचपन में जाना चाहेंगे, और आपसे ये जानना चाहते हैं कहाँ आपकी पैदाइश हुई।
2: मेरी पैदाइश हुई चेन्नई के पास, एक जगह, छोटी सी जगह है, इसका नाम है चेंगलपेट।
1: अच्छा।
2: तो वहाँ पर मेरे वालिद साहब कमिश्नर थे, तो वहाँ पैदाइश हुई। मेरे ख्याल से कुछ घंटे डेढ़ घंटे का सफर है चेन्नई से वहाँ, मतलब मैं तमिलियन हूँ समझिए।
1: अच्छा। हाँ। लेकिन आपने शुरुआत की तेलुगु फिल्म से।
2: हाँ, वो क्या हुआ, मेरे वालिद साहब का ट्रांसफर हुआ करता था हर तीन साल, यू नो, पोस्टिंग होती थी जो आईएएस ऑफिसर्स की होती थी। तो हम विजयवाड़ा में थे, आंध्र प्रदेश में, तो मैंने कई बार डांस परफॉर्मेंस स्टेज पे दिए थे। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, 11-12 साल की। तो साउथ इंडियन मूवीज जो थी वहाँ से मुझे ऑफर्स आ रहे थे। तो उस वक्त मेरे वालिद साहब ने कहा, ये उम्र बहुत छोटी है, अभी पढ़ाई भी नहीं ख़त्म हुई, तो अभी वैसे एज ए प्रोफेशन शुरू करने का इरादा भी नहीं था। मगर उसके बाद मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, तो मैं 13 साल की थी। फिर भी मेरी मुझसे तीन बड़ी बहनें हैं, उन सब की शादी हो चुकी थी, तो मैं रह गई थी, मेरी बारी थी शादी होने की। तो फिर इत्तफाक की, किस्मत की बात है मैं कहूँगी, फिर से ऑफर आने लगे साउथ से, मतलब मद्रास में। उस वक्त सारी इंडस्ट्री मद्रास में थी, वहाँ तेलुगु या तमिल दोनों फिल्में बनती थी। तो फिर जब एक ऑफर आया तो मेरी वालदा कहने लगी, नहीं अभी मेरे हस्बैंड नहीं हैं तो मैं नहीं इजाज़त दे सकती। तो मैं तो बहुत खुश हो गई, एक्साइट हो गई। तो वो जो प्रोड्यूसर थे, वो किसी जगह के आंध्र प्रदेश के छोटे से ज़मींदार थे, वो प्रोडक्शन में जा रहे थे, तो उन्होंने मेरी वालदा से कहा कि नहीं, मैं रहमान साहब को जानता हूँ, मिल चुका हूँ, तो अभी वक्त बदल रहा है, इसको भी एक बाकायदा प्रोफेशन समझा जाता है, और सिर्फ एक डांस ही तो करना है, स्टेज पे करती थी, एक फिल्में कर ले तो क्या हर्ज है। तो मैं तो बहुत, मेरे पीछे पड़ गई मम्मी के कि प्लीज़ इजाज़त दे दीजिए, करने दीजिए। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो, अभी तक कोई लड़का मिला नहीं, चलो कर लेने दो। और फिर किस्मत की बात थी कि वो पहले

0: फिल्म में जो एक सिर्फ मैंने फोक डांस किया था वो बहुत कामयाब हुआ, बहुत ही ज़्यादा कामयाब हुआ, जो किसी को उम्मीद नहीं थी और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो फिर वहाँ से सिलसिला शुरू हो गया।
1: कुछ बोल याद है उस डांस के जो बोल थे गीत के, कुछ याद है आपको?
0: पूरे तो याद नहीं है। हेरुआ का साकारो रन्नो चिन्नन्ना आगे।
1: क्या बात है, क्या बात है, आप तो बहुत सुरीली भी हैं। अच्छा, वो फिल्म कौन सी थी?
0: उसका नाम था रोजुलू माराई, मतलब था कि डेज आर चेंज, विच लिटरली चेंज माई लाइफ एंड डेज। तो फिर वो बहुत कामयाब हुई फिल्म। तो मेरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर कहने लगे, आपको पता है जब आपका गाना आता है और ख़त्म हो जाता है तो लोग पैसे फेंकते हैं स्क्रीन की तरफ। तो मैंने सोचा मुझे खुश करने के लिए कह रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, फिल्मों में मैंने तो कभी नहीं देखा लोग पैसे फेंकते हैं और जब मेन आर्टिस्ट नहीं हो। तो फिर मैं और मेरी वालदा और मेरी बहन सब मिलके देखने गए थे थिएटर में। हाँ, तो वाकई लोग पैसे फेंक रहे थे और कहते थे इसको दोबारा दिखाया जाए। तो मेरी नहीं समझ में आया, दोबारा फिल्म एक चल रही है कैसे हो सकता है। तो फिर हमको वो एग्जिबिटर थे, उन्होंने कहा पॉसिबल है क्योंकि वो रील निकालते हैं फिर दोबारा चलाते हैं। तो कई शहरों में वो निकाल के फिर एंड के बाद, एंड से पहले मतलब वो गाने को दोबारा प्ले करते थे। तो वो इतना ज्यादा कामयाब हुआ था वो गाना।
1: क्या कहने?
0: और फिर इसके लिए मैं अपनी डेस्टिनी पे बहुत मानती हूँ। और ये इसके सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस हो रहे थे पूरे आंध्र प्रदेश में, तो हम हैदराबाद गए। तो वहाँ इत्तेफाक से गुरुदत्त जी क्यों गए थे वो खुदा ही बेहतर जाने, वहाँ थे वो। तो वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस में बैठे हुए थे, तो काफ़ी शोर शराबा, दो तीन मोटरें जा रही थी, लोग भाग रहे थे। तो उन्होंने पूछा भाई क्या हो रहा है बाहर। तो उन्होंने कहा एक बहुत कामयाब तेलुगु फिल्म बनी तो उसके आर्टिस्ट हैं तो लोग। अच्छा अच्छा तो फिर वो उन्होंने गुरुदत्त जी से कहा कि उसमें एक नई लड़की ने काम एक डांस किया है वो तो बहुत कामयाब हुआ और उस लड़की का नाम है वहीदा रहमान। तो उन्होंने सुना के बोले वहीदा रहमान तो मुसलमान मुस्लिम लड़की होगी। बोले नहीं है भी मुस्लिम, तो वो उर्दू बोल सकती है? तो उन्होंने कहा हाँ जरूर बोल सकती है, क्योंकि क्या है डाउन साउथ इंटीरियर गांवों में वो अब तेलुगु बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में तमिल वाले तमिल बोलते हैं हालांकि है मुसलमान, केरला उस तरह मलयालम बोलते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं ये बोलती हैं। तो बोले आपको कैसे पता? तो उन्होंने कहा कल फंक्शन था तो स्टेज पे गए थे, वो स्टेज पे आर्टिस्ट आए थे तो मैं भी उसमें था, तो ये लड़की आई स्टेज पर उर्दू में बोल रही थी। बोले अच्छा, तो क्योंकि आजकल मुझे नए चेहरों की तलाश है तो ये क्या मुनासिब है कि मैं उससे मिल सकूं? तो उन्होंने कहा मैं कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने अपने हमारे जो प्रोड्यूसर थे उनके जरिए एक मीटिंग अरेंज की, तो वहाँ मुलाकात हुई। तो कुछ ज़्यादा बात नहीं हुई, थोड़ी देर 10-15 मिनट मैं और मेरी वालिदा थे, फिर चुप। कुछ खास कहा नहीं उन्होंने, ये नहीं कहा कि आप बॉम्बे आइए। खैर हम वापस मद्रास पहुँचे तो इस चीज़ को भूल गए हम। 6 महीने बाद फिर उन्होंने किसी को भेजा मद्रास, तो उन्होंने कहा हम मिले थे हैदराबाद में, उनको कहिए बॉम्बे आने के लिए, तो उनका टेस्ट फिर से लेंगे हम, फिर हम साइन करना चाहते हैं उस तरह से, यू नो।
1: तो उसके बाद में आपको सीआईडी मिली?
0: सीआईडी पहली मेरी हिंदी फिल्म थी और दूसरी प्यासा।
1: तो सीआईडी और प्यासा की बातें करें उसके पहले हम वहीदा जी चाहेंगे कि आप अपनी पसंद का कोई गाना यहाँ हमारे श्रोताओं को सुनवाएं।
0: मुझे प्यासा का वो गाना बहुत पसंद है जिससे मेरा काम लोगों को भी बहुत पसंद आया, जाने क्या तूने कही जाने क्या मैंने सुनी।

0: वह बहुत ही खूबसूरत गाना है और खासतौर से सचिन दा का जो म्यूजिक है उसका जवाब ही नहीं है। आपको याद है जब आपने गुरदुत साहब के डायरेक्शन में पहली बार वो कैमरा फेस किया था, हिंदी की अगर हम बात करें कौन सा दृश्य था, कुछ याद है आपको?
1: नहीं, पहले तो सीआईडी बनी थी, उसके डायरेक्टर थे राज खोसला।
0: हाँ जी।
1: तो एक महीने दो महीने तो सिर्फ सीआईडी की शूटिंग हो रही थी, उसके बाद उन्होंने साइमल्टेनियसली दो तीन महीने के बाद प्यासा की भी शूटिंग शुरू हुई थी। और दोनों डायरेक्टरों में मैंने फर्क बहुत पाया, क्योंकि राज खोसला जो थे वो अच्छे डायरेक्टर थे फिल्मों में के लिए, मगर नए आर्टिस्ट को हैंडल करना उनको इतना नहीं अच्छा आता था। हालांकि गुरदत्त जी तो वो आर्टिस्ट की क्या परेशानी है वो सोचते थे, गौर से देखते थे, फिर पूछते थे आर्टिस्ट को कि आपको तकलीफ क्या है, आप समझ नहीं पाए या ये करते वक्त आपको किस चीज़ की तकलीफ हो रही है, तो उससे फिर लगता था कि हाँ मैं कह सकती हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। और राज खोसला थे कि ये ऐसे करना है, कर दिया, अगर कोई बात मेरी समझ में नहीं आए, और चूंकि मैं नई नई थी और बहुत शाई थी तो पूछती नहीं थी। यहाँ गुरुदेव जी पूछते थे कि आपका कुछ प्रॉब्लम है लगता है, क्या है, क्या तकलीफ हो रही है, आपको डायलॉग नहीं ठीक लग रहा है या मूवमेंट नहीं ठीक लग रहा है, तो उससे एक कॉन्फिडेंस आया कि ये तकलीफ हमारी पूछ रहे हैं तो मैं उनको बता सकती हूँ कि ये नहीं हो रहा है मुझसे।
0: गुरुदेव साहब हाँ को कैसा डायरेक्टर मानती थी?
1: डायरेक्टर तो वो बहुत ही बढ़िया थे, क्योंकि वो बहुत गौर से देखते थे, वो खामोश रहते थे तो स्टडी करते थे कि किस कौन सा आर्टिस्ट क्या का किस हद तक क्या क्या कर सकता है। उसीलिए उनके मेरे परफॉर्मेंस या माला सिन्हा के प्यासा में या रहमान साहब या जॉनी वॉकर या महमूद वगैरह, वो सबके परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे

0: होते थे, क्योंकि उनके वो समझते थे इनकी ये इनकी लिमिट ये है, ये इनसे इतना ही ऐसे करवाओ, यू नो।
1: उनके डायरेक्शन में कौन सा सीन आपको सबसे बेहतरीन लगता है, यादगार लगता है अपना, कौन सा सीन?
0: कागज के फूल में वक्त ने किया क्या हंसी सितम, वो एक गाना है जो अब तक मुझे बहुत यूनिक लगता है, इसलिए कि वो अपने जो कैरेक्टर है वो अपने ख्यालात को जाहिर कर रही हैं मगर बिना लिप मूवमेंट के, ये जैसे दिल की आवाज है। और मैंने कहा लिप मूवमेंट नहीं होगा ये कैसे गाना होगा, तो बोले आप कीजिए जैसे मैं कह रहा हूँ, तो ये इससे फीलिंग है, ये लड़की अब वो इसमें नहीं है कि खुले खुले जाहिर करे अपने फीलिंग्स को, जैसे शॉट्स होंगे उस पर वो जैसे उसका विजुअली जैसे हम प्ले करेंगे तो गाना पीछे से बजेगा तो ज्यादा इफेक्टिव होगा।
1: आपको सिर्फ एक्सप्रेशन लाने थे?
0: हाँ, एक्सप्रेशन लाने थे, और उसमें तो मैं कहूँगी एक्सप्रेशंस बहुत उन्होंने अच्छे एक्सप्लॉइट किए, और उसकी जो फोटोग्राफी थी और लाइटिंग थी उससे और भी वो चीज एनहांस हुई थी मन और बढ़िया दिखती थी।
1: आपने जिस गाने का जिक्र किया कागज के फूल का, ये गाना भी बड़ा हॉन्टिंग
0: हाँ
1: है, और इसकी मेलोडी जो है आज तक बहुत दिल को छू लेने वाली है।
0: बिल्कुल,
1: क्यों नहीं ये गाना सुना जाए?
0: बिल्कुल क्यों नहीं।

0: जब पूरी फिल्म बन गई थी तो ट्रायल पे हमने सबने देखी, तो सब एक दूसरे आपस में बात करते हैं कैसी है क्या है, तो मैंने फट से कह दिया कि पिक्चर चलेगी नहीं। तो
1: आपने कह दिया?
0: हाँ, मैंने कह दिया। तो अबरार साहब जो थे, जो डायलॉग राइटर थे, उनको बहुत बुरा लगा। बोले अभी तुम अभी छोटी बच्ची हो, तुम्हें क्या पता क्या किस हिसाब से कह रही। मैंने कहा बहुत हैवी है पिक्चर, बहुत ज्यादा हेवी है, और पता नहीं क्यों मेरे मन में आया कि चलेगी नहीं, क्योंकि इट्स टू सैड एंड टू हैवी। तो बोले अच्छा एनीवे देखते हैं। तो वो इत्तेफाक से वो हो गई। तो इतनी उस वक्त कमर्शियली बुरी थी कि बहुत तो दुख तो हुआ, और मुझे इतना शौक नहीं लगा कि मैंने कहा मुझे तो पता ही था कि पिक्चर नहीं चलने वाली।
1: लेकिन बाद में वो बिल्कुल ऐसे लगने लगा कि जैसे वो अपनी कहानी कह रहे हो।
0: नहीं, मगर जब वो गुजरे तो उनके डाउनफॉल तो नहीं हुआ था ना। उसके बाद चौदहवीं के चांद बनी तो सुपर हिट हो गई थी फिल्म। फिर अपनी क्या उसके बाद बनी थी साहेब बीबी और गुलाम, उसको भी अप्रिशिएट बहुत किया गया, अप्रिशिएट, और फिर वो फेस्टिवल में गई थी।
1: अच्छा विदु जी, साहेब बीबी और गुलाम का जिक्र आया है, डायरेक्टर के रूप में नाम आता है अबरार अलवी साहब का, लेकिन पूरी फिल्म में ऐसा लगता है कि शैडो के रूप में गुरदत्त साहब मौजूद हैं। पूरी फिल्म में वो झलक जो है गुरदत्त साहब की जरूर दिखाई पड़ती है, उनके निर्देशन की झलक दिखाई पड़ती है।
0: अभी देखिए अबरार साहब क्योंकि उनसे उनके साथ शुरू से काम कर रहे थे, तो नेचुरली उनका इन्फ्लुएंस तो होगा ही ना। तो उन्होंने हमेशा गुरदत्त जी के पॉइंट ऑफ व्यू से शूटिंग की होगी, और डिस्कशन होते थे होंगे उन दोनों के आपस में। क्योंकि जब मैं अकेली काम कर किया, जैसे चंद सीन्स थे जहाँ गुरदत्त जी नहीं थे, तो उसमें गुरदत्त जी नहीं आए थे सेट पे, और जब गुरदत्त जी थे सीन में एज ए लीडिंग मैन तो नेचुरली होते थे। मगर जब ऑब्वियसली आई एम श्योर के अबरार साहब और गुरदत्त जी के डिस्कशन जरूर होते थे होंगे आपस में कि इस चीज को इस तरह से किया जाए, इस तरह से किया जाए।
1: हमने सुना है कि उसमें जो छोटी बहू का किरदार जो मीना कुमारी जी ने प्ले किया, वो आप करना चाहती थी?
0: बिल्कुल, जब कहानी सुनाई गई और नॉवल से लिया गया, बंगाली नॉवल से, तो मुझे बहुत दिल किया कि मैं रोल करूं। तो गुरदत्त जी ने कहा देखो आप नहीं कर सकती ये रोल। तो मुझे बहुत इंसल्टिंग लगा। तो मैंने कहा आपका मतलब ये है कि मैं अच्छी आर्टिस्ट नहीं हूं? तो बोले नहीं नहीं, ये मतलब नहीं है, आप समझ नहीं रही, एक मैच्योर औरत का रोल है, जो औरत अपने हस्बैंड के प्यार के लिए बहुत ज्यादा तड़पती, जो उसको मिलता नहीं है, ये आप नहीं कर पाएंगी। तो फिर मैंने कहा क्या आपका मतलब कि औरत शादीशुदा होना चाहिए तो शादीशुदा औरत का रोल करें? नहीं, बोले वो नहीं, आप समझेंगे नहीं, आप अभी बहुत छोटी हैं इस चीज को कि हाउ यू वेट एंड पाइन फॉर योर हस्बैंड। खैर फिर भी मैंने कहा नहीं, कुछ तो कोशिश तो करते हैं। तो उन्होंने वैसा गेटअप दे के स्टिल फोटोग्राफ्स लिए। लेने के बाद मूर्ति साहब जो उनके कैमरामैन थे, वो हमने सब ने स्टिल्स देखी। मैं तो बड़ी खुश थी कि मैं बुरी नहीं लगती हूँ, अच्छी लग रही हूँ। तो मूर्ति साहब ने कहा नहीं, गुरदत्त जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं आप, यू नो यू लुक वेरी यंग, कि ऐसा नहीं कि शादी हो के कुछ 5-10 साल हो गए हस्बैंड की तवज्जो नहीं मिलती, ये तुम्हारे फेस पे ये आ नहीं सकती बात, तो भूल जाओ इस चीज को। तो मैं समझ गई बाद में क्या कहना चाह रहे हैं। सो
1: इस फिल्म का शुमार भी बहुत बेहतरीन फिल्मों में होता है, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। कोई यादगार संस्मरण इस फिल्म से जुड़ा है, कोई आपको याद आता हो, कोई प्रसंग याद आता हो?
0: मुझे रोल अच्छा लगा था क्योंकि हाँ, उसके बाद गुरदत्त जी ने कहा आप नहीं करेंगे, तो बात खत्म हो गई। तो जब अबरार साहब डायरेक्ट करने लगे, तो वो एक दिन घर पे आके ने लगे, देखो मैं पहली बार डायरेक्शन कर रहा हूँ, अगर आप नहीं करोगे तो लोग सोचेंगे क्योंकि मैं नया डायरेक्टर हूँ इसके लिए नहीं करें। मगर मैंने कहा उसकी तो कास्टिंग हो गई है अभी मीना जी के साथ। बोले नहीं, जबा का रोल है, वो भी तो कर सकते हो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं कर लूंगी। तो गुरदत्त, उन्होंने जाके गुरदत्त जी को बताया, तो उनको ताजुआ, भाई तुम आप समझ नहीं रहे हैं, चौदहवीं के चांद के बाद आप एक बहुत बड़ी स्टार बन गई हैं, ये तो सेकेंडरी रोल है, ये टाइटल रोल नहीं है, क्यों करेंगी आप? तो मैंने कहा मुझे कोई हैंग अप नहीं है, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैंने कहा वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, जबा का रोल डिफरेंट है, डेफिनेट कैरेक्टर है। तो बोले आप सोच लीजिए, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ आपको करने के लिए। तो मैंने कहा नहीं नहीं, अबरार साहब ने इतना कहा तो मैं कर लूंगी, तो इसलिए मैंने किया।
1: तो इसका जिक्र चला है, क्यों ना इस फिल्म का कोई गाना जो आपको बहुत अच्छा लगता हो?
0: एक तो मेरा अपना गाना है भंवरा बड़ा नादान, उसके उसमें जो शरारत कैरेक्टर की थी वो बहुत अच्छी थी। मगर उसका दूसरा जो गाना

0: वहीदा जी, कागज के फूल का हमने गाना सुना, ये एक जो फिल्म है इंडियन क्लासिक्स में इसका शुमार होता है, लेकिन ये फिल्म असफल रही और कई लोग कहते हैं वक्त से पहले बन गई थी इसलिए ऐसा हुआ, तो आपकी क्या राय है?
1: ये सही बात है, वो वक्त से पहले बनी थी और

0: अभी इसके पहले बातचीत में आपने जिक्र किया था चौधरी का चांद का, एक बड़ी, वो भी एक बहुत अलग तरह की फिल्म आपकी, बड़ी खूबसूरत फिल्म, और उसमें भी गुरुदत्त जी आपके साथ में थे, तो उनके साथ में आपकी ट्यूनिंग कैसी थी बतौर, जैसे वो एक एक्टर एक्ट्रेस के बीच में जो ट्यूनिंग होनी चाहिए, कहते हैं कि वो बहुत जरूरी है, मायने रखती है, खासतौर से परफॉर्मेंस को लेकर के।
1: नहीं, क्या हुआ, प्यासा जब शुरू हुई, क्योंकि कई सीन में गुरुदत्त जी नहीं सिर्फ डायरेक्ट कर रहे थे, तो मेरे दिलो दिमाग में गुरुदत्त जी इज मोर अ डायरेक्टर देन एन एक्टर। तब तक आदत हो गई थी कि वो के समझने लगे हमारे प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करती है, अच्छा ऐसे नहीं हो सकता तो ऐसे कर लो, तो वो एक रैपोर क्रिएट हो गया था उनके साथ, हाँ इनके साथ बात कर सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई ये नहीं हो रहा है हमसे, तो वो समझाते थे, वो था। फिर गुरुदत्त फिल्मों की एक बड़ी अच्छी बात थी कि वो एक ही किस्म के नई फिल्में बनाते थे, जैसे CID बनाए, सस्पेंस थ्रिलर थी, फिर प्यासा इतनी सीरियस पोएट की थी, फिर चौदहवीं का चांद रोमांटिक मुस्लिम बैकग्राउंड पे थी, फिर साहेब बीबी खान, बड़ी वैरायटी हुआ करती थी, वो बड़ी अच्छी बात थी। और फिर चौदहवीं का चांद फिर उन्होंने खुद ने डायरेक्ट की, एम सादिक साहब ने की, तो तब मैंने पूछा ये किस लिए आप किसी और को दे रहे हैं, तो कहने लगे भाई कुछ भी कहो मैं तो रहूंगा सेट पे, मगर वो जो उर्दू जबान का वो जो मजा है वो कोई छोटी सी बात मैं नहीं समझ सकूंगा, क्योंकि ये मेरी अपनी जबान है ही नहीं, अगर सादिक बाबू करेंगे तो छोटी छोटी बातें होंगी, हाय अल्लाह कहने का भी अंदाज उनको जो मालूम होगा जो मुझे नहीं पता होगा, यू नो, और खासकर वो लखनऊ के हैं उस तरफ से, सही बात थी, तो उनका अगेन डिस्कशन जरूर होते थे होंगे, बट ऑन द सेट सिर्फ सादिक बाबू, ऐसा नहीं महसूस हुआ कि गुरुदत्त जी बैठे हो कह रहे नहीं आप बैठिए मैं ये शॉट ले रहा हूँ, ये वो उतनी रेस्पेक्ट देते थे अपने डायरेक्टर्स को।
0: आप लोग की राय ली जाती थी डिस्कशंस में?
1: नहीं, मैं तो यू नो ऐसी वैसी कोई बड़ी आर्टिस्ट नहीं थी कि मेरी राय लिया जाए, अगर कोई गलत ऐसा लगे तो मैं पूछती थी लॉजिकली ये कैसे हो सकता है, तो कहते थे भाई आप लॉजिक में बहुत जाती हैं, एक चीज होती है फिल्मों में उसको कहते हैं सिनेमैटिक लिबर्टी, तो वो हमको लेनी पड़ती है।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जानी मानी फिल्म अभिनेत्री वहीदा रहमान, इनसे बातचीत कर रहे हैं कमल शर्मा।
0: देव साहब के साथ में कैसी जुड़ी थी आप?
1: देव साहब के साथ क्योंकि पहले वो CID में थे तो मेरा उनका बहुत अच्छा एक वो भी अगेन ही वाज अ वेरी क्वाइट पर्सन, बट ही वाज नॉट अ टॉकेटिव पर्सन।

0: मगर वेरी नाइस, वेरी डिसेंट, और बहुत अच्छा था उनके साथ.
1: उनके साथ कोई यादगार संस्मरण आपका किसी फिल्म का?
0: हाँ, एक बार हम उनकी प्रोडक्शन थी काला बाजार नवकेतन की, उसकी शूटिंग चल रही थी ऊटी में. तो यूनिट होटल से कुछ डेढ़ घंटे की ड्राइव थी दूर, लोग के आउटडोर शूटिंग के लिए जा रहे थे. तो यूनिट पहले जा चुका था. तो देव, मैं और मेरी सिस्टर थी और मेरी हेयर ड्रेसर थी, हम जा रहे थे. देव ने कहा मैं खुद गाड़ी चला रहा हूँ. ठीक है. एक आधे घंटे के बाद देव कहने लगे, फॉग आने लगी पहाड़ियों में, तो कहने लगे वहीदा मुझे दिख नहीं रहा है. मैंने कहा क्या मतलब आपका दिख नहीं रहा है, क्योंकि पहले कभी मैंने उनको देखा नहीं चश्मा पहनते हुए. नहीं, एक तो फॉग है. मैंने कहा हाँ फॉग तो है, मगर ये क्या मतलब आपका दिख रहा है. तो बोले मैं चश्मा लगा था. तो फिर मैंने कहा आपने चश्मा क्यों नहीं लगाया. तो बोले जी मैं अपने कमरे में भूल आया. तो मैंने कहा अब क्या होगा. तो बोले ऐसा करो मैं गाड़ी रोकता हूँ, तुम आगे बैठो और अपनी दीदी और हेड्रेस को पीछे बैठने दो, और तुम मुझे बताते रहना राइट में लेफ्ट में जाना है. मैंने कहा भाई ये तो बड़ी टेंशन वाली बात है. फिर उससे बढ़कर टेंशन ये हुई, एक तो फॉग और पहाड़ी का रास्ता, आगे से एक मिलिट्री कॉन्वॉय आ रहा था. ओह, मैंने कहा देव भाई आगे से मिलिट्री कॉन्वॉय, और ये रास्ता इतना नैरो था कि कोई एक दूसरे को ये नहीं कह सकता. मैंने कहा तो मरवा दिया आपने, हम पीछे भी नहीं जा सकते और आगे तो जाना ही है. और वो जो ट्रक्स आ रही हैं, तो बोले मैं बहुत आहिस्ता चलाऊंगा. अच्छा, आहिस्ता चलाइए. और कोई और रास्ता ही नहीं था. ओ, इतनी टेंशन में हम अपने लोकेशन पहुंचे तो एक घंटा देर पहुंचे. तो वहाँ यूनिट वाले परेशान, और विजय आनंद जो थे गोल्डी, वो डायरेक्टर थे, वो पहुंचे. भाई क्या हुआ आप लोगों को? तो मैंने कहा, विजय आनंद को सब गोल्डी बुलाया करते थे, गोल्डी आपके भाई साहब चश्मा छोड़ा है और फॉग थी और मिलिट्री कॉन्वॉय आ रहा था, तो तुम्हें नहीं पता हम कितने टेंशन में खैरियत से पहुंच गए. तो दैट वॉज अ वेरी डेंजरस एक एपिसोड हुआ था.
1: तो उसी फिल्म में भी गाने बहुत अच्छे हैं. कोई गाना याद करिए आप.
0: खोया खोया चांद.

वहीदा जी, गुरली साहब का भी जिक्र आया और इसके पहले हमने बात की गाइड की, और गाइड में डांस बड़े खूबसूरत फिल्म है। वैसे गुरली साहब

0: बहुत अच्छे डायरेक्टर माने जाते हैं, और सुना कि उसका जो एक डांस का सीक्वेंस था जिसमें आप थोड़ी सी घबरा गई थी, वो कौन सा सीक्वेंस था जिसमें दीवार पे चढ़ के डांस करना था?
1: या, या, या। आज फिर जीने की तमन्ना है, बहुत अच्छी तरह से पिक्चराइज किया गया था। उसका जो मूड था वो गाने में, उस म्यूजिक में, उसके लिरिक्स में और पिक्चराइजेशन में इतना उभर के आया, तो वो एकदम परफेक्ट था। तो चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, कुछ खंडर थे वहाँ पर, वो ऊंची सी दीवार थी, कुछ 6-7 फुट की और ज़्यादा चौड़ी भी नहीं थी, और बीच में एक गैप था। तो वो कहने लगे, आप इतनी खुश और इतनी, मतलब लिटरली जो आप कह रही हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं, मगर खुश हैं। तो गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। तो मुझे थोड़ी कभी कभी हाइट से वर्टिगो सा होता है। मैंने नीचे देखा, मैंने कहा अरे बाप रे, मैंने कहा टूटे हुए पत्थर, खंडर, मैंने कहा गिरे तो हड्डी तो जरूर टूटने वाली है, मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है? तो बोले 2-4 बार आप मेरे साथ रिहर्सल कीजिए, अगर आपको थोड़ा सा भी लगा कि पैर ये हो तो रुक जाना। मैंने कहा वो तो बाद में पता चलेगा, पैर फिसलेगा तो फिसलेगा। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: गाइड की पूरी बात कर रहे हैं तो भी कम है, उसमें बहुत सारे दृश्य एक से बढ़कर एक हैं। वैसे जी उसमें आपने रोजी का एक करेक्टर किया था, और उस दौर में विमेन लिप की बात अगर हम कर रहे हैं या नारी की मुक्ति की बात करें, इस तरह के आंदोलनों का नाम भी शायद लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन रूजी एक ऐसा करेक्टर जिसने उस स्त्री की जो एक परंपरागत इमेज थी, ट्रेडिशनल इमेज, उसको तोड़ा उसने। वो विद्रोही उसमें रिबेलियस है। तो अमूमन इस तरह के खतरे लेने से जो अभिनेता हैं, अभिनेत्रियां डरते हैं कि इससे उनकी इमेज पे फर्क पड़ेगा, पता नहीं पब्लिक उसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी।
1: ये क्या हुआ, जब मैं फिल्मों में आई, मेरे दिमाग में बस एक ही बात थी कि जो भी रोल हो उसका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। और क्योंकि हो सकता हमारी फैमिली में कोई फिल्मी कनेक्शन नहीं था, परफॉर्मेंस से मेरा मतलब था, क्योंकि आजकल भी लोग पूछते हैं आपने CID का रोल कैसे किया, वो तो वैम्प का रोल था। फिर मैं कहती हूँ वो वैम्प का रोल नहीं था। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से वैम्प वो होती है जो इंटेंशनली किसी का बुरा चाहती है। वो कैरेक्टर वैसा नहीं, तो वो फंसी हुई थी, एक गरीब लड़की थी किसी के चुंगल में, उनके कहने पे जो भी कर रही है वो कर रही थी। रोजी का कैरेक्टर रोल लिया, मेरे दूसरे डायरेक्टर्स उन्होंने कहा आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं, आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ा मार रही हैं। मैंने कहा क्यों? तो बोले एक तो रोजी नाम है, और पहले सीन में ये दिखाया जाता है कि आप शादीशुदा औरत हैं, उसके बाद जाके आपका राजू से इश्क होता है, व्हाटएवर, तो ये कैसे हो सकता है, ये तो नेगेटिव कैरेक्टर है। फिर मैंने कहा भाई मैं नहीं मानती नेगेटिव कैरेक्टर या पॉजिटिव कैरेक्टर, ये एक कैरेक्टर है, एक नॉवल लिखी गई है। और ये नहीं कि अक्सर फिल्मी कहानियां क्या होती हैं, दिमाग में जिस आर्टिस्ट को लेने वाले हैं उनके पर्सनालिटी के हिसाब से लिखी जाती है, ये एक प्रोफेशनल ऑथर ने लिखी, उसको हम प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक मेरी बन रही थी फिल्म नीलकमल, उसमें मेरा नाम था सीता और मनोज का नाम था मेरे ख्याल से राम, ऑब्वियसली। तो वो उन्होंने बहुत ऑब्जेक्ट किया, आपने ये रोजी का रोल किया, मेरी तो आपने बर्बादी कर दी, ये पिक्चर मेरी नहीं चलेगी, तो सीता का क्या होगा? तो मैंने कहा एक बात बताइए, उसमें राजकुमार का एक कैरेक्टर है जो पिछले जन्म में हम दोनों का बड़ा प्यार है, तो इस जन्म में आते रहते मैं एज ए स्लीप वॉकर चली जाती हूँ, तो वो सीता का राम पिछले जन्म में कहाँ चला गया? जो तो इस जन्म में आप कह रहे हैं सीता को तो हर वक्त सीता के राम के साथ ही होना चाहिए, तो ये आर्ग्यूमेंट उनको अच्छा नहीं लगा, चुप हो गए। फिर भी मेरे ख्याल से गलत थी, आपकी गाइड जो है वो चलेगी नहीं और आपको बहुत मतलब क्रिटिसिज्म मिलेगा। मैंने कहा आई डोंट केयर, मुझे करना है, मुझे रोल बहुत अच्छा लगा।
0: और दोनों ही फिल्मों ने इतिहास रचा, आपको गाइड के लिए भी फिल्म फेयर अवार्ड मिला,
1: बिल्कुल सही है,
0: कमल के लिए भी मिला। कभी आपको ऐसा लगा कि ये दो फिल्मों को अगर हम छोड़ दें, किसी फिल्म में आपने बहुत अच्छा काम किया और उसके लिए आपको अवार्ड नहीं मिला, कभी अखरा कि नहीं इसके लिए भी मिलना चाहिए था मुझे?
1: मुझे अपना रोल मुझे जीने दो में बहुत अच्छा लगा था, वो भी कंप्लीट कस्म का रोल था, उसमें वेरिएशन बहुत थे इमोशंस के, कि एक तवायफ है उसको किडनैप किया जाता है, फिर

0: उससे शादी होती है, फिर वो माँ बनती है, कैसे उसमें चेंज आता है, कैसे वो अपने हस्बैंड को, डाकू को समझाती कि भाई छोड़ दो इन सब चीज़ों को, सरेंडर कर दो बच्चे की खातिर. सो देयर द इमोशंस के जो वेरिएशन और अप्स एंड डाउन्स थे, वो बहुत अच्छा कैरेक्टर था. मुझे लगा शायद उसमें अवार्ड मिलने का चांस है, वो नहीं हुआ, इट्स ओके.
1: डाकू की समस्या पर वो फिल्म थी.
0: हाँ.
1: सुनील दत्त साहब के साथ में.
0: हाँ जी.
1: और सुनील दत्त साहब के साथ में आपने खूब दौरे वाले भी किए फौजियों के साथ में, बीच में जाकर के खूब काम किया. उनके साथ में, उनकी ट्रूप के साथ में जाती रही ना.
0: तो उनका था एक अजंता आर्ट्स ट्रूप एंटरटेनमेंट समथिंग ऐसे तरह का. तो हम लद्दाख गए थे उनके साथ, और रास्ते में जो भी सिलीगुड़ी जहाँ भी जाते जवान थे वहाँ, बहुत अच्छा भी लगता था उन लोगों को देखकर, खुशी भी होती थी, दुख भी होता था, यू नो. और काफ़ी प्रोग्राम वगैरह हमने किए. फिर बांग्लादेश वॉर के बाद वहाँ भी गए थे ट्रूप को एंटरटेन करने के लिए.
1: तो ऐसा है कि कुछ देर पहले ही हमने मुझे जीने दो की बात की है, तो उसमें भी बहुत अच्छा संगीत है. उसका कोई गाना जो आपको बहुत पसंद हो?
0: उसमें जयदेव जी का म्यूजिक था.

0: एक और आपकी बड़ी ऑफबीट फिल्म रही है, बड़ी खूबसूरत फिल्म रही है, सुनील दत्त साहब ने उसका निर्माण किया, जयदेव साहब का उसमें संगीत था, रेशमा और शेर, और अमिताभ बच्चन साहब खासतौर से जो अपने खूबसूरत और गहरी दानेदार आवाज के लिए जाने जाते हैं, असरदार आवाज के लिए जो उनके डायलॉग सुनने जाते हैं उसमें उनको गूंगा बना दिया गया और इसमें जयवंत भी थे आपके साथ में, इसके बारे में कुछ बताइए।
1: रेशमा शेरा भी बनी, उसके आउटडोर्स खासकर बड़े इंटरेस्टिंग थे क्योंकि हमको टेंटों में रहना पड़ता था और जैसलमेर से कुछ 80 किलोमीटर आगे रेगिस्तान में, मगर बड़ा मजा आया। और हाँ, मैं मानती हूँ, मगर उस वक्त अमिताभ बच्चन इतने बड़े स्टार नहीं बने थे, और उससे पहले उन्होंने एक फिल्म की थी सात हिंदुस्तानी, ये उनकी दूसरी फिल्म थी, और सब उस वक्त सोचते थे कि इसमें अमिताभ बच्चन आगे क्या होगा इनका, क्योंकि एक तो माशाल्लाह बहुत लंबे हैं और सब कहते थे थोड़े ऑकवर्ड से लगते हैं उनकी लंबाई की वजह से, तो मैंने कहा सुनील साहब भी बड़े लंबे हैं, वो भी उनको 6 फुट तो

0: हैं होंगे ही। और जब पैकअप हो जाता था, कुछ करने को नहीं, रेगिस्तान में टेंटों में रहते थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो उस वक्त अमिताभ, ये जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा काम है, रोज ढोलकी बजा के गाया करते थे। मगर उनके एक दो शॉट देखे मैंने रेशमा शेरा में, तो जब सुनील जा रहे हैं तो माँ कहती है छोटू उसको ये खाना दे दे, तो भागते हैं, तो तब तक वो ऊंट निकल चुके हैं, बहुत दूर चले गए। तो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट का जो एक्सप्रेशन था अमिताभ का, जो बहुत अच्छा था। तो हम आपस में, नरगिस जी हुआ करती थी बैठे, हम दूसरा शॉट हो रहा था, बैठे गप्पे मार रहे हैं। मैंने कहा मुझे लगता है ये एक दिन बहुत बड़े आर्टिस्ट बनेंगे। तो बोले कैसे, एक तो डायलॉग नहीं बेचारे का, तुम किस हिसाब से कह रही हो। मैंने कहा नहीं, फिल्म में साइलेंट एक्सप्रेशन देना बहुत मुश्किल होता है। अगर इफ यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन अ साइलेंट एक्सप्रेशन, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और डायलॉग साथ में, मैंने कहा उसकी बाद उनकी आवाज इतनी अच्छी है, जब वो टॉकी डायलॉग आई मीन रोल मिल जाएगा, मेरे ख्याल से ही डू वेरी वेल। तो फीलिंग होती है कि ये बहुत बड़े आर्टिस्ट और स्टार बनेंगे, वो जो हो चुका।
1: मैंने तो अखबारों में पढ़ा कि अमिताभ बच्चन साहब ने भी कहा, और अभिषेक बच्चन ने, उनके बेटे ने भी कहा कि हमारी फेवरेट एक्ट्रेस में से वहीदा जी हैं। और अमिताभ बच्चन साहब की बात करें तो आपने उनकी नायिका की भूमिका भी की है और उनकी
0: हाँ
1: माँ का किरदार भी अदा किया है।
0: हाँ बिल्कुल
1: कैसे कलाकार आगे चल के लगे आपको, वो जो शुरू में वो जो बात होती
0: हाँ
1: थी उस समय, बाद में तो सब कुछ बदल ही गया पूरा,
0: या
1: उन्होंने साबित भी कर दिखाया, लेकिन आपका अनुभव कैसा रहा उनके
0: मेरा
1: साथ?
0: अनुभव उनके साथ बहुत ही अच्छा रहा है आज तक, रेशमा शेरा से लेकर आज तक। और क्या, हर इंसान बदलता है, उसमें बदलना भी चाहिए, स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए। मगर मेरे साथ तो उनका स्वभाव, जो भी कहिए, उनके बच्चे जया, सब कुछ का बहुत ही अच्छा रहा है। और वो इतने ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, पंक्चुअल हैं, उनके साथ कई फिल्में काम की तो कोई तकलीफ परेशानी कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि बहुत बड़े स्टार हो गए, जब मैंने कैरेक्टर रोल शुरू कर दिए तो उनमें बदलाव आ गया कि नहीं, बहुत ही है, मतलब इट्स वेरी क्रेडिटेबल, बहुत ही
1: कोई
0: अच्छा है उनका ये।
1: दिलचस्प सीन याद है उनके साथ किया हुआ आपको किसी फिल्म का?
0: हाँ, रेशमा और शेरा में वो न्यू कमर थे, एक सीन था एंड में कि मैं उसको तमाचा मारती हूँ बड़े जोर का, तो इत्तेफाक से आंटी बच्चन, मतलब अमिताभ की वालदा, सेट पे बैठी थी। तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोले वहीदा बहुत जोर का नहीं लगाना तमाचा। ओ, मैंने कहा, उधर से सुनील दत्त ने कहा जी एक कसके लगाइए ताकि रीटेक की जरूरत नहीं। मैंने कहा ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। फिर मैं वापस गई जहाँ आंटी बैठी थी, तो मैंने कहा आंटी आप क्यों नहीं थोड़ा बाहर घुमाइए, कितनी देर से गर्मी में कहाँ बैठी हैं आप सेट पे, आप जरा बाहर ताजी हवा खाइए। फिर कहले तुम, पता है मुझे क्यों बाहर भेज रहे हो? मैंने कहा क्यों, तुम कस के मारने तो मैंने कहा देखिए, अगर मैं एक कस के मारूं तो वो शॉट खत्म हो जाएगा, अगर गलत ठीक नहीं हुआ, वो डायरेक्टर कहेंगे और एक टेक और एक टेक, फिर 6 तमाचे पड़ेंगे उसको, तो हंसने लगी। बोले नहीं नहीं अच्छा मैं जाती हूँ। फिर मैंने सुनील दत्त को कहा, डायरेक्टर को, देखिए अगर तमाचा पड़ने से पहले कोई गलत पोजीशन मेरी या डायलॉग गलत बोल दिया कुछ भी हो, तो पहले काट दीजिए बेचारे को, क्यों इतने तमाचे मारूं, पहले तो आंटी ने मुझे कॉन्शियस कर दिया क्या कस के नहीं मारे, बाद में एक दिया मैंने बहुत कस के
1: यहाँ हम रेशमा और शेरा, इसका संगीत बहुत ही खूबसूरत है, जयदेव साहब ने इसका बहुत ही दिल को छू लेने वाला संगीत दिया है। ये कोई गाना हो जाए रेशमा और शेरा का।
0: रेशमा कैसे, वो एक मीठी सी चुबन, एक
1: जी
0: उसकी,
1: जी
0: हाँ बहुत मीठा गाना, बहुत अच्छा है।
2: एक मीठी सी चुबन, एक ठंडी सी अगन,

0: वहीदा जी, आपको अपनी मतलब किस फिल्म की भूमिका बहुत चुनौतीपूर्ण लगी, बहुत चैलेंजिंग लगी?
1: मैं तो कहूंगी गाइड का रोल, इसलिए तो 40 साल पहले बनी फिल्म, 40 साल हो गए हैं, वे बियॉन्ड इट्स टाइम. और इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट रोल. कभी वो रोल देख के ये नहीं लगा कि ये बुरी औरत है, यू नो, जस्टिफिकेशन था. और एक था, दे वर नॉर्मल कैरेक्टर्स, जैसे कि मार्को का या राजू का या रोजी का, कि हर इंसान हर वक्त कोई सेंट तो होता नहीं है और ना ही पूरा बुरा होता है. और एक पॉइंट आता है लाइफ में, सिर्फ जो अपने आप के लिए जीना चाहते हैं, जो भी चीज़ हम अपने लिए करना चाहते हैं. तो रोजी का पैशन था डांस करना, वो उसको मार्को से नहीं मिलता, तो उसको एंकरेजमेंट राजू से मिलता है. फिर एक पॉइंट आता है जहाँ सडनली राजू सेल्फिश हो जाता है, कि वो एक जगह एक सीन कहते हैं, अभी बस मैं रिटायर होना चाहती हूँ, शादी करना चाहती हूँ. राजू कहते हैं, नहीं, अभी तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने हैं, अभी जल्दी क्या है. ये कहती है, नहीं, मुझे बच्चे चाहिए. अरे, बच्चे भी हो जाएंगे, इसकी क्या. उस वक्त राजू सेल्फिश हो जाता है, उसको एक अय्याशी की आदत पड़ जाती है, पत्ते खेलना, शराब पीना. वो कहते हैं, कहाँ से जिम्मेदारी लें शादी बच्चों की. हर एक मौके पे, कभी मार्को सेल्फिश हो गया था तो अपने पैशन में, तो उसने अपनी बीवी को भूल जाता है. अब रोजी पैशनेटली डांसर बनना चाहती है, वो बन जाती है, फिर कहती है, नाउ आई वॉन्ट टू गेट सेटल्ड. फिर उस वक्त राजू कहते हैं, नहीं, अभी कहाँ सेटल होंगे. तो ये चीज जो थी उसको बड़े डेलिकेट ये था. सो यू नेवर फील जब आप मूवी देखते हैं कि ये कैरेक्टर अच्छा नहीं है, ए बैड पर्सन. नो, नोबडी इज बैड एंड नोबडी इज गुड.
0: देव साहब के साथ में और जो आपके भाव, क्योंकि वो भी बड़े सदाबहार अभिनेता रहे हैं और उनके साथ में आपकी बड़ी यादगार फिल्में रही हैं, हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे उनके बारे में कुछ और, आपकी मन की बातें कुछ और बताइए उनके बारे में, कैसा है उनके साथ में केमिस्ट्री थी आपकी खास उससे? एक होता है कि अभिनेता और अभिनेत्री के बीच में एक वही ट्यूनिंग वाली बात है, फिर एक इंसान के रूप में भी हमारे रिश्ते होते हैं, कैसे थे वो?
1: जैसे मैंने कहा, वो भी बड़े टॉकेटिव नहीं, उनको बात करने बाहर निकालना पड़ता था सवाल कर करके. तो हम प्रेम पुजारी जब सुनाने आए, तो वो उनकी पहली डायरेक्टोरियल डेब्यू डायरेक्टोरियल मूवी थी, तो कहने लगे, मैं पहली बार डायरेक्ट कर रहा हूँ तो तुमको तो करना ही पड़ेगा. मैंने कहा, अच्छा, ठीक है, कर लेंगे.
0: इतना हक,
1: हाँ, हक जता रहे थे जैसे. तो बड़े कोऑपरेटिव, बड़े अच्छे प्रोड्यूसर हैं, उनके साथ कोई ऐसी तकलीफ नहीं होती. जब हम यूरोप गए थे प्रेम पुजारी की शूटिंग के लिए, लंदन, स्विट्जरलैंड, बार्सिलोना वगैरह, तो वो काफ़ी केयर लेते थे, बहुत अच्छी तरह से. तो ही इज़ वेरी नाइस एज अ प्रोड्यूसर
0: और
1: एंड
0: एक एनर्जी से भरे हुए
1: वो
0: से लगते हैं
1: बेहिसाब. मैं तो उनको मजाक में एवर रेडी बैटरी बुलाती हूँ, क्योंकि वो कभी थके, कभी मैं तो कहती, भाई मैं थक गई अभी.

0: पैकअप कर लें, तो वो तो कभी नहीं कहते थे। वो उतने जब खासकर जब वो प्रेम पुजारी डायरेक्ट कर रहे थे तो शॉट देते थे, शॉट अरेंज किया, ओके हो गया, फिर कैमरामैन को कहते थे ये शॉट है ऐसा है, फिर भाग दौड़, फिर वो पसीना पसीना हो जाते थे तो ऊपर कमरे में मेकअप रूम में जाते थे, फिर ताज़ी शर्ट पहन के आते थे ताकि पसीने वाली शर्ट नहीं हो शॉट के लिए। फिर वो हुआ, फिर उसको सुखाते थे, वो कहते थे, मैं कहते देव आप हमेशा ऑल द टाइम यू आर फुल ऑफ एनर्जी, सो यू आई will call you ever ready battery.
1: अभी भी उनके अंदर जैसे एक नौजवान होता है और वो फिल्में बनाए जा रहे हैं, बेशक वो सफलता मिले ना मिले लेकिन वो कारवां नहीं रुका है, उनका वो जज्बा अभी भी वैसे ही है और फिल्में बनाए जा रहे हैं। तो अभी उनसे कभी फोन पे आपकी बातचीत होती, मुलाकात होती है?
0: नहीं, तो एक बार फिल्म खत्म हो जाती है हम कभी एक दूसरे से मिलते ही नहीं किसी से भी, क्योंकि सब अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो जाते हैं। मेरे जो फिल्मों में दोस्त हैं वो एक्सेप्ट नंदा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और उसके बाद सिवाय काला बाजार के बाद हमने कोई काम ही नहीं किया, मगर 40-45 साल की दोस्ती रही है। सलीम साहब हैं, यश जौहर हैं, जो जौहर थे बेचारे, उनसे उनकी फैमिली से वैसे भी काम से कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि उनकी फिल्मों में तो यश जौहर के काम नहीं किया। हालांकि यश जौहर को मैं तब से जानती हूँ जब वो मुझे जीनोदे में थे प्रोडक्शन कंट्रोलर, और फिर नवकेतन में थे गाइड के वक्त, प्रेम पुजारी में थे, तो तब से मुलाकात दोस्ती है, वो हमेशा मिलते रहे हम।
2: दोस्तों वहीदा जी से करने को इतनी सारी बातें हैं कि समझ में नहीं आता कहां से शुरू करें और कहां से खत्म करें। आज के कार्यक्रम का वक्त खत्म होने को आया लेकिन हमारी बातें अभी खत्म नहीं हुई हैं, इसलिए वहीदा जी अगले हफ्ते सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम को फिर से रोशन करेंगी। भूलिएगा मत, अगले रविवार फिर से सुनिएगा सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम। हम आपको बता दें, वहीदा जी से हमारे साथी कमल शर्मा ने बातचीत की। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने में हमें तकनीकी सहयोग दिलीप कुलकर्णी ने दिया। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने।

अभी आप विविध भारती प्रसारण सेवा केंद्र से कार्यक्रमों का अनुप्रसारण सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5 बजे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वनमंडल के सूरजपुर में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये कल्याणपुर,

0: कोटबहरा घाघी टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के राजपुर और वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 7 है। ये कुंदीकला, जामदोहर, अखोरा, सिधमा, बदौली, जवाखान, मेंढारी, फोकली महुआ, करमडीहा, भगवानपुर, नवापारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर, सीतापुर और मैन पार्ट में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये सकालो, किशुनपुर, गंगरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, पड़ोली, जमीरा, मसगा, डांडपारा, सायर, कुमडेवा, लक्ष्मणगढ़, उदरबसवार, केदमा, जगरनाथपुर, ढोढ़ा गांव, कठबुड़ा, शिवनाथपुर, घासीडी, दातीढाप, गढ़गांव, बरडांड, चोरकी पानी, कंडराजा, पेंट के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के कुनकुरी और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 34 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चराईमारा, रानी कोम्बो, खड़ा माचा, पीठा आमा, राजा आमा, महेशपुर, झिमकी, चट्टानपारा, कुकुर गांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, बाकारुमा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 41 है। ये लुटान, पुरुंगा, बनहर, औरानारा, करोंधा, जिगड़ा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वनमंडल के एतमानगर, पसान और जडगा में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये मड़ई, कोदवारी, भूडूपानी, कटमोरगा, लालपुर, परला, चोटिया, कापानवापारा, खड़पड़ी, बनिया, झुनकीडी, बांधापारा, कुकरी कादर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़, घरघोड़ा और खरसिया में हाथियों की कुल संख्या 87 है। ये बंगुरसिया, जुनवानी, कशडोल, बुलेकेरा, चिमटापानी, गया, कटाई पाली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये तालदादर, पकरीद, नवागांव, कोठारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमार हाथी हमार गोठ।

आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट FM बैंड 103.2 MHz पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है किसान वाणी।

किसानवाड़ी कार्यक्रम में मैं जीवन भैया जम्मो श्रोता संगवारी भाई बहनी मन के स्वागत करत हूँ। जय जोहार, राम राम। किसान भाई हो, घाम कस के बाढ़े, अंगरा कस जनावत है, धरती है लक लक ले तीपे है, औ नदिया तालाब कुआं बांधा डबरी नरवा के पानी है, देखते देखत अटावत जाते।

0: जमो जीव जंतु मन पानी और छैया के तलाश में इति तेती घूमत हैं जूड़ छाँव पाए बर, है ना। काहे घाम हर ऐसा जनात है कि बिल्कुल जरूर ही तन लगा ऐसे लगत है भाई। यही बेरा में किसान मन के काम बूता घला बाढ़ रही थी, है ना। तो काम भी देखना है समय के साथ मौसम के सबो मिजाज लगला सहत काम करते आगू बढ़ते रहना है भाई। आज हम चर्चा करबो हरियर खाद सनई ढेचा की खेती। किसान भाई हो केंद्र सरकार के मनसा है कि खेत बचाओ अभियान। खेत कैसे बचाना है भाई, पहली के जिन खेती री से लंबा टिकाऊ खेती घुरवा के खातु ला डाराए और फिर बस उसके खातु के बल में बढ़िया फसल ला उपजावत रही नहीं। जेन फसल ला खा के किसान भाई श्रोता संगवारी जम्मू चंगर है रोग राय बीमारी ले दुरिया रहे। फिर आज धरती दाई के कोरा में रासायनिक खातु के उपयोग दिनों दिन बढ़ा थे। किसान मन कहते कि भाई एक डारे ले उत्पादन है बढ़ा थे। फिर संगी हो आप अपन ये सोचो कि धरती है दिनों दिन कमजोर हो जाते जिन ओखर उत्पादन करे की क्षमता है वो है कमजोर हो जाते, है ना। ज्यादा खातु ला डार डार के खेत ला बिल्कुल एक दिन पथरा बना डार वो। जेखर से केंद्र सरकार हर भाई यही कहते कि खेत ला बचावा काहे पारंपरिक खेती है जैविक खेती है सनई ढेचा जिन हरियर खाद है ओखर उपयोग ला करो जिन हर आप मन के खेत ला बढ़िया स्वस्थ रखी धरती ला और हमरो शरीर पर स्वस्थ उत्पादन उखर से मिले। यही बात ला जोर देवत केंद्र सरकार के खेत बचाओ अभियान हमर किसान मन ला सचेत करते और जेखर से रासायनिक खातु ला कम करो। सनई ढेचा जिन खातु है हरियर खाद है वह धरती दाई के कोरम नाइट्रोजन के जिन मात्रा ला बढ़ाते जेखर से फसल उत्पादन है बढ़िया होते। यूरिया डारे के नहीं पड़े रासायनिक खाद के उपयोग ला कम करे पड़ते अब एखर से हमर जन उत्पादन है दिनों दिन लंबा बेरा तक एक बराबर और बढ़ते क्रम में मिलत रहे थे। तही पाए के ये योजना ला ये केंद्र सरकार के अभियान के देवा जिला सरकार हर घेरी बरी जम्मू किसान मन ला कहते भाई एक बार तो किसान निधि योजना चलाते फसल बीमा योजना है जिन किसान मन ला प्रोत्साहित करते है ना। काहे ज्यादा से ज्यादा जैविक खेती की ओर जाओ किसान भाई हो जेखर से हम बढ़िया अपन और अपन धरती दाई के कोरा ला स्वस्थ रखी। कार्यक्रम ला आगू बढ़ावत भाई आप मन ला सुरता रहे थे कि दिन के का कार्यक्रम आते तो आज है हमर किसानवाड़ी गांव में ये कार्यक्रम है ना। तो चला चली आप मन ला लेगा थन पेंड्रा गौरेला कोती जी हाँ के गांव है मंझगवा पेंड्रा जिला के है पेंड्रा मारवाही के किसान और उद्यान विकास अधिकारी से स्थल ध्यानांकन पर आधारित कार्यक्रम है। संपादन रिकॉर्डिंग बसाकू भैया के हरीश माड़वा और संयोजन और प्रस्तुति है डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन के। तो सुनिए किसानवाड़ी गांव में ये कार्यक्रम ला
1: संगी हो हरीश माड़वा के जय जोहार। आज आप मल्ला किसानवाड़ी गांव के अंतर्गत ले चलथन गांव मझगवा जिन हर जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही में आथे। यहाँ के किसान और उद्यान विकास अधिकारी ले होए गोठ बात आप मल्ला सुनाबो। कार्यक्रम के संपादन और रिकॉर्डिंग हमरे है अने हरीश माड़वा के। कार्यक्रम के संयोजन और प्रस्तुति है डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन के। और हमारे बीच में उद्यान विभाग के अधिकारी मन बैठे हमारे और उनकर से चर्चा करते हैं। भैया जय जोहार।
2: जय जोहार।
1: नाम बताहा परिचय बताहा।
2: मोर नाम है सोहन सिंह उट्टी। अभी वर्तमान में मैं गौरेला पेंड्रा मरवाही में उद्यान विकास अधिकारी के पद में हूँ।
1: उद्यान विभाग के योजना चलत है और भी जून के महीना चलत है तो किसान मन ला उद्यानिकी के बारे में कौन प्रकार के सलाह देना चाहता है का योजना है।
2: अभी हमारे पिछले सरकार के तरफ से जहां हमारे विभाग जो है पहली हमारे विभाग जो रही से कृषि विभाग के साथ रही से 1980-81 के बाद जब अलग हुए है तो मैं देखे हूं कि बहुत अच्छा योजना आए है और लगभग आज योजना हमारे विभाग 40 साल अलग हो गए है तो बहुत अच्छा योजना है।

0: योजना के नाम है समेकित उद्यान विकास योजना। इस समेकित उद्यान विकास योजना में क्या है, सबसे पहले हमन किसान मन ला अलग अलग घटक के रूप में चार घटक देथन। तो पहले एक घटक रहते जैसे पौधा, तो कोई भी किसान मन कोई भी फलदार पौधा चाहे आमा हो, नींबू हो, अमरूद हो, नाशपाती हो, लीची हो, जो भी हो फलदार लगा सकते हैं। फलदार के बाद हमने यहाँ अनुदान की बात करूँ मैं, 10,938 रुपये के अनुदान बन थे, तो 10,000 के तो करीबन हमन पौधा दे देते हैं, बाकी 938 रुपये जो बचते ना तो हम किसान के खाते में DBT कर देते हैं। एकर साथ ही साथ अभी जो पिछले सरकार थी वो कही से कि किसान के पास जब तक ट्यूबवेल नहीं रही, पानी नहीं रही, तो पौधा कैसे जी ही? तो ओखरे चलते हमन गर्मी में हमारे जैसे 18-19 जून के आसपास पानी आते, तो ओखर पहले हमन व्यवस्था करे हन, शासन की व्यवस्था है कि पहले ट्यूबवेल होना चाहिए। तो ट्यूबवेल खातिर अलग अलग वर्ग के किसान के अलग अलग राशि अनुदान के रूप में, जैसे मान लो सामान्य वर्ग किसान है तो सामान्य वर्ग के किसान ला हमन 25,000 अनुदान देथन, और पिछड़ा वर्ग के किसान ला हमन 35,000 अनुदान देथन, और जहाँ आदिवासी यानी कि ST और SC के किसान ला 43,000। और 43,000 में जैसे मान लो 25,000 के आपके ट्यूबवेल खनन रही और 18,000 के पंप के खनन, इस तरह से हमन गर्मी में खुदाई की व्यवस्था करबो। एकर पहले और व्यवस्था करे गए है जैसे 1 हेक्टेयर में फेंसिंग जोन होते, तो फेंसिंग जोन है 1 हेक्टेयर में जहाँ लागत आते 1,08,970 रुपया, तो किसान मन लगावें और लगाए के बाद फोटोग्राफ्स वगैरह हमारे विभाग में जमा कर दें, तो 50% अनुदान 54,485 रुपये का अनुदान किसान के खाता में DBT माने कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करते हैं। तो बहुत अच्छा योजना है। एकर बाद जैसे हो गए तीसरा कि फेंसिंग हो गए, ट्यूबवेल हो गए, पौधा लगाने, एकर बाद जैसे पौधा में जब तक फल नहीं आ जाए तब तक किसान मन का करें, तो खर बीच में हमन इंटरक्रॉप के रूप में या अंतर्वर्ती फसल के रूप में हमन सब्जी के पौधा देथन। जैसे हमारा भी वर्तमान में जैसे गवर्नर नवरवाही के 3 ब्लॉक में तीनों जगह नर्सरी है, और वर्तमान में भी गवर्नर ब्लॉक के लालपुर नर्सरी में मिनी प्लग टाइप के नर्सरी है जहाँ हमन पौधा तैयार करथन। तो किसान मन से निवेदन भी है कि मन जाके पौधा ले सकते हैं, यदि पौधा नहीं ले सकी तो कोई रजिस्टर्ड दुकान से सब्जी बीज ले ही बिल के आधार पे किसान के खाता में 30,000 रुपया के DBT करे के प्रावधान है। तो बहुत अच्छा योजना है, मैं किसान मन से निवेदन करूं, इतना मस्त योजना, मैं तो यही कहूं कि मस्त योजना, जबरदस्त योजना है, किसान मन भरपूर उपयोग लें। का है वैसे भी अभी हमारे जैसे पिछले दिन में हमारे आम के प्रदर्शनी नगरी से तो ऐसे ऐसे आम आए हैं जहाँ 2.5 लाख जैसे मियाँ जाकी के आम है, जैसे हमारे हाथी झूल है 4 किलो के आम है। फिलहाल मैं यही कहूँ कि हमारे गौरला पिंड वही का ये हाथी झूल तो नहीं है, लेकिन दशहरी जबरदस्त आम है जिसका कीमत आज बाजार में 120 रुपये दशहरी लगावा, पहली वरायटी में बॉम्बे ग्रीन है, दशहरी लंगड़ा, चौसा, फजली, ऐसे करके लगावा, वो भी जो भी चीज किसान लगा सकते हैं, लेकिन योजना जबरदस्त है।
1: तो एक तैयारी गड्ढा के खुदाई कैसे करना चाहिए और गड्ढा खुदाई कई दिन पहले रोपण के पहली जरूरी है, एला सब ना बताता।
0: जिसे आम के गड्ढा की साइज रहते 3 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा, 3 फीट गहरा, एकर खातिर खोदथन ताकि गर्मी के धूप का पाए रहे, जो भी कर कीटाणु है ओकर सब मर जाए, और जैसे हमार पानी गिरी हमार जैसे छत्तीसगढ़ लगभग 18-19 जून के आसपास पानी गिरते, तो पानी गिरे के बाद लगभग किसान मन से निवेदन करूं कि 25-26 जून के आसपास हमार शासकीय उद्यान रोपड़ी से बढ़िया स्वस्थ कलमी पौधा के ला के लगावें और अपन अच्छा उत्पादन लेवाएं।
1: तेमा खाद के प्रबंधन कैसे करना चाहिए?
0: गड्ढा खोदते जहाँ 3 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा, 3 फीट गहरा, तो मैं क्या है सबसे पहले जो ऊपर के मिट्टी रखे 1 फीट ओला हम पहले नीचे डाल देते हैं, और जो बीच वाले की जगह में कम से कम मैं चाहूँ किसान मान अच्छा सड़ा हुआ गोबर के खाद है ना, वही जो बीच के जो 1 फीट के जगह में मस्त मैंने गोबर खाद डाल रहे और BHC या DDT पाउडर डाल ताकि हम दीमक ना आ पाए हमारे जो उद्यान विभाग के कलमी पौधा का, चाहे जो भी हो जिसे बात कर रहे हैं, चाहे कलमी आमा हो, चाहे नींबू हो, चाहे मौसम्बी हो, तो वो पौधा लगावें।
1: जंगल से घिरे रहते हैं, हर गांव में देखिया तो हर कोई के घर में कोला बारी दिखे, तो कोला बारी में कौन प्रकार से साग भाजी आप मन उगा सका था, एक बारे में थोकन बता दे बना।
0: कि वैसे भी हर किसान के पास कहीं कहीं 5 डिसमिल जमीन, 5-10 डिसमिल रखे हुआ है ना, हमारे विभाग से संपर्क करें, और ऐसे से आजकल हमारे विभाग से पौधा तैयार हो लगी से, जैसे ग्राफ्टेड टमाटर है, ग्राफ्टेड भट्टा है, मैंने ग्राफ्टेड टमाटर और भट्टा की विशेषता यह है कि एक टमाटर के पौधा बढ़िया वाला सहारा दे ही, मैंने स्टेकिंग सहारा

0: तो करीबन वो 10 से 15 किलोग्राम तक आती, भाटा की विशेषता है 10 से 12 किलोग्राम जाती। तो ये सब चीज क्या है ना, एक तो जगह कम रहती, तो मैं चाहूँ कि अच्छा सिलेक्शन हमारे नर्सरी से पौधा लें, ग्राफ्टेड टमाटर लें, तो ऐसे पौधा लगें कि उन्नत किसान बनना, सफल किसान बनना गर्व ही नहीं बल्कि गुरूर करना चाहिए। उन्नत किसान बनना, सफल किसान बनना घमंड ही नहीं बल्कि गुरूर करना चाहिए। उद्यान विभाग के 5 घटक, फल फूल सब्जी औषधि और आयल पौधा पम्प लगाना जरूर चाहिए, जरूर लग चाहिए। धन्यवाद।
1: बहुत बढ़िया बात बताया है उर्टी जी हमारे बीच में आके कि कौन हिसाब से उद्यान विभाग के योजना के फायदा हमला उठाना है। आप मल्ला बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार।
0: जय जोहार भैया जी, जय जोहार।
1: संगी हो हमारे बीच में ग्राम मजगवा के किसान घलो बैठे हवाए, कौन हिसाब से आप मन खेती किसानी के बूता करता आपे मन से सुना था। जय जोहार भैया।
2: जय जोहार।
1: कान है आप मन के?
2: पवन सिंह उट्टी।
1: अच्छा,
2: ग्राम मजगवा।
1: हाँ, हम ले बताहा कतिक धन है आप मन के?
2: 5-6 एकड़ खेती है भैया।
1: अच्छा अच्छा, 5-6 एकड़ है। कौन प्रकार के माटी है भैया?
2: 2 टाइप का है, रेतीला है, हल्का कन्हारी मिट्टी है।
1: अच्छा अच्छा, तो इसमें का फसल लगा था?
2: धान का भी है, गेहूँ है।
1: अच्छा, तो गर्मी में गेहूँ लगा रहा?
2: हाँ लगा था ना।
1: अच्छा, तो बने उत्पादन हुई इसका?
2: अच्छा उत्पादन हुआ।
1: तो ये गेहूँ लगा रहा तो कौन प्रकार के बीजा के चयन कर रहा, कौन बीजा ला लगा रहा, का उपचारित बीज घलो हुआ थे?
2: हाँ उपचारित बीज है, सरवती गेहूँ था।
1: अच्छा अच्छा,
2: 1 एकड़ में लगाया था मैंने।
1: कैसे कौन विधि से लगाया रहा और का खातू दे रहा है माँ?
2: ये अपने जोताई विधि है, अपन किसानी जिस टाइप का हम लोग गांव देहात में कर रहे हैं,
1: छिड़काव पद्धति से।
2: छिड़काव पद्धति से डीपी यूरिया डाला था, बोते समय डीपी डाले थे।
1: अच्छा, और जैसे गेहूं के उत्पादन बढ़िया हुआ थे, एक बार कई बात के ध्यान रखे पड़ते, कतार बोनी घलो करे पड़ते, तो ये सब नहीं कर रहा अपन कतार?
2: नहीं किए थे।
1: अच्छा अच्छा, तो कतेकन हुई कई एकड़ में बो रहा गेहूं का है?
2: करीब 1.5 एकड़ में थे।
1: अच्छा, कतेकन हुई सब?
2: 7-8 क्विंटल मिला था गेहूं।
1: 7-8 क्विंटल। अच्छा अच्छा, तो घर खाइबर रखे है कि बेचे भाचे है?
2: नहीं घर खाइबर है।
1: अच्छा, हम ले बताहा एती बरन के जिन क्षेत्र है जीपीएम जिला के, तो एती ज्यादातर रासायनिक खातों के इस्तेमाल नहीं करे जाए, आप मन कौन खातों के उपयोग करता?
2: गोबर खाद होते अधिकांश।
1: तो गरुआ बछरू है आपो मन
2: है?
1: क्या ठीक?
2: 5 है।
1: तो एक साल में कतेकन खातू हो जाते?
2: 2 टाली हो जाता है, कुछ खरीद भी लेते हैं।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप मन जैसे रासायनिक खातों के उपयोग नहीं करका?
2: कम मात्रा में करते हैं।
1: अभी जैसे हम बात करें भैया, जून के महीना चला थे और खरीफ फसल के हमला तैयारी करना है, तो आप मन कौन हिसाब से करता?
2: भाई गर्मी भी जोताई होता है खेती का,
1: अकरास जोताई।
2: अकरास जोताई। अब खेती के लिए तो खेत को अच्छा से बनाना पड़ता है, उस हिसाब से फिर फसल होता है इसमें।
1: अच्छा अच्छा, जैसे कतको झी के माटी के पीएच मान के जांच कराते हैं कि अम्ली है कि क्षारी है कृषि वैज्ञानिक से, तो कहा आप मन खेत के माटी की जांच कराए?
2: हाँ कराए हैं ना।
1: कैसे कहा इसे माँ?
2: उसमें तो अच्छा रिजल्ट दिया है। कुछ खेत में मात्रा भी कम है नाइट्रोजन की।
1: अच्छा,
2: तो उसके लिए ग्राम सेवा दवाई भी दिए हैं।
1: अच्छा,
2: छिड़काने के लिए।
1: हाँ हाँ हाँ, तो माटी जांच के का फायदा होते किसान संगवारी जेमर रेडियो ले जुड़े हवाए, वो मतलब का कहना चाहा था, माटी जांच कराना चाहिए का फायदा हो है? मतलब
2: नहीं, मिट्टी जांच कराना चाहिए, फायदा है किसानों को कि उसमें मिट्टी में किस चीज की कमी है, उस कमी को हमारे ग्राम सेवा के माध्यम से जानकारी होता है मिट्टी परीक्षण के बाद, उस हिसाब से हम लोग खेती करते हैं।
1: अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बात बताओ था, कोनो भी फसल लेवत हन एमा खातू माटी के उपयोग के साथ में बीज उपचार घलो ढार ध्यान रखना चाहिए, तो बीज उपचार के बात आप मन जाना था, जैसे अभी आगामी खरीफ फसल में जिन धान लगा चाहे कोनो फसल लगा तो बीज उपचार करिए, कौन प्रकार के धान वान लगा?
2: अब ये बीज उपचार तो अब करते हैं लेकिन अधिकांश लोग गांव देहात के लोग क्या है उतना जानकारी नहीं ले पाते, सब बीज उपचारित बीज दुकानों से खरीदते हैं।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, कौन धान बोई है भैया इधर के?
2: यह बार हम लोग बो रहे हैं 804 धान।
1: 804, ये हर कैसे पातर वाला है कि मोटा है?
2: मीडियम में है, क्योंकि क्या है उपज ज्यादा है। अब इसके पहले तो मैं मालती धान लगाया था।
1: अच्छा, एमा उत्पादन कैसे हुई?
2: अच्छा भी था उसका उत्पादन।
1: तो जैसे कि एला बोईहा तो बीजा की मात्रा तो कहे है कि पारंपरिक विधि से लगा था, यानी छिड़काव

0: पद्धति से लगा था तो ज्यादा बीजा नहीं लगी, कबर कतार से बोई है श्री पद्धति से ते में कम बीजा लगी।
1: कतार में तो कम लगता है, उपज ज्यादा मिलता है। इसमें यह है कि पौधे का अंतर रहता है, उसमें खाद भी ज्यादा सीमित मात्रा में रहता है।
0: अच्छा अच्छा, जैसे मालती किस्म की बात करा था तो कतेक उत्पादन हो रही भैया?
1: हमारे मालती पहली बार में खेती के लिए पहली बार में अच्छा रिजल्ट निकला है। प्रति एकड़ 20-22 कुंटल हुआ है।
0: अच्छा,
1: कम खाद डालने पे भी।
0: तो अच्छा, हाइब्रिड किस्म के उपयोग भी करना चाहिए समय के अनुसार कहा था?
1: हाइब्रिड हम लोग बहुत कम कर रहे हैं। अच्छा। कई प्रकार की बीमारी आता है। अधिकांश लोग का तो मैं तो रिसर्च ही धान का खेती करता हूँ।
0: अच्छा, एथी वरन तो आओ कई प्रकार के जुन्ना धान है, है ना? एथी वरन गोरेला पेंडा मरवाही ढार तो ओला काबर नहीं लगावा?
1: क्या है, सरकारी धान तो कई प्रकार के होते हैं, तो जो अच्छा उपज आता है, जिसका बीमारी कम लगता है, ऐसे धानों का उपयोग कर रहे हैं किसान।
0: अच्छा अच्छा, आप जैसे किसान किसान सम्मान निधि के फायदा घलो मिलते भैया?
1: मिल रहे ना।
0: अच्छा अच्छा, का कहना चाहता सरकार तक, कौन बात ला पहुंचाना चाहता है किसान सम्मान निधि के जिन फायदा है, कौन हिसाब से आप मन मिलत है, एला थोकन बताओ ना।
1: ये पीएम किसान योजना बहुत अच्छा है। 4 महीने मिलता है, इसका पेमेंट खाते में डायरेक्ट खाते में डालता है, किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। सरकार को इसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं। बहुत बड़ी योजना का लाभ मिलता है।
0: अनेक खातू माटी बिसाए बर, बीजा बिसाए बर, है ना, खेती किसानी के काम करे बर, उत्पादन बढ़ाए बर बहुत अच्छा सहयोग है। कहा
1: बहुत अच्छा सहयोग है।
0: हाँ हाँ हाँ, तो चला भैया हमारे बीच में आया, बढ़िया बात बताया है। जय जोहार।
1: जय जोहार।
0: अच्छा, कहा ना है बताओ?
2: मेरा नाम है संतराम प्रजापति।
0: अच्छा, तो हमने एक कतरा है इनके कते कन धन है आप?
2: अरे ना, ये वही मतलब 2 एकड़ से कुछ कम है। हाँ, वही में खेती करते हैं। अच्छा। अपन परिवार पाल।
0: अच्छा अच्छा, अभी गर्मी की बेरा चला थे भैया, अभी जून के माह है। हाँ, ना
2: हाँ।
0: तो मैं कौन हिसाब से आप मन बूता करे रहा है, कुछ फसल लगाए रहा रबी के?
2: रबी फसल नहीं लगाए हैं भाई, साधन रही लगाते हैं।
0: पानी के साधन नहीं?
2: पानी के साधन नहीं है।
0: अच्छा अच्छा,
2: क्योंकि गरीब परिवार हैं, है ना, पानी साधन नहीं करा पावा था, एखर नाम लेके नहीं लगाए हैं।
0: तो जैसे कि आपन खेती किसानी करा था, माटी के हिसाब से खेती करे जाते, आने बने के फसल लगाए जाते।
2: हाँ।
0: का कौन प्रकार के माटी है?
2: माटी हमारे यहाँ के रेतीले माटी है। अच्छा। मुरुम वाला
0: मुरुम।
2: हाँ। वहाँ मुरुम है, तो ओखर ले हम गर्मी फसल नहीं लगा सकते।
0: अच्छा अच्छा, अने खरीफ फसल का अपन तैयारी करत हो?
2: हाँ,
0: तो कैसे तैयारी करा था? कांटा खूटी के बिनाई हो, का काम होता करा था?
2: अभी का है खेती की तैयारी करा था, जिन कांटा खूटी है तेखा बीन के जलावा था, थोड़ा बहुत खाद है तेखा डाला था अपन, गोबर खाद।
0: अच्छा, गोबर खातू डाल था?
2: हाँ, गोबर खातू डाल था, और जिन सरकार से मिलते लाभ खाद के ओ को ला के डाल था।
0: तो गोबर खातु के आप मन बात करा था, तो पशुधन कते का नहीं?
2: पशु 2 ठन जानवर रखे हैं।
0: का जानवर?
2: भैंसा है।
0: अच्छा,
2: वही भाई।
0: और गाय बैला?
2: नहीं है, गाय बैला कुछ नहीं।
0: जैसे आप मन बियासी करत हुआ इतिबन गवरेला पेंडा मरवाही जिला में देखा था, तो हर घर में गरुआ बैला देखे पर मिल जाते?
2: तो हमारे पास 2 ठन भैंसा है, गाय बछरू कुछ नहीं है।
0: अच्छा अच्छा,
2: क्योंकि राखे तो राख ले, जब उनका खुराक नहीं दे सकब तो का कर पाल के।
0: अच्छा अच्छा, ते भैंसा के सेवा जतन कैसे करता, का खुराक देता?
2: पैरा देथन, वही का कटिया मार के गड़ासा से, और जिन धान कुटवा थन एकर कोढ़ा मिला के देथन।
0: अच्छा, नून नून नहीं डाला?
2: नहीं डाला नून नून का, खाए पर सरकार देते, का जानवर खाए पर थोड़ी देते।
0: हाँ हाँ हाँ, तो हम ले बता।
2: हाँ,
0: जैसे आपन अतका कन खेती किसानी करा था, बीज के चयन कर डाले हो, कि मोला खरीफ में कौन फसल की तैयारी करना है, का फसल लगा भैया?
2: अब धान लगाओ अभी।
0: हाँ।
2: बरसात वाला?
0: तो कौन किस्म के?
2: अब आजकल सब तो हाइब्रिड निकले है, वही धान खरीद के लगा था।
0: हाइब्रिड लगा है?
2: हाइब्रिड लगा।
0: तो ये हर तो उपचारित हो गए थे, तो अब उपचार करता का?
2: नहीं कर सकन, उपचार हम वही खरीद के लगा।
0: अच्छा अच्छा, तो कतार पद्धति से जेला श्री पद्धति से लगाता, और आप मन कौन पद्धति से लगाता?
2: थरहा देबो, थरहा देने के बाद में जब 20-25 दिन हो जाए तहाँ रोपा लगवाई करता।
0: अच्छा अच्छा।
2: हाँ।
0: तो ये थरहा दवाई के काम कब ले करी?
2: 15 जून से।
0: अच्छा, 15 जून ले शुरू हो जाए का, है ना? और आज हो गए 9 जून। तो ये बता, आपन जोताई जेन करा था, है ना, कै बाव जोताई करे के बाद कैसे थरहा देहा का खातू डाल
2: थरहा वाले का जोताई तो 3 से 4 बार करथन ओखर बाद गोबर खाद रथे तेला बिगड़ा के फिर दतरी पुर्री चला के फिर उमा थरहा देथन
0: दतारी उतारी करके
2: तो जेल हम दतारी बिना मारे थरहा तो देत बनी नहीं।
0: अच्छा अच्छा
2: भाई जोताई करके थोड़ी देर नांगर नांगर से
0: तो

0: समय आयो कुछ खातू डाल था का
1: नहीं डालन थारा देख तब नहीं डाल रहा अच्छा, अच्छा। रोपा लगवाई के समय डाल था
2: पाछू बखत ए 2 एकड़ मा कते कन धान हो रहे
1: हा? अब पर साल तो क्वार्टर नहीं करके रखे रहे हैं लेकिन हो गए रहे हुई वही 40-50 क्विंटल
0: मंडी तक तो ले जात हो हा?
1: हाँ ले थन मंडी तब कितना बिकी भाई
0: कौन मंडी में ले जाता
1: ए हमर लकीनी
0: जैसे अपन धान की खेती करा था चला भैया बढ़िया लगी चापन से गोट बात करके खेती किसानी बारे में जय जोहार
1: जय किसान जय जोहार।

0: और चला भैया, बढ़िया लगी चाय पान से गोठ बात करके, है ना, खेती किसानी बारे में।
1: हाँ,
0: जय जोहार।
1: जय किसान, जय जोहार।
0: जय जोहार भाई,
2: जय जोहार।
0: कहाँ है तो?
2: गुड्डी बाई मोर नाम है।
0: अच्छा, तय कहाँ रही था?
2: मैं हम मझगावा में रही थो।
0: अच्छा, तो खेती किसानी के काम बूता में आप मन सहयोग करता कि नहीं?
2: आओ तो हम मन जाती खेत बाड़ी में, तबे तो काम हुई।
0: अच्छा, खेत
2: नहीं
0: बाड़ी जाता सियान से?
2: कैसे करी भाई, अब जाओ बासी लेके जाती, फिर रोपा लगाती,
0: अब रोटी लेके नहीं जाओ?
2: रोटी भी लेके जाती,
0: अंगाकर रोटी,
2: अंगाकर रोटी बनाती, हाथ में बना लेती, सब
0: अच्छा
2: रोटी
0: अच्छा
2: बना के रख के जाती।
0: और चटनी का बनाती का?
2: चटनी बना लेती, अचारों चार धर रहती अभी गर्मी में आमा के,
0: अच्छा, वो पताल की चटनी, मिर्चा
2: पताल
0: की
2: तो
0: चटनी।
2: अभी नहीं मिले, बाजार में मिलते लेकिन महंगा है तो
0: अच्छा
2: हम
0: अच्छा
2: ले नहीं सकन।
0: जैसे चटनी की बात करा था दाई, तो ये टमाटर उमाटर कुछ साग भाजी कोला बारी में लगाता है?
2: तब ये दारी लगाबो, पानी वानी के साधन हो ही तय दे, बरसात आ गए है तो
0: लगा कहा
2: आओ, अब गर्मी में तो नहीं रही से पानी वानी के साधन तो कैसे लगाई है ना।
0: तो जैसे कि धान उन बोए में अपन सहयोग करिया, कैसे सहयोग करता, का कबूता करती है बताओ ना।
2: हमन जाती तो हो गए उखर खाना वाना दे के, पार और ला देखती कहाँ ठेन माटी है, कान ला इधर उधर करना है, इसने है अपन साथ में लगे रहती, तहाँ साथ में लेके चले आती।
0: अच्छा, जैसे ये हम खेत खार जाथन तो नींदा घलो हो जाती, आनी बानी के नींदा रहते, माई लोगन मन ज्यादा ध्यान रखती कि ए नींदा है, ऐसे कई कह सियान ला घलो बताते, तो का कर नींदा रहते और आपन कैसे एक नियंत्रण करता?
2: तो अभी तो बुआई चलही, ओखर बाद बियासी वासी करबो, ओखर बाद चारा ओरा ला देखबो है ना। तो अब चारा ओरा निंदाई घरी, फिर बनिहार उनिहार को झन लेखबो साथ मा, संगवारी बना के चल तोर मोर घर आज करवा दे, कल तोर घर करवा हो करके संग में जाबो, तो दू झन रहो तो अच्छे काम वो होते।
0: अच्छा
2: अकेले
0: अच्छा
2: मकान
0: अच्छा आप मन के धनहा कते कन है?
2: 1.5-2 एकड़ है इसने, वही ला अपन वो कर था खेती
0: अच्छा,
2: किसानी।
0: तो बढ़िया धान पान हो जाते कहो?
2: हाँ हो जाते भैया खाए बर।
0: अच्छा, हमें ले बता दाई, जैसे कि आपन बढ़िया खेती किसानी करा था, जैविक पद्धति से खेती किसानी करा था कि रासायनिक पद्धति से?
2: जैविको पर वैसे करा था ना, मिलते था गाय गोरु रहते था, वो खाद ला डाल था घर
0: तो
2: वाला ला।
0: गाय गोरु है?
2: नहीं है अभी, बैला वैला लेहे बार है तो वही में अपन दो चार वो हो जाते, दो चार झौड़ी वही ला डाल देते।
0: बियासी वासी कामा करता?
2: बियासी नांगर में करथन,
0: मतलब बैला में?
2: बैला में हाँ
0: हाँ,
2: ओकरे कारा राखे रहथन दुई ठन बैला।
0: अच्छा अच्छा
2: हाँ।
0: तो चला बढ़िया है, आपन से गोड़ बात हुई से खेती किसानी में, आपो मन के सहयोग रही थे है ना।
2: हाँ,
0: और कुछ कहना चाहत?
2: खेती बाड़ी करबो तबेज तो ही नहीं,
0: माई लोगन के सहयोग जरूरी है,
2: जरूरी है, और नहीं जावन तक खिसिया ही नगरिया मन की नहीं।
0: चला आपन से गोड़ बात करके बड़ बढ़िया लगी से, जय जोहार।
2: जय जोहार, जय किसान।
0: तब ये तो रही से आज के किसान वाणी गावा ग्राम मझगवा पेंड्रा जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही के किसान और उद्यान विकास अधिकारी ले होए गोट बात में आधारित एक कार्यक्रम। कार्यक्रम के संपादन और रिकॉर्डिंग रहीस हरीश माडवा, संयोजन और प्रस्तुति रहीस डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन के। हरीश माडवा आने बैसाकु भैया के जय जोहार, राम राम। किसान भाई हो, अभी सुनत रहो मझगवा पेंड्रा जिला गौरेला मरवाही के किसान और उद्यान विकास अधिकारी ले हुए बातचीत किसानवाड़ी गांव में। और गुड बात करते से बैसाखू भैया, संयोजन और प्रस्तुति डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन करे से, संपादन रिकॉर्डिंग बैसाखू भाई के। और अब सुनो ये संदेश ला।
3: अरे सुन तो।
4: मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को।
3: किसको?
4: अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं।
3: अच्छा ये बात है?
4: हाँ, क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या?
3: अब तो झट से बात हो जाती है।
4: ऐसा क्या?
3: हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया।
4: अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म?
3: हाँ।
4: तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है।
5: कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।

0: क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
1: पुतला बोल रहे?
0: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
1: मतलब?
0: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
1: पर हम तो सभी डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है?
0: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूँगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है, और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं, और इनका जो पेड़ पौधा होता है इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं, और इनका यूज से हम काफी सारा जमीन में नमी लेते हैं, और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है।
4: ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है, इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है।
5: ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं, वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना कर देते हैं, वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के खट्टा कर देता हूँ, कंपनी उठा के ले जाते हैं।
6: किसान भाई को सुनाओ, आज के तापमान अधिकतम 40.0°C, न्यूनतम है 29.0°C। बिलासपुर मंडी की बात करबो तो भाटा 801,000, कुम्भड़ा 1200-1400, कुंदरू लोकल 3,000-3,300, कोचई है 1500-1700 रुपया, चुकंदर है 4,000-4500 रुपया, आलू 1800-2000। अब एक भाई देखो, सलाम यही कहबो कि घाम कस के बाढ़े है, आप बचाओ और परिवार के जम्मू लैकन बच्चा बचाओ, एक संग घाम ले बचाओ और स्वस्थ रहो, और जम्मू संगी संगवारी मस्त रहो, और जेन पशु पाले हो आप मन के, जेन किसान भाई मन के मित्र होते ओकरो चेत करना है, और चेत करत अपन काम बूता लागू कर हो। एक संग दो किसानवाड़ी कार्यक्रम ले जीवन भैया ला विदा। जय जोहार, राम राम।

अभी आप सुन रहे थे किसान वाणी, ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:35 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं महिला सभा।

0: कार्यक्रम महिला सभा सुनने वाली सभी श्रोता सखियों को आपकी रेडियो सखी प्रभा कश्यप का प्यार भरा नमस्कार, जय जोहार। सखियों, अब आइए सबसे पहले सुनते हैं हम कुछ संदेश।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
3: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: चाहे हो माइग्रेन, साइटिका, एलर्जी या महिलाओं से संबंधित समस्या, आइए नेचुरल आइलैंड निसर्गोपचार केंद्र में, जहां विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना अग्रवाल द्वारा एक्यूपंचर, ओजोन थेरेपी, योग और नेचुरोपैथी से प्राकृतिक उपचार किया जाता है बिना सर्जरी, बिना दवाइयों के। फोन नंबर है 6261000654, पता है श्री राम मंदिर के पास तिलक।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: सखियो, अब आइए चलते हैं हम आज के क्रम स्वास्थ्य वार्ता की ओर। सखियो, स्वस्थ जीवन निरोग काया प्रत्येक व्यक्ति का सपना होता है। अच्छा स्वास्थ्य हमें न केवल शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी सशक्त बनाता है। और सखियो, उसके लिए आवश्यक है कि हम अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें और संतुलित आहार के साथ ही योगा, प्राणायाम, योग को अपने जीवन में जरूर शामिल करें। और सखियो, आज हमारा क्रम भी है स्वास्थ्य वार्ता का, और आज के क्रम में आपसे फोन से स्वास्थ्य संबंधी सीधी बातें करेंगी आज की हमारी नेचुरोपैथी की डॉक्टर अर्चना अग्रवाल जी। तो चलिए स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार।
2: नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अर्चना अग्रवाल है। मैं गत 19 वर्षों से इस फील्ड में कार्य कर रही हूँ।
1: तो डॉक्टर साहब, चलिए उठाते हैं हम अपनी सखियों का ये पहला फोन और जुड़ते हैं हम अपने सखियों से फोन के माध्यम से।
2: हेलो
3: जी, नमस्कार जी, मैं बिलासपुर से सीमा शर्मा बोल रही हूँ।
2: हाँ जी,
3: और मैं आकाशवाणी से यूनिट बोलता हूँ।
2: जी जी,
3: मुझे लिवर सिरोसिस और शुगर दोनों है। आप मुझे थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए कि मुझे क्या खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए।
2: ये आपको कब से है लिवर सिरोसिस का?
3: मुझे साल भर से हुआ है।
2: पेट में सूजन भी रहती है क्या?
3: सूजन पहले था, अभी तो नहीं है। पेट में थोड़ा पानी था तो डॉक्टर दवाई से उसको कम कर दिए थे और मेडिसिन मेरा चल रहा है।
2: अच्छा, तो अभी मतलब पेट में ऐसे पानी नहीं भरा हुआ है ना?
3: तो पानी नहीं भरा हुआ है। इस साल आप सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड कराई तो उसने बोले पेट में पानी नहीं है और पहले से लीवर की कंडीशन अच्छी है।
2: जी जी,
3: नियमित योगा अभी जाती हूँ, योगा करती हूँ।
2: अच्छा, तो योगा क्लास ज्वाइन किए हैं आप, वहाँ पर रेगुलर कर रहे हैं?
3: जी जी।
2: तो बहुत अच्छी बात है कि आप रेगुलर योगा कर रहे हैं, तो इससे आपके सभी आंतों को और लिवर को कंटिन्यूअसली ऊर्जा मिलती रहेगी, मसाज होता रहेगा उस एरिया का। साथ में इसके आप कुछ आहार का भी स्पेशल कर सकते हैं, आहार में परिवर्तन, जैसे कि प्रोटीन रिच डाइट, अंकुरित अनाज वगैरह लीजिए थोड़े, और नॉन वेज आइटम्स बिल्कुल भी मत लीजिए।
3: जी मैडम, साल भर से बंद है और 3 ग्राम नमक पकाती
2: हूं। जी, प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में जानते हैं? प्राकृतिक चिकित्सा के भी कुछ उपायों को आप कर सकते हैं इसके लिए।
3: अच्छा, बताइए।
2: प्राकृतिक चिकित्सा में जैसे गरम ठंडा का आप सेक कर सकते हैं।
3: जी,
2: तो इसमें गरम ठंडा का सेक कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ।
3: जी,
2: जैसे 3 मिनट गर्म रहेगा और 1 मिनट ठंडा रहेगा, है ना? और ऐसे करके 5 से 7 बार आप सुबह शाम दोनों टाइम सेकाई करेंगे। पेट के ऊपरी हिस्से में हमारा लीवर स्थित रहता है, तो उसके पूरे पेट में ही गरम ठंडा का सेक करेंगे तो इससे आपकी डायबिटीज में भी काफी अंतर दिखेगा आपको, और साथ में आपका लीवर सिरोसिस का भी वो आपको फायदेमंद रहेगा।
3: जी,
2: इसके साथ साथ आप पेट का लपेट ले सकते हैं। हमारे नेचुरोपैथी में जल चिकित्सा के अंतर्गत पेट की गीली लपेट होती है।
3: जी,
2: तो ये पेट की गीली लपेट में एक सूती कपड़ा रहता है, एक वुलन कपड़ा रहता है।
3: जी,
2: तो सूती कपड़ा को गीला करके सामान्य टेम्परेचर के पानी से गीला करके उसको पेट के ऊपर लपेटते हैं, और उसके ऊपर फिर वुलन कपड़ा को सूखा ही उस गीले कपड़े के ऊपर लपेटा जाता है।
3: जी,
2: और लपेट के 30 से 45 मिनट तक उसको रखते हैं।
3: जी,
2: तो ये दो चिकित्सा भी और आप अपना इंक्लूड कर सकते हैं योगा के साथ, तो उससे काफी अच्छा रहेगा। और वैसे आप ओजोन वगैरह का भी ट्रीटमेंट यदि ले पाएंगे तो ओजोन के ट्रीटमेंट से आपको काफी इससे फायदा होता है, इससे बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है और साथ में जो है ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है हमारे शरीर में।
3: जी,
2: तो हमारे शरीर को मजबूती जब मिलेगी तो अपने आप ही फिर सारी बीमारियां शरीर से दूर होती जाती हैं।
3: जी, धन्यवाद मैडम।
2: मैं उम्मीद करती हूँ आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया है।
3: जी, बहुत अच्छा।
1: फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, बातें हम आपसे आगे भी करेंगे, उससे पहले सखियों का फोन आ रहा है तो हम लेते हैं मैम सखियों का फोन।
2: जी जरूर।
4: हेलो, मैं पुष्पा बोल रही हूँ।
2: हाँ जी बोलिए।
4: जी, मैं ये जानना चाहती हूँ जैसे मेनोपोज के स्टार्टिंग में महिलाओं को जब मेनोपोज होता है तो उन्हें अलग अलग तरह की समस्याएं होती हैं।
2: हाँ जी।
4: तो ये मेरे घर में मेरी

0: दीदी है उनको थोड़ा सा जॉइंट पेन की समस्या आ रही है। डॉक्टर से मिला हमने तो उन्होंने कहा कि मेनोपॉज के कारण जॉइंट पेन की समस्या है, तो ये योग से कैसे ठीक हो सकता है या आपके नेचुरोपैथी से कैसे ठीक हो सकता है?
1: जी, ये जॉइंट पेन एक्चुअली हार्मोनल चेंजेस के कारण क्या होता है कि हमारे बॉडी में कैल्शियम की थोड़ी सी कमी रहती है, जिसके के कारण ऑस्टियोपोरोसिस चेंजेस होता है, तो वो इसी के कारण फिर जो है जोड़ों में दर्द शुरू होता है ना मेनोपॉज के समय। तो इसमें योग का काफी अच्छा महत्व है, योग और प्राकृतिक चिकित्सा का।
0: हाँ जी, हम मतलब योग में कौन सी मुद्राएं ऐसा कर सकते हैं मैं हमें रिलीफ हो?
1: जी, तो इसमें एक जानु फलक आकर्षण आसन होता है, नी कैप टाइटनिंग भी उसको बोलते हैं। तो वो नी कैप टाइटनिंग में घुटने को टाइट करके हम ऊपर की तरफ खींचते हैं, दोनों पैर को सीधा लंबा फैलाकर बैठते हैं और उसके बाद अपने घुटने को टाइट करके ऊपर की ओर खींचते हैं। तो इस प्रकार से करने से फिर जो है जांघ की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और साथ में जो सिनोवियल फ्लूइड होता है, जो हमारे घुटने में फ्लूइड रहता है जो सूख गया है बोलते हैं, जिसके कारण फिर नी रिप्लेसमेंट का आता है स्थिति, तो वो उसमें भी वो काफी अच्छा उसका रिजल्ट होता है। तो ये जानु फलक आकर्षण आसन नी कैप टाइटनिंग का एक आप कर सकते हैं। दूसरा जानु नमन होता है, जो सामने पैर फैलाकर ही पैर को ऊपर और नीचे किया जाता है, जानु नमन कहते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं।
0: ये तो घुटने के उस पे हुआ।
1: हाँ,
0: और जैसे ये उंगलियों के जॉइंट में भी दर्द होता है तो उसके लिए क्या योग में है, कौन सा आसन हो सकता है
1: उसके लिए? जो मुष्टिका बंद होता है हमारा, जो मुट्ठी बंद करना और खोलना, मुष्टिका बंद, मणिबंध नमन बोलते हैं, कलाई को ऊपर और नीचे, हाथ की उंगलियों को सीधा रख के कलाई को ऊपर और नीचे किया जाता है, वो आसन है। और फिर उसके बाद जो है ऐसे टाइट करके दोनों हाथ को, जैसे कि हम कुछ पकड़ के खींच रहे हैं, उस प्रकार से पूरा श्वास लेते हुए हाथ की उंगलियों को पूरा ताकत के साथ उसको मुट्ठी बनाएंगे और उसके बाद श्वास छोड़ते समय पूरा हाथ को ऐसे रिलीज कर देंगे, जैसे हम किस चीज को खींच के उठाए हैं और फिर नीचे की तरफ फेंक दिए हैं। तो इस प्रकार से करने से फिर वो हाथ की उंगलियों में भी फिर जो है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और उससे उंगलियों की तकलीफ दूर होती है ना। तो ये तो हो गया योग का तरीका, जो इन सब जोड़ों के दर्द के लिए लाभदायक है। प्राकृतिक चिकित्सा में इसके लिए आप जो है गीली लपेट होती है, जो गीली लपेट आप घुटनों के लिए बांध सकते हैं, हाथों का भी गीली लपेट होता है उसको भी बांध सकते हैं। ओजोन थेरेपी भी होता है, इसमें वायु चिकित्सा के अंतर्गत आता है ओजोन थेरेपी। तो ओजोन थेरेपी भी हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट को काफी बढ़ाता है और ये जो है जैसे ये इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हैं एक प्रकार के जो उम्र के साथ होते हैं हार्मोनल चेंजेस के साथ साथ, तो फिर वो इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस को ये ओजोन थेरेपी काफी अच्छा से रोकता है। जी हाँ, और इसमें एक्यूपंचर का भी एक काफी अच्छा है कि जैसे कि एक्यूपंचर से तुरंत ही आपको जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है, घुटनों के दर्द में और उंगलियों की जो दर्द है, तो उन सब में एक्यूपंचर और ओजोन थेरेपी के माध्यम से, और ये घर में आप गीली लपेट भी कर सकते हैं।
0: पेट मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप थोड़ा सा बता पाएंगे?
1: गीली लपेट में कॉटन का कपड़ा रहता है, सूती कपड़ा, और मैं उसकी लंबाई चौड़ाई जो है घुटने के लिए अलग रहती है, हाथों के लिए अलग रहती है, और उसके बाद एक वुलन का कपड़ा रहता है, ऊनी कपड़ा है ना। तो गीली लपेट में सूती कपड़ा को जो है भिगाते हैं, तो जैसे कि आप दर्द के लिए कर रहे हैं तो दर्द के लिए से गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के उसमें फिर वो सूती कपड़ा को डालेंगे और सूती कपड़ा को पूरा अच्छा से भिगा के फिर उसको घुटने के चारों तरफ लपेटेंगे, और लपेटने के बाद फिर वुलन का जो कपड़ा है आपका उसको सूखा ही रखेंगे, उसको गीला नहीं करना है, और उसको सूखा में ही उस गीला लपेट के ऊपर लपेटना रहेगा ना। तो इस प्रकार से लपेट के उसको 30 से 45 मिनट तक रखते हैं हम, और उसके बाद फिर उसको खोल के फिर सुखा देते हैं कपड़े को, तो उससे घुटने का दर्द में, उंगलियों के दर्द में बहुत ही अच्छा राहत मिलता है।
0: धन्यवाद, आपकी जानकारी मुझे अच्छी लगी।
1: जी, तो मुझे लगता है कि आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा।
0: हाँ जी हाँ।
2: फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बातें हम आपसे आगे भी करेंगे, उससे पहले सखियों का फोन आ रहा है तो हम लेते हैं मैम सखियों का फोन।
1: जी जरूर।
3: हेलो
1: हेलो
3: मैम, नमस्ते।
1: नमस्ते,
2: कौन बोल रहे हैं आप, कहाँ से?
3: मैं आराधना जी, आंगनवाड़ी से।
2: आराधना जी, आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं नेचुरोपैथी की डॉक्टर अर्चना अग्रवाल जी, तो आप उनसे प्रश्न पूछ सकती हैं।
3: हाँ, मेरा ही प्रॉब्लम है कि मेरा क्या है, एक से दो दिन ही रहता है, तीसरे दिन तो बिल्कुल भी नहीं रहता है मैम।
1: तो ये शुरू से ही ऐसा रहा है कि ये
3: शुरू से नहीं, अभी कुछ महीनों से हो रहा है, बाकी तो मेरा पहले ठीक था।
1: अच्छा, तो अभी आपको तनाव वगैरह ऐसा ज्यादा लेते हैं क्या?
3: नो मैम।
1: ओके, उम्र कितनी है आपकी?
3: मेरा 38।
1: और कोई तकलीफ होती है इसके अलावा आपको?

0: मैम, ये दो थी दो या 3 महीने नहीं हुआ है मेरा ऐसे, 2 दिन भी नहीं रहता मैम, फर्स्ट डे रहता है, दूसरे दिन भी काफी कम हो जाता है।
1: अच्छा, काफी कम हो जाता है, मतलब दिन में खाली एक ही बार एक चेंज करने से हो जाता है
0: हाँ
1: आपका,
0: एक एक हो जाता है।
1: और पहले दिन में 2 से 3 बार चेंज करते हैं।
0: नहीं, पहले दिन भी कहीं से भी आप अभी 2-3 महीने से इसी से काम कर रहा हूँ।
1: अच्छा, एक ही से ही हो जाता है पूरा। तो ऐसे स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ापन और बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, ऐसे सब भी होता है क्या आपको? शरीर में बहुत गर्मी, फिर एकदम से ठंडी लगने लग जाना, ऐसे भी होता है?
0: ठंडी तो नहीं है? हाँ मैम, गुस्सा और चिड़चिड़ा तो रहता ही है बच्चों के नाम से।
1: जी। और ये ना हार्मोनल चेंजेस के कारण भी होता है। वैसे तो अभी 38 बताए आपकी उम्र, तो इतना जल्दी मेनोपॉज का नहीं रहता है, किसी किसी को जल्दी भी हो जाता है, स्टार्टिंग ऐसे 40 के बाद ही होता है जनरली, पर किसी का जल्दी भी हो जाता है, 36, 37, 38 ऐसे में भी हो जाता है। तो ये हार्मोनल चेंजेस के कारण जो है इस प्रकार से होता है। तो अभी जैसे कि आपको पूरा नहीं हुआ है, मतलब थोड़ा कम ही हुआ है, तो उसके लिए यदि आप प्राकृतिक चिकित्सा में, इसमें जल चिकित्सा में कटी स्नान होता है, हिप बाथ बोलते हैं, कटी स्नान आप यदि रेगुलर लेंगे ना कुछ समय के लिए, तो फिर ये जो है आपका काफी अच्छा इसमें रिजल्ट आपको मिलेगा। मतलब जैसे कि आपका चिड़चिड़ापन वगैरह दूर हो जाएगा, साथ में आपको बैक पेन भी बहुत होता है क्या?
0: हाँ बैक पेन,
1: बैक पेन भी बहुत होता है, और वो बैक पेन फिर पैरों की तरफ जाता है ऐसे नीचे?
0: नहीं, पीठ में ऊपर रहता है।
1: पीठ में ही रहता है। प्राकृतिक चिकित्सा में जो कटी स्नान दिया जाता है, वो कटी स्नान का गर्म ठंडा कटी स्नान यदि आप रेगुलर लेंगे कम से कम 15-20 दिन, तो उसी में ही आपको काफी अंतर आपको दिखने लग जाएगा।
0: घर में ही कर सकती हूँ?
1: घर में तो उस प्रकार का टब चाहिए रहता है कटी स्नान के लिए, तो यदि आपके घर में सुविधा उस प्रकार से आप बना पाए तो फिर वैसा घर में ले सकते हैं उसको, और नहीं तो एक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में जैसे भी आप ले सकते हैं। कटी स्नान इसका रामबाण इलाज है, और इसके साथ आप पेट लपेट भी लेंगे तो फिर ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना?
0: मेरा मुझे मेरा 2 से 3 महीने ही हुआ है, वरना मेरा ठीक था।
1: इसमें 2-3 महीना ही हुआ है ना, तो ये आपका बहुत जल्दी क्योर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और इसमें आप घर पर जैसे आप करने के लिए आसन वगैरह कुछ योगासन करते हैं?
0: मैं तो घर में डेली मतलब मेरा योगा चलता है।
1: हाँ, तो इसमें जैसे बद्ध कोण आसन होता है, बटरफ्लाई पोज,
0: सारी करती हूँ मैम मैं
1: जी, तो रेगुलर करते हैं, सेतु बंध आसन हो गया, उपविष्ट कोण आसन हो गया, दोनों पैर फैलाकर जो सामने की ओर झुकते हैं, चक्की चालन आसन, ये सब आसन करते हैं आप?
0: करती हूँ मैम मैं, शुरू से मेरा आदत पड़ गई सारे में करती हूँ।
1: बहुत अच्छी बात है कि आप ये सब आसन रेगुलर करते हैं। तो अभी इन सब आसनों के साथ यदि आप प्राकृतिक चिकित्सा का भी करेंगे, प्राणायाम भी रेगुलर करते हैं आप?
0: प्राणायाम तो नहीं, बस योग कर लेती हूँ।
1: अच्छा, योगासन के साथ प्राणायाम भी करना शुरू कीजिए। प्राणायाम में जो है नाड़ी शोधन प्राणायाम होता है, नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम भी इसको बोलते हैं। प्राणायाम जो मैं बोल रही हूँ तो वो श्वास की एक प्रक्रिया है, श्वास प्रश्वास की एक प्रक्रिया होती है, अनुलोम विलोम भी कहते हैं इसको। तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल बाईनासिका से श्वास अंदर लेते हैं, कुछ क्षण के लिए श्वास को अंदर रोकते हैं, उसके बाद फिर दाई नासिका राइट नॉस्ट्रिल से बाहर की ओर छोड़ते हैं, फिर राइट नॉस्ट्रिल से ही अंदर लेते हैं, कुछ क्षण के लिए अंदर रोकते हैं, और फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर की तरफ श्वास को छोड़ते हैं। तो इसको आप कम से कम 5 बार सुबह 5 बार शाम को कीजिए। और दूसरा भ्रामरी प्राणायाम एक होता है, भ्रामरी प्राणायाम में तर्जनी उंगली से कान को बंद करके मकार ध्वनि जैसे भौरा गुंजन करता है, इस प्रकार का गुंजन करना है, है ना? अब उस गुंजन जो हो रहा है उसको आंखें बंद करके पूरे सिर के चारों तरफ उसको अनुभव करना है कि वो हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है। तो इस प्रकार से भ्रामरी प्राणायाम और ये नाड़ी शोधन प्राणायाम सुबह शाम 5-5 बार कम से कम करना शुरू कीजिए, क्योंकि सिर्फ योगासन जो है वो हमारे शरीर को तो मजबूत बनाता है, पर श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को मजबूत करेंगे तब फिर उससे जो है मानसिक शांति रहेगी। यदि मानसिक असंतुलन मतलब मानसिक शांति नहीं रहती है, तो उससे भी हमारा तनाव का स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल बढ़ता है, जिसके के कारण फिर जो है हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है। तो ये प्राणायाम ध्यान की प्रक्रिया इन सब में काफी लाभदायक रहती है। ठीक है, मैं समझती हूँ कि आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा आपको।
2: फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: हेलो
2: जी, बोलिए, कौन बोल रहे हैं आप?
3: मैं शोभिना तिवारी बात कर रही हूँ बिलासपुर से।
1: जी नमस्कार।
3: नमस्ते मैम। सुनिए मैम, मुझे ये पूछना था कि मेरे फादर इन लॉ हैं, उनको साइकिल का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मतलब हम लोग थेरेपी ले रहे हैं।

0: पर थेरेपी से कोई आराम नहीं लग रहा है।
1: क्या थेरेपी ले रहे हैं अभी आप?
0: फिजियोथेरेपी मैम बोला था डॉक्टर ने, तो वही हम लोग ले रहे थे।
1: अच्छा, कितने दिन हो गए हैं उसको लेते?
0: ये एक महीना हो गया है।
1: आपके फादर इन लॉ की उम्र कितनी है?
0: 74 है।
1: अच्छा, तो कितने समय से इसे आटिका का प्रॉब्लम?
0: मैम वही एक महीना से ऊपर हो चुका है।
1: अच्छा, मतलब ये प्रॉब्लम हुआ था उसी समय से ही तुरंत ही आपने फिजियोथेरेपी शुरू कर दिया था?
0: एक्चुअली पहले हम लोग डॉक्टर के पास गए हैं, डॉक्टर है उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप फिजियोथेरेपी करवाइए, उसी में आराम है। फिर हम लोग ने फिजियोथेरेपी करवाना चालू किया, तो फिर अभी तब से महीना भर हो गया है करवा रहे हैं, लेकिन कोई आराम नहीं लग रहा मैम।
1: यहाँ पर जैसे अभी वार्ता में मैं आपको योग और प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा आप कैसे इसका इलाज कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी दूंगी। इसमें निश्चित रूप से आपको आराम मिलता ही है सियाटिका प्रॉब्लम में। तो सियाटिका प्रॉब्लम मतलब कमर से दर्द शुरू होता है और नीचे पैर की एड़ियों तक वो दर्द जाता है, ऐसा ही होता है ना आपके फादर इन लॉ के साथ?
0: जी हाँ।
1: तो इसमें जो है एक्यूपंचर का जो ट्रीटमेंट रहता है वो काफी लाभदायक रहता है। एक्यूपंचर में पतली पतली सुइयां रहती हैं जो स्पेसिफिक पॉइंट्स में लगाई जाती हैं, और उससे जो है तुरंत ही एक ही सिटिंग के बाद ही आपको उसका अंतर महसूस हो जाता है। वैसे ये 10 दिन का सिटिंग रहता है, 10 दिन का पूरा ले पाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहता है।
0: तो ये जो आप बता रहे हैं मैम, ये आप जहाँ तक ये जहाँ पे लोग जा रहे थे वहाँ पर उन्होंने किया हुआ था, पर फिर भी उनको उतना आराम नहीं लगा।
1: अच्छा, एक्यूपंचर भी उन्होंने किया था?
0: जी हाँ।
1: तो हो सकता है वो एग्जैक्ट पॉइंट में नहीं लगा रहे होंगे, क्योंकि हमारे पास तो जितने भी पेशेंट्स आते हैं सबको एक दो सिटिंग में ही काफी आराम मिल जाता है। और ऐसे योग में जो है एक शलभासन होता है, आप जैसे कि यूट्यूब में शलभासन लिखेंगे दिखाएगा उसमें, तो शलभासन सियाटिक पेन के लिए बहुत ही लाभदायक रहता है। इसमें पेट के बल लेट के दोनों हाथ को जांघ के नीचे रखते हैं और पैर को ऊपर की ओर उठाते हैं घुटने को सीधा रखते हुए, तो उससे जो है पूरे सियाटिक नर्व जो रहती है उसके पूरे पाथवे में स्ट्रेचिंग होती है और उससे पेन रिलीव होता है।
0: ओके मैम।
1: जी, आपका उत्तर मिल गया होगा ये आशा करती हूँ मैं।
0: जी मैम, बिल्कुल मिल गया।
1: थैंक यू,
0: बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
2: फोन करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बातें आपसे हम आगे भी करेंगे, उससे पहले हम अटेंड करते हैं अपनी सखियों के कॉल्स।
3: नमस्ते, मैं सुनीता बोल रही हूँ।
1: जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
3: पुराना बस स्टैंड से।
1: बताइए
3: मैम, मेरे को पीसीओडी है।
1: ओके,
3: नेचुरल तरीके से कैसे उसको ठीक करें?
1: आपकी उम्र कितनी है?
3: 30 साल।
1: तो ये पीसीओडी आपको कितने समय से है?
3: ये करीबन मैम मैं 20 साल की थी तब से है मेरे को।
1: अच्छा, मतलब पीरियड जब शुरू हुआ था उसके 1-2 साल बाद से ही आपको पीसीओडी डिटेक्ट हो गया था?
3: जी मैम।
1: तो अभी आपकी मैरिज हो गई है?
3: जी मैम, 2 बच्चे भी हो गए हैं।
1: पर ये समस्या अभी भी बनी हुई है?
3: अभी भी बनी हुई है मैम। हाँ, दवा लेते हैं तो पीरियड आता है।
1: हाँ,
3: और नहीं लोगे तो फिर बंद आता ही नहीं फिर।
1: दवाओं का सेवन लंबे समय तक करना बहुत ही हानिकारक रहता है, तो उसको जगह आप यदि प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से उसको ठीक करेंगे, योग और प्राकृतिक चिकित्सा के, तो वो बहुत ही लाभदायक होगा आपके लिए। तो प्राकृतिक चिकित्सा में इसमें एक कटी स्नान होता है, हिप बाथ, जल चिकित्सा के अंतर्गत आता है। अल्टरनेट हिप बाथ बोलते हैं इसको। तो गर्म ठंडा का कटी स्नान ले सकते हैं। तो जैसे कि आपको 10 साल से है तो कम से कम 2-3 महीना आप इसको लेंगे तो ये पूरी पूर्ण रूप से आपका ठीक हो जाएगा, है ना?
3: जी मैम।
1: और घर पर ऐसे योगासन वगैरह भी आप कर सकते हैं? करते हैं क्या कुछ योगासन?
3: जी मैम, थोड़ा बहुत कर लेते हैं, वैसे घर में तो टाइम नहीं लगता है। तो
1: क्लासेस वगैरह कुछ ज्वाइन करके डेली करेंगे ना तभी होगा, क्योंकि जैसे कि हम खाना खाते हैं तो डेली हम खाते हैं तभी तो हमारा शरीर पुष्ट होता है ना। तो उसी प्रकार से ये सब चीजें भी प्रकृति की जो चीजें हैं, 5 तत्व हैं जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, तो वो सब चीजों को भी हमको अपने शरीर को रेगुलर रूप में देना है तभी तो हमारे शरीर पुष्ट होगा और बीमारियां जाएंगी बाहर, है ना? तो योगासन में का डेली जो है जैसे बद्धकोण आसन हो गया, सेतुबंध आसन हो गया, कम से कम ये 3-4 आसन ही आप रेगुलर कीजिए, है ना?
3: जी मैम।
1: लिख सकते हैं इसको, तितली आसन भी बोलते हैं, बद्धकोण आसन, बटरफ्लाई पोज, उसको आप घड़ी देख के कम से कम 1 मिनट करिए, धीरे धीरे समय को बढ़ाते जाएंगे और श्वास की सजगता के साथ।
3: जैसे टाइम को बढ़ाते जाएंगे तो कितने समय तक करें? जैसे
1: आप जितना देर कर सकते हैं उतना देर कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं रहता है कि बहुत लंबे समय तक नहीं करना है ऐसे करके, लेकिन वो व्यक्ति जो है शुरू में तो 10 सेकंड ही उसको बहुत भारी हो जाता है
3: जी,
1: तो 10 सेकंड से स्टार्ट करके फिर धीरे धीरे धीरे करके वो बढ़ते बढ़ते फिर 1 मिनट तक पहुंचता है।
3: जी मैम। और ना मैम, वजन भी ना बहुत बढ़ता है।
1: वो आपके हार्मोन्स चेंजेस के कारण होता है, जैसे पीसीओडी

0: के कारण वो भी उसका एक सिम्टम है
1: जी,
0: ना?
1: जी।
0: तो जब आपका वो सब ठीक हो जाएगा, हार्मोनल बैलेंस ठीक हो जाएगा, तो फिर आपका अपने आप ही फिर वजन भी आपका सामान्य हो जाएगा
1: जी मैम।
0: तो आपको रेगुलर योगा करना है ना
1: मैम?
0: हाँ, तभी ठीक हो पाएंगे
1: जी।
0: प्राकृतिक चिकित्सा भी लेंगे और योगा भी करेंगे, तब आप इसका बहुत जल्दी असर दिखेगा
1: जी मैम। और मेरी बच्ची है 2.5 साल की,
0: हाँ,
1: उसको ना ब्रोंकाइटिस बहुत होता है, ठंड में ही मतलब बहुत परेशान रहती हूँ मैं।
0: तो उसके लिए भी प्राकृतिक चिकित्सा बहुत ही अच्छा रहता है। प्राकृतिक चिकित्सा से तो ट्यूबरक्लोसिस तक ठीक हो जाता है। तो फिर आपकी छोटी सी बच्ची अभी 2 साल की, अभी से उसका आप केयर कर लेंगे और उसको दवाइयाँ खिलाने के बदले ये सब जो प्राकृतिक चिकित्सा में गर्म पानी का सेक होता है, चेस्ट का लपेट होता है, तो ये सब लेने से फिर वो बहुत अच्छे से ठीक हो जाएगी। फिर जीवन में उसको कभी भी श्वास संबंधी तकलीफ नहीं होगी। ब्रोंकाइटिस का जो समस्या है ना, उसके लिए आप प्राकृतिक चिकित्सा जरूर करवाइए और उसको भी योग का कक्षा ज्वाइन करवाइए। वो भी रेगुलर प्राणायाम करेगी, तब फिर उसका श्वास संबंधी बीमारी उससे बहुत ठीक होगा
1: जी मैम,
0: है ना? तो उसके लिए भी रेगुलर प्राणायाम करना, योगासन करना बहुत जरूरी है, जैसे आपके लिए जरूरी है। दोनों ही इसको स्टार्ट कीजिए और आप तब आपकी बीमारी से आपको छुटकारा मिल जाएगा
1: जी मैम। जी जी,
0: आशा करती हूँ आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा आपके।
1: जी मैम।
0: जी
1: मैम, धन्यवाद
2: फोन करने के लिए, भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: हेलो,
3: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं आप?
3: रानी हूँ, दयालगंज से।
0: जी जी, बताइए आपका प्रश्न।
3: मुझे ये प्रॉब्लम है मैम, वो PCOS है।
0: अच्छा।
3: जिसमें पीरियड नहीं आता है टाइम पे मैम ना।
0: हाँ हाँ
3: जी, और वेट भी बढ़ चुका है बहुत।
0: जी जी, कितने समय से हो गया आपको?
3: मेरे को कम से कम हो गया होगा, फिर भी 14 साल हो रहा है।
0: अच्छा, आपकी उम्र कितनी है?
3: मेरी उम्र 36 है।
0: मैरिज हो गए हैं?
3: जी जी, एक बच्चा भी है।
0: जो मोटापा बढ़ा है आपका, वो PCOS जो आपको है उसी का ही एक सिम्टम है, उसी के कारण आपका मोटापा बढ़ रहा है हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण। तो इसमें योगासन वगैरह आप करते हैं?
3: जी करती थी, कभी कभी छूट भी जाता है, लेकिन अभी काफी टाइम से नहीं कर रही हूँ, छूट गया है।
0: अभी फिर से शुरू कीजिए, उसको रेगुलर करने से ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो रेगुलर में आप उसको तितली आसन जो रहता है, बद्ध कोणासन बोलते हैं, वो रेगुलर कीजिए, सेतु बंधासन, उपविष्ट कोणासन, ये सब 3-4 आसन जो है कम से कम रेगुलर कीजिए, है ना? तो इससे काफी अच्छा रहेगा। धीरे धीरे करके ये आसन करते रहेंगे तो 6-7 महीना 1 साल में, जैसे 14 साल से आपको है ये प्रॉब्लम, तो कम से कम इसको तो काफी समय लगेगा ही, क्योंकि ये बिना दवाइयों के बिना साइड इफेक्ट्स के रहता है। तो इसमें जितने लंबे समय से बीमारी है इसका कम से कम 1/4 समय तो हमको देना रहता है। तो रेगुलर करते रहिए। तो उससे अच्छा मुनक्का का आप लीजिए, मुनक्का जो होता है ना, काला किशमिश का ड्राई फॉर्म मुनक्का, वो मुनक्का को रात में भिगो दीजिए 6-7 मुनक्का और उसको फिर सबेरे खाइए, पानी भी पी लीजिए ना। तो मुनक्का से काफी अच्छा फायदा होता है ये, और प्राकृतिक चिकित्सा में इसमें कटी स्नान सबसे अच्छा रहता है और पेट का लपेट एक रहता है। तो आप यदि घर पर यदि किसी प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में जाके कटी स्नान वगैरह ले पाएंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो घर पर कम से कम पेट का लपेट लेना शुरू कीजिए और योगासन करना शुरू कीजिए।
3: पेट का लपेट कैसे लेना है मैम?
0: पेट के लपेट में एक सूती कपड़ा रहता है
3: जी,
0: कॉटन का, और एक वुलन कपड़ा रहता है ऊनी का। तो सूती कपड़ा को पानी में भिगो के और पेट में चारों तरफ बांधते हैं, और
3: उस पानी से?
0: नहीं, नॉर्मल पानी से, सामान्य, ना गर्म रहेगा ना ठंडा। और उसके ऊपर फिर वुलन कपड़ा को लपेटेंगे और इसको बांध के 30 से 45 मिनट तक रखना रहेगा। तो ये डेली करेंगे तो उससे आपको जैसे गैस वगैरह का भी प्रॉब्लम होता होगा कभी कभी, तो
3: हाँ,
0: वो
3: हाँ, होता है ना मैम।
0: हाँ, तो गैस वगैरह का प्रॉब्लम भी आपका पूरा ठीक हो जाएगा, खट्टी डकार वगैरह भी नहीं आएगी और धीरे से PCOS में भी उसका असर दिखेगा। और यदि हो पाएगा तो आप कटी स्नान और ओजोन थेरेपी भी लेने का प्रयास कीजिए, तो उससे आपको और जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। कटी स्नान एक प्रकार का जल चिकित्सा है, वाटर थेरेपी के अंतर्गत आता है। तो इसमें एक स्पेशल एक टब रहता है कुर्सी के जैसे, जिसमें कि पानी भर के फिर उसको 20 मिनट के लिए बैठा जाता है, 20 से 30 मिनट के लिए। आहार में हरी सब्जियां हमको ज्यादा खानी चाहिए और रेशेदार फल वगैरह ज्यादा लेने चाहिए, और मुनक्का का जो मैंने कहा वो मुनक्का खाना चाहिए। तो आहार में ये सब ध्यान रखना चाहिए, और खून की कमी भी जैसे लगती है तो बीटरूट जो होता है, चुकंदर, वो खा सकते हैं। ये योगासन वो रेगुलर करेंगी और साथ में अपना ये हरी सब्जियां ज्यादा खाएंगी, मुनक्का रेगुलर खाएंगी, और उसके साथ प्राकृतिक चिकित्सा भी यदि ले पाए तो बहुत ही आराम मिलेगा। आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया है मैं आशा करती हूँ।
3: धन्यवाद।

0: जी धन्यवाद,
1: फोन करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे कि हमारी दिनचर्या है, हमने एक व्यायाम का, योग का, योग मुद्राओं का, योग आसन का एक समय निर्धारित किया अगर सुबह, तो जो शुरुआत होती है वो कैसी होनी चाहिए, आप हमें बताएं।
0: तो योग करने के पहले हमको कुछ नियमों का, कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हम जब योग करें तो हमारा पेट खाली हो, या फिर यदि हम शाम के समय कर रहे हैं तो कम से कम खाने के बीच में 3 से 4 घंटे का गैप रहे। तो फिर यदि सुबह का समय यदि हम नहीं भी दे पा रहे हैं तो खाना खाने के बाद कम से कम 4 घंटे बाद फिर हम योग करें, है ना। खाने के तुरंत बाद कभी भी योग नहीं करना चाहिए। दूसरी सावधानी जो हमको बरतनी चाहिए कि कभी भी एकदम टाइट फिटिंग क्लोथ्स, जो स्किन से एकदम चिपके रहे, ऐसा कपड़े पहनकर हमको योग नहीं करना चाहिए। हमको लूज ढीले कपड़े जिसमें हवा का आना जाना हो पाए, वैसे टाइप के कपड़े अपने, और जो आरामदायक कपड़े हो उस प्रकार के पहन के करें। तीसरी सावधानी हमको करनी चाहिए कि योग करते समय कभी भी घड़ी पहन के या चश्मा, यदि आवश्यक नहीं है तो चश्मे को भी उतार देना चाहिए। पैंट में बेल्ट वगैरह नहीं पहनना चाहिए। तो ये सब घड़ी, बेल्ट, चश्मा, ये सबको अलग रख के फिर उसके बाद योगाभ्यास के लिए हमको बैठना चाहिए। मन को शांत रखते हुए केंद्रित करने की कोशिश करनी चाहिए। अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते हुए प्रत्येक योगासन को करना चाहिए कि कोई भी हम आसन कर रहे हैं तो उस समय हमारी ब्रीदिंग में क्या चेंजेस हुआ, हमारे बॉडी में क्या चेंजेस हो रहा है, इसको प्रति क्षण नोट करते जाएं। तो जितना ज्यादा आप अवेयरनेस के साथ कोई भी आसन को करेंगे, कोई भी प्राणायाम को करेंगे, उतना ज्यादा फिर आपको लाभ मिलेगा।
1: और डॉक्टर साहब, आप चलते चलते हमारी सखियों को क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: सबसे पहले तो आप सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने फोन कॉल किए और अपनी रुचि दिखाई। और मेरा यही संदेश है आप लोगों को कि आप इसको अपनी जीवन शैली में अपनाइए, डेली योग करें, योग आसन प्राणायाम ध्यान, ये चारों चीजें आप डेली कीजिए। ये आप घर पर कर सकती हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। बस मन में डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि हमको करना है, तो आप नियमित रूप से कर लेंगी, भले आपके साथ कोई रहे ना रहे। पर आप यदि करना शुरू करेंगे तो आपके साथ साथ फिर आपके बच्चे भी करेंगे, आपके घर के सभी लोग करेंगे। तो इसीलिए आप लोगों को इसको अपनाना बहुत ही जरूरी है। एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए इन सबको अपनाना बहुत ही जरूरी है, तभी आप स्वयं भी स्वस्थ रह पाएंगी और अपने पूरे परिवार को भी स्वस्थ रख सकेंगी।
1: डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, फोन के माध्यम से आपने हमारी सखियों से बातें की, उनके प्रश्नों को उत्तर दिए हैं, और नेचुरोपैथी और स्वस्थ जीवन शैली से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमारी श्रोताओं तक पहुँचाई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: धन्यवाद
1: सखियों। अभी आप सुन रही थी क्रम स्वास्थ्य वार्ता में फोन इन कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत नेचुरोपैथी की डॉक्टर अर्चना अग्रवाल से सखियों की बातचीत। तकनीकी सहयोग था एस लकड़ा का।
2: चाहे हो माइग्रेन, साइटिका, एलर्जी या महिलाओं से संबंधित समस्या, आइए नेचुरा आइलैंड निसर्गोपचार केंद्र में, जहां विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना अग्रवाल द्वारा एक्यूपंचर, ओजोन थेरेपी, योग और नेचुरोपैथी से प्राकृतिक उपचार किया जाता है बिना सर्जरी, बिना दवाइयों के। फोन नंबर है 6261000654। पता है श्री राम मंदिर के पास, तिलक नगर, बिलासपुर।
1: सखियो, अब इसी के साथ अनुमति दीजिए अपनी रेडियो सखी प्रभा कश्यप को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिला सभा, आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:05 हुए हैं। अब हम आपको आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के साथ साथ कल की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देंगे।

ईमेल करें। गीत सुने कार्यक्रम का प्रसारण 6:20 पर किया जाएगा और इसका शेष भाग आप सुनेंगे शाम 7:00। केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आर्थिक विकास विषय पर कार्यक्रम रिले किया जाएगा आकाशवाणी दिल्ली से शाम 7:10 पर। 8:15 पर मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम रिले होगा आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से।

0: 7:45 पर आप सुनेंगे विविधा, जिसके अंतर्गत भूजल और पर्यावरण संरक्षण में तालाबों की भूमिका विषय पर श्रेयांश बुधिया से बातचीत प्रसारित की जाएगी। प्रस्तुति होगी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की। रात 8:30 पर रजनीगंधा का प्रसारण किया जाएगा। ये थे आज के शेष कार्यक्रम।
1: चाहे हो माइग्रेन, साइटिका, एलर्जी या महिलाओं से संबंधित समस्या, आइए नेचुरा आइलैंड निसर्गोपचार केंद्र में, जहां विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना अग्रवाल द्वारा एक्यूपंचर, ओजोन थेरेपी, योग और नेचुरोपैथी से प्राकृतिक उपचार किया जाता है बिना सर्जरी, बिना दवाइयों के। फोन नंबर है 6261000654। पता है श्री राम मंदिर के पास, तिलक नगर, बिलासपुर।
0: श्रोताओं, अब हम आपको कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा बताएंगे। कल सुबह 6:30 पर खेती की बात कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा, जिसमें आधुनिक खेती में गाय के गोबर और गौमूत्र की उपयोगिता विषय पर जानकारी दी जाएगी। वाचन स्वर होगा अभिनव गौरहा का। 6:45 पर सुनिएगा नवविहान, जिसका विषय होगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। फोन इन कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद का प्रसारण होगा कल सुबह 10:00। एनसीईआरटी ये प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे कल सुबह 11:00। कल शाम 5:05 पर ग्राम सभा में बेरा के गोट का विषय होगा धान फसल के स्वस्थ थरहा तैयार करो। कल शाम 7:10 पर केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इंफ्रास्ट्रक्चर विषय पर विशेष श्रृंखला का अनुप्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी दिल्ली से। इन्हीं जानकारियों के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। 6:10 होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर बाद हम छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार रिले करेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से।
1: चाहे हो माइग्रेन, साइटिका, एलर्जी या महिलाओं से संबंधित समस्या, आइए नेचुरा आइलैंड निसर्गोपचार केंद्र में, जहां विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना अग्रवाल द्वारा एक्यूपंचर, ओजोन थेरेपी, योग और नेचुरोपैथी से प्राकृतिक उपचार किया जाता है बिना सर्जरी, बिना दवाइयों के। फोन नंबर है 6261000654। पता है श्री राम मंदिर के पास, तिलक नगर, बिलासपुर।
2: रायपुर ही छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग संध्या तिवारी के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है कहीं ने कि सरकार है पाछू 12 मा देश के युवा माइलोगिनों की सशक्त बनाए मा कोनो कसर नहीं छोड़े है। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के अगुवाई में होइस राज्य मंत्री परिषद की बैठक। चालू खरीफ सीजन ले कृषक उन्नति योजना के नवा स्वरूप लदीन मंजूरी। प्रदेश में आज ले सीएम हेल्पलाइन सेवा शुरू। 1076 नंबर मा आम लोगन मन कर सकते शिकायत। और मौसम विभाग अवैया 2-3 दिन मा प्रदेश के कुछ एक जगह मा हवा गरेर के संग वर्षा होए के संभावना जता है। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है कहीने कि सरकार है पाछू 12 मा देश के युवा माइलोगिन और किसान मन ला सशक्त बनाए मा कोनो कसर नहीं छोड़े है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी है कहीं है कि 140 करोड़ लोगन मन के आशीर्वाद और राष्ट्र प्रथम की भावना ले प्रेरित होकर सरकार है विश्वास, विकास और जन कल्याण पर समर्पित है। प्रधानमंत्री है कहीं है कि ये अथक प्रयास के बाद आज देश है बुनियादी ढांचा लेके डिजिटल क्रांति तक वैश्विक मंच में एक नवा पहचान करे है। श्री मोदी है ये बात ऊपर जोर दीन है कि विकसित अपन संकल्प ला साकार करे बर सरकार सेवा और समृद्धि के ये पथ मा सरलग आगू बढ़त रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई मा केंद्र मा एनडीए सरकार के 12 पूरा हुए मा आकाशवाणी केंद्र रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश डहरले 15 मिनट के एक विशेष कार्यक्रम तैयार करेगी है।

0: ये कार्यक्रम के प्रसारण आज रतिया 8:15 में करे जाही। जिला छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के जम्मू केंद्र एके संग्रह रिले कर ही। मुख्यमंत्री विष्णु देसाय की अगुवाई में आज मंत्रालय में हुए राज्य मंत्री परिषद की बैठक में कतकोन फैसला ले गिस। बैठक के बाद पत्रकार मन ले गोट बात करत उप मुख्यमंत्री अरुण साहू बतेन है कि मंत्री परिषद है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ला IPO के माध्यम ले स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करे जाए की मंजूरी दे है। एखर ले आम नागरिक और निवेशक मनला कंपनी आज यात्रा में भागीदारी बनाए के मौका मिलही और कंपनी की वित्तीय क्षमता और पारदर्शिता ला नवा मजबूती मिलही। एक ठीन आने फैसला में मंत्री परिषद है चालू खरीफ सीजन ले कृषक उन्नति योजना के नवा स्वरूप ला मंजूरी दीन है। एकर तहत धान के जगह में आने खरीफ फसल लेवैया किसान और दलहन तिलहन मक्का कोदो कुटकी रागी और कपास के खेती करैया किसान मल्ला हर एक एकड़ पाछू 15,000 रुपया के मदद दे जाही। ये योजना के फायदा एकीकृत किसान पोर्टल एग्रीस्टेक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार में दे जाही। उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली पात्र हितग्राही मल्ला चालू वित्तीय बच्छर में चना देवाए के घलो फैसला ले गए है। एकर संगे संग मंत्री परिषद है योग विषयला समाज कल्याण विभाग ले हटा के चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत लाए के प्रस्ताव ला मंजूरी दे है। एकर संग प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के क्रियान्वयन पर पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म स्कीम के तहत डायरेक्ट डेबिट मैन सहमति केंद्र सरकार ला भी अनुमति दे है। ये फैसला ले रायपुर दुर्ग भिलाई बिलासपुर कोरबा में मंजूर हुए 240 इलेक्ट्रिक बस के संचालन के रद्दा खुली। मंत्री परिषद है नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण ला आपसी मंजूरी ले भूमि खरीदे ऊपर दे जावत मुद्रा शुल्क छूट के बेरा ला 31 मार्च 2028 तक बढ़ाए के फैसला ले है। उन्हें छत्तीसगढ़ खनिज नियम में संशोधन मंजूरी दे गई है। प्रदेश में आज ATM हेल्पलाइन 1076 सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देसाय है मंत्रालय ले ये सेवा के शुभारंभ करी। ये मौका मोमन कही ने कि अब लोगन मनला अपन शिकायत सुझाव और समस्या ला टोल फ्री नंबर 1076 एप और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम ले सीधा दर्ज करा सकी। हर एक शिकायतकर्ता ला यूनिक ID दे जाही जेखर ले उनका ट्रैकिंग मॉनिटरिंग और बेरा में निराकरण हो सके। श्री शाह कहने की ये व्यवस्था में समाधान ले असंतुष्ट हो शिकायत के फिर ले समीक्षा के प्रावधान करेगी है। संगे संग प्रदेश के विकास ले जुड़े विशेष सुझाव घलो नागरिक मन सीधा सरकार तक पहुंचा सकी। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुना था।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचा था। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बाढ़ बांचे समाचार कोती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं सेना केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस कर्मी मल्ला वीरता पुरस्कार ये पुरस्कार काली राष्ट्रपति भवन में राखे गए रक्षा अलंकरण समारोह में देगी। छत्तीसगढ़ के 3 लोगों ला राष्ट्रपति चक्र ले सम्मानित करेगी। ये मां असम राइफल के राइफलमैन भोजराम साहू के संगे संग छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान बहादुरी और काबिलियत के परिचय देवैया पुलिस निरीक्षक लक्ष्मण केवट और निरीक्षक रामेश्वर देशमुख शामिल है। मुख्यमंत्री विष्णु देसाय और उप जय शर्मा कहने की यह है पूरा प्रदेश भर गौरव के पाए। आज पूरा देश महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के पुण्यतिथि मां ओमल्ला श्रद्धांजलि अर्पित करत है। ये मौका मां उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ओमल्ला श्रद्धांजलि अर्पित करें। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह कहीं है कि भगवान बिरसा मुंडा हा आदिवासी समाज ला उखर अधिकार और विरासत के रक्षा पर एक करीब और जल जंगल जमीन के संरक्षण जन आंदोलन के रूप दिन।

0: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ला आज 10 बछर पूरा हो गए हे। ये मौका मा केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी हा कहिन हे कि जम्मो शिशु मन ला गर्भावस्था के दौरान हरेक चरण मा सुरक्षित और स्वस्थ देखभाल के अधिकार हवय। सोशल मीडिया पोस्ट मा ओमन कहिन हे कि पाछू एक दशक मा सरकार हा गर्भवती माई लोगिन मन ला बेरा बेरा मा स्वास्थ्य जांच, विशेषज्ञ परामर्श और सुघ्घर मातृ स्वास्थ्य सेवा देवाए के सुरक्षित मातृत्व ला एक जन आंदोलन बना दे हे। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल हा काली देश भर मा 100 औद्योगिक पार्क के विकास मा तेजी लाने बर पोर्टल भव्य के शुभारंभ करी। नई दिल्ली मा श्री गोयल हा कहिने कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र के विकास मा मदद करही। ओमन कहिने कि औद्योगिक तंत्र ला विकसित करे के संगे संग पूरा भारत मा बड़ पैमाना मा निवेश के माध्यम ले बड़े स्तर मा रोजगार सृजन ला बढ़ावा दे बर भव्य योजना शुरू करे गए हे। भव्य योजना के अंतर्गत याने आकार के 100 औद्योगिक पार्क बनाए जाही। अंतरराष्ट्रीय संपार फाटक जागरूकता दिवस के मौका में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल डहर ले 12 जून तक आने आने कार्यक्रम आयोजित करे जावत है। यही कड़ी में आज रायपुर के मंडल रेल प्रबंधक दयानंद की अगुवाई में वॉकथन के आयोजन करेगी। ये वॉकथन मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय शुरू होके वापिस कार्यालय परिसर में सिराइस। एमा अपर मंडल रेल प्रबंधक के संगे संग मंडल के आने आने अधिकारी और स्काउट लैका मन शामिल हुई। ए दौरान स्काउट गाइड के लैका मन हा खमतराई फाटक मा नुक्कड़ नाटक के माध्यम ले लोगन मन ला जागरूक करीन। महासमुंद जिला के बसना पुलिस हा धान खरीदी मा करीबन 4.5 करोड़ रुपया के गबन के मामला मा लंबा बेरा ले फरार आरोपी मला गिरफ्तार करे है। पुलिस के मुताबिक प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति पिरदा में बछर 2020-21 के दौरान 17,210 क्विंटल ले ज्यादा धान के हेरा फेरी करे गे रहिस। तकनीकी साक्ष्य के आधार में ओबेरा के व्यवस्थापक कन्हाई सेठ और सेल्समैन राजकुमार पटेल गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड में जेल भेज दे गए है। खबर के मुताबिक ये मामला में 2 जन आरोपी की गिरफ्तारी पहली ले करे गए है। मौसम विभाग के मुताबिक अवैया 2-3 दिन में मानसून है छत्तीसगढ़ में कुछ एक जगह में पहुंच सकत है। एक असर ले अवैया 5 दिन में प्रदेश के कुछ एक जगह में गरज चमक के संग हवा गरेर और वर्षा होए के संभावना है। रायपुर जिला में पाछू रतिया तेज वर्षा तापमान में 3 ले 4 डिग्री से गिरावट आए है। मौसम विभाग एला प्री मानसून के वर्षा है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फेर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा कहिने कि सरकार हा पाछू 12 बछर मा देश के युवा माइलोगिन और किसान मन ला सशक्त बनाए मा कोनो कसर नहीं छोड़े है। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की अगुवाई मा होइस राज्य मंत्री परिषद के बैठका। चालू खरीफ सीजन ले कृषक उन्नति योजना के नवा स्वरूप ला दिन मंजूरी। प्रदेश में आज ले सीएम हेल्पलाइन शुरू। 1076 नंबर मा आम लोगन मन कर सकत है शिकायत। और मौसम विभाग हा या 2-3 दिन मा प्रदेश के कुछ हवा गरेर के संग वर्षा होए के संभावना जताई है। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन थे। जय जोहार।
1: अभी आप छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार सुन रहे थे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:20 हुए हैं। प्रस्तुत है ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। ईमेल करें, गीत सुने। ईमेल करें, गीत सुने कार्यक्रम का पहला गीत हमारे इन सभी श्रोताओं ने सुनना पसंद किया है और हमें ईमेल किया है। नरगोड़ा से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राशि शीतल, मोहाली चंडीगढ़ से टी मल्होत्रा, ऋतिक प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप, बिलाईगढ़ से खिकराम देवांगन, रेणु, रजनी, प्रियंका देवांगन, विरंगम राजकोट से रुचि गुप्ता, ट्विंकल और उमा गुप्ता, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, अनिष्का और तन्मय गजभिये, मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु और सागर बालूजा, सौगा मगरलोट से

पनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित, देविका रानी, गजेंद्र कुमार, हियांश कुमार चंदन, पोड़ी भाटा अकलतरा से दिलीप चंदन, चुवाराम यदु, निखिल वसुंधरा प्रांजल, मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश और राहुल साहू, कुम्हार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा, प्रतीक्षा, जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित गर्व, हिमाक्ष, पांढरकवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा, अनुश्री, धनश्री, बठिंडा पंजाब से परेम सिंह जौड़ा, मनजीत कौर, करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सिमू, एकम, दमन और अभिजोत, तिवर्ता डबरीपारा जिला कोरबा से महेंद्र प्रताप मरकाम, जया, जागेंद्र, गजेंद्र, जयंती, ममता, मनीषा, मंजू, मानसी, सुरेंद्र मरकाम, मोहन सिंह, सहोद्रीबाई, मनमोहन सिंह, गिरजाबाई, चंद्रपाल मरावी और लक्ष्मी थदवानी, दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना, चैतन्य, मेघा मस्कीन, देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे, महसौल सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत जहां, नाज, तलत, फरहत, रिफत, नुजहत, साजिया, शाहीन, नाज और नाजिया नूरी नाज, चिरमिरी कुरासिया कॉलोनी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ राम, सहोदर नारायण प्रसाद, दिनेश प्रसाद, कालिंदर लहरे, तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, मोहम्मद यूसुफुद्दीन, रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, जगराव से सुनील पाठक, कमल, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा और सुच्चा सिंह पाठक, मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, पीयूष कुमार, रोहित राज, गांव नथाना पंजाब से हरिजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन, कविता, कर्ण, शक्ति, रिया, जया और दर्शन। आप सभी श्रोताओं के ईमेल पर पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का, फिल्म आशिकी से। आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की। समीर ने इस गीत को लिखा है और संगीत है नदीम श्रवण का।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने, और अगला गीत इस कार्यक्रम का सुनने के लिए हमारे श्रोताओं ने ईमेल किया है, वो गीत है मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म दोस्ताना से। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है और बंदिश है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, और हमारे श्रोताओं के नाम हैं गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र सिंह, रायगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र जोई, यामिनी उमा तिवारी, हांसी से राजू मिगलानी, बब्बू डब्बू बबीता, सुभाष योगी, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव, मणि डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित, तानिया नारंग, धुर्राबांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव दवीन, युवराज साहू, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान अब्बासी और अबान अब्बासी, खमरिया से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार, मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, सोनू सुरेश, पंकज काजल, सीमा मानवी, तन्वी राजपाल, लक्ष्य सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह, पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानक चंद मल्होत्रा, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, राबिया शेख और शेख रही मुन्ना, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल सोनू पप्पी भाटिया, राजकोट से राजेश कृष्णा, स्वाति और ख्याति कुमारी, बुल्ढाणा वनशिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार, जमशेदपुर से अपूर्व सिंह, अनुपम, राकेश कुमार, लंघान पंडरिया से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी साहिल, भारती बघेल, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल और पूजा परिहार, राजकोट से जूली जगदीश गुजराती, प्राची और प्रवीण पुजारी, वार्ड नंबर 1 पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगड़कर, दिशांत और अर्पिता, रायपुर से नीलू वंदना, बिट्टू कुमार, गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला इंदु, पार्वती हिमांशु गोदारा, नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहागर, निर्मला विशाल, रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी योगेश, संध्या कीर्ति, डिकेश वासु, डॉली पूर्वेश साहू, भाटापारा से बचकामल, मोतीलाल यादव, सियाराम, चोवाराम वर्मा, सूरज बोरकर, नारायण यदु, भुवन कामरी, इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता गणेश, कार्तिक परी, स्वाति प्रयाग चौधरी, कुमारी देवी चौधरी और मालती चौधरी। आप सभी श्रोताओं के ईमेल

ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम में। अगला गीत सुनने के लिए हमें ईमेल किया है हमारे इन सभी श्रोताओं ने। तखतपुर से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा। श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजियाना सिर साजिद शाहिद। सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़। मालौत पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, निवान, सौरव, शाइना, मेंडी शर्मा। मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। गुमला झारखंड से नजमुल होदा जावेद और शगुफ्ता अंजुम। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव भानु प्रिया, माधुरी और किरण। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा, रजत, मंजू भाटिया और मयंक भाटिया। निमनाबाद जिला जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत, करमजीत कौर। बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश गवहाणकर, टुकटुक गवहाणकर, प्रिंस एकांश, सुमित ध्वनि गवहाणकर। पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत और कौरमनु। जनकपुरी सहारनपुर से जोन डिकेस्ट्रो, रोजी, पर्ल, विलिस डिकेस्ट्रो। तिलहारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा सुजाता पोहरकार। कांकेर जिला भानबेड़ा मुंगवाल से भारत राम पडोटी, जयंती, हेमंत, उमंग और मोक्ष। करनाल से सुधीर, नूतन, संदीप, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा और इशप्रीत शर्मा। कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे, संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सर्वद और सानवी देशमुख। दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और नगमा। गंडई टिकरी पारा से जागेश्वर दिवांगन, कचरीबाई, दीपक, जयश्री दिवांगन, ऋषभ और ऋचा दिवांगन। कैदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा और ऋषभ सिंह। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली और धनंजय कटनकर। दिल्ली से सोनम, सना और अदीबा। दुर्ग से कांबड़े सीआर, करुणा, मीना, अश्वनी और विपुल कांबड़े। जालंधर से रोशन जहां, मन्नत जहां, इशरत जहां और मक्कार जहां। रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर ईमेल पर ये गीत फिल्म वापस से मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजें हैं। मजरूर सुल्तानपुरी ने लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

इस गीत के साथ ही ईमेल करें, गीत सुने कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:45 होने वाले हैं। अब हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण करेंगे।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। समाचार के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। सूर्य घर।
4: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
5: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
4: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर?
5: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
4: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
5: क्यों?
4: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
6: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
7: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
8: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
7: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी
8: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
7: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
8: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।

0: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
1: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
1: आकाशवाणी से।
0: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
3: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रदेश में आज से सीएम हेल्पलाइन सेवा शुरू, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया शुभारंभ। राज्य मंत्री परिषद ने चालू खरीफ सीजन से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को दी स्वीकृति। और राष्ट्र आज महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों के आशीर्वाद और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन अथक प्रयासों के फलस्वरूप बुनियादी ढांचे से लेकर डिजिटल क्रांति तक वैश्विक मंच नई पहचान हासिल की है। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि विकसित भारत के अपने संकल्प को साकार करने के लिए सरकार सेवा, सुशासन और समृद्धि के इस पथ पर निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी केंद्र रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा 15 मिनट अवधि का एक विशेष कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम का प्रसारण आज रात 8:15 से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे। प्रदेश में आज से सीएम हेल्पलाइन सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय से इस सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अब नागरिक अपनी शिकायतें, सुझाव और समस्याएं टोल फ्री नंबर 1076, मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सीधे दर्ज करा सकेंगे। प्रत्येक शिकायतकर्ता को यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी, जिससे उसके आवेदन की ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग और समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि इस सेवा के माध्यम से लोग प्रदेश के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव भी सीधे सरकार तक पहुँचा सकेंगे।
4: आज छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता को अपनी समस्याओं के निदान के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने का काम और समस्याओं का निदान हो, इसलिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 आज जारी किए हैं। सवेरे से अभी तक 10 बजे से लेकर अभी तक 3,500 से ज्यादा समस्याएं यहां पर आ चुकी हैं, जिसको रजिस्टर्ड कर चुके हैं। हम पूरे प्रदेश की जनता को इसके लिए शुभकामनाएं देते हैं।
3: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में किसानों के साथ ही ऊर्जा, परिवहन, खनिज और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्री परिषद ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को आईपीओ के जरिए शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। साथ ही चालू खरीफ सीजन से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को भी स्वीकृति दी है। इसके अलावा प्रदेश में 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन योग्य, प्रशासनिक पुनर्गठन और परिवहन व्यवस्था को तकनीक आधारित बनाने जैसे अहम निर्णय लिए गए। बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि कृषक उन्नति योजना का लाभ एकीकृत किसान पोर्टल, एग्रीस्टेक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर दिया जाएगा।
5: खरीफ 2026 से कृषक उन्नति योजना के नवीन स्वरूप को मंजूरी दी है। राज्य सरकार द्वारा फसल विविधीकरण को बढ़ाने, किसानों की आय बढ़ाने तथा धान पर अत्यधिक निर्भरता कम करने के उद्देश्य से धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसलें लेने वाले किसानों एवं तिलहन, मक्का, कोदो,

0: कुटकी, रागी तथा कपास की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15,000 रुपये आदान सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
1: वहीं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को चालू वित्तीय वर्ष में चना उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया गया है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने योग विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ ही प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के क्रियान्वयन के लिए पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म स्कीम के तहत डायरेक्ट डेबिट मैंडेट की सहमति केंद्र सरकार को भेजने की अनुमति। इस निर्णय से रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में स्वीकृत 240 बसों के संचालन का मार्ग प्रशस्त। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में प्रदान किए गए। छत्तीसगढ़ के 3 लोगों को राष्ट्रपति ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। इनमें असम राइफल के राइफलमैन भोजराम साहू के साथ ही छत्तीसगढ़ नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान बहादुरी और नेतृत्व क्षमता का परिचय देने वाले पुलिस निरीक्षक केवट और निरीक्षक रामेश्वर देशमुख शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ये पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। केंद्र सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयीन प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि ईंधन की निर्बाध आपूर्ति और ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान को आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री देवी ने कहा है कि प्रत्येक शिशु को गर्भावस्था के हर चरण में सुरक्षित, स्वस्थ और सम्मानजनक देखभाल का अधिकार है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने लाखों गर्भवती महिलाओं को समय पर स्वास्थ्य जांच, विशेषज्ञ परामर्श और बेहतर मातृ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करके सुरक्षित मातृत्व को एक जन आंदोलन बना दिया है। आज पूरा देश महान स्वतंत्रता और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने जल और भूमि की रक्षा के लिए विदेशी शासन के विरुद्ध अदम्य साहस से संघर्ष किया। श्री मोदी ने कहा कि उनका संपूर्ण जीवन जनजातीय समुदाय के आत्मसम्मान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित था। महासमुंद जिले की बसना पुलिस ने धान खरीदी में करीब 4.5 करोड़ रुपए के गबन के मामले में लंबे समय से फरार 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति पिरदा में वर्ष 2020-21 के दौरान 17,210 क्विंटल से अधिक धान की हेराफेरी की गई थी। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर तत्कालीन व्यवस्थापक कन्हाई सेठ और सेल्समैन राजकुमार पटेल को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। गौरतलब है कि इस मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार मानसून 2 से 3 दिन में छत्तीसगढ़ में दस्तक देगा। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि मानसून अगले 2-3 दिन में बस्तर पहुंच जाएगा।
2: प्रदेश में मुख्य रूप से उत्तर छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर हल्की से लेके मध्यम रूप से मेघ गर्जन एक्टिविटी होने की संभावना है। ये मेघ गर्जन का गतिविधि जो है आगामी 5 दिन तक भी रहने की संभावना है और मेघ गर्जन का गतिविधि 11 जून से बढ़ने की चांसेस है। ये मेघ गर्जन के साथ वज्रपात और हल्की से मध्यम वर्षा भी होने के चांसेस है 11 तारीख से। एंड मानसून का आगमन जो है बस्तर संभाग में आगामी 2 से 3 दिन में होने की पॉसिबिलिटी है।
1: और अब कुछ समाचार संक्षेप में। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सुकमा में विकास कार्य और विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अंतर्राष्ट्रीय संपार फाटक जागरूकता दिवस के अवसर पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल द्वारा 6 से 12 जून तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा

0: रहे हैं। इसी कड़ी में आज रायपुर के मंडल रेल प्रबंधक दयानंद के नेतृत्व में वॉकथन का आयोजन किया गया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक विजय कुमार ने कल बिलासपुर, रायपुर और नागपुर मंडल के 7 कर्मचारियों को उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र और नगद पुरस्कार से सम्मानित किया। इस अवसर पर दृष्टिबाधित टिकट परीक्षक रानी सोनवानी को यात्रियों की सहायता और मार्गदर्शन में उत्कृष्ट सेवाएं देने के लिए सम्मानित किया गया। बलरामपुर जिले में कुंदी कला गांव के बांधपारा जंगल में आज हाथी के हमले में एक दंपति की मौत हो गई। यह घटना राजपुर वन परिक्षेत्र की बताई जा रही है। वन विभाग और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। और गरियाबंद जिले के कुरुसकेरा गांव स्थित पैरी नदी में रेत के अवैध उत्खनन के मामले में खनिज विभाग की टीम ने 3 चैन माउंटेन मशीन और एक हाइवा को जब्त किया है। साथ ही खदान संचालक और मशीन मालिकों को नोटिस जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रदेश में आज से सीएम हेल्पलाइन सेवा शुरू। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया शुभारंभ। राज्य मंत्रिपरिषद ने चालू खरीफ सीजन से कृषक उन्नति योजना के रूप को दी स्वीकृति। और राष्ट्र आज महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये
2: प्रादेशिक समाचार आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने का शेष भाग। इस कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म लोफर से। आशा भोसले की आवाज है, आनंद बख्शी गीतकार है इस गीत के और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल है संगीतकार। और इसे सुनने के लिए हमें ईमेल किया है राजकोट से जूली जगदीश, प्राची प्रवीण, जमानिया गाजीपुर उत्तर प्रदेश से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक स्वाति, सहारनपुर से सैयद मसरूद, शाइना हसन नाजिया, गुजरात से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश, भिलाई नगर से अशोक श्याम कुमार, प्रमिला आसमा, लुथरा खमरिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज, लोगर ठाकुरा वाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, अविराज सिंह, लोहारीडीह जिला कवर्धा से अशोक कुमार, लीलेश्वरी लालिमा, खुशान साहू, निशान साहू, गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन, अनजान साइमा नवाज, हसन नवाज, अहद मिफरा नवाज और चाहत, पलारी से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद पराग, पूना राम कृष्णा देवांगन, लुथरा खमरिया से अकरम अमीन, अर्श आतिका, डोंडी लोहारा बालोद से देवशंकर तामुरिया, अजय देव और अलबीर, सरगांव बाजार से नसीब मोहम्मद, हबीब मोहम्मद इरफान, बागबाहरा भदरसी से पन्नालाल सेन, खुशबू तारा, कौशल सेन, दिल्ली शहर से आसमा परवीन, आमना परवीन और वली भाई अंसारी, सावतपुर से ऋषि सेन, रितेश कंचन, माही सेन, बरका खाना से अफजाल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी साहनी और मोहम्मद अफजल मलिक, हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोटखे, नंदा हनुमान बोटखे, पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली सोनम, आशीष विश्वकर्मा, लक्षणपुर से विश्वनाथ साहू, पंकज तिरुपति साहू, लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहरान जहां, टोरोवाल नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता प्रियंका, प्रशांत प्रियम, वामिका वाणी, फिल्म सिटी मुंबई से अदीबा नाज, फातिमा नशरीन अंसारी, आलिया और सब अंसारी, पूर्णा जंक्शन मस्तानपुर से अनंता भगत, अरुणा सुलोचना भगत, चेतन भगत, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन अपार, पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल यशस्वी, अन्नपूर्णा, पुतकी कला कवर्धा से राधेश्याम पांडे, वीणा विनय शंकर पांडे। इसी गीत को सुनने के लिए ईमेल किया है कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, शनि।

श्रेयांश कान्हा, आदित्य देवांगन, बुढ़गांव से राम दुलारी प्रजापति, रामशरण चंद्रकेश, चंद्रेश कुमार चंद्रकांता और शशिकांता प्रजापति, कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द, जलंधर से संदीप मक्कर, ज्योति मन्नत, भरत, कमल सहानी, गनई पंडेरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की, नानू, रविंद्र, रौनक सेन, सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशु, सोनाली नारंग, बरेली कैंट चनहेटी उत्तर प्रदेश से विनेश कुमार, रागनी और मुस्कान, सरगांव से राजेश वर्मा, हिरोमन वर्मा, पल्लवी और राजेश्वरी वर्मा, खोंदला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, घुरनी करिश्मा, सोमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम, हीरामणि, ऐश्वर्य पैकरा, भिलाई तीन चरोदा से नौशाद अहमद सिद्दीकी, हामिदुन जिशान, शाहनवाज अहमद सिद्दीकी, बोरसरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू, बिलासपुर से छन्नूलाल श्रीवास, अनीता पुष्पा, अंजू योगिता श्रीवास, रज्जन साहू, हेमंत नामदेव और धर्मदास वाधवानी, भाटापारा से दान सिंह रावत, दानू, पद्मनी रावत, नीरज रावत, शुभम, सौरभ रावत, ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण, लव्या, आरव खुराना, एस के पप्पी, छोटी बलिया, करजत मुंबई से अहमद भाई, फूलवाले, दुखनी, सदफ, आरजू, जूही, इकबाल, इमरान, आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया, मंतशा, आशु अहमद, दिल्ली से प्रमिला हेमा और अंतरा सिंह, और डुमराव से वली उल्ला अंसारी, सोनम वली और असमा वली। आप सभी श्रोताओं के ईमेल पर लीजिए, सुनिए फिल्म लोफर का ये गीत।

इस गीत के साथ ही ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 7:10 होने वाले हैं। अब से कुछ क्षणों बाद हम आकाशवाणी दिल्ली से केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष में आर्थिक विकास विषय पर कार्यक्रम रिले करेंगे।

0: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत आज सुनिए सूचना और प्रसारण, रेलवे तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं पत्रकार शिशिर सिन्हा।
1: नमस्कार। 26 मई 2014 नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ सत्ता संभाली। तब से लेकर 12 वर्ष बीत चुके हैं और इन 12 वर्षों में देश की जनता ने दो बार और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। इस दौरान हमने कई परिस्थितियां बहुत ही कठिन देखी। कोविड का दौर था, फिर हमारा रूस और यूक्रेन की लड़ाई का भी असर देखने को मिला और उसके बाद अब पश्चिम एशिया का संकट। लेकिन इन सब के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था 7% या उससे ज्यादा की दर से विकास करती रही। कैसे संभव हुआ? क्या कुछ रही कहानी? आगे क्या कुछ हो सकता है? इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रेलवे, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: नमस्कार
1: सर। 12 वर्षों में आर्थिक जो परिस्थितियां रही, कई चुनौतियां भी थी, कई कठिनाइयां भी थी, लेकिन 7% या उससे ज्यादा की विकास दर को हम हासिल कर पाए। किस तरह से नीतियों ने इसमें मदद की?
2: इन 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ही एक मैच्योर तरीके से हैंडल किया है। हम अगर आज से 12 वर्ष पहले 2014 में जाएं, 2014 में हमारा पूरा फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर ऐसी अजब परिस्थिति में था कि सारी दुनिया में चिंता थी कि भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल 5 में गिनी जाने लगी थी। बैंक्स के एनपीएस बहुत हाई थे, बैंकों की बैलेंस शीट्स एकदम प्रैक्टिकली फिनिश होने के कगार पे थी, कौन सा बैंक कब इम्प्लोड हो जाएगा, ऐसी परिस्थितियां थी। आते ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले बैंक्स को बहुत सिस्टमेटिक वे में उनके एनपीएस कम करने का प्रोसेस चालू किया, कम से कम करीब 2,50,000 करोड़ के आसपास रिकैपिटलाइज किया बैंक्स की बैलेंस शीट्स को। बैंक्स को प्रॉपर एक हेल्दी कंडीशन में लेके आए, जो आज आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्रॉफिट हाईएस्ट लेवल पे है, एनपीएस लोएस्ट लेवल पे है। उसके बाद में एक इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस चालू किया, फिर आया कोविड। कोविड का शॉक था, बहुत बड़ा शॉक था, सारी दुनिया ने झेला।

0: भारत ने उस शॉक के दौरान भी प्रधानमंत्री जी की नीतियों के कारण एक इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मॉडल स्टार्ट किया। उस इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मॉडल के कारण जो पहले करीब करीब 30 बिलियन डॉलर के आसपास इन्वेस्टमेंट होता था, आज 130 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट है देश में। इन्वेस्टमेंट जाता है फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रा में, और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा दिखाई देता है। आज हम देखें, चाहे कोई भी सेक्टर हम लें, एयरपोर्ट्स, नंबर ऑफ द एयरपोर्ट्स डबल हो गए, हाईवेज 58,000 किलोमीटर बने, नई रेलवे ट्रैक्स 36,000 किलोमीटर्स बनी, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन 99% कंप्लीट हुआ। कंपेयर करें यूके से तो मेरे ख्याल से लेस देन 50% है। कई दूसरे देशों के कंपैरिजन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई। उसका देश में एक प्रभाव पड़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, लोगों की सुविधाएं बढ़ी, इंडस्ट्रीज को और ज्यादा ग्रो करने में मदद मिली। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने बहुत एक फोकस दिया इंक्लूसिव ग्रोथ। भारतीय जनता पार्टी का मूल विचारों में से एक विचार है अंत्योदय का विचार। इसमें प्रधानमंत्री जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत से इस पे ध्यान दिया, और जब भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली तो जनधन अकाउंट हो, महिलाओं को सम्मान देने के अधिकार के साथ जो टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन हो, पक्के घरों का निर्माण हो, हर घर नल से जल पहुंचाने का भागीरथी संकल्प हो, ये ऐसे बड़े बड़े काम हाथ में लिए और उनको डिलीवर सक्सेसफुली किया कि सबसे बड़ा इंक्लूसिव ग्रोथ का पूरे विश्व में उदाहरण है अपने पास। मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया और इनोवेशन पे फोकस किया और बहुत बड़ा सिंप्लीफिकेशन किया। तो इस तरह की वेल थॉट थ्रू स्ट्रैटेजी के कारण आज भारत 6-8% के ग्रोथ ब्रैकेट में कंसिस्टेंटली रहेगा।
1: और अब जो हम कहते थे कि फ्रेजाइल 5 में है, अब वो कहीं पीछे रह गया है। क्योंकि आप रेलवे का कार्यभार काफी समय से संभाल रहे हैं और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में करीब 56 परियोजनाओं की मंजूरी दी गई, जिसमें लगभग 2,38,000 करोड़ रुपए का निवेश है। हम कहते हैं कि जब कभी भी किसी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, यानी कि आप 1 रुपया खर्च करते हैं तो 3 या 4 रुपये तक उसका फायदा देखने को मिलता है। रेलवे की परियोजनाओं से जो बदलाव हुआ है उसे आप किस तरीके से परिभाषित कर रहे हैं?
0: बड़ा फंडामेंटल चेंज आया है। अगर आप 2014 से पहले देखें तो एक साल में 700-800 हजार किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन होता था। आज 6,000-7,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन साल का करके करीब करीब पूरे देश के रेलवे नेटवर्क को 99.4% इलेक्ट्रिफाई कर चुके हैं। 70,000 किलोमीटर के आसपास ट्रैक्स को अपग्रेड किया, जो पुरानी पटरियां थी, हालत बहुत खराब थी, स्लीपर्स टूटे हुए रहते थे, उन सबको रिप्लेस करके करीब 70,000 किलोमीटर को रेलवे ट्रैक्स को अपग्रेड किया। 36,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बने, 1,300 स्टेशन का पुनर्निर्माण, नव निर्माण हो रहा है। 1,300 स्टेशन में से करीब करीब 250 स्टेशन कंप्लीट हो चुके हैं। इस साल के अंत तक 500 स्टेशन कंप्लीट हो जाएंगे। 5,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण एक वर्ष में करना, माने स्विट्जरलैंड का रेलवे नेटवर्क है 5,000 किलोमीटर का, पूरा स्विट्जरलैंड के रेलवे नेटवर्क के बराबर का रेलवे नेटवर्क एक साल में ऐड करना। कई वर्षों पुराने जो प्रोजेक्ट्स पड़े थे, जिनको माने प्रधानमंत्री जी का जो प्रगति का मैकेनिज्म है, जिसमें हर महीने वो जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए होते हैं देश भर में, वो उन पे ध्यान देते हैं, उनका रिव्यू करते हैं चीफ सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट, उन सबके साथ मिलके। तो प्रगति मैकेनिज्म के कारण बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आगे आए। ओवरऑल बहुत बड़ा चेंज आया। कई प्रोजेक्ट जैसे ये चिनाब का ब्रिज, अगर आप देखते हैं तो चिनाब के ब्रिज को तो लोगों ने एक तरीके से राइट ऑफ भी कर दिया था कि ये बन ही नहीं सकता, और बारामूला से श्रीनगर तक ही रेलवे लाइन का और जम्मू से कटरा तक ही रेलवे लाइन को करके एक तरीके से अबैंडन सा ही कर दिया था इस प्रोजेक्ट को। प्रधानमंत्री जी ने इसको कम्प्लीट किया।
1: सर, हम लोग जब प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो दुनिया भर में एक नीति अपनाई जाती है, उसको हम लोग ट्रिपल पी कहते हैं, पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट। हमने आपके कैबिनेट ब्रीफिंग में देखा कि जब भी आप किसी परियोजना का ऐलान करते हैं तो आप प्लैनेट और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काफी जोर देते हैं, तो क्या ये समझा जाए कि अब गवर्नमेंट ने भी जो है ट्रिपल पी को पीपल, प्लैनेट और प्रोडक्टिविटी के फॉर्मूले में बदल दिया है?
0: ये आपने बहुत अच्छा नाम दिया, जरा वापस बताएं क्या कहा आपने?
1: पीपल, प्लैनेट और प्रोडक्टिविटी।
0: प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छा नाम दिया। जनरली पीपीपी मैंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं, आपने इसे अच्छा नाम दिया है। डेफिनेटली यस। देखिए, रेलवे सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस 95% लेस है कंपेयर टू दी हाईवे सेक्टर। इसलिए बहुत सारे देशों ने अपना इन्वेस्टमेंट बहुत सारा हाईवे से शिफ्ट करके रेलवे की तरफ किया है, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोरिया हो, चाहे स्विट्जरलैंड हो, चाहे जर्मनी हो, बहुत सारे देशों ने अपना इन्वेस्टमेंट का फोकस, जो आपने कहा, प्लैनेट फ्रेंडली कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स में किया है। और भारत में भी इसका बेनिफिट भी साफ दिखाई देता है। माने प्रधानमंत्री जी ने आते ही जो रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन का एक बहुत बड़ा संकल्प लिया, उसका रिजल्ट आज दिखाई देता है। आज वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण जो बहुत सारा मिटिगेशन उसका रेलवे के कारण हो पाया, क्योंकि इलेक्ट्रिफाइड है रेलवे पूरी, और इलेक्ट्रिसिटी पूरी भारत में हम स्वयं प्रोड्यूस करते ही है, आत्मनिर्भर है उसमें पूरी तरह से। तो चाहे गुड्स का ट्रांसपोर्ट

0: हो या पीपल ट्रांसपोर्टेशन हो, वी आर एबल टू डू इफेक्टिवली विद इलेक्ट्रीफाइड रेलवे।
1: सर, चूंकि आपके पास एक मंत्रालय है इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी, और इसमें अगर मैं एक, वैसे तो हर उपलब्धि अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन सेमीकंडक्टर एक ऐसा है, सेमीकंडक्टर मिशन के जरिए जो उपलब्धि हासिल हुई है उससे किस तरह का बदलाव आप, चूंकि कहते हैं कि वो भी एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हम बात करें, चाहे एविएशन इंडस्ट्री की बात करें, हर इंडस्ट्री के लिए उसमें सपोर्ट जरूरी होता है, वहां पर प्रगति को आप किस तरीके से मापते हैं?
0: सेमीकंडक्टर फाउंडेशनल इंडस्ट्री है और 1960 से भारत में प्रयास चल रहा था, 1962 से भारत में प्रयास चल रहा था सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लाने का। प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सबने प्रयास किए, आखिर सफलता मिली मोदी जी को। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में प्रेजेंटेशंस लेने चालू किए थे, उनका बहुत स्पष्ट था कि हमें इकोसिस्टम पूरा बनाना है, और प्रधानमंत्री जी का यह भी बहुत स्पष्ट था कि हमें 20 साल का सोचना है, हमें शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए नहीं सोचना है। तीसरा, उन्होंने कहा था कि बहुत ध्यान रखना कि इसमें टैलेंट डेवलपमेंट पे पूरा फोकस रहे। ये तीन चीजें उन्होंने मूल रूप से हमको गाइडेंस दी थी, इसीलिए सेमीकंडक्टर मिशन जब चालू किया, इकोसिस्टम पे फोकस दिया, केमिकल्स, गैसेस, इक्विपमेंट, ये सब के सब इसमें इंडस्ट्री के जितने इकोसिस्टम प्लेयर्स है वो ध्यान से आए। सेकेंड, टैलेंट पे बहुत फोकस किया। टैलेंट में 324 यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर मोस्ट मॉडर्न डिजाइन टूल्स में, सेमीकंडक्टर के डिजाइन टूल्स में स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। ये इसका उदाहरण है आपके सामने, देखो सिलचर, चेंबूर, इंदौर, ग्वालियर, शिवपुर, जम्मू, जालंधर, रोपड़, धनबाद, राउरकेला, मेघालय, जम्मू, कैलिकट, पूरे देश भर के स्टूडेंट्स के डिजाइन की हुई है चिप्स। ये चिप्स स्टूडेंट के डिजाइन की हुई, स्टूडेंट्स के द्वारा डिजाइन की हुई चिप्स को सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी में मैन्युफैक्चर किया और स्टूडेंट्स ने उनको वापस बोर्ड में टेस्ट करके, सर्किट में टेस्ट करके उसका यूज भी किया। हाल ही में डेवोस में मैंने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सारे लीडर्स जब बैठे थे, उनको पूछा दुनिया भर में कितनी यूनिवर्सिटीज होगी जहां पे कैडेंस, सिनॉप्सिस जैसे टूल्स को यूज, स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि हमने चिप डिजाइन की और मैन्युफैक्चर की, 20 से ज्यादा नहीं गिन पाए।
1: तो अब अगले, अगर मैं 2 वर्ष में कहूं तो सेमीकंडक्टर में भारत की स्थिति आप कहां देखते हैं?
0: बहुत सिग्निफिकेंट जंप आया है विद इन 4 ईयर्स। जो कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड चिप्स हमारी, ये माइक्रॉन के प्लांट से प्रोड्यूस की हुई, ये केन्स के प्लांट से, 28 फरवरी और ये 31 मार्च, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किए थे ये दोनों प्लांट्स। तो मात्र 4 वर्षों में 12 प्लांट प्रोडक्शन स्टार्ट कर देना, डिजाइन का इकोसिस्टम बनना, टैलेंट का पूरा पाइपलाइन रेडी होना, और अगला जो सेमीकंडक्टर मिशन होगा इसमें हमारा फोकस रहेगा डिजाइन को नंबर 1 प्रायोरिटी देना, मशीन मैन्युफैक्चरर्स को बुलाना, केमिकल और गैस मैन्युफैक्चरर्स को बुलाना, और फैब और ATMP यूनिट्स और आएंगे। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह का एफर्ट अभी लगा है और जो सक्सेस अभी तक मिली है, उससे लगता है कि सारी दुनिया भारत को एक ट्रस्टेड पार्टनर की तरह देखती है।
1: सर, एक चीज हमने और भी देखा कि जो PLI इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक के लिए आपने किया, और उसका एक सबसे ज्यादा बड़ा फायदा हमें मोबाइल हेडसेट के मामले में देखने को मिला। एक ऐसा भी दौर था कि जब भारत में हर मोबाइल फोन बड़ी तादाद जो है वो इम्पोर्टेड होता था या मेड इन कहीं और होता था, अब हम मेड इन इंडिया और असेंबल्ड इन इंडिया की बात करें। तो ये जो PLI स्कीम है, ये मोबाइल हैंडसेट और इलेक्ट्रॉनिक के मामले में किस तरीके से योगदान किया, वहां पर हम आगे का सफर कैसे देख रहे हैं?
0: बहुत फायदा हुआ। सबसे पहले तो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स थे उसकी मैन्युफैक्चरिंग चालू की, फिर कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग चालू हुई, और कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत प्रिसीजन का काम होता है। ये क्लासिक एग्जांपल है, आप इसको देखें अगर जी, तो आपको ये एक फुल स्टील का ब्लॉक दिखेगा, राइट, तो कोई कहीं कट या कुछ नहीं दिखेगा। ये एक्चुअली इतना प्रिसीजन का मैन्युफैक्चरिंग है, ये एक्चुअल में इतने ज्यादा इसमें कट्स लगे हुए थे इसमें, राइट, इतना प्रिसीजन का काम था। जो सिंगल सॉलिड ब्लॉक दिखता था वो सिंगल सॉलिड ब्लॉक नहीं है। तो इस प्रिसीजन का काम जो स्टूडेंट सीख पाते हैं वही मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं आके, इस तरह का काम है। तो अब कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में आफ्टर द सक्सेस ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एंड मॉड्यूल्स, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में 75 फैक्ट्रीज ऑलरेडी अप्रूव हो गई है जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, करीब 250 फैक्ट्री होंगी, और कंपोनेंट का एक्सपोर्ट करना भी भारत ने चालू कर दिया है। प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग के मैं कई एक एग्जांपल आपको दूंगा। रेलवे का जो प्रपल्शन होता है, ट्रेन का जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है वो प्रपल्शन है, रेलवे की इलेक्ट्रॉनिक्स। लास्ट ईयर वी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग रेलवे प्रपल्शन टेक्नोलॉजी टू जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड US। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। प्रधानमंत्री जी का जो मेक इन इंडिया का थ्रस्ट है, जो फोकस है, वो फोकस अब रिजल्ट दिखाने लगा है, जब ऐसी कॉम्प्लेक्स चीजें भारत से एक्सपोर्ट होने लगी।
1: तो अगले, अगर मैं PLI के अगले चरण की बात करूं तो उसमें हम क्या कुछ देख सकते हैं, क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं?
0: बहुत फोकस आएगा कंपोनेंट्स को यूज करके भारत में एक्स्ट्रा डोमेस्टिक वैल्यू

0: एडिशन करना, डिज़ाइन की कैपेबिलिटीज़ बढ़ना और क्वालिटी में जो भारत ने एक पहचान बनाई है उसको एक नए लेवल पे लेके जाना, सिक्स सिग्मा लेवल पे लेके जाना है।
1: सर, अगर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिस्कशन की बात करूं तो दो ऐसे बिल हैं जो एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन के तौर पे कहे जा सकते हैं। एक जैसे आपका डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन है और दूसरा जो है रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। ये दोनों कानून को लेकर के प्रतिक्रिया जैसी भी रही हो, आप इसके काफी मुखर तरीके से, आपने खासतौर पर ऑनलाइन गेमिंग की मैं बात करूं कि उस पर रियल मनी वाले ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के आपने काफी उस पर अपनी बात बहुत ही मजबूती के साथ रखा था। इन दोनों लेजिस्लेशन को आप किस तरीके से देखते हो और इनके जरिए पूरी इंडस्ट्री में किस तरह का बदलाव हुआ है वो अगर बता सकते।
0: ऑनलाइन मनी गेमिंग सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा एक अभिशाप बन के उभरा था। हजारों सुइसाइड्स, परिवार की सारी इनकम एक गेम में नष्ट हो जाना। ऑनलाइन बेटिंग, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग वॉज अ बिग बिग बिग प्रॉब्लम फॉर दिस सोसाइटी। इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कठोर निर्णय लिया और ऑनलाइन मनी गेमिंग को बैन किया। इसका बहुत बेनिफिट मिला है। अभी हाल ही में टाइटन इंडस्ट्रीज के सीईओ का इंटरव्यू था कि ऑनलाइन मनी गेमिंग के बैन के कारण बहुत सारा जो लोग पैसा वेस्ट कर देते थे मनी गेमिंग में, वो पैसा आज अपने परिवार के लिए अच्छे सामान खरीदने के लिए लगा रहे हैं, घर में बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, हेल्थ केयर के लिए, घर बनाने के लिए, उस सब में लग रहा है। इसी तरह से कई एग्जाम्पल्स है। एक इंडस्ट्री है जिसमें 30,000 लोग काम करते हैं, उनके सीईओ मुझे बता रहे थे कि महीने का पहला हफ्ता करीब करीब ऐसा होता था जिसमें व्यक्ति ने जितनी सैलरी ली वो सारी सैलरी ऑनलाइन मनी गेमिंग में लूज कर देता था, और उसके बाद में एचआर डिपार्टमेंट को फोन करके किसी तरीके से परिवार कैसे चलाए उसकी व्यवस्था में चिंता रहती थी। मतलब उनका कहना था कि उनके जान पहचान के लोगों में महीने में एक सुइसाइड होता था गेमिंग के कारण। वो सारी चीजें फिनिश हो गई। अभी हाल ही में एक जगह से प्रवास से लौटने के टाइम में इंडिगो का कर्मचारी मुझे मिला, उसने कहा कि मोदी जी को धन्यवाद देना कि ऑनलाइन मनी गेमिंग आपने बंद कर दी, कि मुझे 35,000 रुपये मिलती थी सैलरी, पूरे के पूरे 35,000 रुपये मैं गेमिंग में गंवा देता था, और अब मेरा परिवार, मेरा छोटा सा बच्चा है, उसने कहा मेरा शायद 3 या 4 साल का बच्चा है, अब परिवार हमारा खुश है। इस तरह के कई एग्जाम्पल्स।
1: लेकिन कई बार ये भी बात कही जाती है कि वीपीएन के जरिए और उन सब के जरिए,
0: ये बात ठीक है आपकी,
1: तो आप कैसे उस पर रोक
0: ये
1: लगाने
0: बात
1: की बात
0: ठीक
1: कर
0: है।
1: रहे हैं?
0: देखो, जब भी इस तरह के कड़े कठोर कानून आते हैं तो 90% प्रॉब्लम सॉल्व होती है, लेकिन कुछ हद तक लोग गैर कानूनी तरीकों से करने का प्रयास करते हैं, चाहे किसी भी सेक्टर में ले लो, चाहे ड्रग्स का ले लो, चाहे किसी भी तरह के सेक्टर को ले लो। तो इसमें प्रयास हमारा लगातार रहता है कि इस तरह की जो इलीगल साइट्स हैं उनको बैन करने का। अब तक करीब करीब 10,000 के आसपास इलीगल साइट्स को बैन किया जा चुका है।
1: और सर, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के किस तरीके की अभी
0: बहुत ही
1: तक
0: वेल थॉट थ्रू बिल है ये। इसमें 7 प्रिंसिपल्स के बेसिस पे सिटीजन्स के डिजिटल डेटा को, डिजिटल पर्सनल डेटा को प्रोटेक्शन करने का मेथड है। इंडस्ट्री के साथ बातचीत करके उसको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इंप्लीमेंट किया जा रहा है, और दुनिया भर में इस बिल के कारण भारत की एक नई पहचान भी बनी, क्योंकि जो प्रिस्क्रिप्टिव मेथड यूरोप ने लगाया उसके कारण उनका इनोवेशन फिनिश हुआ। भारत के इस बिल में इस तरह से बैलेंस आया इनोवेशन और रेगुलेशन में, जिससे कि इनोवेशन भी फ्लरिश कर सके और रेगुलेशन भी प्रॉपर लेवल पे हो सके।
1: अगर मैं आखिरी में आपसे पूछूं कि हमने शुरुआत करी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से, अगर मैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो अगले 3 से 5 सालों में हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कुछ और बदलाव देखेंगे और डिजिटल इंडिया किस तरीके से आगे बढ़ेगा, अगर उसकी रूपरेखा पेश कर सकें आप तो?
0: टेलीकॉम सेक्टर में बड़े बदलाव आने वाले हैं। टेलीकॉम सेक्टर में जो सबसे बड़ा चेंज आएगा वो चेंज आएगा रेजिडेंट एआई। एक टेलीकॉम टावर करीब 2,000 पैरामीटर्स लेता है जिसपे वो काम करता है एक साथ। उन पैरामीटर्स को अभी जो एल्गोरिदम्स होती है वो एल्गोरिदम्स बड़ी प्रिस्क्रिप्टिव टाइप की एल्गोरिदम्स होती हैं, किस सिचुएशन में क्या करना है उस पर डिफाइंड होती है। अगर उसमें एआई लगता है हर टावर के अंदर तो सिग्निफिकेंट लेस पावर कंजम्पशन हो पाएगा, सिग्निफिकेंटली बेटर कॉल क्वालिटी हो पाएगी, और डिजिटल इंडिया के नेक्स्ट फेज में टेलीकॉम का जो रोल है वो रोल और टेलीकॉम में एआई का रोल वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा।
1: लेकिन ये भी कहा जाता है कि एआई बहुत सारी नौकरियां ले सकता है, तो जब हम डिजिटल इंडिया के एक्सपेंशन की बात करेंगे, एआई की इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, हमारे लिए एक बड़ी चुनौती नौकरियां नहीं रहेंगी?
0: जितनी आईटी सेक्टर की इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ हम लगातार एंगेज्ड हैं, किस तरह से नए प्रकार के स्किल्स क्रिएट किए जाए, नए प्रकार की ट्रेनिंग क्रिएट की जाए। अभी हाल ही में नैसकॉम के माध्यम से आईटी इंडस्ट्री ने अपना नया कोर्स का पूरा करिकुलम बना के दिया है जिसको एआईसीटी के माध्यम से लागू करेंगे, जिससे कि टेक्नोलॉजिकल चेंज के कारण जब भी डिसरप्शन आता है, जब भी परिवर्तन आता है, तो उस समय में अगर इंडस्ट्री और एकेडेमिया दोनों आपस में मिल जाए तो उस चेंज को बहुत स्मूथली कर सकते हैं। तो वही प्रयास है।

0: टी इंडस्ट्री के साथ मिलकर नए तरह के जो जॉब्स क्रिएट होंगे उन जॉब्स के लिए हमारे युवाओं को तैयार करने का प्रयास है।
1: अश्विनी वैष्णव साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
2: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सूचना और प्रसारण, रेलवे तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ विशेष साक्षात्कार कर रहे थे

0: और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ विशेष साक्षात्कार कर रहे थे पत्रकार शिशिर सिन्हा। ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत। अब सुनिए संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पराशर।
1: नमस्कार। 26 मई 2014 वो दिन था जब सिर्फ सरकार नहीं बदली थी बल्कि करोड़ों भारतवासियों की जो आकांक्षा थी, जो सपने थे, वो भी ऐसा लगा था पूरे होने की कगार पर अब आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए अब जब 12 साल पूरे हो रहे हैं तो फिर ये तो एक सवाल बनता है ना कि भाई 12 साल में इस देश में ऐसा क्या बदलाव आया कि लोग मोदी मोदी मोदी मोदी कर रहे हैं। ऐसी क्या बात हो गई कि नरेंद्र मोदी हर राज्य में विजय पताका फहराते जा रहे हैं, लहराते जा रहे हैं, और भारत जो है वो विश्व स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब अपना एक अलग मुकाम रखकर लाया है। चलिए इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज बेहद ही खास मेहमान है, और वो खास मेहमान जो कि जब नॉर्थ ईस्ट में बात होती थी ना कि कौन चेहरा है तो एक चेहरा सबसे पहले सामने आता था किरण रिजिजू जी का, और वो अब अल्पसंख्यक मामलों के भी मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, इससे पहले कानून मंत्री रह चुके। तो एक तरीके से 2014 से लेकर अब तक का सफर इन्होंने लंबा तय किया है। बहुत बहुत स्वागत है रिजिजू जी आपका।
2: धन्यवाद।
1: और 12 साल की ये जर्नी, आप इस जर्नी को कैसे देखते हो?
2: ये जर्नी भारत का इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट किए गए थे, मंत्रिमंडल का शपथ लेने से पहले उन्होंने हम 44 लोगों को बुला करके पहला संदेश जो दिया था वो मुझे आज भी याद है। मोदी जी ने कहा था कि हम लोग सिर्फ सत्ता में कुर्सी ऑक्युपाई करने के लिए नहीं आया है, हम देश का दशा दिशा और जनता गरीब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लेने के लिए हम आए हैं। तो तब से लेकर एक एक नीति आप देखेंगे तो भारत को एक नई मोड़ पर लेकर के 2014 के बाद हमने काम शुरू किया है, और गवर्नेंस शासन करने का प्रक्रिया है उसमें बदलाव किया है। और अब तो एक आम सा बात हो गया है कि भारत सरकार कोई भी कदम उठाते हैं उसका लाभ तुरंत जनता तक मिल जाता है। नहीं तो पुराने दिनों में कांग्रेस के शासन के समय तो बातें बहुत होती थी, कई घोषणाएं भी होती थी, बजट में घोषणाएं, रेलवे बजट में नई प्रोजेक्ट का घोषणाएं, और हर समय चुनाव में तो घोषणा ही घोषणा होते थे, गरीबी हटाओ नारा लगाना, ये एक फैशन सा बन गया था उस जमाने में। लेकिन इन 12 सालों में सचमुच में जो काम हुआ है, मैं मानता हूं कि मोदी जी का कार्यकाल है ये सचमुच में भारत को फिर से एक महान देश, और जो पुराने में भारत का एक नाम था उसको फिर से पुनर्जीवित और फिर से पुनर्स्थापित करने में कामयाब हुआ है।
1: आपने, क्योंकि रिजिजू जी गरीबों वाली बात की ना, पहले का वो स्लोगन एक याद आता है कि जब 1 रुपया भेजते थे 10 पैसे पहुंचते थे, आज 1 रुपया भेजते हैं तो कितने पैसे पहुंचते हैं?
2: आज तो जितना भेजता है उतना ही पहुंचते हैं, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री खुद ही सरेंडर हो गए थे। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और खुद ही सरेंडर करके बोल दिया कि 100 रुपया भेजता है तो 15 रुपया पहुंचते हैं, 1 रुपया में 15 पैसे पहुंचते हैं। आज तो एक बटन दबाया केंद्र सरकार के ओर से कोई भी स्कीम घोषणा करके उसको सिर्फ बटन दबाना है, डीबीटी के माध्यम से लोगों के खाता में पहुंच जाते हैं और सारा स्कीम्स जो है समयबद्ध क्रियान्वित हो जाते हैं। इसलिए जो बदलाव आज देखने को मिला है, ऐसे ही सोचने से आपको पता नहीं चलेगा 12 साल पहले देश का हालत क्या था। जब कांग्रेस यूपीए सरकार थे तब हम भ्रष्टाचार से ग्रस्त होकर के, पॉलिसी पैरालिसिस होकर के, और गरीबों को सरकार का कोई भी कार्यक्रम तुरंत कुछ भी नहीं मिलते थे। तो इतना बदलाव जो आया है इसको चंद शब्दों में कहना तो मुश्किल है, मगर इतना तो कह सकता हूँ कि जो हमारा सरकार का थीम है सेवा सुशासन और कल्याण। तो गरीबों का कल्याण तो हुआ ही है, सेवा तो हम कर ही रहे हैं और सुशासन देश को भला हो रहा है, तो हर दृष्टि से हम कामयाब हैं।
1: तो आप कह रहे हो पॉलिसी पैरालिसिस, ये जो नारा और स्लोगन चला था उस वक्त मनमोहन सिंह सरकार के समय में, आज राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज पीएम का नारा चला रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई आपने ऐसा किया तो अब कॉम्प्रोमाइज पीएम वो बोल रहे हैं।
2: कांग्रेस के समय में जो हालत था वो हमको बताने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। देश के जिस आदमी का

0: पूछो कांग्रेस जमाने में क्या हालत था, और कांग्रेस के खुद नेताओं से पूछो, कांग्रेस के नेता खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस के जमाने में तो अमेरिका उसका मास्टर थे। चिदंबरम साहब खुद होम मिनिस्टर थे तो खुद ही बताया कि पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला किया और भारत कुछ नहीं कर पाया क्योंकि अमेरिका ने वार्निंग दिया कि कुछ नहीं करना है। फिर चिदंबरम जी ने खुद भाषण दिया था पार्लियामेंट में जब हमारा सत्ता में आए, कहा कि आप डिजिटल इंडिया का बात करते हैं, गांव में गरीब लोगों को डिजिटल से क्या लेना देना है, और जो हमारा पेमेंट होता है यूपीआई के बारे में मजाक उड़ाया था कि गरीब जो सब्जी बेचते हैं सामान बेचते हैं उनका डिजिटल पेमेंट कैसे होगा,
1: वो बैंक के खाते का क्या करेंगे।
0: तो ये सारा चीज जो है वो तो कांग्रेस खुद ही कहते हैं। राजनीतिक दृष्टि पर कुछ भी आप कह लो लेकिन मालिक तो जनता है, तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज तो पूरी तरीके से कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस पार्टी ने देश को ही कॉम्प्रोमाइज करके रख दिया था। आज तो मोदी जी अपना निर्णय लेते हैं देश हित में, और देश हित में किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। तो राजनीतिक दृष्टि से कोई अगर कह देगा तो उसके ऊपर भारी पड़ेगा। स्पेशली कांग्रेस पार्टी तो कुछ कह नहीं सकते हैं, उन्होंने लगभग 60 वर्ष इस देश को शासन किया और देश को बहुत गरीब राष्ट्र बना दिया था। सबको मालूम है हमारा इकोनॉमी, हमारा पर कैपिटा इनकम कांग्रेस के जमाने में कितने नीचे थे। अब हम इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, मैं तो सपना देखता था उस जमाने में कि चाइना 8% 10% से ग्रोथ करते हैं, हम कब चाइना की तरह ग्रोथ करेंगे। और मोदी जी ने हमको चाइना से भी ज्यादा स्पीड में अपने इकोनॉमी का ग्रोथ पाथ को आगे लेके खड़ा कर दिया। तो ये सब देखिए, इसमें तो कोई भी भारतीय फख्र होगा कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हमको मिले हैं जो भारत को एक विकसित भारत की ओर ले जा रहे हैं।
1: आपने क्योंकि चाइना की बात कही ना, तो नॉर्थ ईस्ट जहाँ से आप आते हैं वो समय और वो दौर भी हम लोग देखते थे कि जब नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अपनी पहचान का संकट था, पहचान बताने में भी उनको घबराहट होती थी, दिल्ली तक आने में तो उनको बहुत समय लग जाता था, वो बदलाव भी देखा है क्या हमने?
0: बदलाव तो क्या कहेंगे, मैं ये कहूंगा कि ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा परिवर्तन हो गया है। बदलाव सिर्फ इंक्रीमेंटल बदलाव नहीं है ना, ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव आया है, क्रांतिकारी बदलाव आया है। क्योंकि जो दूर दराज के इलाके हैं वो तो दिल्ली से बहुत दूर महसूस करते थे। जैसे मैं अरुणाचल प्रदेश से आता हूँ, अरुणाचल के लोग दिल्ली जाने के लिए भी सोचना पड़ता था, और दिल्ली वाले भी नहीं आते थे, अगर आते तो भी मेहमान की तरह आते हैं। आजकल तो चाहे लद्दाख हो, चाहे मिजोरम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, सब जगह ट्रेन से कनेक्ट हो गए हैं, एयरपोर्ट से सबको कनेक्ट किया गया है, और टनल बन रहे हैं, नए नए परियोजनाएं, हाईवे कितना बन गया है, जो 1 इंच हाईवे नहीं बने थे 12 साल पहले आज वहाँ चकाचक हाईवे बन गए हैं, लोग आराम से गाड़ी लेकर के आना जाना हो रहा है। गांव गांव मोबाइल टेलीफोन पहुंच गए हैं, वो भी इतना सस्ता है डेटा कि आप आराम से एक बार आपने अपना डेटा लोड कर लिया फिर आराम से बात करो, आप इंटरनेट में काम करो। उस जमाने में तो फोन करने के लिए भी कितना चिंता करता था कि उसका जो बिल आते थे। आजकल तो डेटा भी दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ता भारत में है मोबाइल।
1: लेकिन इसका फायदा या नुकसान, हर गांव में बच्चा कंटेंट क्रिएटर बना हुआ है,
0: वो तो विषय अलग है, उसको एक व्यवहारिक तरीके से क्या करना चाहिए वो विषय अलग है, लेकिन सुविधा सबको मिला है ये बड़ी बात है।
1: जेन जी के बारे में क्या सोच रहे हो आप, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर हम बात कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर और जेन जी खतरा लग रहा है क्या?
0: देखो जेन जी का तो ये शब्द पश्चिमी देशों से उन्होंने क्रिएट किया है, हम तो अपना पारंपरिक जो मानक है हम उसी से चलते हैं। फिर भी एक टाइटल दिया गया है नए युवाओं को, जो एक पर्टिकुलर वर्ग को जेन जी जो कहते हैं, वो आज 18 साल 20 साल 25 साल के लगभग उसमें ज्यादातर लोग हैं,
1: क्योंकि सबकी निगाह उन्हीं पर लगी। राहुल गांधी जेन जी से मिल रहे हैं, अखिलेश यादव जेन जी से मिल रहे हैं, सब जेन जी से।
0: राहुल गांधी जी हो या अखिलेश यादव जी हो, वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। लोकतंत्र में कुछ लोग तो विरोध रहेंगे ही, एक पक्ष होते हैं एक विपक्ष होते हैं, लेकिन आप दिल से अगर नहीं जुड़ेंगे तो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर आपको कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में, लगभग 50% वर्ष एक साल में वो विदेश में रहते हैं, वहाँ वो छुट्टियां मनाते हैं रिजोर्ट में, छुपके कहीं कहीं जाते हैं, कभी कभी बताते भी नहीं है, और फिर जब एक बार आएंगे देश में और फिर एक स्टेटमेंट देंगे, मोदी जी को गाली देते हैं, फिर विदेश गायब हो जाते हैं, फिर वापस आएंगे मोदी जी को फिर दूसरा गाली देंगे, फिर विदेश चले जाते हैं। तो ये जो पार्ट टाइम वाला राजनीति है, उससे आप लोगों का दिल नहीं जीत सकते हैं और लोगों के अंदर आप नहीं घुस सकते हैं। हमारा तो नेता और हमारा पार्टी 24 घंटे हम तो देश के लिए और देश के जनता के बीच में हम रहते हैं।
1: ये विदेश वाला जो है, विदेश जाने में क्या बुराई है?
0: वो तो अच्छा है, अगर वो विदेश जाते रहे तो कांग्रेस का नैया जो है डूबते रहे।

0: राजनीतिक तौर पर हमको कुछ नहीं कहना है। अगर राहुल गांधी को राजनीति में कोई रुचि नहीं है और विदेश में ही उसका दिल है और अपने विदेशी दोस्तों के साथ ही अगर वहाँ दिल बहलाने के लिए विदेश में रहता है, हमारा क्या आपत्ति है? हम तो इसलिए कह रहे हैं कि वो कभी कभी वापस आते हैं भारत में, अपने देश में आकर के फिर गाली देते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, चुनाव के बीच में भी वो विदेश चले जाते हैं, तो नुकसान तो कांग्रेस का है, हमारा क्या नुकसान है?
1: अब वो कांग्रेस पार्टी कहती है भाई सरकार आपकी, आप पता करो विदेश में वो क्या करते हैं क्या नहीं करते।
0: देखो किसी का जिंदगी में कौन क्या खाता है पीता है, कहाँ रहते हैं, किसके साथ में वो घूम रहे हैं, इतना हमारा रुचि नहीं है। हमारा सिर्फ इतना तक सीमित ध्यान जाता है कि वो देश के विरोधी ताकतों के साथ में मिलना जुलना होते रहते हैं विदेश में, इससे हम आपत्ति है, हम उसको आपत्ति करते हैं।
1: आपको लगता है कि ये जो विदेश विदेश वाला राहुल गांधी का है, उसके बाद वो आते हैं पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में फिर वो एक एजेंडा बोलते हैं, कहीं ना कहीं वही एजेंडा वो लेकर के आते हैं क्या?
0: जब पार्लियामेंट में बोलते हैं तो झलकते ही है, क्योंकि देश को कोसते हैं, देश के प्रधानमंत्री को कोसते हैं, तो उससे पता चलता है कि वो देश के विरुद्ध जो लोग काम करते हैं उनसे काफी इन्फ्लुएंस हुए हैं। उदाहरण के तौर पर जो राहुल गांधी जी कहते हैं पार्लियामेंट में, वो सेम चीज पाकिस्तान कहते हैं, और जो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल और इन जैसे लोग जो भी नैरेटिव चलाते हैं उसके तालियां पाकिस्तान में बजता है, तो ये तो कहीं ना कहीं एक तरीके से तो जुड़े हुए हैं। अब मैं इसको किस तरीके से समझाऊं देशवासियों को कि जो विपक्ष है वो भी तो देश के लिए सोचना चाहिए ना। विपक्ष का काम ये नहीं है कि देश के खिलाफ काम करे, वो सरकार को गाली दे सकते हैं, सरकार के खिलाफ उनका बोलने का अधिकार है, और लोकतंत्र में सरकार के खिलाफ मजबूती से अगर विपक्ष खड़ा रह करके निगरानी रखेंगे, कोई करप्शन हुआ है क्या, कहीं कोई नीति में भूल चूक हुआ है क्या, अगर उसमें विपक्ष हमला करते हैं तो ये तो स्वागत है, लेकिन कोविड का समय, ये इमरजेंसी समय है, तब भी प्रधानमंत्री को गाली देंगे, देश के खिलाफ काम करेंगे। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, देश गर्व है हमारा सेनाओं के, जो देश के प्रति उन्होंने जो बल दिखाया है उसको भी विरोध करते हैं, सवाल उठाते हैं, और अभी ईरान अमेरिका इसराइल का लड़ाई के चलते तेल गैस आने में कष्ट हो रहे हैं, ये तो एक तरीके से एक आपातकालीन टाइप का सिचुएशन हरमूज में पैदा हो गया है मिडिल ईस्ट में, तो उससे हमको दिक्कत हो रहे हैं, तो ऐसा में तो देश के साथ खड़ा होना चाहिए, ऐसा में भी देश का खिलाफ बोलते रहते हैं और मोदी जी का खिलाफ बोलते हैं, तो मेरा ये कहना है कि आम तौर पर विरोध जो है सरकार के खिलाफ आप जितना कर सकता है कर सकते हैं, उसमें लोकतंत्र में कोई रुकावट नहीं है, लेकिन जब इमरजेंसी सिचुएशन होता है, जब एक विशेष परिस्थिति होता है, ऐसे समय में सबको एक साथ खड़ा होना होता है, जैसे जब 1962 में लड़ाई हुआ चीन के साथ तो पूरा देश एकजुट खड़ा हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी में टूट हुआ, एक ग्रुप जो है चीन का समर्थन में आया, वो कम्युनिस्ट भाग हो गया। 1965 हो, 71 हो, या कारगिल के समय में भी हो, हर समय इस तरीके के जो विशेष परिस्थिति आते हैं, जब देश किसी से लड़ रहे हैं, दुश्मनों के साथ में देश मुकाबला कर रहे हैं, ऐसा समय में पूरा देश एकजुट खड़ा रहना चाहिए, ये तो सब मानते हैं, लेकिन पहली बार मैंने देखा है ऐसा विपक्ष आज का दिन में पैदा हो गया है कि देश किसी विपत्ति से जूझने के लिए, कोई आपातकाल स्थिति को नियंत्रण करने के लिए जब काम कर रहे हैं, ऐसे समय में सरकार के खिलाफ देश के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं, इससे मैं बहुत दुखी हूँ।
1: संसद में आपको लगता है ये जो बर्ताव है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है इतने समय में?
0: देखिए, राहुल गांधी जी को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, मुझे लगता है, मैं इतने सालों से उसको देख रहा हूँ, पहले तो मैंने सोचा था कि वो हल्के फुल्के से इधर उधर घूमते रहते हैं, अनाप शनाप बात करते रहते हैं, लेकिन जब वो नेता प्रतिपक्ष बने तो मैंने सोचा कि वो नियंत्रित होंगे, लेकिन और बिगड़ गया, नेता प्रतिपक्ष होने के बाद तो और भी उसका भाषा पूरा बिगड़ गया है, अब तो पार्लियामेंट में जब बोलते हैं तो नियम के बाहर बोलते हैं और गाला गाली पे उतर जाते हैं, दिन भर नारा लगाते रहते हैं, अपना एमपीओ को जो पार्लियामेंट हाउस के बाहर गेट में खड़ा करके वही दिन भर वहां तमाशा कराते रहते हैं, तो एमपी इसके लिए नहीं आया, एक नॉर्मेलिटी कर दिया। अब कांग्रेस के एमपी लोग भी ये सोचने लग गया कि वो तो पार्लियामेंट में इसलिए चुन के आए कि वो इस तरह का हरकतें करना है, उसी को अपना दायित्व तो मान लिया है, संसद के अंदर में बोलना, अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बोलना और सरकार का नीति में खामियां हैं तो उसको उजागर करना, और फिर जहां जरूरत है सुझाव भी दे सकते हैं या आप उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन वो संसद में बोलना, वहां प्रदर्शन करना, ये सारा चीज जो है लोग देख रहे हैं ना, लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस का हरकत कैसे है।
1: मोदी जी ने जो कोई एक बात आपसे इन 12 सालों में कही हो जो आपको हमेशा याद रहेगी?

0: मुझे तो इतना बातें प्रधानमंत्री जी की ओर से सुझाव निर्देश या हमको गाइडेंस देते रहते हैं तो एक बोलना मुश्किल है, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं कि देश हित में जो भी आपको दायित्व मिला है उसको पूरी तरह से निभाना है, इसलिए हम अपना ड्यूटी से प्रतिबद्ध हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी, आपने इतनी बेबाकी से ये सब बात कही। और जाहिर तौर पर देखिए 2014 से अभी तक की ये जो जर्नी है, इसीलिए हमने इसको भारत रीलोडेड का नाम दिया है, क्योंकि इस वक्त नए भारत की बात हो रही है और नए भारत का जो सपना भारतवासियों ने देखा था वो कितना पूरा हुआ, इस पर हमसे खास बातचीत की। नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
2: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के साथ विशेष साक्षात्कार कर रही थी रीमा पराशर।

अभी हम आकाशवाणी दिल्ली से केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष में आर्थिक विकास विषय पर कार्यक्रम का अनुप्रसारण कर रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। 7:45 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं विविधा, जिसके अंतर्गत भूजल और पर्यावरण संरक्षण में तालाबों की भूमिका विषय पर श्रेयांश बुधिया से बातचीत का प्रसारण किया जाएगा। प्रस्तुति है डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की।

0: श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। पर्यावरण आज दुनिया की सबसे बड़ी चिंता का कारण बन गया है, कुछ हमारी गतिविधियों के कारण और कुछ स्वाभाविक रूप से जो परिवर्तन प्रकृति में आते हैं उसके कारण। लेकिन बहुत कुछ है जो मनुष्य अपने ढंग से सही कर सकता है और पर्यावरण संतुलन में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, विशेष करके भूजल संवर्धन और संरक्षण में। आज इसी विषय पर हम विस्तार से बातें करेंगे, क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ अपने आप में धान का कटोरा भी है और वर्षा के जल के संग्रहण के बहुत सारे माध्यम यहाँ हैं, चाहे तालाबों के रूप में हो, कुएं के रूप में हो, बावड़ियों के रूप में हो। तो इन्हें कैसे हम बचा के रखें और क्यों बचा के रखें, इन सब बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच हैं बिलासपुर और इस अंचल के जाने माने पर्यावरणविद श्री श्रेयांश बुधिया।
1: धन्यवाद मैडम। मैं द नेचर पीपल नेटवर्क नाम की एक छोटी सी संस्था का फाउंडर और डायरेक्टर हूँ। इस संस्था के माध्यम से हम ऐसे जटिल पारिस्थितिकी तंत्रों की पहचान करते हैं, उन्हें ढूंढते हैं जिनको किसी न किसी प्रकार के संरक्षण की जरूरत है और उन्हें किसी प्रकार का संरक्षण किसी के द्वारा नहीं दिया गया है।
0: बिल्कुल।
1: और इस पहचान के माध्यम से फिर हम वहाँ के लोकल जो स्थानीय लोग होते हैं उनको प्रेरित करते हैं और उनको संसाधन ढूंढने में मदद करते हैं ताकि वो उन जगहों का संरक्षण उचित तरीके से कर सके।
0: बहुत बढ़िया। और ये बहुत जरूरी है पारिस्थितिकी तंत्र को बचाए रखने के लिए, उसके संवर्धन के लिए, उसके संरक्षण के लिए। आज हमने जो विषय लिया है, जैसा मैंने बताया कि हम भूजल के बारे में बातें करना चाहते हैं। हमारा सारा वन्य क्षेत्र, हमारा सारा पर्यावरण इस बात पर निर्भर करता है कि जमीन के भीतर संचित मीठा पानी कितना है। तो सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताइएगा कि भूजल होता क्या है, कैसे इसे समझें।
1: भूजल जमीन के भीतर पाए जाने वाले पानी के भंडार को भूजल बोलते हैं। अंग्रेजी में इसके लिए एक अलग शब्द है जिसे बोला जाता है एक्विफर। दरअसल क्या होता है, बरसात जो होती है, बरसात का पानी का

0: करीब 50 से 60% पानी धरती के भीतर समाता है और बाकी पानी बह जाता है। और यही पानी फिर गर्मी के मौसम में यही पानी धीरे धीरे रिस के वापस ऊपर आता है, जिस कारण हमारी जो नदियां रहती हैं, हमारे तालाब, हमारी नदियां गर्मी के मौसम में भी भरी रहती हैं। 21वीं शताब्दी में हम उस कड़ी पे, उस जगह पर आज पहुंच चुके हैं जहां पे हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जहां पे हमारे पास संसाधन है ताकि हम भूजल का उपयोग कर सकें। पूरा देश, बल्कि क्या पूरी दुनिया, मैं कहूंगा, भूजल का उपयोग कृषि के लिए और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चलाने के लिए कर ही रही है।
1: जी
0: हमारा हाउस होल्ड यूसेज भी, मैक्सिमम हाउस होल्ड यूसेज हमारा भूजल पर निर्भर है।
1: सही।
0: तो ये एक इतना बड़ा रिसोर्स है जो कि सिर्फ हमारा नहीं, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों का भी उस पे पूरा का पूरा हक है। और इसको बचाए रखना आज की मानव सभ्यता के लिए, भविष्य की मानव सभ्यताओं के लिए जरूरी है। इनफैक्ट अगर हम इसके बारे में थोड़ा पीछे जाएं तो कई मानव सभ्यताएं, जैसे हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता थी,
1: जी जी
0: वो पानी की कमी से ही खत्म हुई है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज किसी भी सभ्यता के लिए यही है कि हम अपना जल और आज के जमाने में भूजल का संरक्षण करते चलें।
1: बहुत सही। देखिए कितनी बातें आपने इस छोटी सी बातचीत में समेटी हैं, और हमारे श्रोताओं को ये स्पष्ट हो गया होगा कि भूजल हमारे जीवन के लिए, वर्तमान समय के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए कितना जरूरी है। और अब मैं जानना चाहूंगी आपसे कि भूजल संरक्षण की बात हम कर रहे हैं, वर्षा खूब हो रही है, अभी देखिए इस साल भी वर्षा जल जो धरती को मिल रहा है बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कुछ महीनों बाद फिर से एक सूखे की स्थिति आती है और पानी का स्तर नीचे चला जाता है। मई जून का महीना आते तक हम देखेंगे कि ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो इतना नीचे चला जाता है कि बोर सूखने लगते हैं, हैंडपम्प सूखने लगते हैं, फिर नया बोर करवाना पड़ता है। कुल मिलाकर किसानों की हालत, जो निर्भर हैं इन स्रोतों पर, उनकी हालत खराब होने लगती है। तो ये ऐसा क्यों होता है कि जो दिख रहा है कि इतना कुछ पानी है, लेकिन कुछ महीनों बाद सारा पानी पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है?
0: पहले तो मैं, मेरे ख्याल से ये बात करते हुए चालू करूंगा कि जिस प्रकार की वर्षा हमको दिख रही है वो एबनॉर्मल है, वो नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल वर्षा ये होती कि वही बरसात जो भारी मात्रा में अभी एक बार में बरस जाता है और उसके बाद बरसना ही बंद कर देता है, वो मानसून पूरा अपने अंतराल में बरसे। अब क्या होता है कि 10 साल में, 15 साल में एक ऐसा वर्ष कोई सा होता है जो एनोमलस होता है, जिसमें हमको लगे कि नॉर्मल बारिश हो रही है। बाकी सालों में या तो पूरा साल नहीं बरसती, या पूरा साल मानसून के समय में नहीं बरसेगी, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, ज्यादा ज्यादा 1 महीना इतना बरसेगी कि बाढ़ आ जाएगी। आज जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है, उस कारण से दुनिया भर में हर जगह का, और इसमें हम सिर्फ हिंदुस्तान या अपनी जगह की बात नहीं कर
1: बिल्कुल
0: सकते,
1: से,
0: बिलासपुर,
1: बिल्कुल से।
0: छत्तीसगढ़, हिंदुस्तान, दिल्ली, ये सारी जगहों की बात नहीं कर सकते, आज दुनिया का हर देश इस समस्या के चपेट में आ चुका है। पहली बात तो यह है कि एक एबनॉर्मल रेनफॉल है जो दिखती है, ये एक बार गिरती है, गिरने के बाद सरफेस रन ऑफ, या फिर कहना चाहिए कि वो गिरती है और सरफेस रन ऑफ हो जाता है, गिरने के बाद पूरा बह जाता है, जमीन अंदर कुछ जा नहीं पाता। पहली बात ये। मैं दूसरी और तीसरी बात से तालाबों की तरफ आऊंगा। दूसरी बात ये है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ और डेवलपमेंट हुआ है, जो हमारा शहरों का विकास हुआ है, हमारी इमारतें बनी हैं, हमारी सड़कें बनी हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने हमारे इस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास ने कहीं ना कहीं पर्यावरण की संवेदनशीलताओं को पूरे देश भर में नहीं समझा है।
1: बिल्कुल सही।
0: और उस समझ की कमी होने के कारण जो मिट्टी की क्षमता, जो धरती की क्षमता है बरसात के पानी को रिचार्ज करने की, भूजल को रिचार्ज करने की, वो क्षमता भी आज खत्म हो गई है। बहुत हद तक वो क्षमता, जो हमने सड़कों पर कंक्रीट कंक्रीट बिछा दिया है, हमने मिट्टियां खाली नहीं छोड़ी है, उस कारण से वो क्षमता खत्म हो चुकी है। इसके साथ जो हमने पारिस्थितिकी तंत्रों का को नुकसान जिस तरीके से पहुंचाया, और इसमें तालाब बहुत महत्वपूर्ण है, जिस तरीके से हमने जंगलों को काटा, जिस तरीके से हमने तालाबों को पाट दिया है,
1: सही बोल रहे हैं,
0: उसके कारण वाटर रिचार्ज जो ये पारिस्थितिकी तंत्र पेड़ पौधे तालाब करते थे, ये भी खत्म हुआ है।
1: बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। और श्रेयांश, यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ अपने आप में बहुत समृद्ध रहा था इन पारंपरिक जल संरक्षण के उपायों से, बल्कि कुएं हुए, बावड़ियां हुई, डबरी हुई, तालाब हुए, ये सब हमारे हर गांव में आपको बहुतायत में दिखते थे, और इनके माध्यम से इस वर्षा के जल को संग्रह करके हम खेती के लिए उपयोग में ला पाते थे। शायद इसीलिए धान कटोरा के रूप में छत्तीसगढ़ में कभी भी पानी की कमी का संकेत नहीं मिलता था।
0: जी मैडम,
1: तो इस रूप में मैं ये भी जानना चाहूंगी कि क्या भूमिका रहती, पारंपरिक जल स्रोत एक है, आज हम मनरेगा के थ्रू भी तालाब बनाते हैं,

0: लेकिन प्रकृति का जो स्वाभाविक उतार चढ़ाव है, जहां पर ऊंचाई है, जहां गड्ढा है, वहां प्रकृति स्वयं ही इन पारंपरिक जल स्रोतों को बनाती है, तो उसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए।
1: जी, तो प्रकृति का काम शुरुआत से रहा है कि वो पारंपरिक रूप से ऐसे तालाब तालाबों का निर्माण करे कि भाई ठीक है, मनरेगा अपने तरफ से बनाता है, वो तो एक अलग पक्ष हुआ, लेकिन उसके साथ साथ जो नेचुरल वाटर का, जो नेचुरल रेनफॉल होती है, जो नेचुरल पानी का फ्लो होता है, पानी जिस दिशा में जाता है, वो धीरे धीरे मिट्टी काट के वहां पे गड्ढे स्वयं बनाता है। उसके गड्ढे बनाने के बाद अपने आप वहां पे लोकल वेजिटेशन, खासकर अर्जुन के पेड़, मध्य भारत है तो मैं अर्जुन के पेड़ों की ज्यादा बात करूंगा इसमें, खासकर अर्जुन के पेड़ वहां आने लगते हैं। जब अर्जुन आता है तो अर्जुन क्या करता है, अर्जुन की पत्ती उसकी छाल जब डिपॉजिट होके परतें बनाना चालू करती है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो वो एक सिस्टम की तरह काम करता है जो पानी को परकोलेट करने में और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में मदद करे। इसलिए आप कोई भी प्राकृतिक रूप का पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे मध्य भारत में, MP, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आप प्राकृतिक तालाब या नदी देखेंगे, उसके किनारे आपको मुख्यतर रूप से कहुआ या अर्जुन, दोनों एक ही प्रजाति हैं, कहुआ के पेड़ और अर्जुन के पेड़ ही ज्यादातर आपको मिलेंगे, क्योंकि उनका काम है, वो एक पायनियर स्पीसीज है।
0: अच्छा।
1: उनका काम है आपके तालाबों को वापस लाना, आपके भू जल का संरक्षण करना, आपकी नदियों को वापस लाना, नदियों के भीतर के भू जल का संरक्षण करना, और आपके तालाब और आपकी नदियों को पेरेनियल यानी साल भर बहने वाली नदियां और तालाब बनाना।
0: क्या बात है। तो ये प्राकृतिक रूप से कुछ वृक्ष ऐसा कर सकते हैं, जानकर तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि वो जल को सूखने नहीं दे रहे हैं और वहां पर ऐसी लेयरिंग कर रहे हैं कि उसके बाद वो साल भर उसमें पानी बना रहे। तो अभी जो घटनाएं घट रही हैं उसमें क्या सबसे मुख्य रूप से खत्म करने वाला है इन सभी चीजों को?
1: पहले तो मैं कुछ व्यवहारिक बातें इसमें करूंगा जो कि हमारी संस्कृति से गई है शायद। ग्रामीण संस्कृतियों में मेरे ऑब्जर्वेशन में, और ये डॉक्यूमेंटेड भी है, कि पहले क्या होता था, ग्राम सभाएं, ग्राम पंचायत क्या करती थी कि जो गाँव है, गाँव का जो वेस्ट वाटर है या गांव का जो भी पानी जहां से भी बहता है, उनको ऐसी इस प्रकार से चैनल किया जाता था कि या तो तालाब या तालाब के किनारे कोई छोटा सा तालाब, इस प्रकार के स्ट्रक्चर बनाए जाते थे जहां पे पूरा गांव का तालाब आके एक साथ इकट्ठा हो, वो इकट्ठा होता था, वो स्वयं तालाब को फिर रिचार्ज करता था। तो एक तो ये बिहेवियरल चेंजेस हुए हैं। गांव में पहले पेड़ पौधे ज्यादा हुआ करते थे, स्थानीय प्रजाति के पेड़ पौधे, जो नेटिव फ्लोरा होता है, जो मध्य भारत का नेटिव फ्लोरा है, जो जंगली पेड़ हैं, वो पेड़ पौधे ज्यादा हुआ करते थे, आज वो भी बदल गया है। उसके बाद ये हमारा एक आउटलुक में जीवन को लेके और डेवलपमेंट को लेके एक आउटलुक भी बदला है, जिसमें कंक्रीट का बहुत महत्व हो चुका है। तो शहर में तो ये हो ही रहा है, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हमको दिखता है कि परकोलेट करने वाली मिट्टी की सतह खत्म हो जाती है, जिससे पानी का रिसाव जमीन के भीतर हो, और ये होता है हमारा व्यवहारिक पार्ट, ये व्यवहारिक हिस्सा है समस्या का। फिर कुछ सिस्टेमिक हिस्से हैं जो सिस्टम के अंदर हैं, और वो सिस्टम के अंदर के हिस्से ऐसे हैं कि उनको डील कर, उनको देखना, उनको समझना और उनको उनसे डील करना बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार से वनों की कटाई हो रही है, जो वन होते हैं अक्सर, या किसी प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है, वेटलैंड है, घास का मैदान है, किसी प्रकार का इकोसिस्टम है, वो पानी को रिचार्ज करने का काम करता है। तो अगर आप उन इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो एक प्रकार से वो प्राकृतिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो आप उस प्रकार के प्राकृतिक इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर देंगे तो आपका भू जल कहां से बचेगा, आपके एक्वीफर सूखेंगे नहीं तो क्या होगा।
0: सही बात है।
1: तीसरी बात जो होती है, तीसरी बात कहीं ना कहीं हमारे कंजम्पशन की और हमारे प्रकृति से इंटरैक्शन की भी है। छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ आपने बताया धान का कटोरा है
0: जी,
1: लोग यहाँ धान बेचते हैं, किसान यहाँ धान बेचते हैं। मैं एक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ जो आपके गनियारी गांव से आगे बाएं तरफ समडिल करके गांव है, समडिल के आगे एक छोटा सा बेलगहना है और बरद्वार है। तो बेलगहना के बाद जो ये बरद्वार का क्षेत्र चालू होता है, यहाँ पे घूंगा नदी नाम की नदी बहती है, उसके आसपास कई तालाब भी बने हुए हैं।
0: बिल्कुल।
1: इस गर्मी में उस गांव की इतनी बुरी हालत थी कि 250-300 परिवारों के बीच पानी नहीं था, केवल एक किसी किसान के पास, जिसका बोर मेरे ख्याल से 250-300 फीट गहरा था, उसके बोर से पानी आ रहा था, बाकी किसी के बोर से पानी
0: मतलब सारे बोर सूख चुके थे,
1: सारे बोर सूख चुके थे।

0: उसका कारण था भरी गर्मी के मौसम में वहां किसानों ने, वहां लोगों ने जो धान होती जो खरीफ फसल है उसको रबी फसल बना के उगाया था। तो इस एक तरीके से बेमौसमी कार्य हुआ, और आपने उसे गर्मी में धान की फसल ली, आपने ठंड में भी ले ली, और अब आप मई जून की भरी गर्मी में धान की फसल ले रहे हो और अपने खेतों को पानी से लबालब कर रहे हो, तो इस परिस्थिति में पानी की कमी नहीं होगी तो क्या होगी? मेरे ख्याल से पूरे तखतपुर ब्लॉक में और कोटा ब्लॉक के कई हिस्सों में ये बहुत बड़ी समस्या थी इस बार।
1: सही बात है, और ये एक जागरूकता की कमी का कारण है। जमीन के भीतर का जो पानी है उसे पूरा का पूरा बाहर लाकर आप उपयोग में ला रहे हैं, और उसके बाद आपके पीने के लिए भी पानी नहीं बच रहा है, ये कितनी बड़ी विडंबना है। इस संदर्भ में जागरूकता आती है तो निश्चित रूप से लोग जागरूक हो तो हम इन पारंपरिक जल स्रोतों को, जो अंडरग्राउंड वाटर जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, उसको हम बचा रख सकते हैं।
0: जी बिल्कुल, और इसी संदर्भ में तालाबों का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि तालाब एक तरीके से प्री एग्जिस्टिंग पहले से ही मौजूद प्राकृतिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आपके ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करे। आज तालाब ऐसे हैं कि तालाब नाइट्रोजन और फास्फोरस नाम के जो दो पदार्थ होते हैं जो भारी मात्रा में हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं, उनको फिल्टर करते हैं। तालाब ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो कि करीब आप मान के चलिए पूरा का पूरा हिंदुस्तान का 40-50% ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। एक तो है जो डायरेक्ट रिचार्ज हो रहा है, दूसरा 40-50% ग्राउंड वाटर रिचार्ज, भूजल का रिचार्ज सिर्फ और सिर्फ तालाबों के कारण होता है।
1: कितनी बड़ी बात है,
0: कितनी बड़ी बात है
1: जी।
0: मतलब आप ये इस तरीके से देखिए कि अगर हम अपने तालाबों को बचाएं, अगर हम अपने तालाबों के पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रखें, अगर हम ये मन में ठान के रखें पंचायतों के माध्यम से, नगर निगम के माध्यम से, हमारे शहरों के तालाब भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, अगर हम ये ठान के रखें और कि हमें तालाबों को एनक्रोच नहीं करना, उनको पाट के उनमें इमारतें खड़ी नहीं करनी, उसमें सभ्यता नहीं बसानी है, तो ये एक नुकसान नहीं, ये हमारे भविष्य को लेके इन्वेस्टमेंट है। आप मानेंगी नहीं मैडम, एक रुपये जो लगता है असली रूप में तालाब के रख रखाव करने में खर्च किया गया, हर एक रुपए हमको इकोसिस्टम सर्विसेज के माध्यम से, यानी पानी और कृषि और मछली पालन, हर प्रकार की सेवाओं को आप मिलाओ तो हमें कम से कम हर एक रुपए लगाया हुआ 3-4 रुपए का फायदा का रिटर्न हमें वापस देता है ऑन एवरेज। तो एक इसको इकोनॉमिक टर्म्स में हम इसको आर्थिक शब्दों में रखें तो ये कितनी बड़ी बात है,
1: एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है, एक निवेश है,
0: एक ही निवेश है
1: भविष्य के लिए, भविष्य की पीढ़ियों के लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो
0: बिल्कुल।
1: ये अभी ऐसा एक दृष्टिकोण लाना जरूरी है, और आपके जैसे युवा जब इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और ये सारी बातें आज हमारे श्रोताओं के समक्ष इतने स्पष्ट रूप से रख रहे हैं, तो मुझे लगता है जो भी श्रोता हमारे आज इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे वो एक नई दिशा में सोचने के लिए जरूर मजबूर होंगे। और अब छत्तीसगढ़ में जो स्थिति है उसके बारे में, स्पेसिफिकली बिलासपुर और उसके आसपास बहुत सारे तालाब हैं, तो हम क्या कर सकते हैं इन तालाबों के रखरखाव के लिए, किस तरह की योजना बना के काम कर सकते हैं, क्योंकि ग्रामवासी चाहें तो एक तालाब को बचाकर उसे बहुत सुंदर कर सकते हैं। राजस्थान में हम देखते हैं लोग नए नए ढंग से पारंपरिक स्रोतों को बचाकर उस जगह को हरियाली लाने में पूरी भूमिका निभा रहे हैं ये जगह, तो यहां पर हम क्या करें, हमारे अंदर कैसी जागरूकता है कि हम इन तालाबों से अपने पारिस्थितिकी तंत्र में कुछ अच्छा बदलाव ला सके?
0: एक तो पहली बात यह है मैडम, मेरे ख्याल से सबसे पहले शुरू पूरी कहानी इससे होती है कि लोगों को समझ में आना चाहिए कि तालाबों का महत्व कितना ज्यादा है। मैं ये बात हमेशा करता हूँ कि किसी भी प्रकार का पर्यावरण संबंधित काम हो वो एंड टू एंड रहे तो हमेशा अच्छा होता है, वो शुरुआत से लेके अंत तक रहे, वो पूरा सील्ड रहे, तब जाके वो भविष्य सुनिश्चित करता है, नहीं तो कहीं ना कहीं चीजें गड़बड़ होती है।
1: मतलब अधूरा काम होना नहीं चाहिए,
0: अधूरा काम नहीं होना चाहिए।
1: बिल्कुल सही आपने कहा कि यदि हमने एक योजना बनाई है किसी तालाब के रखरखाव की, तो उसके रखरखाव के हर पक्ष के संदर्भ में हमें जागरूक रहना है और काम करना।
0: बिल्कुल, और उसी संदर्भ में सबसे पहले आता है शिक्षा। शिक्षा का मतलब यही नहीं होता कि यूनिलैटरल शिक्षा हो कि कुछ लोग जाके गांव में या कुछ लोग जाके शहर के किसी मोहल्ले में समझा रहे, आप समझाओ लेकिन वो भी आपको समझाए। शिक्षा तब होती है जब दोनों तरफ से बात होती है, एक तरफ से बात होना शिक्षा नहीं होती, और एक तरफ से बात होने वाली शिक्षा से जो पारंपरिक ज्ञान है जो गांव के लोगों में पहले से रहा है, जो किन परिस्थितियों के कारण वो खो देते हैं लेकिन उनके पास पीढ़ी दर पीढ़ी वो रहता है, वो खो जाता है। तो सबसे पहले ये कि हमारे इंटरैक्शन कम्युनिटीज के साथ होने चाहिए, गांव वालों के साथ बैठक होनी चाहिए, उनकी समस्या समझे, उनको याद दिलाएं कि उनके पारंपरिक तरीके क्या थे। जब सरकार की तमाम योजनाएं

0: अगर इन योजनाओं के आने से पहले जब पानी की कभी समस्या आती होगी तो उनके पारंपरिक तरीके पानी बचाने की क्या थी, वो याद दिलाने के बाद, किसी भी प्रकार के याद दिलाने के बाद आप रिसर्च और साइंटिफिक बॉडीज को साथ मिलाइए। पेड़ पौधे लगा देने से हमेशा तालाब आपके बच जाए ये जरूरी नहीं है। रेस्टोरेशन शब्द का आज बहुत दुरुपयोग होता है दुनिया में। रेस्टोरेशन शब्द का मतलब ये नहीं होता कि मैं एक तालाब को मैं के चारों ऊंची फेंस लगा दूं और वो कंक्रीट का बना दूं और लाइटें लगा दूं और चलने का रास्ता बना दूं।
1: ये सौंदर्यीकरण हो गया,
0: सौंदर्यीकरण है। और सौंदर्य तो बहुत रिलेटिव चीज होती है, किसी के दृष्टिकोण से वो सुंदर है, किसी के दृष्टिकोण से वो सुंदर नहीं है। मैं किसी तालाब के किनारे कॉन्क्रीट देखता हूँ तो मुझे तो बहुत दुख होता है, मुझे वो बिल्कुल सुंदर नहीं लगता, मेरी आंख चुभती है वो देखकर। तो ये कि हम रेस्टोरेशन शब्द को परिभाषित करें कि हम तालाब के रख रखाव से तालाब को पुनः जीवित करने का अर्थ हमारा क्या है। हमारा अर्थ ये होना चाहिए कि हम वहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें पीपल का पेड़ है, बड़ का पेड़ है, अर्जुन का पेड़ है, जामुन है, इन प्रकार के पेड़ों को वहाँ पे वापस लाएं। ये नहीं कि हम कोई विदेशी या कोई नॉन नेटिव स्पीसी जो क्षेत्र की नहीं है उन क्षेत्रों के पेड़ों को लगा रहे हैं क्योंकि वो तुरंत उग जाते हैं और वो तुरंत हरा दिखेगा, और तुरंत हरा दिखेगा तो हमको कागजों में दिखाने के हो जाएगा कि भाई तालाब बच गया हरा भरा। ये काम नहीं करना है क्योंकि ये काम आपको शॉर्ट टर्म में कुछ सालों के लिए, कुछ महीनों के लिए अच्छा दिखेगा लेकिन बाद में ये बैकफायर करेगा। तीसरी बात, हमारे छोटे छोटे संगठन, ग्राम पंचायत हुआ, नगर निगम हुआ, मोहल्ले में जो लोग हैं, हर किसी को जागरूक होना पड़ेगा, हर किसी को स्वयं का स्वार्थ पीछे छोड़ना पड़ेगा ताकि हम उन तालाबों की जमीन चुराने के लिए ना पहुंच जाए वहां। जो तालाबों को चुराया जाता है ये एक प्रकार से एक कम्युनल कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो समाज का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये उसको बर्बाद करने जैसा हो, जिससे हर किसी का पेट चल रहा है उसको किसी एक व्यक्ति के कुछ समय के चंद फायदे के लिए बर्बाद करने जैसी बात हो गई। तो ये मेरे ख्याल से ये तीसरी कड़ी होती है कि ये रोकना बहुत जरूरी,
1: मतलब किसी भी तरह का कब्जा इन प्राकृतिक संसाधनों पर, इन प्राकृतिक स्रोतों पर नहीं होना चाहिए। नहीं। उसके लिए यदि पूरी जनता जागरूक है तो इसे रोका भी जा सकता
0: बिल्कुल,
1: है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: बहुत
0: बिल्कुल,
1: सही आपने बताया। और इतनी सारी बातें बिल्कुल काफी स्पष्ट रूप से कि भूजल क्या है, तालाब क्या भूमिका निभाते हैं, हमारी जागरूकता कैसी होनी चाहिए, बड़े विस्तार से आज श्रेयांश बुधिया जी हमारे बीच थे, उन्होंने बड़ी अच्छी जानकारी दी। चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं इन सारी बातों को समेटते हुए?
0: सारी बातों को समेटते हुए मैं यही बात कहना चाहूंगा कि 21वीं शताब्दी में पर्यावरण एवं प्रकृति और उनसे संबंधित कोई भी समस्या ज्यादा बड़ी या लॉन्ग टर्म नेगेटिव इफेक्ट कॉजिंग नहीं है। लंबे समय के लिए युद्ध होंगे, बाकी दिक्कतें आएंगी, आर्थिक उतार चढ़ाव रहेगा, ये सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, लेकिन पर्यावरण एक ऐसी चीज है जो पूरे मानव जीवन का बेडरॉक है, वो पूरे मानव जीवन का आधार है, और उसका अस्तित्व तो खतरे में चला जाए तो ना कोई अर्थव्यवस्था बचेगी, ना कोई संस्कृति बचेगी, ना पहचान बचेगी, किसी प्रकार की चीज नहीं बचेगी। तो आप प्रकृति संरक्षण में ध्यान दें, आप हर जो काम करते हैं उसमें आप सोचें कि मैं ये काम कर रहा हूं इसमें मैं प्रकृति को कैसे इन्वॉल्व कर सकता हूं, इससे मैं प्रकृति को फायदा कैसे दे सकता हूं, इससे मैं संरक्षण कैसे कर सकता हूं। घर में इन चीजों के बारे में चिंतन करें, बात करें, इसको एक रेगुलर हैबिट बनाएं, प्रकृति को अपनी आदत बनाएं, और जब प्रकृति आपकी आदत बनेगी उस दिन से प्रकृति में सुधार, समाज में सुधार, देश में अर्थव्यवस्था में सुधार आना शुरू हो जाए।
1: बहुत सुंदर। और मुझे लगता है कि यदि आज का युवा इस ढंग से सोचता है प्रकृति पर्यावरण के बारे में, इस संपूर्ण पृथ्वी के बारे में और अपने देश के बारे में, और मुझे लगता है सच्ची देशभक्ति भी यही है कि आप अपने दिल से अपने आसपास की मिट्टी प्रकृति के बारे में सोचना शुरू करें, देखिए देश अपने आप विकास के पथ पर कैसे बढ़ने लगता है। बहुत अच्छा लगा श्रेयांश जी आज आप आकाशवाणी आए और बड़ी सारगर्भित बातचीत आपसे हुई, बहुत सारी जानकारियां मिली जो अब तक शायद अछूती थी, जिनके बारे में सोचा नहीं था हमने, एक दिशा आपने दी सोचने की, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मैडम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत भूजल और पर्यावरण संरक्षण में तालाबों की भूमिका पर श्रेयांश बुधिया से बातचीत का

0: प्रसारण किया गया। प्रस्तुति थी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:08 हुए हैं। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर बाद।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
4: सखी सहेली,
2: बॉम्बे टॉकीज और
5: सेल्यूलॉइड के सितारे,
2: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
6: मुझे याद सब है जरा जरा,
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
2: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
1: मन का सुकून दिल की आरती,
2: सुरीली संदली,
7: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
0: कृपया कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 11 जून 2026 को स्टूडियो में कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमेंद्र कुमार केशरी उपस्थित रहेंगे। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा धान फसल में नील हरित काई एवं भूरा खाद का उपयोग, और सुबह 11 बजे से 11:30 तक का विषय होगा जैविक खेती की आवश्यकताएं एवं संभावनाएं। एक बार पुनः सुनिए कि सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा धान फसल में नील हरित काई एवं भूरा खाद का उपयोग, और सुबह 11 बजे से 11:30 तक का विषय होगा जैविक खेती की आवश्यकताएं एवं संभावनाएं। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 266592। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 077752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों के रिकॉर्डिंग का प्रसारण 11 जून 2026 और 12 जून 2026 को शाम 5:05 से 5:35 तक आप सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारत।

0: देश की सुरीली धड़कन
1: विविध भारती
2: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता
0: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत
2: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट
0: वीर सैनिकों की जय माला
2: और हंसी का हवा महल 22 को की बातें यादों के उजाले
0: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग
3: सखी सहेली
0: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे
0: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा
5: मुझे याद सब है जरा जरा
2: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
0: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
2: मन का सुकून दिल की आरती
0: सुरीली संदली
6: ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रात्रि के 8:15 होने वाले हैं अब से थोड़ी ही देर में हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम का अनुप्रसारण करेंगे

0: 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश रायपुर की।
1: श्रोताओं नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर केंद्रित इस विशेष कार्यक्रम के साथ मैं शुभ्रा आचार्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 से शुरू हुई इस यात्रा में देश ने विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, डिजिटल परिवर्तन, सामाजिक कल्याण और वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका के कई नए आयाम देखे हैं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में जानते हैं कि 12 वर्षों में देश ने किन प्रमुख क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को आधार बनाकर अनेक योजनाएं और कार्यक्रम संचालित किए। सरकार का विशेष ध्यान गरीब, किसान, महिला, युवा और वंचित वर्गों के सशक्तिकरण पर रहा। वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में जनधन योजना एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुई। इसके माध्यम से करोड़ों बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया। आधार और मोबाइल के साथ जनधन खातों के एकीकरण ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी प्रणाली को मजबूत बनाया, जिससे सरकारी सहायता सीधे लाभार्थियों के खातों तक पहुंचने लगी। प्रधानमंत्री जनधन योजना को देश की सबसे बड़ी पहलों में गिना जाता है। वित्त मंत्रालय के अनुसार अगस्त 2025 तक देश में 56 करोड़ 16 लाख से अधिक जनधन खाते खोले जा चुके थे। इनमें लगभग 56% खाते महिलाओं के हैं और करीब 67% खाते ग्रामीण तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों में हैं। इन खातों में जमा राशि बढ़कर 2,67,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। जनधन, आधार और मोबाइल यानी जैम ट्रिनिटी ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण व्यवस्था को मजबूत बनाया है। सरकार के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में विभिन्न डीबीटी योजनाओं के तहत लगभग 6,90,000 करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजे गए। कल्याण सरकार की प्राथमिकताओं में प्रमुख रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत और जनधन जैसी योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लोग तक बुनियादी सुविधाएं पहुंची हैं। प्रधानमंत्री ने भी उल्लेख किया है कि पिछले वर्ष 25 करोड़ से अधिक लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। औद्योगिक क्षेत्र भिलाई निवासी सोमेंद्र सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया है।
2: मोदी सरकार ने बहुत काम किया है। गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना, भातारी बंधन योजना, पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान के तहत इन्होंने जो शौचालय करोड़ों परिवारों को शौचालय का उपलब्ध कराया, सराहनीय कदम है। गरीब

0: परिवारों को आयुष्मान योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा योजना उपलब्ध कराई है, जिससे गरीब परिवारों को काफी लाभ मिला हुआ है।
1: सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराए गए हैं। उज्ज्वला योजना ने गरीब परिवारों की महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाते हुए रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया। वहीं आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा मिली। स्वच्छ भारत अभियान ने देश में स्वच्छता को जन आंदोलन का रूप दिया और खुले में शौच से मुक्त भारत की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गईं। दुर्ग जिले के धमदा गांव के प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान के जरिए हर घर शौचालय का निर्माण किया गया। वहीं उज्ज्वला योजना भी महिलाओं के लिए लाभकारी हुई है।
2: हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के इन 12 जो दौर रहा है उनका बहुत ही उपलब्धि भरा रहा है। मोदी जी ने शौचालय से लेकर एक आम आदमी की पीड़ा को समझते हुए पूरे देश भर में शौचालय का निर्माण किया है। नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, वहाँ पर जिनके भी कच्चे मकान थे उनके लिए प्रधानमंत्री आवास के रूप में आवास उपलब्ध कराया है। हमारी बहने माताओं को जो लकड़ी के चूल्हों में खाना बनाना पड़ता था उनके लिए उन्होंने गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया है उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। इस प्रकार से विभिन्न योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री जी 12 वर्षों में इस देश की आम जनता को उपलब्ध कराया है।
1: श्रोताओं, कृषि क्षेत्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता प्रदान की गई। सिंचाई, कृषि अवसंरचना और तकनीक खेती को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए। सहकारिता विशेषज्ञ प्रीतपाल बेलचंदन ने बताया कि सहकारिता पर आधारित केंद्र सरकार की नीतियों से किसानों को लाभ मिला है। विकसित भारत में सहकारिता की भूमिका बहुत बड़ी होगी।
3: मोदी जी ने सिर्फ पंचवर्षीय योजना नहीं बनाया, 2047 तक विकसित भारत की दृश्य क्या होनी चाहिए वाली पीढ़ियों के लिए, इसके लिए काम किए और उस परिपेक्ष में सहकार से समृद्धि एक ऐसा योजना लॉन्च किया जो अटल बिहारी जी वाजपेयी का कल्पना था। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की जो उनकी मूल मंत्र थी उसको अमित शाह जी के नेतृत्व में सहकारिता के लिए जो 2047 में विकसित भारत होगी उसमें सहकारिता की बहुत बड़ी भूमिका सुनिश्चित करने की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योजना है। और सहकारिता का एक जीता जागता उदाहरण है अभी छत्तीसगढ़ में धमतरी जिले में जो किसानों के लिए समितियों के माध्यम से ड्रोन से कीटनाशक सिंचाई यंत्र उपलब्ध कराया गया, वो अपने आप में एक शुरुआत है।
1: मोटे अनाज यानी श्री अन्न को प्रोत्साहन देने में भी भारत ने वैश्विक स्तर पर नेतृत्वकारी भूमिका निभाई। दुर्ग जिले के अधिवक्ता संतोष मिश्रा ने कहा कि वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बीते 12 वर्षों बढ़ गई है।
4: पिछले 12 वर्षों में भारत ने विकास, आत्मविश्वास और वैश्विक प्रतिष्ठा की नई ऊंचाइयों को छुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। डिजिटल इंडिया और UPI ने देश को डिजिटल क्रांति का वैश्विक मॉडल बना दिया है। वंदे भारत ट्रेनें, आधुनिक हाईवे, एयरपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर नए भारत की तेज रफ्तार प्रतीक बन चुका है।
1: श्रोताओं, बुनियादी ढांचे के विकास को सरकार की प्राथमिकताओं में प्रमुख स्थान मिला। राष्ट्रीय राजमार्गों का तेजी से विस्तार हुआ, रेलवे के आधुनिकीकरण, वंदे भारत ट्रेनों के संचालन, रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और माल ढुलाई क्षमता विशेष जोर दिया गया। देश में हवाई अड्डों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के माध्यम से छोटे शहरों को हवाई नेटवर्क से जोड़ा गया। वहीं भारतमाला परियोजना के तहत नए राजमार्गों का निर्माण और अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा जा रहा है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के कार्यपालन अभियंता अनंत दीक्षित ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जिले में 37 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है।
5: आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 12 साल के कार्यकाल में सड़कों का विस्तार हुआ है। GPM जिले के 3 वर्ष के कार्यकाल में 37 किलोमीटर सड़कें पूर्ण करा ली गई हैं एवं 32 किलोमीटर प्रगतिरत हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो कि समय सीमा में पूर्ण कराने का कार्य है, जिसमें गांवों को बारामासी सड़क से जोड़ने का कार्य करते हैं एवं ब्रिज बनाते हैं। जो गांव बरसात में मुख्य धारा से कट जाते थे, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय के दूरदर्शी सोच को दर्शाता है कि आखिरी छोर भी किसी प्रकार से हीन न रहे। ऐसे

0: वनांचल जहां सड़कों का विस्तार न होने के कारण प्रसव हेतु एम्बुलेंस का आना जाना नहीं हो पाता था, पीडीएस वितरण प्रणाली ठीक तरीके से काम नहीं कर पाती, स्कूल में बच्चों के आने जाने हेतु गंदी मिट्टी एवं कीचड़ भरी सड़कें उपलब्ध होती थी, बाजार जाना भी बहुत मुश्किल कार्य था। इन सभी सड़कों को बनाकर इन सभी चीजों को बहुत बेहतर तरीके से हर गांव की तस्वीर को बदलने का कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2005 से करती आ रही है एवं निरंतर करती रही।
1: बंदरगाहों, जलमार्गों और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में भी निवेश बढ़ा, जिससे व्यापार और परिवहन को नई गति मिली। गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान और राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन जैसी पहलों ने समन्वित विकास की नई दिशा प्रदान की। श्रोताओं, डिजिटल इंडिया अभियान इन 12 वर्षों की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक माना जाता है। इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं का विस्तार गांवों तक पहुंचा। फाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में भारत को विश्व के अग्रणी देशों में शामिल किया। सरकारी सेवाओं का डिजिटलीकरण होने से पारदर्शिता और सुगमता बढ़ी है। दुर्ग के पाटन निवासी उत्तम कुमार सिन्हा ने डिजिटल इंडिया अभियान की सराहना की।
2: हमारे देश में आज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी ज्यादा डेवलप हो गई है कि इस टेक्नोलॉजी को पूरे वर्ल्ड वाइड डिमांड पे है और कई देशों को हमने सप्लाई की। आज यूपीआई पेमेंट एक चाय वाले से लेकर के बड़े बड़े मॉल में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि एक डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में एक बहुत बड़े उपलब्धि के तौर पे मैं इसको लेता हूँ। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के तौर पे देखें तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में हमारे देश का लोगों की सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत ही आले दर्जे का है और आज वर्ल्ड वाइड हमारे देश के लोगों की इज्जत, इंडिया की इज्जत, भारत देश की इज्जत पूरे विश्व में बहुत ही अच्छे नाम से लिया जाता है।
1: सशक्तिकरण की दिशा में भी अनेक कदम उठाए गए। मातृत्व लाभ, महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए गए। दुर्ग जिले के मतवारी गांव की रहने वाली नमो ड्रोन दीदी जागृति साहू ने बताया कि इस योजना से महिलाएं सशक्त हुई हैं।
3: आज हमारे भारत देश की महिलाएं जो कि समूह से जुड़कर सशक्त होते जा रही हैं, जो नमो ड्रोन दीदी के द्वारा हो रही हैं, मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिनके द्वारा आज भारत में हमारी महिलाएं सशक्त हो रही हैं। और अगर वो अपने इस महत्वाकांक्षी योजना को लॉन्च नहीं किए रहते तो हमारे पीएम के द्वारा हमारा सिलेक्शन नमो ड्रोन दीदी के रूप में हुआ, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।
1: युवा शक्ति को सशक्त बनाने के लिए कौशल विकास, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी पहलें शुरू की गयी। भारत आज दुनिया के प्रमुख स्टार्टअप इकोसिस्टम में शामिल है। नवाचार, उद्यमिता और तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए अनेक नीतिगत सुधार किए गए हैं। भिलाई स्थित सर्वोदय फाउंडेशन के प्रशांत मिश्रा ने बताया कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं।
4: मोदी सरकार जी के द्वारा 12 वर्षों में जो कार्य किए गए हैं वो अकल्पनीय है। दूसरी सरकारों में जितनी भी समस्याएं थी सारी समस्याओं का निवारण एक तरीके से मोदी सरकार ने कर दिया। सबसे बड़ी प्राथमिकता इन्होंने जो रोजगार के लिए जिस तरीके से युवाओं को प्रेरित किया है कि आप किसी भी रूप से रोजगार प्रारंभ कर सकते हैं।
1: आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र को मजबूती देने का प्रयास किया गया। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी पीएलआई योजनाओं के जरिए इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल निर्माण, रक्षा उत्पादन और अन्य क्षेत्रों में निवेश आकर्षित किया गया। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा मिला और भारत रक्षा उपकरणों में भी आगे बढ़ा है। श्रोताओं, विदेश नीति पर भी भारत की वैश्विक पहचान मजबूत हुई है। G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने वैश्विक दक्षिण की आवाज को प्रमुखता से उठाया। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की भूमिका और वृद्धि हुई है। आप भारत वैक्सीन मैत्री और विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर भारत की सक्रिय भागीदारी को व्यापक सराहना मिली। ऊर्जा, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी भारत ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि, सौर ऊर्जा को बढ़ावा और हरित विकास की दिशा में अनेक पहलें की गई। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी पहल भारत के नेतृत्व की पहचान बनी है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 वर्षों में देश ने सामाजिक कल्याण, आधारभूत संरचना परिवर्तन, आर्थिक सुधार, आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिष्ठा के क्षेत्रों में अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने

0: कहा कि इन 12 वर्षों में देश ने अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं और विकास, सुशासन तथा जनकल्याण के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं।
1: 12 वर्षों में ऐतिहासिक काम हुआ है। पहले शासन के कार्यकाल में हमको भी उनके साथ राजमंत्री काम करने का सौभाग्य मिला है। उन्होंने पहले 5 साल गरीब कल्याण के काम इस देश में किए हैं। सबका उन्होंने पक्का का घर बनवाया है, सबके घर में शौचालय का निर्माण, सबके घर में नल द्वारा पानी, सबके

0: काम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रहा है। सशक्त और समृद्ध भारत का निर्माण वो कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 वो हटा है। अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर निर्माण हुआ है। हमारी मुस्लिम बहनों के सशक्तिकरण के लिए ट्रिपल तलाक बिल पास हुआ है। इस तरह से ऐतिहासिक काम इन 12 वर्षों में हुए।
1: सरकारी आंकड़े बताते हैं कि इन वर्षों में योजनाओं के पहुंच बढ़ाने और सेवा वितरण को अधिक पारदर्शी तथा तकनीक आधारित बनाने पर विशेष बल दिया गया। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ते देश की ये यात्रा आगे जारी है। श्रोताओं, इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के वर्ष पूर्ण होने पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम संपन्न होता है। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
2: मोदी के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश रायपुर की थी। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर और सराईपाली केंद्र है। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं स्पोर्ट्स कैन।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और हम एक बार फिर मौजूद हैं नए क्लेवर, नए और नए अंदाज के साथ, जहां हमारे साथ है हर मैच का ताजा अपडेट और हर मैदान की पूरी खबर, और वो सब कुछ अधिक विस्तार के साथ। तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स साथ खेल की हर बात। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। भारत ए ने एक दिवसीय क्रिकेट त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। ऑस्ट्रेलियन बैडमिंटन ओपन 2026 आज से सिडनी में शुरू।

मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम रिले किया जा रहा था आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8:31 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम रजनीगंधा।

कुछ सुर ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ पुराने नहीं पड़ते, कुछ नाम ऐसे होते हैं जो यादों से कभी दूर नहीं होते। धुने भले ही थम जाएं, लेकिन उनकी गूंज सदियों तक सुनाई देती है। और ऐसे ही अमर सुरों के साधक थे वसंत देसाई। जाहिर सी बात है, वसंत देसाई जी का नाम सुनकर आप समझ ही गए हैं कि आज का रजनीगंधा इन पर ही केंद्रित है। बहरहाल, मैं हूं आपकी रेडियो साथी श्वेता पांडे। रजनीगंधा के इस कार्यक्रम में आप सभी को मेरा नमस्कार। श्रोताओं, हम एक बेहद दुर्लभ गीत से शुरुआत करते हैं। सरल संगीत रचना, लेकिन वसंत देसाई द्वारा रचित एक बेहद मनमोहक और अनूठी धुन, जिसे प्राण जैसे एक अप्रत्याशित नायक पर फिल्माया गया है, जो खलनायक की भूमिकाओं के लिए अधिक प्रसिद्ध थे।

फिल्म शीश महल 1950 में रिलीज हुई थी। रफ़ी और गीता दत्त ने इस गीत को गाया था।

वसंत देसाई का जन्म 9 जून 1912 को महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के सोनवडे गांव में हुआ था। वी शांताराम जैसे दूरदर्शी फिल्मकार के साथ काम करते हुए वसंत देसाई ने संगीत की एक अलग पहचान बनाई। सन 1955 में प्रदर्शित फिल्म झनक झनक पायल बाजे, इस फिल्म का संगीत वसंत देसाई के करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना जाता है। ये वसंत देसाई की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। ये एकमात्र ऐसा गीत है जिसे हेमंत कुमार ने वसंत देसाई के लिए गाया था। भले ही संगीत का प्रयोग कम किया गया, लेकिन कोरस के उत्कृष्ट उपयोग और लता मंगेशकर की मधुर आवाज और हेमंत दा के भारी स्वर के विरोधाभास से एक अलग ही भव्यता झलकती है इस गीत में।

वसंत देसाई का मानना था कि संगीत केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर सकारात्मक परिवर्तन लाने की शक्ति भी रखता है। जब शहनाई के सुर हवा में घुलते हैं तो मानो भावनाएं बोलने लगती है। संगीत की यही खूबी है कि वह बिना शब्दों के भी मन की हर बात कह देता है। फिल्म गूंज उठी शहनाई वसंत देसाई के संगीत जीवन का एक स्वर्णिम अध्याय है। इस फिल्म ने संगीत प्रेमियों को ऐसी धुनें दी जिन्हें आज भी बड़े प्रेम से सुना जाता है। इस फिल्म की विशेषता भी यह थी कि इसमें महान शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान की शहनाई का अद्भुत प्रयोग किया गया। वसंत देसाई ने शहनाई की मधुरता को फिल्म की आत्मा बना दिया। परिणाम स्वरूप फिल्म का संगीत भारतीय फिल्म इतिहास की अमूल्य धरोहर बन गया।

तलत महमूद अपने उत्कृष्ट एकल गीतों विशेषकर गजलों के लिए जाने जाते थे। उनसे कोई जोशीला युगल गीत सुनना वाकई दुर्लभ है और ये उनका एक लोकप्रिय गीत है। वसंत देसाई की प्रतिभा का एक और महत्वपूर्ण पक्ष तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

वो धुनों में आज भी जिंदा हैं, वो सुरों में आज भी मुस्कुराते हैं। श्रोताओं, संगीत की दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो समय की सीमाओं से परे चले जाते हैं। 22 दिसंबर 1975 को वे इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन उनकी रचनाएं आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी अपने समय में थी। जब भी ए मालिक तेरे बंदे हम, नैन

सो नैन नहीं मिलाओ, तेरे सुर और मेरे गीत या बोले रे पपीहरा जैसे गीत सुनाई देते हैं, तो लगता है जैसे वसंत देसाई अपने सुरों के माध्यम से आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। उनकी जयंती पर हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके अमूल्य संगीत को नमन करते हैं। इसी के साथ रजनीगंधा में आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ श्वेता पांडे, आपसे अनुमति चाहूंगी। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रजनीगंधा, आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। रात्रि के 8:45 हुए हैं। अब हम समाचारों का अनुप्रसारण करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। और रक्षा मंत्रालय दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: अफगानिस्तान की जनता के कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए जायसवाल ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और दवा सहायता से संबंधित उपायों के माध्यम से अफगानिस्तान की सहायता जारी रखे हुए है। श्री जायसवाल ने बताया कि एमटी मैरीमैक्स जहाज के चालक दल के सभी 24 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है
2: और वहां ओमानी अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया। तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और 2400 भारतीय नागरिक को सुरक्षित वहां से निकाला गया। ये सभी नागरिक हमारे नागरिक सुरक्षित हैं।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने विदेश नीति और कूटनीति, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है।
3: हमने उन देशों के साथ लगातार बातचीत जारी रखी जो तेल, गैस, एलएनजी, एलपीजी तथा उर्वरकों के उत्पादक हैं, कि ये राष्ट्रीय हित का विषय है। इसलिए विदेश नीति पूरी तरह से उस समय के प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्यों के

0: रूप संचालित होती है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, दुनिया भर को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच प्रमुख क्षेत्रों में भारत की संतुलित भागीदारी पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार ये सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिन के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि सोने के आयात में कमी आई है और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर कोई दबाव नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों के आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
1: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
3: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ से ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग हो गया, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
1: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। सरकार ने मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण की गारंटी अधिनियम जी रामजी को सुचारू रूप से लागू करने को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़

0: करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
1: विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम 1 जुलाई से लागू होने वाला है। कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन का प्रस्ताव किया। 95,692 करोड़ का अंतरिम आवंटन प्रस्तावित किया गया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी दे रहे हैं।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। सरकार ने अक्टूबर 2024 में योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
3: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे 5 लाख रुपए मिलेगी।
2: सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
4: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है। बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक रह रहा हूँ।
2: सरकार ने मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित 3 विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों का आज स्वीकृति पत्र जारी किए। ये संस्थान ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, यॉर्क विश्वविद्यालय और न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय हैं। ये विश्वविद्यालय महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये विश्वविद्यालय व्यवसाय, कंप्यूटर विज्ञान और साइबर सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में कार्यक्रम उपलब्ध कराएंगे। श्रीलंका के दाम्बुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। भारत ए के 278 रन के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने कल पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में बिहार

अभी आपने मोहम्मद रफी की आवाज में सुना दिल देके देखो फिल्म का ये गाना। आइए अब सुनते हैं तेरे घर के सामने फिल्म का गाना। गीत हसरत जयपुरी का है, संगीत एसडी बर्मन का, आवाज है मोहम्मद रफी की।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में आराधना फिल्म का गाना, गीत आनंद बख्शी का है, संगीत एस टी बर्मन का।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्रामिंग चार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम डोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, सुनने को थे प्याली में।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

असद भूपाली का जन्म मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 10 जुलाई सन 1921 में हुआ। मुंशी अहमद खान के वो बड़े साहबजादे थे। जब उनका जन्म हुआ तो इनका नाम रखा गया असदुल्लाह खान। फारसी, अरबी, उर्दू और अंग्रेजी में उनकी शुरुआती पढ़ाई हुई। शहर भोपाल एक अदबी शहर, वहाँ की हवा में शायरी की खुशबू होने से कई शायर इस शहर ने दिए हैं। उन्हीं में से एक जगमगाता नाम है असद भोपाली साहब का।

असद भोपाली कोई 28 साल के रहे होंगे जब उन्होंने माया नगरी मुंबई का रुख किया, ताकि वो अपने शायरी का फन फिल्मी गानों की शक्ल में उभार सके। भोपाल से मुंबई आने वाले शायरों की फहरिस्त का अव्वल नाम है असद भोपाली साहब का।

कहते हैं वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा इंसान को कुछ नहीं मिलता। इस बात की जीती जागती मिसाल है असद भोपाली साहब की कैफियत। 1949 के आसपास वो मुंबई आए थे। देश एक नई करवट ले रहा था। हिंदुस्तानी फिल्मी दुनिया भी इससे अछूती नहीं थी। कई कलाकार, फनकार, संगीतकार और गीतकार अपनी अपनी किस्मत आजमाने मुंबई की राह लिए हुए थे। अगर गीतकारों की ही बात करें तो मजरू सुल्तानपुरी, जान निसार अख्तर, खुमार बाराबंकी, प्रेम धवन, राजेंद्र किशन जैसे दिग्गज गीतकार इस दौरान काम पाने की होड़ में जुटे हुए थे। यही नहीं, साहिर लुधियानवी जैसे पाए के शायर को भी असद भोपाली साहब के साथ ही एक हॉस्टल में रहना पड़ा था। तो ऐसे में काम पाना एक बड़ी चुनौती भरा काम था।

रियासत भोपाली का मुंबई आना किस तरह हुआ ये भी एक दिलचस्प किस्सा है। फाजली ब्रदर्स एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था दुनिया। निर्देशक थे एस

एफ हसनैन साहब। फिल्म के अभी दो गाने ही लिखे गए थे। लिखने वाले थे आरजू लखनवी साहब, जो तकसीम हिंदुस्तान के पेश नज़र पाकिस्तान चले गए थे। अब फाजली ब्रदर्स के सामने मुसीबत मुंह बाए खड़ी थी कि बाकी गाने किससे लिखवाएं। इसी दौरान भोपाल के सुगम चंद कपाड़िया, जिनके भोपाल शहर में दो थिएटर थे, मुंबई आए हुए थे। उन्हें जब इस बात की खबर मिली तो फाजली साहब के सामने उन्होंने मदद की पेशकश करते हुए मशवरा दिया कि भोपाल शहर में शायरों की कमी नहीं है, अगर आप चाहो तो मैं एक मुशायरा भोपाल में करता हूँ, नामी गिरामी शोहरा इसमें भाग लेंगे। आप और आपके निर्देशक साहब जिस किसी शायर से मुतासिर हों उससे बाकी गाने लिखवा लें। तजवीज फाजली ब्रदर्स को पसंद आई, भोपाल में मुशायरा हुआ। फिल्म के प्रोड्यूसर फाजली ब्रदर और एस एफ हसनैन साहब मुशायरे में आए। जो शायर उन्हें सबसे अच्छे लगे वो थे असद भोपाली। फिल्म दुनिया के बाकी गाने फिर उन्हीं से लिखवाए गए। इस तरह से उनकी फिल्मी गीतकारी के रूप में पेश कदमी हुई। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं हम सब उस्ताद हैं, इस फिल्म का किशोर कुमार का गाया हुआ

फिल्म दुनिया में असद भोपाली के दो गाने थे, रफी साहब का गाया हुआ रोना है तो चुप चुप के रो, आंसू न बहा आवाज न हो। सुरैया का गाया हुआ गाना था अरमान लुटे दिल टूट गया, दुख दर्द का साथी छूट गया। अगले साल यानी 1950 में फिल्म आधी रात के दो गाने लिखने का उन्हें ऑफर मिला, इधर तो आओ सरकार, किसी की जीत किसी की हार, और दिल ही तो है तड़प गया, दर्द से भर न आए क्यों। ये दोनों गाने लता मंगेशकर ने गाए थे, संगीतकार थे पंडित हुसन लाल और पंडित भगत राम। अब आपको सुना रहे हैं आगे बढ़ने से पहले ठाकुर जरनैल सिंह फिल्म का ये बड़ा ही मीठा सा गाना जिसे गाया है आशा भोसले ने।

सन 1950 में ही एक और फिल्म के लिए उन्होंने गाने लिखे। वो फिल्म थी निर्दोष। अगर आपको याद हो तो मुकेश साहब ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत इसी फिल्म से की थी। संगीतकार थे श्याम सुंदर।

सन 50-51 के आसपास बी.आर. चोपड़ा साहब ने एक फिल्म अफसाना का निर्माण किया था। अशोक कुमार और वीणा मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म के संगीतकार थे पंडित हुसन लाल और पंडित भगत राम। कुल 9 गाने थे फिल्म में, इनमें से 6 गाने लिखे थे असद भोपाली साहब ने और काफी मकबूल भी हुए थे।

फिल्म अफसाना एक सफल फिल्म थी और इसका संगीत भी खूब लोकप्रिय हुआ था। असद भोपाली को इसके बदले मिली एक फिल्म राजपूत, जो बॉक्स ऑफिस पर पिट गई थी। उन दिनों साल में इक्का दुक्का फिल्में बनती थीं। काम पाने के लिए स्ट्रगल और कंपटीशन बहुत कड़ा हुआ करता था। इसी की एक मिसाल 1954 में असद भोपाली को फिल्म गुलबहार में एक गाना लिखने का मौका मिला, जिसका संगीत खयाम साहब ने दिया था। इस फिल्म के दो संगीतकार थे, एक खयाम साहब और दूसरे धनी राम। दूसरे गीतकारों में थे जानेसार अख्तर, कैफी आजमी और शिवन रिजवी साहब। असद भोपाली का लिखा हुआ गाना था मुबारक बेगम का गया हुआ, कलियों को चूमूं मैं तारों से खेलूं। दोस्तों 1949 से 1990 तक असद भोपाली ने कुल 100 के आसपास फिल्मों में गाने लिखे।

करीब करीब 400 के आसपास गाने हैं। असद भोपाली साहब का लिखा हुआ टावर हाउस फिल्म का ये बड़ा ही मीठा सा गाना है, लता मंगेशकर और मुकेश ने इसे गाया है।

पंडित हुसन लाल, पंडित भगत राम, सी रामचंद्र, खय्याम, हंसराज बहल, लच्छी राम, धनी राम, दत्ता राम, पंडित शिवराम, श्याम सुंदर, एम दत्ता, नौशाद, ए आर परेशी, चित्रगुप्त, रवि, सी अर्जुन, सोनी कोमी, राजकमल, लाला सत्तार, हेमंत कुमार, मानस मुखर्जी, कल्याण जी आनंद जी, इतने सारे संगीतकारों के साथ उन्होंने काम किया। सबसे ज्यादा काम उन्होंने गणेश और उषा खन्ना के साथ किया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने भी आनंद बख्शी साहब के साथ साथ असद भोपाली से गाने लिखवाए थे। फिल्म पारसमणि के जो दो गाने हैं, वो जब याद आए, बहुत याद आए, और हंसता हुआ नूरानी चेहरा, ये काफी मकबूल हुए थे।

अपने जमाने के मशहूर निर्माता निर्देशक के आसिफ साहब का एक अनोखा शाहकार था फिल्म लव एंड गॉड। इस फिल्म के लिए भी असद भोपाली साहब ने अपनी कलम का सही इस्तेमाल किया। नौशाद साहब का संगीत सब कुछ अमर सा लगता है।

सन 1989 में सूरज बड़जात्या ने बड़ी ही खूबसूरत प्रेम कहानी बनाई, मैंने प्यार किया। इस फिल्म का कबूतर जा ये गाना सुपर डुपर हिट रहा, पर अफसोस इस गाने को जो सर्वश्रेष्ठ गाने का पुरस्कार मिला, उसे लेने अपनी जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ रहे असद भोपाली साहब भोपाल से मुंबई न आ सके।

9 जून सन 1990 को इस शायर गीतकार असद भोपाली ने बगैर किसी अहलो अयाल के अपने शहर भोपाल से दुनियाए फानी को अलविदा कहा।

0: आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित था गीतकार असद भोपाली पर, शोध आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। रात आती है तो साथ लाती है ख्वाबों का जहां, साथ लाती है ढेर सारी यादें। यादों में एक अनोखी दुनिया होती है, जिंदगी की पुरानी तस्वीरें होती हैं यादों में। यादों की चौखट पर बैठ हम बतियाते हैं रात।

एक रात मुराद पूरी होने की रात, एक मुराद चांद पर पहुंचने की, एक मुराद चांद को देखने की। चांद और रात ये एक दूसरे के हमसफर हैं। एक रात यादों की रात, यादों में मोहब्बत के चिराग जलाए, गम की मध्यम आंच पर जज्बात पिघले, ख्यालों में उनका मुस्कुराना और फिर उदास हो जाना, यादों में सितारों को हथेली पर रोपना और मुस्कुरा देना। इन दिनों दिल इन्हीं में रहता है।

गम का साया दिल के किसी कोने में पुराने सामान की तरह रखा था, पर उन्होंने एहसास दिलाया कि जिंदगी गमों के टूटे फूटे टुकड़ों से भी सजी होती है। गम के एहसास के बाद खुशी दोगुनी हो जाती है। एकाकीपन के साये में होता है साथ का एहसास। उन्होंने याद दिलाया, जिंदगी मोहब्बत से सजती है।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं छाया गीत। ये दिल को क्या हुआ, अपने काबू में न रहा, औचक दिल में बातों का सागर भर गया, औचक आंखें खोई खोई सी रहने लगी, बिना बात होठों पर मुस्कुराहट फिरने लगी, आंखें बिना काजल कजरारी लगने लगी। ये शायद किसी के आने की चाप है जिसने दिल का मौसम बदल दिया।

वक्त के धारे मोड़ दिए उन्होंने, उगते सूरज की लाली ने चेहरे को रंगीन बना दिया और दिल को हसीन। भली सी सूरत, भला सा नाम, दिल की धड़कन बन गए, निगाहों से वे दिल में समा गए। उनके हुस्न का जादू आंखों में तिराया, उन्होंने दिल से करार किया और मासूम दिल उनकी मोहब्बत की गिरफ्त में आ गया।

उनके आने से पौधों में अंकुर फूटे, खिली कलियां मुस्कुरा उठीं, फूलों में ताजगी आ गई, बारिश की बूंदों से सज उठी धरती। उनके आने से आसमान में जैसे किसी ने नीला रंग छिड़क दिया हो। खुशनसीब दिल को एहसास हुआ कि उसे प्यार हो गया है। सारी कायनात जब खूबसूरत लगने लगे तो समझो कि उसे प्यार है किसी से।

0: वो इलाहाबाद से पहुँचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अभी आप विविध भारती के कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 11 बजे हैं। अब हम समाचारों के लिए जुड़ेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, भारत दुनिया को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
2: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं। इसमें एनटीए की डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी आज, जैसे बिहार की मीटिंग था। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उसपे एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश के कश्मीर और जम्मू डिवीजन के शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन क्षेत्रों को कवर करते हुए 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा की तिथियां जारी कर दी हैं। विस्तृत और ताजा जानकारी के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jkbose.jk.gov.in को नियमित रूप से देखते रहें। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिनों के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

समाचारों का अनुप्रसारण किया जा रहा था आकाशवाणी दिल्ली से। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा समाप्त होती है। कल सुबह 5:53 से हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। जय हिंद।